ओम शांति। स्पिरिचुअलिटी की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें इस समय संपूर्ण रूप से ट्रस्टी बनकर रहना है। ट्रस्टी को बहुत सहज भाव से इस तरह लेंगे कि हम अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर दें। सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। ये फीलिंग संपूर्ण रूप से हमें अपने अंदर बढ़ानी है, क्योंकि मेरा मेरा इस संसार में बहुत है और हमें सबसे पहले स्वयं को तेरा कर देना है। मैं तुम्हारा बहुत श्रेष्ठ बात है। अब तक हम मनुष्यों के लिए जीते रहे हैं और अब हम जिए भगवान के लिए। इसकी सूक्ष्मता को समझें। अपने परिवार को भी कर दें तेरा। ये सारा परिवार, बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, सब बाबा तुम्हारे बच्चे हैं। धन को भी कर दें तेरा। ये सब तूने दिया है, तुझको अर्पित। जो योग्यताएं हों अपनी, कोई भी विशेषताएं, टैलेंट्स हों, वो भी प्रभु अर्पण। सब कुछ तेरा है। इस तरह है मन की चिंताएं, मन के सब भाव उसको अर्पित कर दें, निमित्त हो जाएं। इसको ही ट्रस्टीशिप कहा जाता है। मेरा कुछ भी नहीं। और फिर हम उस अनुसार चलें जो बाबा हमें कहता है। ईश्वरीय श्रीमत को ही अपना जीवन बना दें। ये होगा संपूर्ण ट्रस्टीपन। तो हम चेक करें, हमने ऐसा किया है कि सब कुछ तेरा, या ये करना बहुत कठिन है। बच्चे की कोई बात आती है तो हम चिंतित हो के परेशान रहने लगते हैं, या हमें ये फीलिंग रहती है ये बच्चा तुम्हारा है, तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम्हें इसकी केयर करनी है। धन भी जो अपना है उसको भी ईश्वरीय आज्ञा अनुसार यूज करेंगे। धन कहीं व्यर्थ न जाए, धन कहीं ऐसे ही हमारा गलत कार्यों में खर्च न कोई कर ले, इसका भी पूरा ध्यान करना है। लेकिन अपने मन के भी ट्रस्टी, अपने बोल के भी ट्रस्टी, अपने कर्मों के भी ट्रस्टी, और इन सब के लिए समर्पण भाव रखना। तो मेरा कुछ भी नहीं है, देह भी मेरा नहीं, ये मन भी मेरा नहीं, ये बुद्धि भी मेरी नहीं, ये धन भी मेरा नहीं, ये संस्कार भी मेरे नहीं हैं। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं ये संस्कार मेरा हो गया है तो वो संस्कार बैठ जाते हैं, और अगर हम ये सोचते हैं ये पुराने संस्कार तो माया के संस्कार हैं, मेरे संस्कार तो वही हैं जो देव संस्कार हैं, तो देव संस्कार बैठने लगेंगे। तो मेरा कुछ भी नहीं, बहुत सुख संबात है। हमने कोई बहुत बड़ी सेवा की हो, मान शान जिसमें बहुत मिला हो, वो भी प्रभु अर्पण करके स्वीकार न करें, अर्थात वो भी मेरा नहीं है। हम ध्यान दें, हमारा धन भी बहुत पवित्र धन हो। यदि हम इल्लीगल तरीकों से कमाए गए धन से बच्चों की पालना करेंगे तो बच्चे चरित्रवान कभी नहीं हो, बच्चे हमें सुख कभी नहीं देंगे, वो हमारे लिए समस्याएं पैदा करेंगे, वो हमें बिल्कुल अपने आध्यात्मिक मार्ग पर लक्ष्य की ओर जाने से रोकते रहेंगे। तो हम सभी इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आइए आज सारा दिन बाबा को अपनी छत्र छाया बनाएं। मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान, और परम धाम में बाबा सर्वशक्तिवान, उनका आह्वान करें, बाबा अपना धाम छोड़कर आ जाओ, हमारी छत्र छाया बन जाओ। और फिर ऊपर की ओर देखें, बाबा धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, उनको उतरता हुआ देखें, उनके अवतरण को एंजॉय करें।
आ रहे हैं नीचे अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए और आ गए हमारे सिर के ऊपर। नीचे मैं शिव शक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान और सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया। तो आओ आज हम सारा दिन सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में रहकर इस जीवन को निर्भय बनाएं। ओम शांति।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जब आपका कोई रोग ठीक होने लगता है तो डॉक्टर कहता है दवा आप पर सही रिस्पॉन्ड यानी कि अनुक्रिया कर रही है, लेकिन यदि आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो डॉक्टर कहता है आपके ऊपर दवा का रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया हो रही है। सही अनुक्रिया सकारात्मक होती है, प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है। हम यह ध्यान रखें कि जीवन में कभी भी और किसी भी स्थिति में हम प्रतिक्रिया न करें, बल्कि अपने लिए एक सही व सटीक अनुक्रिया का चयन करें। हमारा व्यवहार किसी बाहरी प्रभाव के भड़कावे में आया हुआ न हो, बल्कि एक गहरे मूल्य आधारित चयन से उत्पन्न हुआ हो। और संसार का कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे भीतर के भलेपन को अपने पैरों तले रौंदता न चला जाए। संसार कैसा व्यवहार करता है यह देखना हमारा काम नहीं है। सबसे गर्व की बात होती है खुद अपनी नजर में ऊंचा उठना। आप सदैव अपने चरित्र को जिए, चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी कसौटी पर हों और कुछ भी कर रहे हों। दूसरों की सीमा के कारण हम खुद को सीमित न होने दें, वह गलत है। इस बात की आड़ लेकर की गई आपकी गलती क्षमा योग्य नहीं हो जाती। गलती के बदले गलती करना कोई सही तरीका नहीं है। हम अपना भलापन दांव पर न लगाएं। जीवन के हर मौके पर हम लोगों जैसे न बने, उनसे आगे निकलें।

चौहान, हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

युगोस्लाविया की एग्नेस गोंजा बोयाजू तो कलकत्ता के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए भारत आई थी और अनचाहे ही संसार के सामने मदर टेरेसा का करुणा उतार अवतरित हो गया। द नेशनल हेराल्ड के एक संपादकीय सदस्य बालकृष्ण मेनन, जिनका हमेशा से यह विश्वास था कि हर साधु एक बड़ा फरेबी होता है, स्वामी शिवानंद के पास एक आर्टिकल लिखने के संबंध में पहुंचे और वे अनचाहे ही संसार को स्वामी चिन्मयानंद के रूप में प्राप्त हुए। आप कुछ भी कहें, क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए अमेरिका था तो एक अनचाहा परिणाम ही। जो लोग अनचाहे परिणामों के कारण ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उन्होंने संसार पर उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रभाव डाला है जिन्होंने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित किया और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त किया। इसलिए यदि अपने जीवन में आपको वह नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं, यदि आपके पूरे प्रयासों के बावजूद आपको वह परिणाम नहीं मिल रहा है जो आपकी महत्वाकांक्षा को पूरा करता, जो रास्ता आपने चुना है यदि वह आपको वहां नहीं ले जा रहा है जहां आप जाना चाहते हैं, तो निराश न हो। अनचाहे परिणाम जीवन द्वारा आपको उन संभावनाओं को दिखाने का एक तरीका है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अनचाहे परिणाम ईश्वर द्वारा आपको यह बताने का एक तरीका है कि उसके पास आपके लिए कुछ और ही योजना है, एक ऐसी योजना जो आपके द्वारा चाही गई योजना से बड़ी है। कभी कभी आपके लिए निर्धारित की हुई अपनी उस योजना को पूरा करने के लिए ईश्वर आपकी योजनाएं बिगाड़ देता है। संसार जिसे असफलता कहता है, वास्तव में वह एक नया मोड़ है।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर गलती एक सबक है, आत्ममंथन के माध्यम से उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: शुक्रिया बाबा।
1: हमारी चेतना भावनाओं की गहराई की तलाश में रहती है। उसका चयन सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं के बीच कभी नहीं होता, बल्कि गहरी भावनाओं और उथली भावनाओं के बीच होता है। नकारात्मक भावनाएं चूंकि हमेशा ही सकारात्मक भावनाओं की अपेक्षा अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं, इसलिए अधिकांश लोग नकारात्मक भावनाओं की गहराई तक बिना किसी कोशिश के ही पहुंच जाते हैं, जबकि अपनी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करने की गहराई तक वे कभी नहीं जाते, वे उनकी सतह पर ही रहते हैं। आप खुद को देखें और इस पर विचार करें। बच्चा घर में अपने खेल में मगन है, बाकी हम सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। बच्चे का यूं मगन होकर प्रसन्नतापूर्वक खेलते रहना किसी का कोई विशेष ध्यान अपनी ओर नहीं खींचता, लेकिन जब बच्चा चोट खा जाता है तो सारा घर यह कहता हुआ बच्चे की ओर दौड़ पड़ता है, क्या हुआ? और इस तरह हम अनजाने ही बच्चे में इस विश्वास की प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि खुशी खुशी रहने की तुलना में रोना अधिक ध्यान खींच सकता है। भविष्य में और वयस्क होने पर भी वह जब जब ध्यान आकर्षित करना चाहेगा तब तब वह किसी न किसी प्रकार का रोना चीखना लेकर बैठ जाएगा। आंसुओं के अवसाद तक, वह चिड़चिड़ेपन के दौरे तक, कभी कम और कभी अधिक। अपनी भावनाएं उसे बिल्कुल सही और तर्कसंगत लगती रहेंगी, जबकि दूसरों को वे बेतुकी और विसंगत ही नजर आएंगी। ऐसा व्यवहार अवचेतन रूप से कर लिया गया एक चयन होता है, चेतन रूप से नहीं। उसे तो यह भी पता नहीं होता कि उसके भीतर कोई चीज यानी कि उसका अवचेतन न केवल उसकी भावनाओं का चयन कर रही है, बल्कि जीवन की उन स्थितियों का चयन भी कर रही है जो उन भावनाओं के अनुकूल बैठ रही हों। एक अवचेतन ललक उसे गहरी भावनाओं की ओर बहा ले जाती है।

0: रुक, तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

गहरी घृणा और उथले प्रेम के बीच आपका अवचेतन हमेशा घृणा को ही चुनेगा। यही कारण है कि ठेस, आघात व घृणा तो वर्षों तक ताजे बने रहते हैं, लेकिन प्रेम को हर रोज किसी नए ढंग से अभिव्यक्त करना पड़ता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे को यही बात अखर जाती है। विडंबना देखिए, अपनी घृणा को जीवित रखने में तो आप समर्थ हैं, लेकिन अपने प्रेम को संभाल कर रखने के लिए आपको बाहरी संबल की जरूरत पड़ती है। इसका निदान है गहरा प्रेम अनुभव करना सीख लेना। प्रेम की अपनी अभिव्यक्ति और प्रदर्शन को प्रबल करें, प्रेम में डूब जाएं, प्रेम में मगन हो जाएं, प्रेम का प्रतीक बन जाएं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि अपनी ठेस, अपने आघात, अपनी घृणा को क्षमा द्वारा शांत व खत्म करना सीखें, उन्हें गहराई न दें। तभी यह संभव होगा कि आपका अवचेतन अपने सहज स्वभाव से घृणा के बजाय प्रेम का चयन करने लगेगा, केवल इसकी गहनता के कारण ही। साथ ही यह जीवन की उन स्थितियों का भी चयन करना शुरू कर देगा जो प्रेम के लिए अनुकूल बैठेंगी। अपनी विफलता से सीख तो लें, लेकिन विफलता को उसी के हाल पर छोड़ दें, उसे लेकर कुछ अधिक भावुक न हो जाएं। अपने अवचेतन को गुमराह न करें, अपनी सफलता का जश्न मनाएं, अपने रोम रोम से पुलकित रहें, अपने अवचेतन को अच्छा अच्छा भेंट करें। अस्वस्थता एक चलती फिरती टिप्पणी से ज्यादा महत्व के योग्य नहीं होती। अपने स्वास्थ्य की प्रशंसा करें, बड़ाई करें, अपने अवचेतन को अवगत होने दें कि आप किसे श्रेयस्कर समझते हैं, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। समाधान सरल है, नकारात्मक बात को दो वाक्यों में बोलें और सकारात्मक को कम से कम पांच में। नकारात्मकता की ओर जाने वाली अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाएं, लेकिन सकारात्मकता की ओर जाने वाली अपनी भावनाओं को प्रवाह से वहां जाने दें। यही है रूपांतरण, अवचेतन के पुराने रूप का नए रूप में अंतरण कर देना। किसी ने कहा है कि दुखी हृदय से सुंदरतम कविता फूटती है। फिर तो यह सुंदर संसार बनाकर ईश्वर बड़ा दुखी हुआ होगा। अरे, उसने मेरे ईश्वर को ना तो देखा है और न ही जाना है। परमानंद की गहनता को अनुभव करना सीखें, फिर आपको कोई कविता लिखने की जरूरत नहीं रह जाएगी, वह तो आपके माध्यम से बस हो जाएगी। आपका जीवन ही तब कविता बन जाएगा। हम झूठ क्यों बोलते हैं? हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें एक अप्रिय स्थिति में पहुंचने से पलायन कर जाने में सहायक होता है। झूठ बोलने का अभिशाप यह है कि यह हम में पलायन करने की प्रवृत्ति पैदा कर देता है। सत्य निष्ठा का वरदान यह है कि यह हमारे भीतर स्थिति का सामना करने की प्रवृत्ति पैदा कर देता है। आप यदि शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको जीवन में हर चीज का सामना करने की प्रवृत्ति की जरूरत होगी। लेकिन यह प्रवृत्ति विकसित कैसे होगी? सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक और अंक में। पिछली कई सारी मुलाकातें हमने की हैं इस कार्यक्रम में और हमने देखा है कि विभिन्न बीमारियों को, विभिन्न परिस्थितियों को जो हम सामना करते हैं उनमें प्राकृतिक चिकित्सा किस तरह से सहायक है और बहुत ही लाभप्रद भी है। इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन देने के लिए पिछले कई प्रकरणों से आदरणीय डॉक्टर राहुल मोदी जी हमारे साथ रहते हैं। एलोपैथिस्ट हैं, एस्ट्रोपैथ हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन में और गोरखपुर के बहुत ही जाने माने प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र आरोग्य मंदिर में अपनी सेवाएं दीर्घ काल से दे रहे हैं। आज फिर वो हमारे साथ हैं। पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: निश्चित तौर से स्वस्थ होंगे और जैसा कि पिछले कई प्रकरणों में आपने प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हमें कई सारे मार्गदर्शन दिए विभिन्न बीमारियों पर, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन वर्तमान समय डॉक्टर राहुल हम देख रहे हैं कि गर्मी अपने चरम की तरफ बढ़ रही है और टेम्परेचर का जो हाल है वो तो सिर के ऊपर नाच रहा है, तांडव मचा रहा है गर्मी। जो लोग घरों के अंदर रह रहे हैं, जिनके काम अंदर रह करके करने वाले वो एक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको बाहर जाना पड़ता है, सड़कों पर घूमना पड़ता है, काम करना पड़ता है और सीधा सूर्य की जो रोशनी है, प्रकाश है, वो उनके ऊपर पड़ रहा है। और इसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, विभिन्न वर्ग हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसे हालात में जो गर्मी इतनी हाई लेवल पे जा रही है और आगे जाने वाली है, तो ऐसे में प्राकृतिक रूप से अपने आप को कैसे उसके साथ सामंजस्य बैठाएं ताकि हम बीमार ना हो, हमें बीमारियां तकलीफ ना हो, आपका क्या सुझाव है इसके लिए?
1: विशाल भाई, गर्मी से बचने के लिए हमें सबसे पहले पर्यावरण को ठीक करना है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो कृपा करके एक पेड़ लगाइए। ये मत सोचिए कि मैं लगाऊंगा दूसरे क्या करे, क्या कहेंगे मेरे बारे में और उससे एक पेड़ से क्या फायदा होगा। अगर आप एक भी पेड़ लगाएंगे तो इसे पर्यावरण का बहुत ज्यादा लाभ होगा और आप जैसी अच्छी सोच रखने वाले अगर मनुष्य जो है वो सब पेड़ लगाने लगेंगे तो हमारी जो धरा है उसका जो तापमान है वो कम हो जाएगा। अब हमें अभी क्या करना चाहिए?
0: मैं इसमें एक चीज और एडिशन करना चाहूंगा, जो पेड़ लगे हुए हैं कृपया करके उनको भी थोड़ा जल, थोड़ी उनकी सुरक्षा ध्यान रखें तो वो भी एक सहायक होगा।
1: जी विशाल भैया, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जब मैं छोटा था तब चला था कि स्कूल से लौटते समय किसी भी एक पेड़ को आप अपना बना लीजिए, उसको एडॉप्ट कर लीजिए और अपनी जो बोतल है उसमें जो पानी बच गया है वो उस पेड़ की जड़ में डालकर चले आइए। ये मैंने जब मैं स्कूल जाता था तब मैंने किया था ये, और तब ये लगा था कि यार ये क्या क्यों करवाया जा रहा है, इसमें कुछ क्यों पेड़ को क्यों पानी दिलवा रहे हैं, और अब लग रहा है कि वो कितना जरूरी और कितना अच्छा काम मेरे स्कूल वालों ने सोचा था। दूसरी चीज, अगर आपको निकलना है तो पहला उस चीज का ध्यान रखिए कि आप पानी पी के निकले, और ये कहा जाता है कि हल्का ठंडा पानी, ये भी नहीं कि बहुत ठंडा पानी, हल्का ठंडा पानी। पानी की ठंडक कितनी होनी चाहिए? जितनी ठंडा पानी जो आपकी सुराही या मटके से बाहर निकलता है उतना ठंडा पानी कम से कम एक से सवा गिलास पी के निकलना चाहिए। आपको अगर कमजोरी लगती है, बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा निकलना है, तो कृपा करके उस ठंडे पानी में थोड़ा सा नींबू, एक चुटकी नमक और हल्का सा शहद डाल लें, और ये आपको ताकत भी देगा, अच्छा विटामिन सी भी देगा, और जब हमें पसीना होता है तो उससे हमारे शरीर में नमक निकल जाता है और नमक कम होने से बहुत सारे लोगों की मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव आता है, चक्कर आता है। तो कृपा करके पानी को पूरा आप एक से सवा ग्लास पानी पी के निकलिए, अपने शरीर को ढक के निकलिए। सब लोग ये बोलते हैं गर्मी का मौसम है, टी शर्ट या बनिया, मतलब आजकल तो वो बिना बाह की टी शर्टें आ गई है, वो भी पहन के लोग निकल रहे हैं। मेडिकली ये कहा जाता है अपने पूरे शरीर को ढक के निकलिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट या सूर्य का सीधा प्रकाश आपके शरीर पे पड़ेगा तो उससे ज्यादा पसीना निकलेगा, और डायरेक्ट सनलाइट या सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ने से त्वचा के जलने का, त्वचा में जलन होने का, त्वचा में कालापन पड़ने का ये सारी चीजें होने लगती है। तो कृपा करके पूरा शरीर ढक के निकलिए, चेहरे को भी ढक के निकलिए, टोपी पहनिए। महिला बहनों से मेरा यह कहना है कि अपने सर को चुन्नी ढक के निकले, चेहरे को कवर करके निकले। अगर आप ये करते हैं तो आपको गर्मी से कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ा इंडिकेटर कि आपके शरीर में पानी कितना है, ये आपका पेशाब या यूरिन बताता है। अपने यूरिन के कलर का ध्यान रखें। अगर आपका पेशाब सफेद रंग का हो रहा है या हल्का सा पीला हो रहा है तो आप ठीक हैं। अगर आपके पेशाब में पीलापन बढ़ रहा है, इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। आप गर्मी के समय बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के शरबत पीते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जूस है या रस है उसका सेवन करते हैं। इन सब चीजों में जो मेन कंपोनेंट है, सबसे जरूरी चीज है, वो पानी ही है। तो आप अगर ठीक से हाइड्रेट होंगे या आपके शरीर को प्रचुर मात्रा में पानी मिलेगा और आप अपने को ढक के निकलेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित निकलेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा, खासकर जो यंग या जवान श्रोता मेरी बात सुन रहे हैं उनके लिए, कि तुरंत एसी में घुस गए, तुरंत एसी से निकल गए, अभी जैसे कहते हैं टेम्परेचर चेंज बहुत वो करने लगते हैं, अरे बड़ी गर्मी है एसी चलाओ एसी चलाओ। मैं खुद देखता हूं जब मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो पहली चीज यही बोलते हैं कि एसी चलाओ बड़ी गर्मी लग रही है। तो मैं हमेशा उनको हिदायत देता हूं कि प्लीज अपना पसीना सुखा लीजिए, 5-10 मिनट इंतजार कर लीजिए, फिर आप जाइए। तो आपको सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से जो परेशानियां होती हैं वो आपको नहीं होंगी। थोड़ा सा एक चीज का ध्यान और रखना है कि हम बाजार में जो भी, अगर हम भोजन कर रहे हैं, शरबत पी रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर खाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम में आपको डायरिया या दस्त होना या उल्टी होना, इन सब की जो चीजें हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि डायरिया में मतलब जो पानी से होने वाले इन्फेक्शन हैं वो बहुत बुरी तरीके से फैलते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, हमारे सभी श्रोताओं के लिए लाभप्रद होंगी इस वक्त। एक तो ये बात कि वृक्ष लगाएं, एक सबसे बड़ा और चिरकालीन चलने वाला जो साधन है वो तो यही है, वातावरण को ही सबसे पहले ठीक कर लें, और उसके बाद पानी पर आपका ध्यान बहुत रखा है कि पानी पिया जाए जितना वो ठंडा, बहुत ज्यादा फ्रीज वाला पानी ना पिया जाए। आपने बताया कि पानी की जो शीतलता है वो मटके के पानी, सुराही के पानी के जितनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना हो, और उसमें नींबू शहद और नमक डाल लें तो बहुत बेहतर होगा। और याद रखें कि आपका पानी की कमी ये दिखाई देगी आपके पेशाब से, अगर आपका पेशाब का कलर बहुत ज्यादा पीला है तो आपको पानी ज्यादा पीने की आवश्यकता है, और सामान्य रूप से सफेद है या हल्का सा पीला है तो फिर आप तकरीबन सुरक्षित हैं। जहां पानी पीने का ध्यान रखते हैं, वहां पहनने के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह बताया कि बाहर निकलते वक्त अपने सारे शरीर को ढक करके निकले, बहुत कम हिस्सा आपका एक्सपोज हो सूर्य की किरणों में, और बहुत बेहतर होगा कि आप हल्के और सफेद रंग के कपड़े पहने। ईश्वरी विश्वविद्यालय की तो वेशभूषा ही श्वेत है, तो जहां तक हो सके अच्छा रहेगा कि आप सफेद वस्त्र पहने या हल्के कलर के कपड़े पहने, क्योंकि ये सूर्य की जो रोशनी है उसको ज्यादा खींचते नहीं है। ब्लैक और डार्क कलर के जो कपड़े पहनते हैं तो उसमें गर्मी और ज्यादा बढ़ती है, तो ये एक संभाल रखने की आवश्यकता है। तो मेरे सभी जो श्रोता मित्र हैं वो पिछले प्रकरणों से जुड़ते हुए जानना चाहेंगे, जो आपने पहले बताया है श्री भाई के साथ वार्ता होते हुए, ये डायबिटीज एक क्या बीमारी है, किस तरह इसकी गंभीरता है और इसके लक्षण क्या हैं, कैसे आपको समझ में आया कि भाई आपको डायबिटीज हुई है। आमतौर पर आप यही समझते कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, जैसे कि बात की गई थी, कुछ महसूस तो नहीं होता, आप कैसे कहते हैं कि डायबिटीज हो गया। तो आपके माध्यम से बताया कि कुछ लक्षण हैं जिनसे आप जान पाते हैं कि आपको डायबिटीज हुआ है। अब एक मुख्य बिंदु आ जाता है कि बीमारी तो हो गई, हमको मान भी लिया हमने, अब हम क्या इलाज लें। पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर राहुल जी, कि ये बीमारी हो गई है अब हमको, इसमें हम किन बातों का ध्यान रखें, क्या इलाज लें पहली बात तो, और दूसरा किन चीजों की सावधानियों पर हमारा ध्यान रहे अब होने के बाद।
1: सबसे जो जरूरी बात है प्राकृतिक चिकित्सा की और हमारी जितनी भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स है, उनका ये सोचना है कि हमें सिर्फ बीमारी नहीं वरना सारे बीमारी के कारणों पे भी काम करना है।

किसी भी पैथी का सबसे पहला लक्ष्य होता है कि शरीर में शक्रा के स्तर को सामान्य के करीब लाया जाए। जो एक हम लोग ने पढ़ा है कि हमारा HbA1c 5.7 के नीचे होना चाहिए, हमारा फास्टिंग 100 के नीचे होना चाहिए। बहुत सारे लोग, जितने भी हमारा पीपी है, कहीं 140 है, कहीं 150 है, मतलब वो नीचे होना चाहिए उसके। तो जो भी उपचार है उसका लक्ष्य सबसे पहले ये होता है कि ब्लड शुगर को वो संतुलित और नियंत्रित करे। अच्छा, इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा सबसे पहले, जो अगर आप किसी भी चिकित्सालय में जाएंगे तो वो आपको सुबेरे उठ के व्यायाम और योगाभ्यास कराएगा। हम इलाज में सबसे पहले कहते हैं कि आप 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक टहलिए, उसके बाद आप करीब 45 मिनट योगा करिए और अपने दिन की शुरुआत करिए। योगा करने के बाद आप ऋतु के अनुसार फल, थोड़ा अंकुरित मूंग हुआ, चना हुआ, मूंगफली हुआ, उसका सेवन करें। और इसके बाद आप करीब 200 से लेकर 250 ग्राम फल है उसका सेवन करें। फल के लिए जो सबसे कॉमन चीज, जो मैं पुराने एपिसोडों में बोल चुका हूं कि आप कृपा करके जो मौसम चल रहा है उसके अनुसार फल खाइए। फल रस से ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फल में आपको खुज्जा और आपको फाइबर मिल जाता है। इसके बाद हम प्राकृतिक चिकित्सा के इलाज पे जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के दो सबसे अच्छे इलाज जो शरीर में डायबिटीज कम करते हैं वो है पेट की गर्म ठंडी सेक, और दूसरा है गर्म ठंडा कटी स्नान। दोनों हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत आता है। दोनों में जो आपका पाचन तंत्र है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाती है। दोनों उपचारों में आपकी जो पैंक्रियाज है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करी जाती है कि वो ठीक मात्रा में इंसुलिन निकाल पाए। दोनों जो उपचार है वो आपके पाचन तंत्र, एंडोक्राइन मतलब पैंक्रियाज और उसको ठीक करते हैं, पेट की चर्बी को कम करते हैं और आपको डायबिटीज से लड़ने योग्य बनाते हैं और आपके शुगर लेवल को कम करते हैं। गर्म ठंडा कटी स्नान क्या है? कटी मतलब टब, स्नान मतलब उसमें स्नान करना। 2 टब ले लिया जाए जिसमें आधा टब पानी भरा जाए और उस टब में आप बैठे, एक में गर्म पानी रखा जाए, गर्म इतना जितना आप सह पाए, ठंडा जो नॉर्मल नल से आपके पानी आ रहा हो वैसा पानी लें और आप उस टब में बैठ जाएं। ऐसे बैठे कि आपका जो कटी प्रदेश है, जो आपके घुटने से थोड़ा नीचे और नाभि से थोड़ा ऊपर, इतना दूर आपका पानी में होना चाहिए। इसमें 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा और अंत में 3 मिनट गर्म और 3 मिनट ठंडा करके हम लोग इसमें जो मरीज है उसको बैठाते हैं। इस इलाज को लेने से डायबिटीज में बहुत अच्छा जो है वो लाभ मिलता है। इसी इलाज का एक छोटा स्वरूप है पेट की गर्म ठंडी सेक। छोटा स्वरूप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पेट की गर्म ठंडी सेक करने के लिए आपको एक गीला तौलिया चाहिए और आपको एक गर्म पानी की थैली चाहिए और आप इससे अपने ऊपर 4 उंगल नीचे इतने दूर के एरिया को सेकते हैं। इसमें भी वही काम करना है, 3 मिनट गर्म, पहले थैली रखनी है पेट के ऊपर और उसके बाद 1 मिनट ठंडे पानी का तौलिया रखना है। ये काम आपको 3 बार करना, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा और अंत में 3 मिनट गर्म थैली को रखना है और फिर 3 मिनट ठंडे तौलिए को अपने पेट पे रखना। इतना सब करने से आपके पैंक्रियास को बहुत बहुत बहुत लाभ मिलेगा। मगर वो सारे उपचार आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और आपके शरीर से टॉक्सिन निकालने के लिए है। गर्म ठंडा कटी स्नान के बाद जो दूसरा इलाज हम लोग यहाँ बहुत देते हैं वो है सारे बदन की गीली पट्टी। सारे बदन की गीली पट्टी हमारे जो नसें हैं, जो नर्वस सिस्टम है उसको मजबूत करता है और उसको मजबूत जब वो करता है तो वो हमारे शरीर से ठीक से, जो एंडोक्राइन सिस्टम मेरा जो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है उसमें ताकत लाता है।

0: और इसको लाने से हमारे जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में आने लगती है। हम लोग यहाँ पर हफ्ते में एक बार मालिश भी कराते हैं मरीज की, क्योंकि जब आपकी डायबिटीज जब ठीक होने लगती है तो आपको मांसपेशियों में ताकत आने लगती है, आपका भोजन ठीक होने लगता है, तो वो लोकल आपके रक्त संचार को बढ़ाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। यही 3-4 इलाज हैं जो खासकर डायबिटीज के मरीज को दिया जाता है। जितने भी आसन हैं जो जिसमें आगे झुका जाता है, जिसमें आपका पेट दबता है, शशांक आसन हुआ, मंडूक आसन हुआ, ये सारे आसन आपको कराए जाते हैं। जो थोड़ा एडवांस जो योगा कर लेते हैं उन्हें धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, भुजंगासन भी कराया जाता है। जो श्रोतागण इतना सिंपल समझें कि जिन आसन से आपका पेट दब रहा है वो आसन आपके डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। भोजन में हम लोग, जैसा मैंने पहले एपिसोडों में बोला है कि हम आपको हाई फाइबर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट को खिलाते हैं, मतलब जिसमें आपके फाइबर ज्यादा हो तो आपको हम लोग वो भोजन हाई फाइबर डाइट कराते हैं और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भोजन कराते हैं और ये इलाज देते हैं, और हमने इससे इसमें इससे चमत्कारिक लाभ देखा है डायबिटीज में। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा अपने सभी श्रोतागणों को कि अगर आपकी डायबिटीज बहुत बढ़ी हुई है, गड़बड़ है, तो कृपा करके किसी हेल्थ एक्सपर्ट की निगरानी में ही ये सारी चीजें करें और अपना जो डायबिटीज है उसकी रेगुलर जांच करते रहें। प्लीज किसी का सुनकर उसको ये करके फायदा हुआ करना ना शुरू कर दें, कृपा करके किसी एक्सपर्ट के ही अंडर गाइडेंस इसको करें।
1: जी डॉक्टर राहुल, जैसा कि पिछले एक एपिसोड में आपने बताया था कि दिनचर्या जीवनचर्या के विकृत होने के परिणाम स्वरूप होने वाली डिसीज है, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए कि वास्तव में क्या आइडियल दिनचर्या रखने की आवश्यकता है, किन चीजों को अपनी दिनचर्या में से हटाएं, किन चीजों को शामिल करें जिससे कि आप इस महामारी इस बीमारी से बचे रह सकते हैं।
0: डायबिटीज में जो चीज हटाने की चीज है वो है एक्सेसिव शुगर इंटेक, बहुत ज्यादा चीनी का प्रयोग करना, वो भोजन का पदार्थ जिसमें बहुत ज्यादा चीनी मिली हुई है, उन सभी चीजों को प्लीज छोड़ दीजिए। क्या चीज आपको जोड़नी चाहिए वो है व्यायाम। हम लोग व्यायाम कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग टहल रहे नहीं हैं, घूम नहीं रहे हैं, तो ये दो चीज अगर हम भोजन पे कंट्रोल कर लें, व्यायाम को हम जोड़ लें, तो हम दो काम करेंगे। ये दोनों करने से हमारा शरीर तो ठीक होगा ही, साथ साथ हमारा मन भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए जैसे भाई आपने बोला कि आपने पुराने एपिसोडों में कहा, अगर आप अपने जीवन से टहलना शुरू करेंगे, आसन करना, योगासन करना, घूमना, खेलना कूदना शुरू करेंगे, वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी अप्रिशिएट करेगा। जहां मानसिक स्वास्थ्य बढ़ेगा वहां अपने आप स्ट्रेस जो शरीर में है, मन में है, दिमाग में है, वो कम होता चला जाएगा। जहां आपने एक्सेसिव शुगर लेना बंद किया, आपने एक्सेसिव, तो आपकी पैंक्रियास को काम कम करना पड़ेगा, आपके शरीर से इंसुलिन को कम निकलना पड़ेगा। भैया आज का ही एक एग्जांपल, एक मरीज मुझे दिखाने आए कंधे के दर्द को लेकर। मैंने उनसे पूछा आपको डायबिटीज तो नहीं है, बोले नहीं एकदम नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा रिपोर्ट दिखाइए। रिपोर्ट में उनका फास्टिंग 100 था जबकि बॉर्डरलाइन 100 होता है। उन्होंने कहा देखिए एकदम नॉर्मल है, वो अभी नंबर नहीं क्रॉस किया। मैंने कहा आपका HbA1c कितना है। उनका HbA1c 6.5 था, मतलब बढ़ा हुआ था। बोले हाँ कभी कभी पेशाब में जलन हो जाती है, कभी कभी खुजली होने लगती है, कभी कभी। तो हमने कहा ये, बोले इस दिन मुझे टेस्ट कराना था तो हम लोग 3 दिन से हम कुछ नहीं खाए थे। हमने कहा आपने एक टेस्ट को अपने चीट करना चाहा कि आपको नॉर्मल से रिपोर्ट मिले। तो और मैं सबको वही सुझाव देता हूँ, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज जोड़ लीजिए। भैया बंद घरों में लोग रह रहे हैं, छोटे आप निकल के 15-20 मिनट टहलिए, आप कुछ देखेंगे। हम और आप भैया सिर्फ एक स्क्रीन को देख रहे हैं आजकल, तो थोड़ा सा बाहर निकले, देखिए, घूमिए, टहलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप अपने भोजन में थोड़े से चेंजेस ले आए, मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड छोड़ दें, थोड़ा घूमने टहलना शुरू करें, तो आप इस बीमारी के प्रकोप से बच सकते हैं।
1: बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर राहुल जी आपने हमें मार्गदर्शन दिया है कि हमें इस बीमारी के होने के बाद किन किन बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है और किस तरीके का इलाज लिया जा सकता है प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, जिसमें खास तौर से आपने ठंडे और गर्म का इलाज बताया, जिसमें कटी स्नान मूल रूप से बताया और पेट की गर्म पट्टी ठंडी पट्टी के बारे में बताया, जो एक सर्कल है 1 मिनट और 3 मिनट का, 3 मिनट गर्म को रखें 1 मिनट ठंडे को रखें, ये आप घर में कर सकते हैं। तौलिए को ठंडा रखें और गर्म एक जो बोतल आती है थैलियां घर में होती है उसको ले लें और उससे भी आप इस प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं और अपनी बीमारी को हटा सकते हैं। इसमें खास तौर से डॉक्टर साहब ने जो ये बात बताई कि अपनी चहलकदमी बढ़ाएं, थोड़ा बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें, सुबह शाम एटलीस्ट निकलें घूमने के लिए, टहलें, थोड़ा मालिश करें, थोड़ा योगासन करें और भोजन पे थोड़ा ध्यान दें। भोजन में आपके हाई फाइबर होना चाहिए और प्रोसेस्ड फूड से बचें। प्रोसेस्ड फूड जो पैक्ड फूड आ रहे हैं कंपनियों से बंदे आ रहे हैं उनको न खाएं तो बेहतर है, और जैसा वो प्रकृति ने दिया है उनको ऐसे ही खाया जाए, सलाद के रूप में, फ्रूट्स के रूप में। जूस के लिए भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि जूस से बेहतर फल है, आप फल को खाइए और उसका लाभ लीजिए। थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, कुछ आसन कीजिए, वो आसन जो कि आपके पेट को थोड़ा सा प्रेस कर सके, दबा सके, ऐसे आसन किए जा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने स्ट्रेस पे काम कीजिए और उसके लिए मेडिटेशन एक बहुत कारगर साधन है जो अलग अलग तरीका से लोग सिखाते हैं, परंतु ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी राजयोग के माध्यम से आप अपने मानसिक तनाव को बिल्कुल बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं, जिसके कारण आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये डायबिटीज जो है तो बड़ा चैलेंज, लेकिन अगर इन साधनों का आप इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि हमें इस बीमारी से मुक्ति पानी है तो ये असंभव नहीं है, संभव है। आज के इस प्रकरण में हमें डॉक्टर राहुल जी की तरफ से बहुत सुंदर समाधान प्राप्त हुए हैं, इसके लिए मैं अपने सभी श्रोताओं की ओर से आदरणीय डॉक्टर राहुल मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: तो मेरे सभी श्रोताओं को आज की इस सहज स्वास्थ्य के अंत में बहुत सारे सहज उपाय प्राप्त हुए हैं और उम्मीद है अगले कुछ और प्रकरण में जब हमारी मुलाकात होगी, कुछ और ऐसी बीमारियां जो लोगों को अपने कैद में लिए बैठी हैं, उनसे प्राकृतिक रूप से किस तरह से हम मुक्त हो सकते हैं या उन पर अंकुश रख सकते हैं, उनको अपने जीवन से हटा सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय और आनंद में बना सकते हैं, वो सारी बातें हमें अगले प्रकरण में मिलेगी। आज के लिए इतना ही, आप सभी से लेना चाहते हैं अनुमति। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। ओम शांति।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर साइराम अय्यर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। हु एम आई, ये सवाल कब से परेशान कर रहा था, कब से हम इसे तलाश रहे थे। और पिछली जो पूरी हमने बातचीत की है उसमें एक बात साफ हुई, एक सोल कॉन्शियसनेस की जो बात थी उस एस्पेक्ट को हमने समझा और ये जाना कि किस तरह से मैं जो आत्मा हूँ वो तीन तरह से काम करता हूँ। जब मैं सोच रहा होता हूँ, जब विचार आ रहे होते हैं तो माइंड हो जाता है, जब इंटेलेक्ट यानी कि जब डिसीजन ले रहे होते हैं तब इंटेलेक्ट काम कर रहा है, और जो काम किया गया है उसका इम्प्रेशन जो मैं अपने पास रखता हूँ वो संस्कार बन जाता है। इस पूरे ज्ञान को, ये एहसास समझ के कि हु एम आई, आगे बढ़ते हैं और इस सोल कॉन्शियसनेस की जो हमने उस वक्त बात की थी उसे कुछ दिन तक हमने कोशिश की है, आगे जानते हैं इस सफर को और आगे कैसे बढ़ाना है। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: कितनी कॉन्फिडेंस से मैं ओम शांति कह पा रही हूँ, बिकॉज आई रियलाइज यू नो आई एम अ पीसफुल लविंग हैप्पी सोल। आई एम एबल टू से इट नाउ। एक्चुअली ऑल द व्यूअर्स आउट देयर मेरे ख्याल से वो भी इस बात को खूब अच्छी तरह से जान गए हैं। सिस्टर शिवानी, आगे कहाँ जाएंगे?
1: हमने अपने आप को पहचाना। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम अपने रिलेशनशिप्स को देखते हैं, संबंध, क्योंकि वो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी सिटिंग एट होम कि एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं और वो सभी हमारे साथ करें। अगर और आप सबसे पहले आप हमारे साथ करेंगे, नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं, दिस इज जस्ट नोइंग अबाउट आवर सेल्फ। अगर हमारे पास एक पेपर और पेन हो तो हम ड्रॉ करके करें, नहीं तो वी कैन जस्ट डू इट मेंटली। अगर पेपर और पेन लेकर कर रहे हैं तो एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कीजिए, यू डू इट इंटरनली,
0: ओके,
1: एंड जस्ट राइट वन नेम। उसमें एक नाम लिखिए जिनके साथ आपका सबसे क्लोज रिलेशनशिप है। वेरी इजी, सबसे ट्रस्टवर्दी, क्लोज, जो भी कहें, जो भी आपके क्राइटेरिया
0: है, नजदीक है,
1: यू नो, द वन नेम जो आपके माइंड में आता है। उसके बाहर एक और सर्कल ड्रॉ करें और फिर उसमें दो और नाम लिखिए जो नेक्स्ट दो आते हैं,
0: ठीक है,
1: उसी प्रायोरिटी वाइज। लिख लिया आपने, अब एक और सर्कल ड्रॉ कीजिए,
0: ओके,
1: और पांच और नाम लिखिए,
0: पांच, ओके, पांचवा नहीं मिल रहा मुझे।
1: सी सी, नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स नाउ, बिकॉज़ अब हम मूव आउट कर रहे हैं ना, तो एनी रिलेशनशिप, इट कैन बी आपके फ्रेंड्स, इट कैन बी पड़ोसी, इट कैन बी जिनके साथ हम काम करते हैं, कोई भी, स्टेप वाइज, मतलब बेसिकली जिनके साथ हमें कॉन्टेक्ट में
0: कॉन्स्टेंट
1: आते हैं सारा दिन में, इंटरेक्शन में आते हैं। पांच और लिख लिया ना, तो हमने लिखे एक, फिर उसके बाद दो एंड पांच और। डू वांट टू मेक वन मोर सर्कल?
0: No.
1: No? This is enough. अच्छा, आप शेयर करेंगे सबके साथ?
0: I can.
1: अगर बहुत पर्सनल ना हो तो आपके फर्स्ट सर्कल में कौन है?
0: My daughter.
1: आपकी डॉटर। आपके फिर नेक्स्ट सर्कल में?
0: My second daughter.
1: And two names आने थे?
0: And my mom.
1: And your mother. ठीक है, फर्स्ट डॉटर, फिर सेकेंड डॉटर एंड मदर। अब आपके थर्ड सर्कल में पांच नाम और आने थे, वो कौन होंगे?
0: My brother, my sister, my husband now comes in the third circle, and my friends. And my very close friend, another close friend.
1: ठीक है, अब अगर हम इस एक्सरसाइज को और भी करते जाते तो एक सर्कल और आता जिसमें शायद आपके वर्किंग कोलीग्स आ जाते, क्योंकि नेक्स्ट प्रायोरिटी वो हो जाती है। फिर एक सर्कल और आता जिसमें हमारे पड़ोसी, रिलेटिव्स, दूर दूर के रिश्तेदार आते, एंड सर्कल सर्कल्स बहुत सारे बनते जाते। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज कि गॉड, परमात्मा किसी सर्कल में नहीं आया।
0: परमात्मा के साथ you know, like we talk,
1: हम रोज सुबह उठकर कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, गॉड इज माय फादर, मदर, फ्रेंड, गाइड, टीचर, लिबरेटर, मतलब हर रिलीजन में हमने रोज यही याद किया कि मेरे सारे संबंध एक तेरे से ही है, तू ही मेरा सब कुछ है, बाकी सब तो बस खेल है, ड्रामा है, लेकिन मैं सब कुछ तो आप ही हो। लेकिन जब हम एक्चुअल लिखने पर आए तो हमारे तीसरे, चौथे, पांचवे सर्कल तक भी उसका
0: Actually,
1: नाम,
0: मैं, हाँ, if I look at it, मैंने तो मुझे नहीं मालूम दर्शकों ने क्या क्या होगा, but yes, with me, I like, that's so bad. Isn't
1: No, it's not bad. It's just the truth. इट्स देयर इज नो नथिंग बैड अबाउट इट. इट्स जस्ट दैट ये हमारे जीवन की सत्यता हमारे सामने आई. अगर हर एक अपने सर्कल्स को भी देख ले,
0: और हम कितना फिर झूठ बोलते हैं हर रोज की यू नो लाइक आप हमारा सब कुछ हो.
1: हम झूठ नहीं बोलते, हमें वो सब सिखाया गया इसलिए हम वो रोज उसको दोहराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है इसलिए वो हमारे किसी सर्कल में फिट नहीं हुआ. अगर हमने परमात्मा के साथ सचमुच उसमें से कोई एक संबंध भी एक्सपीरियंस किया होता तो वो हमारे कोई ना कोई सर्कल में तो आता. फर्स्ट सर्कल में ना भी आता, तीसरे चौथे सर्कल में तो आ जाता कहीं ना कहीं, लेकिन वो तो हमारे किसी सर्कल में ही नहीं आया. यू सी, एंड दैट्स व्हाई वी समटाइम्स रियलाइज कि वी प्रोबब्ली डोंट नो हिम.
0: सिस्टर शिवानी, हमने बात ये की कि उस परमात्मा को तलाश रहे हैं क्योंकि हम उसका एहसास नहीं कर पा रहे. दूसरी तरफ जब हमने ये देखा था कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, तो ये बात सामने आई थी कि हर चीज, चाहे पैसा कमा रही हूँ या किसी रिश्ते में भी जा रही हूँ, एक्चुअली मैं तलाश रही हूँ हैप्पीनेस. यू नो, हम खुशी ही तलाश रहे होते हैं और वो परफेक्ट रिलेशनशिप तलाश रहे होते हैं. तो वो इवन ईश्वर के साथ भी
1: राइट. एक्चुअली अगर देखा जाए कि हम ये दो चीजें हमेशा तलाश रहे हैं. हिस्ट्री में आप देख कितना भी पीछे चले जाइए, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दीज टू थिंग्स, परफेक्ट हैप्पीनेस एंड परफेक्ट रिलेशनशिप. यू नो, हैप्पीनेस में भी एक होता है कि बाह्य हैप्पीनेस, एक थोड़ा सी खुशी, और एक है आंतरिक खुशी, ब्लिस जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं अति इंद्रिय सुख, जो इन इंद्रियों से नहीं मिलने वाला है. तो हर एक ये खोज रहा है, एक ये परफेक्ट रिलेशनशिप, एक ऐसा परफेक्ट संबंध, और ये अति इंद्रिय सुख. और हमेशा यही कहा जाता है कि हम खोज उसी चीज की करते हैं जिसको हमने कभी ना कभी अनुभव किया है. You will search only for that which you have sometime known or experienced.
0: Because again you start, you know, hankering with
1: this. Because वो जो चीज आपने एक बार एक्सपीरियंस कर ली थी वो आपकी मेमोरी में बैठ गई है, और आज जब आपको वो नहीं मिल रही है, you start looking for it. लेकिन अगर आपने उसका कभी अनुभव नहीं किया है तब आपको उसकी खोज नहीं होगी, बिकॉज आपने टेस्ट नहीं किया.
0: You don't even know it. Yeah,
1: we have experienced this. हमने परमात्मा के साथ एक परफेक्ट रिलेशनशिप, वो अति इंद्रिय सुख कभी ना कभी अनुभव किया था. कब अनुभव किया था वो अभी याद नहीं है, वो हम देखेंगे आगे चल के, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने वो एक परफेक्ट रिलेशनशिप और वो अति इंद्रिय सुख हर आत्मा ने अनुभव किया था. और उसकी मेमोरी हर आत्मा के अंदर स्टोर्ड,
0: संस्कार के रूप में जो
1: संस्कार
0: इंप्रेशन जो
1: राइट, कि वो खुशी, वो अति इंद्रिय सुख चाहिए, यू नो, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. तो उस चीज की खोज में हम हर एक लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि आज हम वो संबंध उससे नहीं अनुभव कर रहे हैं,
0: हम
1: तो कहीं ना कहीं वो आपस में तलाशने कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल लेवल पर, रूहानी लेवल पर उस खुशी को नहीं अनुभव कर पाते, तो हम मेंटल या फिजिकल लेवल पर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अपने जो फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं उनमें वो ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं. लेकिन वो हमें फिर तभी मिलेगी जब हम वो परफेक्ट रिलेशनशिप एक उसके साथ एस्टैब्लिश कर लेंगे, तभी हम वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव सच में कर पाएंगे जो हर आत्मा चाहती है.
0: So, वो सोलमेट वाली जो बात.
1: हाँ, yes.
0: Again, you know, we're all busy talking about कि, you know, you are my soulmate. लेकिन फिर उसमें परेशानी,
1: उसमें कुछ बहुत सारी problems आ जाती
0: हैं. कई बार कई relationship ऐसे लगते हैं कि like it's they fix like this, you know, ऐसा रिश्ता, perfect रिश्ता है. लेकिन वो हमेशा ही देखा गया है कि it happens.
1: Soulmate word कितना अच्छा है. कि soul का, आत्मा का जो परफेक्ट मेट है, तो वो आत्मा का परफेक्ट मेट वो एक परमात्मा ही है, क्योंकि वो परमात्मा ही है जो मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेगा, जो मुझे अनकंडीशनली प्यार करेगा, जो मुझे क्षमा करेगा और फिर से उठा लेगा, नो एंड जो हर्ट नहीं होगा मेरी किसी भी बात से. तो वो परफेक्ट सोलमेट एक परमात्मा ही हो सकता है.
0: आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है वही परफेक्ट मिलन हो सकता है. एक यहाँ पे जब हम बात करते हैं परमात्मा की, हु इज ही, यू नो, दैट्स अगेन अ बिग क्वेश्चन. मैं कहाँ, कौन है परमात्मा? मैं परमात्मा को मंदिरों में ढूंढूं, मस्जिदों में, कौन है परमात्मा?
1: एक्चुअली परमात्मा के बारे में इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स हो गए हैं, और उसकी वजह से हमारा माइंड थोड़ा क्लोज हो गया है, यू नो, बिकम थोड़ा सा हम विदड्रॉ कर गए हैं, क्योंकि हमारे जितने भी बिलीफ सिस्टम्स हैं परमात्मा के बारे में, वो हमारे संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारे रिलीजन और हमारे एजुकेशन सिस्टम से हमें मिले. लेकिन वो एक बिलीफ सिस्टम है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि एक बिलीफ, एक मान्यता, जरूरी नहीं है कि वो मान्यता सच हो,
0: सही हो।
1: इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ बिलीफ इज द ट्रूथ, इट इज अ बिलीफ। तो रिलीजन ने, धर्म ने हमें बहुत सारी बिलीफ्स दी हैं। सबसे पहली बहुत अच्छी बात जो धर्म ने हमें दी कि वो बिलीव करवाया कि परमात्मा एग्जिस्ट करता है। तो रिलीजन मेड अस बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेकिन साथ साथ जो एक बिलीफ हमें दिया कि उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्रोच करना या उसके नज़दीक आना, ये बहुत मुश्किल है। तो हमारे अंदर ये भी एक बिलीफ आ गया कि परमात्मा कोई बहुत डिस्टेंट, कोई बहुत दूर चीज़ है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है, आई बिकेम फार फ्रॉम हिम। तो दिस वॉज ऑल्सो अ बिलीफ, ये मुझे सिखाया गया है कि परमात्मा कोई शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है, वो बहुत दूर है, आप उससे कोई उसके नज़दीक नहीं जा सकते हो। अगर आपको परमात्मा के नज़दीक जाना है तो शायद आपको बहुत जन्मों के
0: तपस्या करनी पड़ेगी ना, तार जोड़ने के लिए आपको कितने कितनी चीज़ें।
1: तो ये सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं बेस्ड ऑन सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली। तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में जो हम कहते हैं ना, फर्क क्या है? जब रिलीजन हमें ये सारा ज्ञान दे रहा है तो आध्यात्मिकता की क्या जरूरत है? वॉट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी हमें एक्सपीरियंस की तरफ लेकर जाती है। रिलीजन ने हमें बिलीफ्स दिए हैं और कहीं ना कहीं हमने वो बिलीफ्स को एक्सपीरियंस करे बिना ही एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए हम कई बार डगमगा जाते हैं कि ये वाला है सही है या ये वाला सही है। स्पिरिचुअलिटी हमारे माइंड को ओपन करता है, वो भी एक थॉट के साथ स्टार्ट होगा लेकिन उसको एक्सपीरियंस करना होगा। तो वो हमारे माइंड को ओपन करता है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, परमात्मा के साथ एक बहुत ही निकट, बहुत ही नज़दीकी संबंध अनुभव करना ये संभव है। ये स्पिरिचुअलिटी हमें उसकी तरफ लेकर जाता है।
0: पहले हमने अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो सबसे पहले जो संबंध हमने जोड़ा अपने आप से।
1: यस, बिकॉज जब तक हम अपने को नहीं पहचानेंगे तो वो कौन है जो उससे संबंध जोड़ रहा है? यू नो, इट्स लाइक सपोज आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा है, I get to know you and there is a relationship. So first I need to know myself. Unless I know myself, there's no question of a relationship with you. तो spirituality सबसे पहले हमें अपना परिचय दिया, उसके बाद हमें उससे संबंध जोड़ना सिखाया। And अनुभव, meditation क्या करता है? Meditation एक ब्रिज बन जाता है उस बिलीफ से अनुभव की तरफ। आप एक बिलीफ से शुरू करते हैं लेकिन उसको अनुभव करना, ये मेडिटेशन हमें हेल्प करता है। कि जैसे हमने अभी देखा वो सर्कल में कहीं भी परमात्मा का नाम फिट नहीं हुआ क्योंकि हमने परमात्मा के साथ रिलेशनशिप कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। और जो हमारी बहुत सारी मान्यता हुई कि परमात्मा हाँ कोई शक्ति है, हमें उसकी आराधना करनी है, हमें उसकी महिमा करनी है, लेकिन हम उसके सामने बहुत
0: छोटे हैं, हमारा हम कुछ नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे, हम रोएंगे तो वो हमारी सुनेगा, मतलब
1: हम नीच है, पापी है, कपटी है, हम उसके चरणों की धूल है। यू नो, सो इट वॉज ऑलवेज ग्लोरिफाई हिम बट इन द प्रोसेस एब्सोल्यूटली डिग्रेड योर सेल्फ, यू नो। तो ये भी एक रॉन्ग बिलीफ था। आत्मा एक बहुत अति सूक्ष्म सुंदर प्योर शक्ति है, तो वो अपने पिता को याद कर रही है, उसके लिए उसको अपने आप को डिग्रेड नहीं करना है क्योंकि फिर संबंध नहीं जुड़ेगा। फिर रिलेशनशिप नहीं जुड़ेगा।
0: मैं अगर खुद पे ही विश्वास नहीं, मतलब मैं अपने
1: अगर मैं सोचूं कि आप बहुत ऊंची एक हस्ती हैं और मैं तो आपके सामने कुछ हो ही नहीं, मैं आपके चरणों में भी बैठने लायक नहीं हूँ, तो क्या रिलेशनशिप?
0: नो, रिश्ता बन ही नहीं सकता।
1: रिश्ता बन नहीं सकता। तो स्पिरिचुअलिटी हमें वो संबंध भी जोड़ती है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिग्रेडिंग अर्स, कि अपने आप को नीच, उल्टा अपने स्वमान को जागृत करके फिर उस परमात्मा की तरफ लेकर जाती है। कि पहले अपने को पहचानो कि यू आर अ ब्यूटिफुल बींग, यू आर अ प्योर कॉन्शियंट बींग, तो उसको पहचान के फिर उसको याद करो। तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली एक पर्सनल रिलेशनशिप बना देती है, वेरी पर्सनल। परमात्मा के साथ जो हमारा रिलेशनशिप बनता है, इट इज डायरेक्ट, रियल, इट्स वेरी रियल, डायरेक्ट एंड डायनामिक, इट्स अ लिविंग रिलेशनशिप। ये एक सत्यता है, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट। यू नो, अभी तक परमात्मा एक कॉन्सेप्ट है। परमात्मा है, कौन है, क्या है, क्या करता है, कहाँ रहता है, पता नहीं. किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा. सो इट्स अ कॉन्सेप्ट. तो एक कॉन्सेप्ट के साथ संबंध नहीं जुड़ सकता है. लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि परमात्मा के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप, उतना ही नजदीकी, उतना ही घनिष्ठ रिलेशनशिप जैसे आपने अपनी बेटी का नाम लिखा सबसे पहले. क्यों लिखा वो नाम सबसे पहले?
0: Actually, I want to ask. Yeah, because I feel so close.
1: हाँ, so you feel it, right? तो जब तक आप वो feel नहीं करेंगे, आपके मन में वो नाम सबसे पहले ना आता. तो वो इतना सुंदर relationship आप experience कर सकते हैं कि परमात्मा का नाम शायद आपके first circle में आना शुरू कर देगा.
0: No, you mean to say it's like the way I'm talking to you, yes. I talk to him.
1: It is a very. That's why, because communication के बिना तो relationship नहीं हो सकता. You know. तो रिलेशनशिप इतना प्योर रिलेशनशिप, इतना डायनामिक रिलेशनशिप हम परमात्मा के साथ अनुभव कर सकते हैं.
0: एंड दैट्स थ्रू
1: आवर कम्युनिकेशन, आवर मेडिटेशन, आवर रिलेशनशिप. वो हम देखेंगे. बट फर्स्ट इम्पोर्टेंट व्हाट वी वांट टू शेयर विद एवरीबडी इज कि ये जो सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं वो गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है. लेकिन जब हम इस यात्रा पर चलेंगे अपने अगले कुछ एपिसोड्स में, ट्राई एंड कीप योर माइंड ओपन, माइंड ओपन टू द आइडिया ऑफ अ ब्यूटिफुल क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड.
0: यू नो, बिकॉज वो बिलीफ लेकर अगर हम एक्सपीरियंस कर लेंगे तो वो सच बन जाता है.
1: एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर आत्मा आत्मा के साथ संबंध जोड़ सकती है, आत्मा परमात्मा के साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं जोड़ सकती?
0: क्योंकि हम जानते ही नहीं ना. देखिए,
1: यू
0: नो, बिकॉज आई नो यू. जब तक मैं आपको नहीं जानती थी, मैं कहां, मुझे पता नहीं था कुछ भी था. नाउ आई नो यू.
1: एब्सोल्युटली. तो रिलेशनशिप जुड़ सकता है ना. तो वो उसी तरह, सो वी वांट एवरीवन, ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, दे नीड टू ओपन देयर माइंड कि परमात्मा जो हमारा माता पिता है, उसके साथ हम एक बहुत सुंदर, एक बहुत पर्सनल और बहुत क्लोज, वेरी क्लोज रिलेशनशिप हम उसके साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अभी तक परमात्मा एक कॉन्सेप्ट था, यू नो, एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट था कि परमात्मा ये हो सकता है, ये हो. इंटेलेक्चुअली ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर,
0: एक्सेप्ट नहीं कर पाते. यू नो,
1: कई बार लोग कहते हैं साइंस प्रूफ करे ना भगवान है. गॉड इज नॉट समथिंग विच यू कैन प्रूव साइंटिफिकली. इन फैक्ट गॉड शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू साइंटिफिक स्क्रूटनी लाइक दिस. यू नो, साइंस इसको प्रूफ करे. इट्स अ रिलेशनशिप. साइंस मेरा और आपका रिलेशनशिप भी प्रूफ नहीं कर सकता. इट्स अ फीलिंग विच आई शेयर एंड यू शेयर. नो साइंटिफिक इक्विपमेंट कैन प्रूफ दैट रिलेशनशिप राइट नाउ. बट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि सारे आंसर्स आपके पास ही हैं, तो धीरे धीरे सारे आंसर्स आपको मिलते ही जाएंगे. अभी तक क्या हुआ, हर एक ने हमें परमात्मा का परिचय दिया. एक आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट था, एक बिलीफ था, या किसी और का अनुभव था. ये भी हो सकता है कि किसी ने परमात्मा के साथ बहुत अच्छा अनुभव किया है और वो हमारे साथ शेयर करे. लेकिन उसके अनुभव से हमारा अनुभव नहीं क्रिएट हो सकता.
0: Definitely.
1: उससे हमारी कम्युनिकेशन नहीं जुड़ सकती. ये यात्रा हमें खुद ही करनी पड़ेगी. उस परमात्मा की तरफ अपने मन को खोलकर उसकी शक्ति को एकाग्र करना, ये हमें करना पड़ेगा. इट्स लाइक सेइंग कि आप एक फूल को ले लो और उसको एक कबर्ड में लॉक कर दो और आप कहो कि सूर्य की शक्ति उस पर आनी चाहिए. No. वो है, लेकिन उसकी शक्ति को लेने के लिए आई विल हैव टू फर्स्ट ओपन अप टू हिम. आई विल हैव टू ओपन आउट एंड आई विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम हिम. आज दिन तक हम प्रार्थना करते आए, महिमा करते आए, जप तप सब कुछ बहुत किया, प्राप्ति भी हुई, लेकिन जो हमारे वो आंतरिक घाव थे वो हील नहीं हुए अभी तक. वो हमारी जो कमजोरियां थी, हमारे जो कड़े संस्कार थे, वो अभी नहीं बदले. बिकॉज हम सिर्फ वर्शिप कर रहे थे, हम सिर्फ उसकी महिमा गा रहे थे, हम उसे बहुत प्यार कर रहे थे. और उसका फायदा होता है, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट की तरफ अपना बहुत स्नेह एक्सप्रेस करो तो आपको फायदा होगा, क्योंकि हमने समझा कि जब वी गिव लव टू समबडी इट गोज थ्रू
0: Me.
1: I experience it and then I give it to somebody. तो जब हमने परमात्मा के किसी भी स्वरूप को लेकर अपना बहुत स्नेह प्रकट किया तो हमें बहुत अच्छा लगा. इसलिए आप देखिए लोग भाव विभोर हो जाते हैं, लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो इतना स्नेह भरा हुआ है परमात्मा के लिए. तो जब वो प्रकट करते हैं तो वो पहले उनको मिलता है और इसलिए वो इतने भावनात्मक हो जाते हैं, जो बहुत अच्छा है. लेकिन उससे उनके अंदर की जो कमी कमजोरियां है उसको नहीं वो पहचान पाते,
0: जुड़ पाया ना. क्योंकि
1: it's like going to a doctor.
0: Yeah.
1: You know, डॉक्टर हमें हील कर सकता है, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाकर सिर्फ डॉक्टर को ही वर्शिप करते रहे या उसकी महिमा करते रहे, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आपके अंदर ये हीलिंग पावर है, आप तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उससे अपनी ट्रीटमेंट ना करवाएं, सिर्फ उसकी महिमा करें और वापस आ जाएं, तो हमारे घाव कहाँ ठीक हुए या हमें ये कहाँ समझा कि हमें क्या करना है अपने घाव को ठीक करने के लिए। इसी तरह परमात्मा भी तो हमारे सारे कमी कमजोरियों को ख़त्म कर हमें अपने वो ओरिजिनल स्वरूप में लाने वाला है, लेकिन हम सिर्फ उसकी महिमा करें।
0: I just want to ask if we'll have a conversation with him, he's going to answer back.
1: You want to go very ahead right now?
0: No. I just
1: yes,
0: you know,
1: absolutely.
0: He'll be see when you said that he's going to heal us. Is it possible?
1: Yeah, whatever I'm sharing with you now is only from my personal experience. ठीक है, परमात्मा के साथ जो अनुभव किया है, जो वो पर्सनल रिलेशनशिप अनुभव किया है, इनफैक्ट एक एक बात जो आपसे शेयर होती है इतने सारे एपिसोड्स में, जितनी सारी हम ज्ञान की इतनी गहरी बातें करते आए हैं, वो डायरेक्टली उस परमात्मा से ही तो मिली हुई है, नहीं तो हमें क्या आता था।
0: That's what a lot of people have asked me, you know, कि आप, मैं हमारे दर्शकों के सामने ये क्लियर भी कर देती हूँ मैं बात अभी, कि आपको कैसे इतनी सारी बातें पता है। तो मुझे तो खैर बिल्कुल ही नहीं पता, लेकिन I said you know, but
1: लेकिन I didn't know at all. अगर मैं थोड़े साल पहले अपनी लाइफ को देखूं तो आई वॉज लिविंग विद ऑल दीज बिलीव्स, हाँ गुस्सा करना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, यू नो ऑल दीज, परमात्मा को जानते नहीं थे। ये तो परमात्मा ने जब डायरेक्ट ये ज्ञान दिया, और सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, वो स्नेह भी दिया, वो शक्ति भी दी, जिससे हम उस ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में धारण कर सकते हैं, तब तो हम आज सबके साथ वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो दिया हुआ सारा उस टीचर का है।
0: दिस इज समथिंग यू नो लाइक इट्स एक्चुअली इट इज हैपनिंग, इट्स ट्रू। एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम सब भगवान को कहते हैं कि परमात्मा है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी सुन रहे हैं, उनको याद क्यों नहीं रख पाते हम? यू नो हम सुबह याद जरूर कर लेंगे जब मंदिर जा रहे हैं, या
1: सुबह याद करते
0: नहीं करती वैसे,
1: कभी कभी करते हो?
0: हाँ कभी कभी, जब परेशान होते हो।
1: अच्छा, जब परेशान होते हो।
0: लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कर लेना चाहिए, यू नो, बिकॉज
1: मजबूरी वाली याद है ये, कर लेना चाहिए ताकि सब ठीक चले अपने घर में,
0: यू नो, कि अगर सुबह सुबह याद कर लो अच्छा रहता है।
1: नहीं वो तो डेफिनेट है कि अच्छा रहता है, लेकिन देखो सभी लोग परमात्मा को याद करते हैं, कई लोग बहुत विधि पूर्वक रोज टाइम निकाल के, या जो भी, वो हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक इट कि हम हर रोज सवेरे 10 मिनट निकाल के परमात्मा को याद करते हैं, ठीक है, और सारा दिन में हम बहुत सारे लोगों को याद करते हैं। अब जो सारा दिन में हम लोगों को याद करते हैं ना, वो बिना मेहनत वाली याद होती है, एफर्टलेस रिमेम्बरेंस। आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, आप यहाँ बैठे हैं, शूट करते करते भी बीच में आपको आपकी बेटी याद आ सकती है, आप कोई मेहनत नहीं कर रहे। तो मतलब जो लोगों की याद है हम न चाहते हुए भी करते हैं, ना हम उनकी फोटो सामने रखते हैं, ना चाहते हुए भी उनकी याद आती है। इसका मतलब याद करना बहुत इजी है, किसी ने हमें याद करना नहीं सिखाया। लेकिन जब हम भगवान को याद करने बैठते हैं तो पहली बात तो हम अलग से 10 मिनट निकालते हैं, क्योंकि काम करते हुए याद करना तो इम्पॉसिबल है। तो हम 10 मिनट निकालते हैं, हम अलग एक स्थान पर बैठते हैं, फिर हमारे सामने कोई स्वरूप है, कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो हम एक मूर्ति या चित्र रखते हैं या कुछ भी, और फिर हम कोई गीत चलाते हैं, मतलब वायुमंडल बहुत अच्छा बना लेते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड बहुत सिंसियरली कि ये 10 मिनट मुझे सिर्फ उसको याद करना है। अब वो 10 मिनट कैसे बीतते हैं? हाँ फंसे क्यों?
0: इसलिए क्योंकि मुझे पता है कैसे बीतते हैं सबके भी, यू नो, कई कई थॉट्स, कई कई बातें आ रही है, या यू नो प्रोसीजर, यू नो लाइक,
1: तो मतलब 10 मिनट आप याद करने बैठे उस एक शक्ति को जिसके साथ आपके सारे संबंध है, लेकिन उस 10 मिनट में भी थोड़ी देर याद रुकेगी, फिर आएगा बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छा किचन में क्या बन रहा है, आज सारा दिन में किसको मिलना है, फिर याद, पता ही नहीं चलेगा, फिर 10 मिनट बीत गए और लगेगा काम पूरा हुआ, मैं 10 मिनट तो बैठ गए। फिर लोग कहते हैं भगवान को याद करना बहुत मुश्किल है, मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है। हमें किसी ने याद करना नहीं सिखाया, आपने बच्चे को नहीं सिखाया कि अपने मम्मी पापा को कैसे याद करना है। तो इसका मतलब याद करना एक नेचुरल चीज है आत्मा के लिए, वो सबको याद करती है, यहाँ तक कि जो लोग उसको नहीं अच्छा लगते उनको भी याद करती है,
0: याद करती है।
1: हाँ, लेकिन उसको याद करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए इतना एफर्ट करते हैं, फिर भी कहते हैं जी 1 मिनट याद रुके, बाकी टाइम तो याद इधर, व्हाई?
2: क्योंकि हम उसे जानते ही नहीं ना पहचानते हैं, मतलब तो इसीलिए इतनी सारी इमेजेस गड़बड़ हो जाती हैं फिर कि हु इज रियली यू नो कौन है वो.
1: क्योंकि जैसे हमने देखा ना, हम एक कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान कोई है शक्ति जिसे हम जानते नहीं, जिसे हम पहचानते नहीं. आजकल लोग कहते हैं हम तो भगवान को मानते हैं, यू नो मानते हैं वो, आई बिलीव इन गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उनको जानते हैं, क्या आप उनको पहचानते हैं? क्योंकि जब तक जान पहचान नहीं होगी तब तक संबंध नहीं जुड़ेगा, और तब तक याद करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा.
2: वंडरफुल. आई थिंक जहां हम पहुंचे हैं अब, जान पहचान आप इसे हम जानेंगे कि कैसे बनेगी, क्योंकि इट हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट, यू नो मतलब अब क्योंकि वक्त नहीं है, इस कड़ी को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा. लेकिन सिस्टर शिवानी, ये बात इतनी क्लियर हो गई है कि अब जान पहचान बहुत ज़रूरी है. हम उस पहचान को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे और उसके बाद ही हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ यही है वो परमात्मा जिसे मैं तलाश रही थी, वो परफेक्ट रिलेशनशिप जो मैं ढूंढ रही थी, क्या ये वही है? वो मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा, लेकिन पहचान आपको करवानी पड़ेगी क्योंकि अब बहुत ज़रूरी हो गया है. बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी यू नो कुछ मिथ्स को हमें बाहर निकालने के लिए. थैंक यू सो मच. अभी तक हम जिसे भगवान मानते आ रहे थे, जिसे तलाश रहे थे, क्या वही भगवान है? जितने रॉन्ग बिलीव्स पर हम जिंदगी जी रहे थे, वो तरीका गलत नहीं है, वो तरीका सही हो सकता है, वो पूरे एस्पेक्ट सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर हम अपने लॉजिकल माइंड से देखें तो यही बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं पहचानना ज़रूरी है. मान तो हम रहे हैं लेकिन क्या हम उसे पहचानते हैं? क्या आप नहीं पहचानना चाहेंगे? आज की इस कड़ी से जुड़ी कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल आपके पास है जो आप इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9899-3-4-6-6, 9873-6-6-5, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. एक कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ कि परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता कायम हो सकता है, एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड रिश्ता. जरूरत यह है कि हम परमात्मा को पहचाने. कौन कराएगा वो इंट्रोडक्शन, हमने वादा लिया है, तो अगली कड़ी में जानने की कोशिश करेंगे कि वो इंट्रोडक्शन हो पाता है या नहीं. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी आपसे मुलाकात. नमस्कार.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आरव, आप क्यों नहीं खेल रहे हो?
1: मुझे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता।
0: चलो मेरे साथ, हम भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं।
1: पर वो
0: बच्चों, क्या हम भी आपके साथ खेल सकते हैं?
2: पर आंटी, ये कैसे खेलेगा? ये तो चल नहीं सकता।
0: क्या आप भी अगर इस हाल में होते तो क्या आपका मन नहीं करता खेलने का? आरव का भी मन आपकी तरह है, ये भी खेलना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, हंसना चाहता है।
3: चलो हम भी अब आरव को अपने साथ खिलाते हैं। चलो आरव, खेलते हैं मिलकर।
4: कहीं हम अपनी पिछड़ी सोच की वजह से बच्चों से उनके खेलने का अधिकार छीन तो नहीं रहे हैं? रेडियो मधुबन कहता है, खेलना हर बच्चे का अधिकार है।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: ए रुक, ए रुक रुक, कुछ सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो आप, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से, अवलदार कड़क, हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुधवार का दिन है, गणेश जी का दिन है और गणपति बप्पा का दिन भी आ रहा है। गणेश चतुर्थी लगातार जो है उसकी तैयारियां चल रही हैं, और आपके यहाँ भी गणेश जी का अगर पूजन अर्चना और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं तो ज़रूर हमें बताइए फ़ोन करके 94-14-15-14-15 इस नंबर पर। तो आइए, 8:23 हो रहे हैं और 9 सितंबर आज का तारीख है। 9 आंकड़ा बहुत ही अच्छा है, ज्योतिष में बड़ा प्यारा लगता है। तो आइए, एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
3: हेलो, नमस्कार सर, कंचन भाई बोल रहा हूँ।
2: कंचन भाई बोलिए, स्वागत है आपका।
3: जी जी जी सर, आज खेत में आए हैं सुबह से 7 बजे से।
2: बहुत ही बढ़िया, सुबह सुबह खेत में जाने से अच्छा लगता है।
3: हाँ हाँ, ये थोड़ा गाय भैंस रखते हैं तो थोड़ा घास भी काटना पड़ता है और ले जाना पड़ता है बाइक पे।
2: जी जी।
3: तो सुबह से ही अच्छा रहता है, थोड़ी देर में तो 9 बजे तो गर्मी चालू हो जाएगी सर यहाँ तो। बारिश नहीं आई सर
2: इस बार, थोड़ा बारिश रेगुलर नहीं हुई, एक बार दो बार ज्यादा हुई।
3: आई तो ठीक खरी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आई कि नदियों में तालाबों में पानी हो, कुएं में बोर में कोई पानी हो जाए, ऐसी बारिश नहीं आई तो क्या करे।
2: जी,
3: हमने
2: जी,
3: तो फॉर्च्यू बोया है एक साल, तो जो सोयाबीन फॉर्च्यू का जो सब्जी बनाने का जो तेल आता है ना, फॉर्च्यू बोलते हैं ना, ये सोयाबीन में से ये होता है, तो बहुत अच्छा है सोयाबीन, लेकिन क्या करे अब जो बारिश नहीं आती तो ये सब नष्ट हो जाएगा सर। जो हमारे बड़वा बोलते थे कि भाई ठंडा काल पड़ेगा ठंडा, तो ये ऐसा इस साल हुआ है सर। किसानों का तो स्वास्थ्य बदतर हो गया है कि क्या करे क्या न करे, इतना खर्चा किया, इतना महंगा बीज बोया, ये किया और सब कुछ नष्ट हो गया। तो जैसी भगवान की मर्जी सर, वो तो अभी जो बारिश अभी देखो ना, हमारे यहाँ तो जेठ और श्रावण भादरवो और आसो 2 महीने है हमारे तो यहाँ। बारिश जो आ जाए तो नदियों तालाब में पानी हो जाए तो गेहूं भी पके, वरना तो गेहूं इस साल नहीं ये हो गए सर पकेंगे।
2: सूरत वगैरह में बाढ़ तो आया था ना?
3: नहीं, यहाँ तो हम तो पास में है अंबाजी के पास में, थोड़ा 20-25 किलोमीटर हमारे यहाँ अंबाजी पड़ता है, तो यहाँ तो बारिश कहा उत्तर जो बनासकांठा में तो नहीं आई सर।
2: हाँ, बनासकांठा में नहीं आया।
3: हाँ नहीं आया, हमारे यहाँ बीच पास में ही साबरमती नदी निकलती है, लेकिन इसमें भी पानी कम है इस साल।
2: अच्छा,
3: तो वहाँ राजस्थान से आगे से आती है, तो जैसी भगवान की मर्जी सर, ये तो क्या करे, हमारे पास तो कोई नहीं है और
2: विकल्प नहीं है।
3: में जो बात बताई कि भाई गणपति का उत्सव आ रहा है सर, हमारे भी हर साल गणपति जी की मूर्ति लाते हैं, गांव में एक दाता है तो हर साल लाते हैं और स्थापन करते हैं गणपति जी का, और 5-6 दिन 7 दिन गणपति जी को रखते हैं, रात को सुबह शाम आरती करते हैं और गर्मी भी गाते हैं रात को 9-10-11 बजे तक, तो बहुत अच्छा। और लास्ट में शोभा यात्रा निकाल के फिर नदी में तो पानी कम है, लेकिन साबरमती में हमारे थोड़ा पानी है, तो वहाँ ले जाने का आयोजन किया है इस साल। तो सभी एक मीटिंग की थी, मैं भी गया था मीटिंग में। हमें बड़े बुजुर्गों को साथ में रहना पड़ता है सर, क्या है कि भाई कोई ये हो जाए तो हमें इसको सही रास्ता बताना पड़ता है। तो टाइम तो बहुत बात कर ली मैंने, आज तो खेत में था तो एक भजन मुझे याद आ गया गणपति जी का, और कल वार था हनुमान जी का, मंगलवार था, आज गणपति जी का वार है। तो एक दो लाइन गुनगुना देता हूँ सर, ठीक है
2: जी।
3: नमो गणपति देव नमो हनुमंता, देवयोद्धा में कौन बलवंता, गणपति कहे वाया में बलवंता, हनुमान कहे वाया में बलवंता। हे गणपति कहे हूँ तो शिव जी नो पुत्र, हनुमान कहे हूँ तो पवन नो पुत्र, नमो गणपति देव नमो हनुमंता, देव योद्धा में कौन बलवंता, देव योद्धा में कौन बलवंता। थैंक यू सर, सभी दोस्तों को, दूसरे दोस्तों को भी जुड़ना है। खेत में था तो मुझे थोड़ा ये हो गया कि चलो सर से बात कर लेता हूँ आज, ठीक है
2: जी जी जी।
3: सभी दोस्तों को आपको नमस्कार सर, आपके
2: नमस्कार कंचन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया याद करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं आज के दिन की। गणेश जी को याद किया, गणपति बप्पा का गीत याद किया, और किसानों के बारे में बनासकांठा में, और बारिश की कमी के कारण किसानों के लिए मुश्किल की घड़ी आ रही है या मुश्किल खड़ी है। अगर फिर भी अभी बारिश हो जाए या इस हफ्ते या अगले हफ्ते, तो निश्चित तौर पे किसानों का काम अच्छा हो सकता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एक दुआएं कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि बारिश आ जाए। हेलो जी नमस्कार।
4: हेलो जी नमस्कार, भाई जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी नमस्कार।
4: गणेश जी का वार है तो गणेश जी का एक गाना हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। देते हैं भक्ति का मेवा, देते हैं भक्तों को भक्ति का मेवा, माता है पार्वती पिता है महादेवा, जय गणेश, ये भजन भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार गुड़ीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं, और आज बुधवार का दिन है, और एक बहुत ही प्यारा सा जो गीत है वो भी मैं सुनाऊंगा आप सभी को। सीधे ले चलता हूँ, दुख हरता सुख करता वाता विघ्नाथी, ये गीत आपके लिए अभी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आज बुधवार का दिन है तो गणपति बप्पा का बहुत ही सुंदर आरती आपने सुना, जय देव जय देव। ये आरती सुनते सुनते आपका मन मगन हो गया होगा और ईश्वर में मन लग गया होगा। तो आइए इस खूबसूरत समा को और यादगार बनाते हैं। हमारे साथ आज विशेष मेहमान बुंदेलखंड से आए हुए हैं पोद्दार जी, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं और साथ में साहित्यकार भी हैं और लोक कलाओं से, साहित्य से इनका बड़ा जुड़ाव रहा है। तो काफ़ी लंबे समय तक जो है बिजनेस और अन्य चीज़ों के लिए लोगों के बीच में कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते रहे हैं, तो अच्छी पहचान है। और आज हम लोग उनसे उनके अनुभव, यानी उन्होंने एक किताब भी लिखा है बचपन से पचपन तक, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बुंदेलखंड की जो छोटी छोटी कहानियां हैं उनके लोकल फ्लेवर के साथ उन्होंने उस चीज़ को लिखा है, वहाँ की इतिहास को, वहाँ की धरोहर को, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को जोड़कर जो किताब उन्होंने लिखा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और आइए आज हम लोग पोद्दार जी से उनके ही जीवन के कुछ खास अनुभव सुनने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से पोद्दार जी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति।
1: ओम शांति। नमस्कार।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: जी जी जी जी जी जी। और बताइए अपने बारे में, वर्तमान में आप क्या करते हैं?
1: मेरा नाम महेंद्र जैन पोद्दार है।
0: जी जी।
1: मैं अपने नाम के आगे एम लिखता हूँ।
0: अच्छा।
1: एम लिखने का मतलब हमारा है मंजिल, लक्ष्य।
0: लक्ष्य क्या बात है। जी जी।
1: तो मैं अपने नाम के आगे एम लगाता हूँ। और मेरा आध्यात्मिक रुझान बचपन से ही रहा है।
0: जी जी जी जी।
1: और मैं तो एक फादर हमारे व्यापारी थे।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: वो भी 2004 में शांति हुए हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: तभी से मैं ये बिजनेस में लगा हूँ। मेरा 50 साल पुराना किर्लोस्कर का एजेंसी वगैरह था।
0: अरे वाह।
1: सब मैंने समाज की और अपने किसानों की बहुत सेवा की है।
0: बहुत बढ़िया।
1: उस जमाने में सर रहट चलते थे चद्दरों के, तो उससे पानी का खिंचाव करके वो करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक दोस्त हमारे साथ है, लिसनर, उनको हेलो कर दीजिए। हेलो जी, नमस्कार
1: जी। हेलो जी।
2: हाँ, भूरा राम बोल रहा हूँ, रमेश भाई।
0: भूरा राम जी, स्वागत है, बताइए कैसे हैं आप?
2: बस आपको मेरा फर्ज है कि रोज सुबह के राम राम तो करता ही हूँ, करूंगा जब तक। और संबंध मन भाइयों को, सबको मेरे हाथ जोड़ के राम राम।
0: जी जी।
2: और अच्छा, सुबह सुबह गणेश जी के आरती इतना अच्छी सुनाई। ये महाराष्ट्र में, मैं भी उधर बोले तो सर्विस किया, जब ये ज्यादा करके महाराष्ट्र में आरती बहुत चलती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: गणेश जी की। अच्छा, दूसरा क्या, मेरा तरफ से एक भजन सुनाएंगे तो अच्छा है। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए, ऐसा करके गाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अच्छा, ओके सर।
0: ओके बुराराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, साधुवाद आपको। आइए, ये थे बुराराम जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। और पोद्दार साहब अपने अनुभव को सुना रहे थे कि जैसे वो बता रहे थे अभी, तो आगे सुनते हैं। जी
1: जी। तो मेरा शुरू से आध्यात्मिक रुझान रहा है और मैंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है।
0: जी,
1: और
0: जी।
1: अनेक उतार चढ़ाव के बीच हमने अपना कॉन्फिडेंस बराबर रखा। और जैसा कहते हैं कि सत्संग से गुण आते हैं और सत्संग से गुण जाते हैं, तो अच्छी मेजोरिटी हमने हमारे आसपास रही, जिस कारण आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और फिर बाबा का दीदार हुआ, जिससे बाबा का दीदार हुआ हमारा दिल गुलजार हुआ।
0: क्या
1: तो उस भावना के साथ हम आगे बढ़े हैं।
0: जी,
1: और
0: जी।
1: अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। और मेडिटेशन करता हूँ मैं, अच्छा मन लगता है हमारा ध्यान में। और भट्टी जिसको कहते हैं अपन, तो भट्टी में मैंने अपने जीवन में उसको स्वीकार किया और स्ट्रगल किया, अपने बच्चों को अपनी परवरिश दी, और जो हमारा लक्ष्य था उसकी ओर हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। फिर कुछ साल हमारा साहित्यकारों से भी संपर्क रहा, 20 साल के आसपास।
0: अरे वाह।
1: तो उनका भी कुछ रंग हमको चढ़ा। तो अंदर जो बैठा था वो सब पल्लवित हुआ, धीरे धीरे करके अंकुरित हुआ।
0: जी,
1: फिर
0: जी,
1: मैंने
0: जी।
1: एक प्रयास किया, जो अंदर भावना थी बचपन में, मैं कहानियां सुनता था दादी से, दादा से, तो वो कहानियाँ पल्लवित हो रही थी धीरे धीरे करके, तो मैंने अपनी 55 साल की उम्र में यात्रा बचपन से 55 की एक बुक लिखने का प्रयास किया।
0: जी जी,
1: उसमें एक एक पेज की छोटी छोटी सी सुंदर आध्यात्मिक कहानियाँ हैं जो मन को प्रभावित करती हैं और प्रोत करती हैं,
0: और
1: अच्छा लगता है उनको पढ़ के। मगर हमने अपने बुंदेलखंड का उरण भी किया है, जो हमारी मातृभाषा बुंदेली है हिंदी के साथ साथ, तो उसका भी रण उतारने का प्रयास किया है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये
0: बिल्कुल।
1: हमारा पहला प्रयास था जो हम साहित्य का अपने साथियों के साथ इस मुकाम पर पहुँचे, ये सफल हुआ ये आयोजन। तो ये लोकसभा में भी हमारे सांसद जी थे बीरेन खटीक साहब, तो वो 3-4 किताब लेके गए, बोले मैं इसको लोकसभा की लाइब्रेरी में रखता हूँ।
0: अच्छा, अच्छा।
1: अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब आए थे टीकमगढ़, तो उन्होंने भी किताब का विमोचन किया, वो भी अपने साथ 4 किताब ले गए हैं, बोले मैं अपनी लाइब्रेरी में रखाऊंगा, ये तो हमारे बुंदेलखंड का गौरव है। मेरे को सुनकर अच्छा लगा। जी, अभी प्रयास में हूँ सर, अभी भी मैं साहित्य से जुड़ा हूँ और आध्यात्मिक मेडिटेशन करता हूँ, अमृत वेला भी करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया।
1: और मेडिटेशन के साथ साथ अभी मैं नेचुरलिटी से जुड़ा हूँ सर, तो उस पर अभी नई बुक लिख रहा हूँ, एक चलो चलें प्रकृति की ओर, इस पर ब्रह्मांड से सृष्टि कैसे हुई, इसके बाद कैसे मानव की उत्पत्ति हुई और कैसे उसका निरंतर ग्रोथ हुआ, उस पर अभी शोध कार्य चल रहा है हमारा, तो उस पर लेखन कार्य चालू है अभी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा, आपने जो है अपना अनुभव को साहित्य के साथ जोड़ा, तो लोगों को आपके विचार आपकी भावनाएं लोगों तक किताब के माध्यम से पहुंचेगा ही। तो आइए, जैसे कि बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान समय में हनुमान अंश फिल्म काफ़ी चल रहा है, नीम करोली बाबा पर वो फिल्म बनाया था, तो आइए ऐसा ही कुछ भाव भरा एक गीत है बुंदेलखंड का ही नया वाला, मैं आपको डेडिकेट करना चाहूँगा ये प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए बात कर रहे हैं हम लोग पोद्दार जी से, काफी अच्छा अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सर, आप जैसे कि किताबों के साथ या साहित्य के साथ कैसे जुड़ना हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए अपना अनुभव।
1: जी, अंदर तो साहित्य हर एक के अंदर एक एक क्वालिटी होती है।
0: जी जी जी,
1: तो उसके लिए एक अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। जैसे अपन बीज डालते हैं खेत में ना सर,
0: जी जी जी,
1: तो उसके लिए बोनी का और ये सब करना पड़ता है। जब उसकी बतर आ जाती है तब बीज पल्लवित होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो उसके
0: बिल्कुल।
1: लिए अनुकूलता चाहिए पड़ती है। तो अभी आपने जो भजन सुनाया उसमें भरोसे की बात की है,
0: जी जी,
1: तो संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि जब तक समर्पण नहीं होगा, समर्पण की पराकाष्ठा नहीं होगी, तब तक यात्रा शुरू नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: और अध्यात्म में तो सर ये पहली मुकाम है, ये समर्पण की चाहिए। बिना समर्पण के यात्रा संभव नहीं होती है। जैसे मीरा ने 13 तो एक असर चौपाई आती है आपका आरती में, ओम जय जगदीश हरे में, उसमें एक लाइन आती है सर कि 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो उसमें सारा सार समाहित है। कर्म करो निष्काम कर्म की ये परिभाषा है।
0: जी जी,
1: तो उसमें ये बताया गया है कि जो भी कार्य हम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, तो वो सब प्रभु के नाम से करना चाहिए, तो उसी को निष्काम कर्म बोलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लगाव नहीं होना चाहिए और अपना चरित्र जो है शीशे की तरह होना चाहिए, जो जिसमें चेहरा दिखाई देता है वो ना कुछ लेता है ना कुछ देता है, जो होता है वही प्रकट करता है। तो इस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए सर।
0: जी जी जी, चलिए पोद्दार जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कैसे हमारा जीवन होना चाहिए और साहित्य से आपका कैसे जुड़ा हुआ ये आपने बताया। और मैं चाहूँगा जैसे आप बिजनेस किर्लोस्कर के जो बिजनेस आप कर रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरा जो अभी मॉल आप चला रहे हैं, तो इसमें कैसे ट्रांसफर हुए, क्या सिचुएशन हुआ?
1: ये सर नई जनरेशन, नई पीढ़ी, हमारे बच्चा तीसरा वाला शुभम जैन पोद्दार जो BBA करके इंदौर से आया।
0: जी जी जी,
1: तो मेरे 3 बेटे हैं सर, तो बड़ा वाला तो यहाँ बाबा के पास हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट है वो, डॉक्टर आकाश जैन पोद्दार। तो सर आर्थो से वो मुरादाबाद से उसने MDH किया, उसके बाद फिर यहाँ समर्पित हो गया। और दूसरा बेटा सर हमारा हैदराबाद में है, उसने IIT से सोलापुर से BE किया।
0: अच्छा।
1: फिर ग्वालियर उसकी शादी हुई, दिल्ली सिरी उसका नाम है हमारी बहू रानी का, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो सर दोनों जॉब करते हैं, और एक बान्या नाते में हमारी, और एक मीरांस अभी पे हुआ है 6 महीने।
0: अच्छा अच्छा।
1: ये छोटा सा सुंदर परिवार है।
0: बिल्कुल।
1: और अभी सर 26 तारीख को उसका इनॉग्रेशन है, उसने फ्लैट लिया है वहाँ।
0: अच्छा अच्छा। जी बढ़िया बढ़िया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मोबाइल से कनेक्ट हो गए हैं फोन पर। तो स्वागत है नई किरण इस कार्यक्रम में, नमस्ते।
2: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो?
0: सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
2: बस बिल्कुल अच्छे हैं सर, हम तो, आप भी अच्छे होंगे, हमारे भाई साहब भी बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं।
0: जी जी जी,
2: अच्छा लगता है।
0: हेलो कीजिए उनको, सुन रहे हो आपको।
2: जी सर नमस्ते,
0: ओम शांति सर।
2: ओम शांति, ओम शांति।
0: कैसे हैं आप?
2: हमारे बस बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो सर?
0: सर आपका कहाँ के रहने वाले हैं आप?
2: सर हम गुजरात से बोल रहे हैं, मेहसाणा के पास हमारा एक गांव है, और वहाँ से हम बोल रहे हैं, हम सिलाई काम करते हैं, हम दर्जी हैं, और हर रोज हमारा रेडियो मधुबन से हर रोज हमारा कनेक्ट रहता है, और काफी जानकारी भी हमको मिलती है। जैसे आप जैसे हमारे भाई साहब आते हैं, प्रधान जी आते हैं, तो हमको कुछ न कुछ अच्छी बातें रेडियो के माध्यम से जो कहते हैं, तो हम भी अच्छी तरह से सुन पाते हैं, और अच्छी बातें जो सुन के हमको भी हमारे मन में विचार और हमारी कई सारी जीवन में परिवर्तन का एक अच्छा मौका मिल गया सर।
0: तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं आप।
2: हाँ जी, हाँ,
0: कपड़े कपड़े जोड़ के आप ड्रेस बना देते हैं, है ना?
2: बिल्कुल, तो जोड़ के हम एक अच्छा सुंदर वस्त्र बना देते हैं। तो हमारा, क्योंकि हम जो सिलाई काम करते हैं सर, तो हमारा जो रेडियो सुनने का और बात करने का एक अच्छा मौका भी हमको मिल जाता है, क्योंकि हम टीवी देखते सामने देखना पड़ता है, लेकिन हम जो रेडियो सुनते हैं तो रेडियो से हम बात भी कर पाते हैं और हमारा सिलाई का काम भी चलता रहता है।
0: आपका शुभ नाम क्या है सर?
2: जी
3: नाम नाम बताइए।
2: हाँ, हमारा नाम सुरेश भाई दर्जी है सर।
1: अच्छा सर, अभी सिलते हैं आप?
2: हाँ, अभी काम चालू है मेरा
1: जी।
2: अभी काम चालू है, मैं जब से हमारा रेडियो मधुबन का जो जन्म हुआ है तब से हम रेडियो मधुबन से जुड़े हैं। आज हमारे 15 साल हो गए बात करते करते। हमारे रमेश भाई हैं, हमारे कई सारी बहनें हैं आरजे, तो हम कई बार वहाँ भी आ चुके हैं, रेडियो मधुबन में भी आ चुके हैं, और कई सारी वहाँ के भी हम कई सारी जानकारी हमको भी मिलती है वहाँ। और
1: अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: ठीक है सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो हमको भी खुशी रहती है सर। नमस्ते, ओम शांति।
0: ओम शांति। ये थे सुरेश जी जुटाना से, जो रेडियो मधुबन को भी सुनते हैं और अपना सिलाई का काम भी करते रहते हैं। तो आइए, पोदार जी से बातें हो रही हैं और जैसे उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में बताया, और मैं चाहूँगा जैसे कि बीच में अपने कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो है करते रहते हैं, सामाजिक सेवाएं, और आप जैन समाज से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ की थोड़ा एक्टिविटीज़ के बारे में आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है वो बताइए।
1: सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपने मन की बात है।
0: जी जी जी।
1: वो बात ये है कि सर, जीवन में बहुत मौके मिलते हैं, जो अवसर का फायदा उठा लेता है वो आगे बढ़ जाता है। मौके पे चौका लगा देना चाहिए, तो उसके लिए अपन को स्थिर।
0: तो आज भी आप चौका ही लगा रहे हैं।
1: अभी भी हमारा मन है सर पीएचडी करने का, IIM 66 रनिंग, बट नेचर के हिसाब से आज भी हमको मौका मिलेगा तो मैं पीएचडी करूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कराएंगे आपके पीएचडी।
1: और बीच में सर मौका मिला तो मैंने एमए फिलोसफी से किया था 1984 में।
0: अच्छा,
1: सागर यूनिवर्सिटी से।
0: हाँ,
1: इसके बाद फिर LLB किया, फिर बढ़ता ही गया, व्यापार भी करता रहा। इसके बाद फिर मैंने BMUS किया, बैचलर ऑफ म्यूजिक वायलिन से, जी सागर से।
0: हाँ
1: जी। फिर इसके बाद सर मैंने नेचुरोपैथी चित्रकूट से किया, DNYS कोर्स होता है एक 3 साल का,
0: जी,
1: वो मैंने कंप्लीट किया। और प्राकृतिक से मैं जुड़ा हूँ सर, प्रकृति से।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जहाँ लगता मेरे को मैं अध्यात्म करता हूँ सर, सेवा तो करते ही हूँ, बाकी समाज से भी काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ हूँ। जैन साधुओं को आहार देना, चौके लगाना, ये सारे में एक्टिविटी हमारे है सर। हम लोग ज्वाइंट फैमिली से आते हैं सर, हमारे परिवार में हम लोग चार भाई चार बहन हैं, और 40 आदमी सर हमारे एक ही घर में रहते थे।
0: अच्छा।
1: और सर एक चूल्हे पे खाना बनता था, ये मिसाल था टीकमगढ़ का, सौभाग्य था। लोग वह कहते थे ऐसा परिवार देखने में बहुत कम मिलता है। तो 40 लोग एक साथ रहते थे सभी उसमें। मगर दुर्भाग्य है सर कि आज परवेश इतना बदल गया है आधुनिक युग में कि हम चार लोग भी नहीं है उस बड़े घर में।
0: ओहो,
1: सारे निकल गए हैं।
0: जी, समय के साथ सारी बदल देखने को मिला। चलिए पोदार जी, मैं चाहूँगा कि हमारे जो रेडियो लिसनर्स हैं उन सब के लिए आपको एक मैसेज देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे आप?
1: सर मैं तो यही कहूँगा कि भौतिक चकाचौंध से दूर।
0: जी,
1: एक दो पंक्ति में अपनी बात कहता हूँ।
0: हाँ सुनाइए।
1: चाह रहे जो बहमत चाहो, बस आनंद तुम्हारा ही है, बस आनंद तुम्हारा ही है। तो इनसे बचना चाहिए सर। मोह मान माया लोभ, ये सारी चीज़ें विकृति पैदा करती हैं, तो इनसे बचना चाहिए।
0: जी,
1: कभी कभी सर मैं ध्यान के में बात करता हूँ प्रभु से, तो कैसी बात करता हूँ उसका एक उदाहरण पेश करता हूँ आपको। जब प्यासा था दो बूंद नहीं दे पाए तुम, जब प्यासा था दो बूंद नहीं दे पाए तुम, अब चाय नहीं तो क्यों सागर झलकाते हो। युगों युगों से भटक रहा तेरी इस माया नगरी में, अब चाय नहीं तो क्यों जन्नत फरमाते हो, अब चाय नहीं तो क्यों जन्नत फरमाते हो। तो उनसे वार्ता हो जाती है हमारी इस टाइप से।
0: जी,
1: मन की बात मन से कर लेता हूँ सर उनसे।
0: क्या बात है जी। चलिए पोदार जी, काफी अच्छी बात है आपने बताया। और संगीत के साथ कैसे जुड़ना हुआ, जैसे आपने कहा सागर यूनिवर्सिटी से आपने कुछ किया म्यूजिक में, तो
1: संगीत में सर 72 की बात है, 1972 हमारे एक श्री संजीव लाल भट्ट मासाब आते थे। वो हमारे परिवार में सभी को, दीदियों को, हमको, सबको सिखाते थे।
0: अच्छा,
1: सारेगामा से उन्होंने शुरू किया, एक कमरा था, साधना कक्ष बोलते थे हम लोग उसको, तो वहाँ पे सर सिखाते थे। तो उनके सिखाने में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हम ही ने किया, पता नहीं नेचर वाइज किया। सबसे ज्यादा उनके स्वर पकड़ लेता था सर, हमको बोलते थे कि भाई देखो मैं भूल जाऊंगा, आप इसको ध्यान रखना, तो अगली बार मैं उनको बता देता था गा के, तो थोड़ा अंदर से कुछ होगा पूर्व जन्म का जो भी है।
0: तो थोड़ा हमारे सभी श्रोताओं को भी सुनाई दीजिए अब लगे हाथ।
1: नहीं सर अभी ऐसा कुछ प्रैक्टिस में नहीं है, काफी देर टाइम से छूटा है, वायलिन से है एक्चुअली, तो वायलिन इंस्ट्रूमेंट नहीं है यहाँ पे।
0: कोई नहीं, ऐसे ही गुनगुना दीजिए जो भी मन के भाव है आपके। है ना
1: जी।
0: हाँ हाँ हाँ, हमारे श्रोता भी बड़े चाव से आपको सुन रहे हैं।
1: क्लासिकल की दो लाइनें हैं।
0: जी जी जी।
1: आली मोहे लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, आली मोहे लागे वृंदावन नी को। इस टाइप से काफी भजन सीखे सर हमने उस समय।
0: अरे वाह जी। चलिए मोदर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत सुंदर अनुभव आपने साझा किया, और मैं चाहूँगा कि आप जब तक है यहाँ पर कुछ कुछ हमारे सभी श्रोताओं को किसी विषय को लेकर आप बातचीत करते रहें ऐसी शुभ आशा के साथ। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभ आशीष आपको, और बाबा का ब्लेसिंग आपको मिलता रहे हमेशा, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे
1: ऐसी शुभ आशा के साथ। बहुत बहुत नमस्कार सभी श्रोताओं का, बहुत बहुत नमस्कार।
0: तो जाते जाते आपके लिए ये भजन सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रिमोट 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है समाचारों का, सीधे दिल्ली चलते हैं और समाचार सुनते हैं अभी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेनदेन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता

0: कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरेन रेटिंग्स भी है।
0: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाब अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल है। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी युद्ध चित्रपोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के दो प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन वन और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमरीका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
4: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिवीजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75-80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इससे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
6: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगराज्य की 6वीं वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर

एफपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में आरना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 9:25 हो रहे हैं और पोद्दार जी का सुंदर अनुभव आपने सुना। आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है। कंचन भाई ने सुबह सुबह याद किया और खेती के बारे में बताया कि बनासकांठा में बारिश नहीं हुई, जिस कारण खेती में काम करने वाले किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और साथ ही साथ सुरेश जी ने भी याद किया और अपने जीवन की यात्रा में किस तरह से रेडियो से जुड़े वो उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बुराराम जी याद कर रहे थे दुखहर्ता सुखहर्ता, इस भजन को सुनकर उनका मन जो है सुबह सुबह प्रफुल्लित हो गया है। तो अभी वंदना जी से भी बातें करते हैं और भी आपका मन खुश हो जाएगा। जी वंदना जी बताइए।
1: गुड मॉर्निंग, ओम शांति आप सभी श्रोताओं को। और सब आप कैसे हैं बताइएगा। और मुझे यहाँ कर हमेशा बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब मैं आप लोगों की बातें सुनती हूँ, आप लोग कॉल करते हैं तो मेरा मन और खुशी से बहुत ही गदगद हो उठता है।
0: जी जी जी। तो आइए लीला चिटनिस के बारे में बातें करते हैं आज। हिंदी फिल्मों की बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री लीला चिटनिस ने 52 वर्ष तक अभिनय किया और अशोक कुमार की नायिका रही। तो बाद में अनेक फिल्मों में दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की माँ की भूमिका में आई। लीला चिटनिस ने अभिनय करने के अलावा एक फिल्म आज की बात 1955 में इसका निर्माण भी किया और निर्देशन भी किया था। हिंदुस्तानी सिनेमा में आने वाली अभिनेत्रियों में से दुर्गा कोटी के बाद लीला चिटनिस का नाम शिखर पर रहा। अपने जीवन में पति गजानन यशवंत चिटनिस से तलाक के बाद 4 बच्चों की परवरिश उन्होंने बड़े जतन से की और 93 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु भी अमेरिका में उनके ज्येष्ठ पुत्र के घर में हुई। लीला चिटनिस ने अपने पति के साथ आज़ादी के संग्राम में इस तरह सहयोग किया कि क्रांतिकारी मानवेंद्रनाथ राय को अपने घर में ब्रिटिश पुलिस की निगाह से बचाकर रखा। वे पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने 1941 में लक्स साबुन के लिए विज्ञापन फिल्म में काम किया था। उनके पूर्व केवल हॉलीवुड नायिकाओं को लिया जाता था, परंतु 1930 वाले दौर में पारंपरिक समाज सामाजिक स्त्री को किस तरह से आज़ादी और सुविधा नहीं देता था, अब इन महिलाओं ने रंगमंच पर अभिनय किया, फिल्में की और आज़ादी के संग्राम में भी सहयोग दिया। इसलिए लीला चिटनिस को देविका रानी जैसे विरल सुंदर महिला के स्टूडियो में उनके प्रिय नायक अशोक कुमार के साथ अपनी काबिलियत सिद्ध करनी थी। और देविका रानी कठोर प्रशासक थी, प्रेमिका की भूमिकाओं में नए लोगों द्वारा स्थापित होने के बाद भी कभी अपने नायक रहे कलाकारों की मां की भूमिका करना आसान यात्रा भी नहीं था। और लीला चिटनिस ने अपनी लंबी पारी में कभी भी किसी विवाद में नहीं उलझी। तो ये कुछ खास बातें थी लीला चिटनिस के बारे में। जी वंदना जी, लीला चिटनिस के बारे में कुछ जानते हो तो बताइए हमें।
1: आपने बहुत सारा बता दिया। पूरा ही बता दिया, अब क्या बाकी है मुझे बताइए। आपने तो सब कुछ बता दिया।
0: अच्छा जी, तो चलिए, मुझे लगता है कि ये उस जमाने में जब आज़ादी का संग्राम एक तरफ चल रहा था और एक तरफ फिल्में जो है नए नए 1947 में हमको आज़ादी मिली, 1930 में तब तो संघर्ष चल रहा था
1: जी।
0: तो उस समय भी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने आज़ादी के लिए भी सहयोग दिया और फिल्मों में काम करते हुए, ये बड़ी बात है।
1: बहुत बड़ी बात है जी, तो आपने इनकी कोई मूवी देखी है तो बताइए।
0: इनकी मूवी मैंने शायद देखी भी होंगी, जैसे कि आवारा वगैरह जो फिल्म है ना 1951 का, ये फिल्म मैंने देखा है आवारा।
1: और मैंने काला बाजार बहुत पहले देखी है, बहुत अच्छा, पहले अच्छा, अब तो मेरे को याद नहीं।
0: जी जी जी,
1: हम लोग पढ़ा करते थे क्योंकि बहुत पुरानी एक्ट्रेस नहीं है तो इतना तो याद नहीं है, लेकिन काला बाजार शायद देवानंद के साथ है।
0: जी जी, काला बाजार
1: वो शायद देखी होगी,
0: आवारा राज कपूर के साथ है। जी जी जी,
1: बाकी और कुछ नहीं देखा।
0: जी जी,
1: हाँ देखने में तो बहुत सुंदर थी वैसे। बहुत ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रही है।
0: जी, 9 सितंबर 1909 को इनका जन्म हुआ धारवाड़ कर्नाटक में और मृत्यु 14 जुलाई 2003 को अमेरिका में हुआ जी। तो आइए आगे बढ़ते हुए और एक और सुंदर भजन सुनाते हैं। और मुझे लगता है कि आज
1: आप काला बाजार फिल्म का ही गाना सुना दीजिए कोई।
0: अच्छा, काला बाजार में कौन सा गाना है
1: देख लीजिए, आप वही सुना दीजिए।
0: ठीक है, वही गाना सुनाते हैं अभी
1: जी।
0: खोया खोया चांद काला बाजार का,
1: बहुत प्यारा गाना,
0: बहुत प्यारा गाना है।
1: हम तो, मुझे लगता है हमारे श्रोता भी इसको बहुत पसंद करेंगे गाने को सुनकर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: किसी बात पे जी चाहता है वो जो चांद है ना, उसे नोच के आपके माथे पर लगा दूं, वही चमका करे। घूमने चलिएगा।
3: नींद
2: नींद

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, खोया खोया शांत काला बाजार फिल्म का ये खूबसूरत गीत आपने सुना, लीला चिटनिस इसमें विशेष रूप से काम कर रही है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात करते हैं अभी, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। जी वंदना जी, बताइए।
1: जी, ये हमारे कोर्स में भी बहुत सारी बुक्स इनके लेख लगे हुए थे जो हमने पढ़े थे।
0: जी,
1: और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसे आपने बताया कि पितामह कहे जाते हैं, तो मतलब बहुत सारा, अगर आप इनकी बुक्स पढ़ेंगे तो कहते हैं ना, जैसे आई ओपनर जो चीज़ें होती हैं, ऐसे माइंड ओपनर जिनकी बुक्स होती हैं। तो अगर आप कुछ इसमें मेरे को दिखाएं तो बता सकती हूँ कि कौन कौन सी मैंने इनकी बुक्स पढ़ी हैं। अगर
0: बिल्कुल,
1: बुक्स
0: बिल्कुल,
1: की तरफ आप जाएंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे भी लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने पढ़ा है इनको।
0: हिंदी के प्रति लोगों में आकर्षण कम था उस समय, क्योंकि अंग्रेजी की नीति से हमारा पूरा साहित्य बुरा असर उसका हुआ था। हम गुलामी के जीवन जी रहे थे और हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ऐसे वातावरण में जब बाबू हरिश्चंद्र अवतरित हुए तो उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम समाज और देश की दिशा पर विचार किया और अपनी लेखनी के माध्यम से विदेशी हुकूमत पर काम करना शुरू कर दिया और उसका पर्दाफाश किया। और बाबू हरिश्चंद्र बचपन से ही परम उदार व्यक्ति थे और यही कारण था इनकी उदारता लोगों को आकर्षित करती रही, और विशाल वैभव और धनराशि को विविध संस्थाओं को इन्होंने दे दिया था। और प्रभावित होकर ही विद्वत जनों ने इन्हें भारत हिंदू की उपाधि प्रदान की थी। इनकी जो पुस्तकें हैं उसमें काफ़ी जो है अनेक विविध भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की। ब्रज भाषा पर इनकी जो है अच्छी पकड़ थी, इस भाषा में उन्होंने अद्भुत श्रृंगारता का परिचय दिया और साहित्य प्रेम जो क्योंकि प्रेम को लेकर ही इन्होंने अपने सप्त संग्रह प्रकाशित किए हैं। प्रेम माधुरी इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है, जिसकी कुछ लाइनें जो है इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। आपने ये पढ़ा है क्या, प्रेम माधुरी सप्त संग्रह?
1: ये वैसे तो मैंने नहीं पढ़ा, कोर्स में तो हमारे नहीं थी, लेकिन लाइब्रेरी से निकलवा के मैंने जरूर पढ़ा है जब मैं स्टूडेंट थी, तभी मैंने इनका पढ़ा है मैंने। जैसे इनकी लाइंस लिखी है नीचे, देखिए।
0: जी जी जी जी
1: जी,
0: मराग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र, यथारत होत यथा है, लाभ कुछ न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी खता है, जतन ही जिया मेरो भाई विधि और उपाय सभे भिरत है, बेकार है, बावरे है ब्रज के शिगरे, मोहे नाहक पूछत कौन बिठा है।
1: जी।
0: तो ये इस तरह से ये जो इनकी रचना है और इसके साथ में ब्रज की शैली में ये चीज़ें लिखी गई है, और बहुत सारी इनकी किताबें हैं, जैसे लगभग यहाँ पर जो लिस्ट है वो 20 किताबों की है, और इसमें से कुछ पढ़ा हो तो आप बता सकते हैं हमें।
1: प्रेम माधुरी,
0: प्रेम माधुरी पढ़ा
1: आपने, लाइब्रेरी से निकलवा,
0: प्रेम तरंग है, प्रेम प्रलाप है, होली है,
1: और इनके लेख हुआ करते हैं। हाँ, हाँ। आप तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो हम लोग पढ़ा करते थे
0: जी जी,
1: तो 9th से लेकर और ये हमारे ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं इनके, हमारे बुक्स में हुआ करते थे इनके लेख।
0: क्या बात, क्या बात
1: जी।
0: इनको एक प्रगतिशील लेखक के रूप में आज भी याद किया जाता है, और उन्होंने सभी विधाओं में लेखन जो है लिखा है, और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान गद्य साहित्य और विशेष इन्होंने दोहे, चौपाही, चंद, भैरव, हरि गीतिका, कविता, सवैया और कहानी, कविताएं, नाटक इन्होंने काफ़ी लिखे हैं, और साहित्य में इनके विशेष योगदान के लिए आज भी भारतेंदु युग से जाना जाते हैं ये। तो आइए आगे बढ़ते हुए वंदना जी, कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जो आप सुना दें।
0: जी जी जी, चलिए, आवारा फिल्म का लीला चिटनिस पर पिक्चराइज किया गया एक गाना जो है, आवारा फिल्म का गीत सुनते हैं, ओल्ड फिल्म का जो राज कपूर और साथियों ने उन पर पिक्चराइज किया गया था। तो आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी ये गीत जो है पसंद आने वाला है। और यहाँ पर एक दो सवार साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार सर, मदन भाई बोल रहा हूँ, 9:40 मिनट हो रहे हैं, 40 मिनट 40 सेकंड सलाम करते हुए आपको, रेडियो मधुबन को और रमेश जी को और हमारे सभी प्यारे प्यारे शो को और हमारे सभी दोस्तों को, और आज जिनका भी जन्मदिन है सभी को नमस्कार करते हैं, जो परवाह जा रहे हैं, मुसाफिर हैं, मुसाफिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, आदमी मुसाफिर है, चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, सब मुसाफिर के ऊपर ही है आज, आज दुनिया में सब मुसाफिर ही है। तो मुसाफिर से पहले अपने मंजिल की तरफ देखने से पहले अपने कदमों की तरफ देखें और अपने विश्वास मस्त बना देवे और फिर खुशी बना के और सब जहाँ जाए वहाँ खुशी का माहौल बनावे, इसे कहेंगे कि प्रवास और अपने आप को मस्त रखना और औरों को मस्त रखना, ऐसे हम कहते हैं और गाना गाते हैं। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते

0: नमस्कार सर, ओम शांति। नमस्कार, बहुत सारी
1: जी जी जी मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, शुक्रिया आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हमने बातें की थी लीला चिटनिस के बारे में, उन्होंने आवारा फिल्म में काम किया था, तो आवारा फिल्म का ही एक गीत आपको सुनाते हैं और आशा करूंगा कि आप सभी को ये गीत पसंद आएगा। ऐसी शुभ आशा के साथ चलिए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आवारा फिल्म का गीत, आपके नाम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, बहुत ही प्यारा सा हमारा फिल्म का ये गीत आपने सुना, दम्बर जो
1: उधर भी फेरे हो चंदा,
0: बहुत ही प्यारा सा गीत था। आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भारत हिंदू के बाद विक्रम बत्रा, इनके बारे में बात करें तो ये पालमपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक है और इन्हें विशेष सम्मान 1999 में मरणोपरांत ये परमवीर चक्र प्रदान किया गया। पालमपुर के निवासी जीएल बत्रा और कामाकांत बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को दो बेटियों के बाद दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ और विशेष उनकी माता जी श्री रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा रखती थी और दोनों का नाम लव कुश रखा, लव यानी विक्रम और खुश यानी विशाल। पहले डीवी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिला करवाया गया। सेना छावनी में स्कूल होने से सेना के अनुशासन को देख और पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनकर विक्रम ने स्कूल के समय से ही मन बना लिया था और देश प्रेम से प्रबल हो उठे थे। स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल नहीं थे बल्कि टेबल टेनिस में इनका अव्वल दर्जा रहता था और सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लिया करते थे और बाद में पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना जो है चंडीगढ़ चले गए और वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई पूरी की और इस दौरान एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए और उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया। सेना में जाने का पूरा मन बना लिया और फिर सेना की तैयारियां शुरू हो गई और हालांकि विक्रम को इस दौरान हांगकांग में भारी वेतन में मर्चेंट नेवी की नौकरी मिल रही थी लेकिन देश सेवा का सपना लिए विक्रम ने इस नौकरी को भी ठुकरा दिया और सेना में भर्ती हो गए। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें विक्रम बत्रा के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
1: हाँ, यहाँ एक बात और अपने श्रोताओं को बता दें कि जो शेरशाह मूवी आई थी और बहुत हिट रही थी,
0: जी जी जी,
1: वो ये उन्हीं के जीवन पे बेस्ड थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और एक्चुअली ये मैंने मूवी देखी है, बहुत खूबसूरती से इसमें फिल्माया गया है, बहुत सुंदर मूवी थी ये
0: जी।
1: तो ये इन्हीं की लाइफ पे बेस्ड थी।
0: बिल्कुल।
1: तो अपने श्रोताओं को इसी मूवी का कोई गाना सुनवा दीजिए रमेश जी। शेरशाह,
0: शेरशाह का गाना देखते हैं अगर मिल जाता है तो, है ना। विक्रम बत्रा पर
1: जी
0: पिक्चराइज किया गया उनका।

श्री मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम आखिरी मोड़ पे पहुंच गए हैं और जाते जाते आप सभी को 9 सितंबर में जन्मे उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। विशेष भारत की जूडो खिलाड़ी रही तुलिका मान, इनका जन्मदिन आज है। 1998 में इनका जन्म हुआ। लियो टॉल्स्टॉय महान रूसी उपन्यासकार थे। 1828 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध हिंदी लेखक और नाटककार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1850 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय सिनेमा इतिहास में अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब खान का जन्मदिन भी आज है। 1907 में इनका जन्म हुआ। भारतीय दार्शनिक हुसैन शाह का जन्म भी आज ही के दिन 1950 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी ब्रजवान, इनका भी 1908 में जन्म आज ही के दिन हुआ। बॉलीवुड के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता अक्षय कुमार का भी जन्मदिन आज है। 1967 में इनका जन्म हुआ। भारतीय सैनिक थे विक्रम बत्रा। 1974 में इनका भी जन्मदिन आज ही हुआ। हिंदी के बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री लीला चिटनिस, 1909 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। उड़िया भाषा के बहुत ही पॉपुलर साहित्यकार गोपाल चंद्र प्रहराज, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध साहित्यिक मणि मधुकर, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1942 को हुआ था। तो इसके साथ ही हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार कांति कुमार जैन, 1932 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और भारत की जानी मानी महिला हॉकी खिलाड़ी ज्योति सुनीता कुल्लू, 1978 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। तो भारत के भोपाल रियासत के अंतिम नवाब थे हामिदुल्ला खान। 1894 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और भारत की आज़ादी के सेनानियों में से एक अर्जुन लाल सेठी, 1880 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन आज है उन सभी को रेडियो मधुबन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे।

सुना मित्र, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं शाम सफर कार्यक्रम में। तब तक हम बने रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अर्चना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। हर दिन शुभ होता है, हर घड़ी शुभ होती है, हर एक का चेहरा शुभ ही होता है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, इमली कैसे हमारे हेल्थ के लिए फायदा करती है, कौन सी बीमारियां ठीक करती है, जरूर जानेंगे आप घरेलू उपाय के द्वारा। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो व्यंजन में आप क्या पसंद करते हैं? अरे भाई, कभी तो अपनी पसंद बता दिया करो, हमेशा हम अपनी पसंद सुनाते हैं। चलिए ठीक है, आज हम इंतजार करेंगे कौन अपनी पसंद रखता है, नहीं तो फिर हम तो बेटे ही है। और आज का प्रश्न बहुत सुंदर रहेगा, बहुत ही जनरल प्रश्न है, ठीक है, तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। तो ये सब कुछ सुनेंगे कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक, कोई रुक रुक रुक, पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है कि हर दिन शुभ होता है, हर घड़ी शुभ होती है, हर एक का चेहरा भी क्या होता है, शुभ ही होता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। एक व्यक्ति के बारे में प्रसिद्ध हो गया कि उसका चेहरा बहुत ही मनहूस है। लोगों ने उसके मनहूस होने की शिकायत राजा से की। राजा ने लोगों की इस धारणा पर विश्वास नहीं किया, किंतु इस बात की जांच स्वयं करने का निर्णय किया। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाकर अपने महल में रखा और एक सुबह स्वयं उसका मुख देखने पहुंचा। संयोग से व्यस्तता के कारण उस दिन राजा भोजन नहीं कर सका। वह भी इस नतीजे पर पहुंचा कि उस व्यक्ति का चेहरा सचमुच मनहूस है, शुभ नहीं है। उसने जल्लाद को बुलाकर उस व्यक्ति को मृत्युदंड देने का आदेश सुना दिया। जब एक वरिष्ठ मंत्री ने राजा का यह आदेश सुना तो उसने पूछा, महाराज, इस निर्दोष को मृत्युदंड क्यों दे रहे हैं? राजा ने कहा, मंत्री जी, यह व्यक्ति वास्तव में मनहूस है। आज सर्वप्रथम मैंने इसका मुख देखा तो मुझे दिन भर भोजन भी नसीब नहीं हुआ। इस पर मंत्री जी ने कहा, महाराज, क्षमा करें, प्रातः इस व्यक्ति ने भी सर्वप्रथम आपका ही मुख देखा था ना। आपको तो भोजन नहीं मिला, किंतु आपके मुख दर्शन से इस बेचारे को तो मृत्यु दंड मिल रहा है। अब आप स्वयं निर्णय करिए कि कौन अधिक मनहूस है। राजा बहुत चक्का रह गया। उसने इस दृष्टिकोण से तो सोचा ही नहीं था। राजा को किंकर्तव्य विमुट देखकर मंत्री जी ने कहा, राजन, किसी भी व्यक्ति का चेहरा मनहूस नहीं होता, वह तो भगवान की देन है। मनहूसियत हमारे देखने या सोचने के ढंग में होती है। आप कृपा करके इस व्यक्ति को मुक्त कर दीजिए। राजा ने उसे मुक्त कर दिया। तो कहने का भाव यही है।

0: श्रीकांत रुइया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा में सबना हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरा संपर्क हुआ तब से मना जिंदगी को एक नयो दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इना सा मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगाकर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाना। फिर नमस्ते, हंसते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब आपको देंगे बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। पहले तो आप दो लाइन सुन लीजिए। इमली का बुट्टा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल के हम दो शेर, चल कर जल्दी हो गई देर, धिनक धिनक धिन तारा धिनक धिनक रे, धिनक धिनक धिन तारा धिनक धिनक रे। तो भाई इमली से आपने सुना है गीत, तो बिल्कुल आज मैं आपको घरेलू उपाय इमली पर ही बताने वाली हूँ कि इमली हमारे कौन सी बीमारी ठीक करती है तो आप जानेंगे। देखिए, अगर शराब या भांग का नशा चढ़ गया हो ना, तो नशा समाप्त करने के लिए पकी इमली का आप गुदा जल में भिगो करके उसको मथिए, मत कर छान कर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके पीजिएगा तो शराब और भांग का नशा उतर जाएगा। शराब और भांग का नशा उतारना चाहते हैं तो इमली का गुदा लीजिए, पानी में भिगो दीजिए, फिर इसको मथिएगा, मथने के बाद छान करके इसको पी लेना है, ठीक है? तो शराब और भांग का नशा छुमंतर हो जाएगा। अगला उपाय भी बहुत ही सुंदर है। इमली के गुदे का पानी पीने से वमन, पीलिया, प्लेग, गर्मी के ज्वर में भी काफ़ी राहत मिलती है। तो इमली के गुदे का पानी पीजिएगा, इससे वमन बोले तो वोमिटिंग, उल्टी, पीलिया, प्लेग की बीमारी, गर्मी के ज्वर में भी काफ़ी राहत मिलेगी, ठीक है? हृदय की जलन या दाहकता को शांत करने के लिए पकी हुई इमली के रस में मिश्र मिलाकर पीजिएगा। हृदय की जलन या दाहकता को शांत करना हो तो पकी हुई इमली के रस में आप मिश्र मिलाकर पीजिएगा, तो इस तरह हृदय की दाहकता शांत होगी। अगर लू लग गई हो तो क्या करेंगे? आपको अक्सर हम ये नुस्खा बताते रहते हैं, पकी हुई इमली के गुदे को हाथ और पैरों के तलुओं पर मलिए, इससे लू का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अगर लू लग गई है तो पकी हुई इमली के गुदे को हाथ और पैरों के तलुओं पर मलने से क्या होता है, लू का प्रभाव कम हो जाता है। और चलिए लास्ट उपाय भी आपको बता देते हैं। गले की सूजन है तो इमली 10 ग्राम 1 लीटर पानी में आप इसको भिगोइएगा, फिर छानिएगा और इसका गुलाब जल इसके अंदर मिलाना है आपको, ठीक है? और रोगी को घरारे और कुल्ला करने के लिए कहिएगा तो गले की सूजन ठीक हो जाएगी। अगर गले की सूजन है तो इमली 10 ग्राम 1 लीटर पानी में आप डालिएगा अच्छी तरह मत करके, और फिर इस पानी को छान करके इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके घरारे करिएगा, कुल्ला करिएगा, तो गले की सूजन ठीक हो जाएगी। तो ये सारे उपाय बहुत ही अच्छे हैं, आजमा सकते हैं। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन की ऐसी कौन सी छोटी सी खुशी है जो आपका मूड तुरंत अच्छा कर देती है? अब ये भी आपके ऊपर छोड़ा है, आप अपने अपने मूड के अनुसार जवाब दीजिएगा। जब आपका मूड ऑफ होता है तब आपको ऐसी कौन सी चीज आपको लगता है कि मिल जाए तो तुरंत ही मेरा मूड चेंज हो जाएगा? तो इस तरह का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर फिर से एक अल्पविराम लेकर के मिलेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। लेकिन आज हम आपको सरप्राइज देना चाहेंगे मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कि आज हमारे रेडियो मधुबन परिवार के ही सदस्य जो अभी बहुत दिनों से गायब थे, वैसे अभी बहुत दिनों से फोन नहीं कर रहे थे, इनसे शिकायत भी है कि आप बहुत दिनों से फोन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी रेडियो से दूर नहीं हुए हैं, तो आप पहचानिएगा, मैं इनका नाम नहीं लूंगी। नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम।
0: आपको यार रेडियो मधुबन में आकर के कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी मिल रही है। मैं तो आई हूँ, मुझे बहुत खुशी से आई हूँ मैं।
0: और इतना सा परिचय देना चाहूंगी कि आप माउंट आबू ढूंढाई से पधारे हैं। अब हिंट आपको मिल गया, इनका नाम आप बता सकते हो, नहीं तो फिर हम तो बताएंगे ही लास्ट में। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता बंधु, क्योंकि सभी एक दूसरे के अच्छे करीब में हैं, सभी जैसे कहते हैं ना कि रेडियो के जरिए हमारे सभी श्रोता बंधुओं में इतनी फ्रेंडशिप हो गई है कि सभी रेडियो मधुबन परिवार के ही सदस्य है और स्वयं को समझते भी हैं, तो आप भी हैं, तो आपको पहचान कर बताइएगा कि आप कौन हैं, आप माउंट आबू ढूंढाई से पधारे हैं, ठीक है? थोड़े दिन से आप रेडियो में किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन अब जुड़ते रहेंगे, तो चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
2: हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम शांति।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: बस अच्छे हैं, मेरे हिसाब से तो कमलेश बहन जी हो गए।
0: थोड़ा सा और आप माउंट आबू ढूंढाई से क्या है, अपने दो श्रोता बंधु है, दो का फोन, दोनों ही बहने हैं और दोनों के फोन आते रहते हैं, दोनों ही अभी कुछ दिनों से गायब है, अब पहचानिए कि कौन है।
2: हमारे इंदु बहन जी।
0: कमलेश बहन जी, बिल्कुल, तो आपने पहचान लिया है, आपके लिए ढेर सारी इंदु जी आए हैं आज।
2: जब आए थे जन्मदिन पर हम दोनों को मिले थे, तो आवाज तो हम पहचान के लेते हैं एकदम, क्योंकि कई दिनों से तो नहीं जुड़ा, लेकिन पहले बहुत जुड़ते थे।
0: जी जी जी जी,
2: कई दिनों से नहीं जुड़ रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, आज आप स्टूडियो में बता रहे हैं, तो आपका भी दीदी स्वागत है। कमलेश बहन जी और इंदु,
0: कमलेश बहन जी नहीं आए, इंदु जी आए।
2: अच्छा इंदु जी आए, हाँ, चलो जी। कोई बात नहीं, तो इंदु जी आपको भी बहुत नमस्ते।
1: नमस्ते आपको भी, आप सबको नमस्ते। आपकी आवाज पहचाना, इसके लिए तो मैं बहुत आश्चर्य हूँ कि पहचान लिया।
2: हाँ हाँ, पहचान तो लेते हैं, क्योंकि हमारे परिवार के हिस्से हैं, तो कैसे न पहचाने। तो बहुत अच्छा लगा आप आए आज इंदु जी। और हमारे कमलेश बहन जी तो अभी बाहर है, क्योंकि वो तो अलग से गए हैं रहने के लिए,
0: पाली चले गए, लेकिन बहुत दिनों से रेडियो से दूर है वो भी।
2: हाँ दूर है।
0: हाँ जी,
2: तो अच्छा है आप आ गए।
1: हाँ मैं आज आ गई, मैं मैडम से, मैडम को मिले बगैर मैं रह नहीं सकती ना, मैडम
0: है। आज आपका नीचे आबू तलेटी में आना हुआ, तो फिर आप रेडियो मधुबन में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
2: अच्छा किया आपने, क्योंकि आप तो पास में हैं, बहुत दूरी पर नहीं है, इसलिए आए तो अच्छा है, क्योंकि आप तो नजदीक है, तो आवाज नवा जाना ही चाहिए आपको।
1: नहीं अब आती जाती रहूंगी मैडम को मिलने।
2: चलो कोई बात नहीं। और
0: आज का विषय है समझदारी की बातें केवल वो ही लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों ही अधिक हो, और दूसरे वे जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो, क्या कहेंगे?
2: एक बार आपने वो सवाल किया था, लेकिन अब दोबारा आपने बताया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं हमारी बात करो तो देता, हमारे जो पिताजी छोटे से उम्र में चले गए थे,
0: जी।
2: तो कई सारी हमने दुखों सुख भी पार किया है, और कहा कई दुखों से गुजरे हैं, कई मुसीबत से गुजरे हैं, तो कभी सारे अनुभव है दीदी हमको कि जीवन कैसे दिया जाता है, जीवन में कैसे कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, कैसे उसको पार करना है, कैसे उसको कोई अच्छी रीति को संभाल के चलना है, सब कुछ हमने देख लिया दीदी, इसलिए हमारे कई सारे अनुभव है जीवन में, क्योंकि छोटी सी उम्र होती है, और जो नहीं होता है ना, माथे का छत नहीं होता है दीदी, उसको
0: जी
2: तो,
0: जी बिल्कुल,
2: छोटे सब कुछ ही पता ही चल जाता है,
0: सही है,
2: बहुत दुख चला है दीदी हमने, इसलिए हम तो कुछ ऐसा नहीं है, दुख सुख तो हम आते जाते हैं दीदी, लेकिन ऐसे तो हम कभी हारे नहीं है, वराना भी नहीं, आज भी कभी नहीं हारते, पहले भी नहीं हारता, आज भी नहीं हारते, बस आगे चलते हैं, क्योंकि ऐसे दुख का पहाड़ लेके बैठेंगे तो दुख ज्यादा आक्रमण करेगा, इसलिए ऐसा तो करना ही नहीं है
0: जी।
2: काफी सारी अनुभव दे दिए हमको जीवन में कैसे चले कैसे संभाले सबको
0: जी।
2: और जो आपने एक सवाल किया छोटा सा कि जीवन की कोई
0: आपके जीवन की ऐसी कौन सी छोटी सी खुशी है जो आपका मूड तुरंत ही अच्छा कर देती है?
2: बता दीदी, मैं जब मुझे तो पहले आपको पता है मुझे रेडियो का बहुत शौक है पहले से बचपन से। तो एक बार क्या हुआ था, मेरा रेडियो टूट गया था तो मैंने दिल्ली से रेडियो मंगवाया था। सब पहले तो क्या था, डाक में आता था, पोस्ट में आता था
0: जी।
2: तो इस वक्त देखिए रेडियो आया था और हमको समाचार दिया कि आपका रेडियो आया है दिल्ली से, तो इतना खुश हुए कि हम तुरंत चले गए वहाँ। और आज भी हम जो बात याद करते हैं तो इतनी खुशी होती है कि भाई हमने दिल्ली से रेडियो मंगाया था, तो ये कैसा होगा, कैसा कैसे आता है, क्योंकि छोटी सी उम्र में तो पता ही नहीं चलता है क्या होता है
0: जी,
2: कैसे आता है। तो लकड़ी की पेटी में आया था और हमने रेडियो निकाला देखा तो इतनी खुशी। आज हम जो ये बात सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है। और अब तो रेडियो नहीं है लेकिन मोबाइल में सब कुछ है, फिर भी रेडियो ही सुनते हैं।
0: अच्छा,
2: तो बस वही खुशी मेरी सबसे ज्यादा खुशी है दीदी, क्योंकि जीवन अच्छा, में तो कई सारी बातें हैं लेकिन वो तो जीवन की बातें हैं, उतार चढ़ाव तो सभी आता जाता है।
0: तो जब आपका मूड ऑफ होता है तो आप रेडियो सुनते हो तो आपका मूड वापस फ्रेश हो जाता है।
2: वही बात याद कर लेते हैं और रेडियो ही सुनते हैं
0: जी। तो रेडियो में आपको क्या सुनना पसंद है?
2: बस रेडियो में तो दीदी जब से रेडियो मधुबन हमारे हाथ में पकड़ में आया सबसे तो वही हम सुन रहे हैं। पहले तो कई सारे चैनल थे लेकिन आज जो एक अच्छे धार्मिक चैनल है आपका रेडियो साबरमती है, रेडियो मधुबन है हमारा खास है, बस वही सुनते रहते हैं पूरे दिन।
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है।
2: नमस्ते दीदी और दोबारा हमारे इंदी जी के नमस्ते।
1: नमस्ते आपको भी, सबको हमारे
0: बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, इंदु जी से भी बात कर सकते हैं। इंदु जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए लोग सलाह उन्हीं से लेते हैं जो अनुभवी होते हैं। तो या तो एक परिपक्व उम्र होती है तब अनुभव बढ़ता है, या फिर कम उम्र में ही दुख आते हैं तो अनुभवी हो जाता है इंसान। क्या कहेंगे आप?
1: मेरे तो दुख सुख दोनों ही आए लेकिन दोनों ही बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ आया नहीं, महादेव की कृपा है, आने नहीं दी। ठीक ठीक है, चल रहा है, बस सही है। और रही वो जो मूड खराब होता है अच्छे बुरे, वो मैं चाय पीती तो मेरा मूड सही हो जाता
0: अच्छा।
1: है
0: अच्छा। ये भी बहुत बढ़िया है, चाय पीने से मूड इनका अच्छा हो जाता है। देखो सबके अपने अपनी बात है भाई।
1: गाना वाना सुन लूंगी, चाय वाय पी लूंगी तो मेरा मूड एकदम बढ़िया हो जाएगा, चाहे वो कितना ही खराब क्यों ना हो मूड, मैं ऐसा अच्छा, कर लेती हूं।
0: बहुत बढ़िया। तो आप क्या कहेंगे भाई? आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रखिएगा। और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है, इसमें भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। तो इंदु जी कभी आपको जरूरत पड़ी किसी से सलाह लेने की?
1: हाँ सलाह लेने की जरूरत तो पड़ी है लेकिन मैं तो अधिकतर मैंने जिठानी से ही लिया है सलाह।
0: अच्छा, वो घर में बड़े हैं
1: वो, सास बड़ी थी पर वो तो है नहीं, तो मैं जिठानी से लेती रहती सलाह।
0: अच्छा,
1: कुछ कभी बीमार हो गई, कभी कुछ है, कोई बार त्योहार का है, कैसे करना है, तो वो सब मैं उनसे ही पूछती।
0: अच्छा, हेलो।
3: हाँ जी नमस्कार बेन।
0: हाँ जी नमस्ते, जगदीश भाई बोलो छो? हाँ केम छो जगदीश भाई, बहुत दाड़ा पची जोड़ा गया
3: बेन। मजा मा तमा प्रोग्राम सांभळुं छुं, ઇમલી માટે તમે કીધું આજનો જવાબ એવું આવી જાય।
0: અચ્છા, તમારો મૂડ ઓફ હોય ત્યારે તમે આમળી ખાઓ છો એમ?
3: હા
0: અચ્છા, બહુ સરસ। ઓર આજના વિષય માટે શું કહેશો?
3: આજનો વિષય શું કીધું બેન?
0: આજનો વિષય એ છે કે તમે કોના પાસેથી સલાહ લો છો, અનુભવી લોકો પાસેથી સલાહ લો છો કે નાના ઉંમરવાળા જે અનુભવી બની ગયા, જેમને જીવનમાં તકલીફ પડી ઓછી ઉંમરમાં અને એ અનુભવી થઈ ગયા, તો કોના પાસેથી સલાહ લો છો?
3: બેન મોટી ઉંમરના માણસો હોય તો એ અનુભવી હોય, એ રસ્તા ઉપરથી ગુજરી ગયા હોય, એ રસ્તા એમને દુઃખ પડી ગયું હોય, કોઈ પણ આપણે ગાડી લઈને જતા હોય તો ઉંમરવાળા કે બેટા હતું તેમ તેમ જ હજી અને વળખમાં તું ફોન મારજે, સાચવીને જજે, ધીમે ધીમે જજે, હેલ્મેટ લગાવજે, સીટ બેલ્ટ લગાવજે. આ બધું તો વૃદ્ધ માણસ હોય એમના જોડે ઘણું શીખવા મળે.
0: અચ્છા,
3: કારણ કે એ તકલીફમાંથી ગુજરી ગયા હોય. પછી કોઈ લોન માટે કહેતા હોય તો લોન નહીં કે બેટા લોન ના લેતો કે આટલા વ્યાજમાં પૈસા જોયું, બને ત્યાં સુધી ઓછું ખાજે પણ લોનમાં તું ના પડતો, નકર લોનમાં ઘણાનો દેવ થઈ જાય છે. એટલે જે લોકો અનુભવી હોય, જે એમના ઉપર ગુજરી ગઈ હોય વાત, તો એ લોકો સલાહ એ જોડેથી કહીએ ને તો એ આપણનું કામ લાગે.
0: જી જી જી. અને ઘણા જણા ઓછી ઉંમરમાં અનુભવી થઈ જાય, કેમ કે નાની ઉંમરમાં એમના જીવનમાં તકલીફ પડી હોય ને તો એ અનુભવી થઈ જાય.
3: એ મોહું છે, નાની ઉંમરમાં એમને ઘણા અનુભવ થવાનું કારણ હું છે. એમની નાની ઉંમરમાં માં ગુજરી હોય, નાની ઉંમરમાં બાપ ગુજરી હોય, આવો એકલો પડ્યો હોય, એને માથા બધો ઘરનો બધો કારભાર એના માથા આવી ગયો, એટલે એને બધા અનુભવ થયો. એને કોઈ મરણ થયું હોય તો લાકડા જવાનું હોય, લોકાઈમાં જવાનું હોય, સગા સંબંધીમાં હાથ જવાનું હોય, કમાવાનું હોય, બધી રીતે એના ઉપર બધું બોજ આવે, એટલે એને કોઈ પણ બુદ્ધિ છે ને એને ખુલી જાય છે.
0: જી જી જી જી.
3: કોઈ પણ વસ્તુ એને માથા પડે કે એટલે એની બુદ્ધિ જે પડી હોય સુષુપ્ત અવસ્થામાં તો એ જાગૃત થઈ જાય.
0: અચ્છા,
3: એટલે એના પોતાથી અનુભવ મળે છે.
0: બહુ સરસ. ઓર ઇન્દુબેન જોડે કશું વાત કરવી છે તમારે?
3: હા,
0: ઇન્દુબેન જોડે કશું વાત કરવી છે? એ રેડિયો તમારે જેમ રેડિયો સાંભળે છે એ પણ.
3: હા હા, ઇન્દુબેન જોડે આ ફિલ્મનું ઘણું સાંભળ્યું.
0: અચ્છા, હા, ફિલ્મી ગીત સાંભળ્યા અંતાક્ષરીમાં, એ બધું યાદ છે તમને એમ?
3: હા.
0: ઓકે જગદીશભાઈ, બહુ બહુ આભાર તમારો. હા
3: બેન, મજામાં છો કે?
1: હા હા, ઠીક હું.
3: ઓકે
0: જગદીશભાઈ, બહુ બહુ આભાર તમને.
3: હા બેન, સારું થઈ ગયું કે આ ફેર
0: એ ચાલે છે, થઈ જશે, તમારા બધાના દુઆથી ચાલુ સરસ થઈ જશે. ઓકે, તો યે થે જગદીશભાઈ ઈડર સે. ઓર અબ આપ ભી જોડ સકતે હૈ ઓર અપની બાત કો રખ સકતે હૈ. નંબર રેડિયો મધુબન કે હૈ 94-14-15-14-15. ઓર ઇન્દુજી ભી આજ રેડિયો મધુબન કે સ્ટુડિયો મેં આપકે સમક્ષ બેઠે હુએ હૈ. ઇનસે ભી અગર બાત કરના ચાહતે તો ભી કર સકતે હૈ. વિષય બહુત હી સુંદર હૈ. અનુભવી યા તો ઉમ્ર વાલે હોતે હૈ યા ફિર કમ ઉમ્ર મેં જિનકે જીવન મેં દુઃખ તકલીફ આતા હૈ વો ભી સમય સે પહેલે અનુભવી હો જાતે હૈ. હેલો,
4: ઓમ શાંતિ, ગુડ મોર્નિંગ દીદી.
0: ઓમ શાંતિ, નમસ્કાર સુભાષ ભાઈ, કેસે હો આપ?
4: હમ બહુત હી બઢિયા હું. ઓર આજ કે જો હમારે પરિવાર કે સદસ્ય દીદી ઇન્દુજી જો પધારે હૈ તો ઉનકા દિલ સે સ્વાગત ઓર ઉનકો નમસ્કાર. સભી રેડિયો મધુબન પરિવાર કો સભી ભાઈ બહેનો કો દોસ્તો કો નામ સહિત નમસ્કાર. ઓર પ્રોગ્રામ બહુત હી અચ્છા ચલ રહા હૈ, વિષય ભી અચ્છા હૈ ઓર પ્રશ્ન ભી અચ્છા હૈ. તો હમારે સુરેશ ભાઈજી જો ડાલના વાલે ઉન્હોને બહુત હી અચ્છી બાત કહી ઓર આપ ભી કહેંગે તો વિષય કે બારે મેં તો મેં જ્યાદા કુછ નહીં બોલતા, લેકિન સવાલ કા જવાબ દે રહા હું.
0: હા જી, હા જી.
4: તો દેખો દીદી, જબ ભી હમારા મૂડ ડિસમૂડ હો જાતા હૈ, હમ કભી નારાજ હો જાતે, કભી ટેન્શન મેં આ જાતે, કભી કભી હોતા હૈ સ્વાસ્થ્ય ઠીક નહીં હોને કે કારણ, દૂસરા કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, લેકિન હમ ક્યા કરતે, હમ બસ રેડિયો મધુબન લગા દિયા कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी भाई हो, बहन आजय भाई हो, बहन हो, क्योंकि सभी फैकल्टी के ऊपर मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक बातें ही ज्यादा होती है, आध्यात्मिक गीते सुनने को मिलता है, तो टेंशन भाग जाता है और पास की बातें भी भाग जाती है, व्यर्थ बातों से भी हम अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक विचार करने लगते हैं, तो हम फिर से ताजे तवाने होकर खुशी में नाचते झूमते गाते मुस्कुराते हैं और टेंशन भाग जाता है। तो सभी को नमस्कार और ओम शांति दीदी, ओम शांति
0: जी। बहुत बहुत आभार आपका सुभाष भाई। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, और इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन समय हो चला है एक ब्रेक लेने का। तो एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ये हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में कंचन भाई मंडाली से जुड़ चुके हैं। नमस्ते कंचन भाई।
3: नमस्कार बहन जी, सुप्रभात।
2: हाँ जी सुप्रभात, कैसे हो आप?
3: बस अभी अभी खेत से आए, अब खाद वगैरह लेके जाने का है, वही ने बोला है कि भी जल्दी लेके आओ
2: जी।
3: पानी कुएं में इस साल तो बारिश बनासकाठा में तो नहीं आई ना हमारे
2: जी,
3: तो थोड़ा मक्का बोया है, थोड़ा सोयाबीन है, तो पानी खेतों में किया है तो खाद वगैरह डालना पड़ता है
2: जी।
3: तो अभी जाने वाले थे, अभी निकलने वाले थे फिर से खेत में, तो मैंने सोचा कि चलो बहन जी आ गए हैं जो, तो थोड़ी बात कर लूं। ठीक है, आपका क्या है विषय आपका?
2: जी विषय तो आज का है कि देखिए, समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं, एक तो वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों अधिक हो और दूसरे वे जो बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो। और आज का प्रश्न भी है, आपके जीवन की ऐसी कौन सी छोटी सी खुशी है जो आपका मूड तुरंत अच्छा कर देती है?
3: जीवन की खुशी?
2: हाँ, आपका मूड खराब है और आपका मूड अच्छा हो जाता है तो किस वजह से होता है? ऐसी कौन सी खुशी आपको याद आ जाती है तो आपका मूड तुरंत ही अच्छा हो जाता है?
3: हमारा तो मूड एक एक भजन गा लेते हैं ना बहन जी।
2: अच्छा, तो मूड अच्छा हो जाता है।
3: पूरे दिन हम खुश खुश हो जाते हैं, दिन कहीं सात बात कोई ना हो, भाई खेत में जाते हैं तो एक भजन गा देते हैं तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है बहन जी।
2: जी जी जी जी,
3: कई छोटे थे तब से हमारा ही रहा है
2: जी
3: संगीत खेला हुआ। ठीक है।
2: हाँ जी हाँ जी।
3: और विषय के बारे में तो देखो ना, अनुभवी
2: जी, जैसे देखो एक तो उम्र वाले होते तो उम्र के साथ साथ परिपक्वता बढ़ती है, अनुभव बढ़ते हैं, तो लोग सलाह या तो उनसे लेते हैं या फिर कोई कोई कम उम्र में भी जब दुख तकलीफ उठाते हैं, दुख तकलीफों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो भी अनुभवी हो जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे?
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो कम उम्र में जवाबदारियां सभी आई घर परिवार की खेती की, तो हमें भी उम्र तो 70 वर्ष चल रहे हैं अभी, लेकिन काफी अनुभव हो गया है बहन जी
2: जी,
3: अच्छे बुरे काम का, कोई ऐसा हो तो देखो। ज्यादा तो बात मेरी बात तो नहीं करूंगा क्योंकि भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे
2: पेड़ था जो
3: तो क्या है कि भाई बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख टका हमारा मूल।
2: तो
3: ये क्या है कि भाई हमें हमारा वखाण करे तो ये कोई काम का नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है
2: जी,
3: हमने हमसे बड़े हैं वो भी हमको बात करते हैं कि ऐसा करना है तो कैसे करे क्या करे, छोटे हैं वो भी हमें बात करते हैं, सिलाई की दुकान है तो बैठते हैं, तो सभी आते हैं गांव से, बड़े छोटे सभी, सलाह तो अच्छी ही देनी चाहिए, क्या के अनुभव जो है ना वो बांटना चाहिए बहन जी, कोई किसी का बुरा कहीं भाई ऐसा करो वैसा करो, ऐसा ट्रैक्टर लाएगा तो ये सब बिक जाएगा और जमीन भी बिकेगा तो हमें देगा, ऐसी सलाह नहीं देने की है
2: जी।
3: सलाह जो अनुभव से जो गरीब परिस्थिति से बाहर आए हैं तो कैसे आए क्या किया ये बांटने का है, सच्ची सलाह देने की है
2: जी।
3: थैंक यू बहनी, सभी दोस्तों को जुड़ना है, ये भी अब निकलने वाला।
2: चलिए, बहुत बहुत आभार आपका।
3: तो चालू चालू जेब में चालू रहेगा, मैं सुनूं।
2: जी जी जी, ठीक है
3: जी, थैंक यू, सभी दोस्तों का नमस्कार।
2: हाँ जी। बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई, ये थे कंचन भाई मंडाली से। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर आज का विषय है, प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। आपके जीवन की ऐसी कौन सी छोटी सी खुशी है जो आपका मूड तुरंत ही अच्छा कर देती है? और आज का विषय है समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र अनुभव दोनों अधिक हो और दूसरे वे जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो। क्या कहेंगे आप? कहते हैं ना, अनुभव हमारे पास है तो हम कहीं पर भी हार नहीं खा सकते, है ना। इसमें भले कम उम्र वाले हो चाहे अधिक उम्र वाले हो, और लोग भी उनसे ही सलाह लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि या तो ये उम्र का भी एक तवज्जा रहता है कि भाई उम्र अधिक है तो अनुभव तो बढ़ते ही हैं, दुनिया देखी होती है। इसलिए क्या कहते हैं कि ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं किया है भाई, पूरे उम्र का अनुभव है, इतनी एज है। जैसे कंचन भाई बता रहे थे 70 साल का हूँ, बिल्कुल 70-80 साल, 60 साल वालों को भी आजकल तो अनुभव ही कहेंगे, लेकिन कम उम्र वालों को अनुभवी नहीं कह सकते जब उनके जीवन में सुख दुख नहीं आए हो तो। हेलो हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। आपकी आवाज बहुत ही स्लो आ रही है सुरेश भाई।
4: अब आई दीदी आवाज?
2: अब आई आपकी अच्छी तरह।
4: हाँ दीदी, तो जो इंदु बहन बैठे है के वहाँ?
2: हाँ है, है।
4: हाँ
2: बैठे हैं, बैठे हैं।
4: हाँ
2: जी,
4: तो मेरा भी नमस्कार, मैं सुरेश भाई धानेरा से बात कर रहा हूँ दीदी।
2: एक मिनट, इनसे
4: हिंदू बहन काफी टाइम से बैठे हैं तो बात नहीं करवाए, कुछ हिंदू बहन से भी बात करिए, करवाइए।
2: ये सुरेश भाई धानेरा से है, आपसे बात करना चाहते हैं।
5: नमस्ते,
4: नमस्ते दीदी, नमस्ते। और आप भी बहुत अनुभवी होगी, और जो अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमारी में जो आप जो जुड़े हैं या रेडियो मधुबन से जुड़े हैं, तो बहुत अच्छे अनुभव रहे होंगे आपके। और दीदी ने भी आज बहुत अच्छा विषय उठाया है, हर दिन अच्छा अच्छा विषय लेके आते हैं। तो थोड़े से आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके इस विषय के बारे में क्या अनुभव है?
5: क्या पूछो, आप पूछो।
4: हेलो,
5: मैं तो ज्यादा अनुभवी नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी है ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, वही है
4: जी।
5: हाँ, मेरे तो ये सब बातें मेरे पति बताएंगे अच्छे से।
4: वो तो सही बात है। हाँ। दीदी की जो उषा दीदी ने जो बात कही, तो मैं क्या करता हूँ कि ज्यादातर जो बड़े उम्र वाले लोगों से मैं बहुत सारा अनुभव लेता हूँ, और जो मित्र वगैरह उसी को ही बनाता हूँ। क्योंकि देखो ना दीदी, आज के जो क्या बोलते हैं टाइम आ गया है, तो मोबाइल रील्स ऐसे वगैरह, तो जो आज के बच्चे या अब तो बड़े भी ये उसमें सब हो चुके हैं, तो
5: वो सब सुनते रहते हैं। पर मैं तो कथा पर ही अनुभव अपना जो देते हैं जी जी, देखती रहती
4: हूँ। और जो हमारी जो छोटी सी खुशी की बात कही ना दीदी ने, तो मैं तो एक तो सभी दोस्तों ने बताया कि रेडियो मधुबन से ही हमें बहुत सारी खुशी मिल ही जाती है, अगर कोई मूड ऑफ हो तो।
5: हाँ, वो बात और सही है, रही, बहुत सारी खुशी तो रेडियो मधुबन से मिलती है, पर मैं थोड़ा नाराज रहती हूँ ना, तो मैं तो साड़ी वाड़ी खरीद के लिए आती, तो मुझे तो बहुत खुशी मिल जाती है, बहुत ही पूरे दिन फिर मैं गाने वाने गाऊंगी, खुश रहूंगी, ये अच्छा सा खाना भी बना लूंगी, और फिर सब दुख खत्म।
4: और
2: साड़ी खरीदने से दुख खत्म हो जाता है, इंदु जी बता रहे हैं।
5: मेरे तो यही है, मेरे जो सच है वो बताया है।
2: हाँ, वो तो अपने अपनी चॉइस है, सही बात है,
5: चॉइस है, मेरी मन की बात है, और जो सच है, जो मैं जैसा करती हूँ वैसा मैंने वो सच ही बताया है। मेरे तो ऐसा, मैं चाय वाय बना के पी लूंगी, गाने वाने गाने लग जाऊंगी, फिर बस सब खत्म, सारी दुखे मिट जाएगा, और लगेगा कि मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।
4: जी। और बाकी जो रेडियो मधुबन सुन के सभी तरीके की खुशी मिल जाती है मनोरंजन के साथ साथ।
5: हाँ।
4: और जो दीदी ने बताया ना कि परिवार मानते हैं, मानते नहीं, मान चुके हैं।
5: हाँ। हाँ, परिवार तो
4: बहुत खुशी मिलती है आजकल, खुशी कहाँ पैसे से भी नहीं मिलती तो
5: हाँ।
4: तो फ्री में खुशी मिल रही है।
5: हाँ, ये तो फ्री में मिल रही, सही बात है।
4: जी दीदी, और चलो और भी दोस्त अगर जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ेंगे, और आप भी अनुभव अपना शेयर करें और हम जरूर सुनेंगे।
2: चलिए, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से। अब आपके पास 2-3 मिनट है, कोई भी जुड़ना चाहे तो आप भी जुड़ सकते हैं, इंदु जी से भी बात करना चाहे तो कर सकते हैं, और आप अपनी बात रख सकते हैं। आज के प्रश्न का आप जवाब भी दे सकते हैं कि भाई अगर मूड खराब होता है आपको क्या मिल जाता है कि तुरंत आपका मूड ठीक हो जाता है। सभी के जवाब आप सुन रहे हैं, आप अपना भी जवाब दे सकते हैं। और विषय बहुत ही सुंदर है, देखिए उम्र वाले तो अनुभवी होते ही हैं, उम्र का तकाजा जो होता है समय के साथ अनुभव बढ़ते जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, कोई भी अगर सलाह लेना चाहते हैं तो चलो बड़ों के पास चलते हैं, कोई भी बात होती चलो बड़ों के पास चलते हैं, तो बड़ों से सही मार्गदर्शन मिल जाता है, सही राह मिल जाती है, सॉल्यूशन मिल जाता है। इसलिए बड़े तो है ही है, लेकिन आप देखते होंगे कभी कभी छोटे भी होते हैं ना, उम्र में छोटे होते हैं लेकिन क्या है उनके जीवन में कुछ ऐसी समस्या आई हुई होती है कि वो समय से पहले ही अनुभवी हो जाते हैं, तो उनसे भी लोग सलाह लेते हैं, कह रहे भाई फलाना देखो बहुत तकलीफ उठाकर आगे बढ़ा है, जीवन में सफल हुआ है, तो चलो उससे पूछते हैं आपकी सफलता का राज क्या है, या कोई भी बिजनेस या सर्विस या पढ़ाई या कुछ भी करने जाना हो तो सलाह लेंगे, क्या कौन सा फॉर्म भरे, बच्चे को पढ़ाना है क्या करें, आप सलाह दीजिए। बहुत सारे, मेरे को यहाँ पर एक बात याद आ रही है, एक बच्चा है जिसके पिताजी बहुत ही कम उम्र में चले गए और अपने परिवार वालों ने रखा नहीं, ननियाल में बड़ा हुआ, ननियाल वालों ने उसको पढ़ा लिखा कर होशियार किया, और कम उम्र में सही डिसीजन ले करके उसने सब्जेक्ट भी अच्छा लिया और उस सब्जेक्ट में भी सफल हो करके उसको गवर्नमेंट जॉब भी लग गई। तो लोग उससे सलाह लेते हैं कि अच्छा हमारे बच्चों को पढ़ाना है, आप बताइए ना कि कौन सा फॉर्म भरे, कौन सा सब्जेक्ट दिलाए, तो कम उम्र में अगर अनुभव बढ़ जाता है तो लोग उनके पास भी जाते हैं। हाँ, सभी का थोड़ा सा भाई कि शिक्षा के स्तर में आगे है तो शिक्षा के स्तर में बात करते हैं। हेलो,
6: नमस्ते मैडम जी।
2: हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, दयाराम जी बोल रहे हैं।
6: मधुबन के सभी श्रोताओं को और प्रसारण के जो सभी पात्र हैं सभी को राम राम, राधे राधे
2: जी, राधे राधे। आप नाम गले में अटक रहा है आपका
6: जी, जयपुर से अतर सिंह
2: जी, जी अभय सिंह जी
6: यादव।
2: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, और कैसे हो आप?
6: बढ़िया है मैडम जी, आपके हैं प्रोग्राम का फायदा उठा रहे हैं।
2: अच्छा, अच्छी बात है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में, आज के प्रश्न का जवाब भी आप दे सकते हैं।
6: हाँ जी मैडम, दो सवाल कर रखे हैं आपने।
2: नहीं, एक तो प्रश्न है, आपका मूड खराब होता है तो कौन सी चीज मिल जाती है जिससे आपका तुरंत ही मूड चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और विषय है कि देखिए अनुभवी वो होते हैं जो या तो बुजुर्ग है उम्र वाले है और अनुभव उनके गहरे तो वो अनुभवी है, या फिर कम उम्र में जिसके जीवन में तकलीफ आता है वो भी अनुभवी हो जाते हैं, क्या कहेंगे आप?
6: जी मैडम, पहले सवाल का तो है जो इसने भी जो लक्ष्य अपना बनाया है और उसको उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, वो लक्ष्य किसी का भी छोटा भी हो सकता है मैडम जी, बड़ा भी हो सकता है, मगर उसका जो लक्ष्य प्राप्ति होने पर उसको बहुत खुशी की अनुभूति होती है
2: जी।
6: तो ये भक्ति का भी हो सकता है, कोई सर्विस का भी हो सकता है, कोई सेवा का भी हो सकता है, कोई कार्य जटिल हो और वो संपन्न हो जाए तो जो खुशी महसूस होती है वो उस क्षण में वो सबसे बड़ी खुशी होती है मैडम जी।
2: जी जी जी।
6: और रही बात दूसरा सवाल जो उम्र है
2: जी,
6: और ये कोई जरूरी नहीं है ज्यादा उम्र वाला ही ज्यादा अच्छा सोच सके, लेकिन ज्यादा उम्र वाले के पास अनुभव होता है, उसने दुनिया देखी है और जीवन उनका लंबा हो जाता है, यदि वो सब कुछ अपने आँख नाक कान खोल के और सही रास्ते पे सही कर्म को करता हुआ और चलता है तो वो बहुत अनुभवी और बहुत ही प्रतिभावान हो जाता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है।
2: जी जी जी।
6: और छोटे उम्र में भी कष्ट है वो बहुत आदमी को बहुत अच्छे से सिखाते हैं, जो कभी भूल नहीं सकता है।
2: जी।
6: तो ये हमारा जीवन है मैडम जी, एक चक्कर के माफिक है, कभी सुख कभी दुख।
2: जी।
6: हमारी ऋतुओं के मुताबिक ये आते जाते रहते हैं।
2: जी जी जी।
6: तो ये जो सुख दुख का जो है, ये हम जो भी जो सच्चे दिल से और दूसरे को कष्ट को अपना कष्ट से भी ज्यादा बड़ा महत्व देता है
2: जी,
6: तो वो आदमी जीवन में शायद किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा
2: जी।
6: और जीवन में जो भी कष्ट है उसको अच्छी तरह भली भांति पता रहता है, और वो आदमी उस कष्ट से उभारने के लिए उस जो कष्ट भोग रहा है, कष्ट जिस समय कष्ट में पड़ा हुआ है, जो भवन में जिसकी बेचारे की नैया अटकी हुई है, उसको पार लगाने के लिए वो तन मन धन सब कुछ अर्पण करने की बिल्कुल मैडम जी। और बहुत आदमी ऐसे उदाहरण भी रहे हैं और उन्होंने बहुतों के कष्ट हरण करके और उनको कष्टों से उभारा भी है
2: जी।
6: और ऐसा आदमी जो कष्टों से उभरता है ना मैडम जी, वो आदमी वो उनसे भी बड़ा कष्ट निवारक बनता है
2: जी जी जी।
6: वो कभी दूसरे को इनसे भी बड़ा ज्यादा कष्टों से निकालेगा। ये हमारी संस्कृति और हमारा धर्म, हमारे आचरण, हमारे कर्म बोलते हैं
2: जी।
6: ये सब अच्छे के लिए है मैडम जी, बाकी जिनकी सोच अच्छी नहीं है वो तो पता नहीं मैडम जी क्या क्या जघन्य अपराध कर सकते हैं, उनसे तो पता नहीं कितना सावधान रहने की आवश्यकता है
2: जी। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका भाई सिंह जी।
6: जी मैडम जी, नमस्ते। हाँ जी। राधे राधे।
2: जी नमस्ते, राधे राधे। तो ये थे अभय सिंह जी यादव जयपुर से, और बस इस विषय को यही समाप्त करेंगे। कहने का भाव यही है कि देखिए, कम उम्र वाले भी अनुभवी हो जाते हैं और उम्र का तो तकाजा रहता ही है, इसलिए सलाह लो तो ऐसे लोगों से ही लीजिएगा, और संग करो तो भी ऐसे लोगों का ही करना है। ठीक है, जो अनुभवी है तो वो आपको राह भटकने की सलाह कभी नहीं देंगे। ठीक है, और अब आइए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते, बात कर लेते। हेलो
7: हेलो, बुरा राम बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी बुरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
7: मैं अभी बोले तो लगाया फोन, भी अभी जस्ट आया और लगाया और पहला ही लगाया, लेकिन मैं बोला मैं उदा बहन जी को राम राम तो कर दूं।
2: जी जी जी जी। और बढ़िया।
7: और बहन जी, हेलो।
2: हाँ जी हाँ जी, मैं सुन रही हूँ, बढ़िया हूँ।
7: क्या विषय, क्या कुछ मेरे को तो मालूम नहीं।
2: विषय तो अब समाप्त हो गया। प्रश्न है आज का कि अगर आपका मूड ऑफ होता है, मान लीजिए मूड खराब है, तो क्या चीज आपको मिलती है कि तुरंत ही आपका मूड अच्छा हो जाता है, उस समय आप क्या चाहते हैं?
7: तो प्रश्न अच्छा है जी। मेरा तो ऐसा है कि बोलने का मतलब, अभी मैं कभी भी घर में या किसी बात से लेन देन से थोड़ा उदास बैठता हूँ, और मेरे बच्चा और लड़कियों के वो मेरे लड़कियों के बच्चिया मेरे पास में आती है, कुछ न कुछ टॉपिक सुना के हूँ, वो सब पूरा भूल जाता हूँ, उसमें मेरी खुशी हो जाती है।
2: अच्छा,
7: टेंशन नोट है। बच्चे भी कहते हैं दादाजी बोले तो थोड़ा उदास बैठे तो वो कोई ना कोई मना करके मेरे को वो चीज भुलवा देते हैं।
2: अच्छा, चलिए।
7: तो वो मेरे कल सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चे लोग कुछ भी जो हुआ तो ले जाना या लाना करना कुछ भी है तो बच्चे लोग मेरे आगे कर देते।
2: अच्छा अच्छा,
7: मतलब उदास देखना नहीं चाहते बच्चों को।
2: जी जी, तो बच्चों की बात सुन के आप खुश हो जाते हैं।
7: सबसे बड़ी खुशी है
2: जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत आभार भूरा राम जी।
7: ओके सर।
2: तो ये थे भूरा राम जी ओर से, और आइए यहाँ पर अब एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आज एक और मेहमान हमारे बीच पधार चुके हैं, सविता जी कुलकर्णी, जो पत्रकार है। आप नागपुर महाराष्ट्र से पधारे हैं और आज की रेसिपी आप देंगे। आप क्या पसंद करते हैं? पूरनपोली पसंद है? महाराष्ट्र की फेवरेट डिश है ये, जो महाराष्ट्र में नहीं, हम राजस्थान में भी बनाएंगे, तो गुजरात में भी बनाएंगे, तो पूरे भारत देश में बनाएंगे। ठीक है, तो पूरनपोली सीखेंगे। पूरनपोली वैसे तो कितनी बार हमने सिखाई भी है, लेकिन भाई जब कहते हैं ना प्रॉपर, जो जहाँ की होती है फेमस, फिर वहाँ का तो स्वाद ही अलग ही होगा, थोड़ा तो अलग ही खाने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम सविता जी के द्वारा सुनेंगे। सविता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, आपका ही अपने रेडियो मधुबन में। आपसे पहले भी मिल चुके हैं, हर वर्ष आप आते हैं
1: जी। ओम शांति दी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर से दोबारा मुझे मधुबन में मौका मिला है, और आज तो एक नए विषय के साथ में आपने मुझे बुलाया है यहाँ पर
0: जी।
1: और सभी को ओम शांति। और आपको जो रेसिपी है हम तो बताएंगे, बहुत सुंदर से रेसिपी हमारे यहाँ बनती है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में मतलब ये पूरनपोली यदि ना हो कोई त्योहारों में तो उसका मजा भी नहीं आता।
0: बिल्कुल
1: है।
0: जैसे राजस्थान में प्रोग्राम हो और एक प्रोग्राम में एक विधि में दाल बाटी ना हो, चूरमा दाल बाटी, तो वो रसोई जैसे फीकी नजर आएगी। ऐसे महाराष्ट्र में पूरनपोली तो बननी ही है।
1: जी बिल्कुल, अभी आने वाले 2 दिन के बाद मैंने, कल तो हमारे यहाँ पे किसानों का बहुत बड़ा त्योहार होता है पूरे महाराष्ट्र में, और साथ में बैल पोला जो कहते हैं, तो जो जीवित बैल होते हैं जो खेत में जोए जाते हैं, तो उनका कल त्योहार है। कल उनकी पूजा अर्चना की जाती है, काफ़ी उनकी साज सज्जा की जाती है, क्योंकि साल में एक बार आने वाला त्यौहार जो है वो किसान भाई का है, और किसान भाई हमारे राजा होते हैं, तो इन राजाओं का त्यौहार जो है तो कल बड़े पैमाने पर पूरे महाराष्ट्र में मनाते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो इन एडवांस में आपको मुबारकबाद इस त्योहार की। और अब आप पूरनपोली सिखा दीजिए, क्या सामग्री लेनी पड़ेगी इसमें?
1: आपको तो पहले बता दें कि पोले का जो त्योहार होता है ना दी, तो उसमें कैसा होता है ना कि पोला पोली तो जब आता है तो पूरन पोली के सिवा ये त्यौहार नहीं मनाया जाता, और इसमें काफ़ी प्रकार के वैसे तो मोदक भी पूरन से ही बनाते हैं, जैसे कि अभी गणेश जी आने वाले हैं, आने वाले
0: जी।
1: तो आपको पूरन के बारे में बता दें कि
0: हाँ जी,
1: पूरन का ऐसा होता है ना कि चना दाल जो होती है, तो
0: जी
1: चना दाल जो होती है ना तो उसको पकाया जाता है, तो उसको मतलब एक जैसे कि जैसा फैमिली है आपके पास में, तो एक गिलास चना दाल आप ले सकते हैं, और फैमिली के हिसाब से यदि 4 जन हैं 5 जन हैं तो 1 से 1.5 गिलास आप चना दाल को उबालें। साथ में उबालने के बाद में उसमें इलायची लौंग ये आप उसमें डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार हल्का सा नमक आप उसमें डाल सकते हैं, और साथ में जो जायफल होता है हाँ उसे भी आप पकाते समय उसको ऐड कर सकते हैं, कि जिससे उसका स्वाद बढ़ सकता है,
0: उसकी खुशबू फैल जाए उसमें।
1: जी हाँ, उससे खुशबू भी फैलती है। साथ में जैसे कि आपको थोड़ा बहुत कुछ मेवा डालना है, मतलब कोई चारोली हो या खोबरा किस हो, तो इलायची तो उसको स्वादानुसार तो डालते ही, बहुत सारे लोग छोटी इलायची भी डालते हैं, और कोई जिसे ज़्यादा पसंद हो, मतलब ज़्यादा स्वाद के लिए हो तो उसमें बड़ी इलायची भी डाली जाती है। तो इस प्रकार से उसको उबाल कर उसको पीसा जाता है, और पीसने के बाद में जो सांचा होता है कोई मतलब इसमें बनाते हैं क्या कहते हैं उसको,
0: चकले
1: पर बनाते हैं और कोई सांचे पर भी बनाते हैं, तो इसका जो स्वाद होता है ना बहुत सुंदर होता है, और उसको जब बेल कर भी कोई पूरन बनाते हैं रोटी की तरह, और कोई सांचे में जब बनाते हैं तो उसको तला जाता है घी में,
0: जी
1: और घी

0: तल कर, कोई घी में तलता है तो कोई तेल में, तो दोनों भी चीज का आप इस्तेमाल, जैसे तेल हो या घी, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही स्वाद लगता है। जब आप खाएंगे तो इसे दूध के साथ खा सकते हैं। और जो दाल का जो पानी निकलता है, जो सार निकलता है, तो इसे भी जैसा घी का तड़का दीजिएगा और थोड़ा शक्कर मिलाइएगा, क्योंकि जो पूरन होता है उसमें भी शक्कर भी मिलाई जाती है। जितना दाल आप लेंगे उतना ही उसमें शक्कर भी आप मिला सकते हैं, तो इसका स्वाद मीठा जो होता है, तो इसको बिना शुगर फ्री तो नहीं होता है, ये शुगर के साथ में ही इसे बनाया जाता है, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी मधुबन के और गुजरात के भाई हैं, जहाँ भी हमें सुन रहे हैं, तो वो हम चाहते हैं कि इस त्यौहार में सब लोग अपने अपने घर पर जरूर इस त्यौहार को आनंद ले और बनाए।
1: जी, देखिए पहले एक समय था जब लोग कुछ बनाने से पहले सोचते थे, त्योहार के दिन ही वो चीज़ बनती थी। आजकल तो क्या है कि बच्चे डिमांड करते तुरंत चीज़ बना देते हैं।
0: जी हाँ,
1: माताएं भी मतलब रेसिपी बहुत बढ़ चुकी है और हर दिन त्योहार की तरह ही मनाते हैं,
0: जी
1: तो अच्छी बात है। पूरन पोली बहुत ही स्वादिष्ट आपने सीख ली है, बस ये सात्विक रेसिपी है, आप अपने इष्ट देव को भोग लगा करके खाइएगा। और सविता जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर आपने रेसिपी सिखाई इसके लिए, थैंक
0: जी हाँ, थैंक यू
1: यू।
0: दी, ओम शांति।
1: हाँ जी, तो ये थे सविता जी कुलकर्णी महाराष्ट्र नागपुर से। और आइए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: मैं हूं वजाहत हबीब बुल्ला और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, तो आप इन नुस्खों को आजमा सकते हैं। इमली कैसे कौन सी बीमारी ठीक करती है, फायदा करती, वो आपने जाना है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई है और आपने रेसिपी में जो पूरन पोली सीखा है ज़रूर बना करके खाइएगा, ठीक है। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। आपके जीवन में ऐसी कौन सी छोटी सी खुशी है जो आपके मूड को तुरंत ही अच्छा कर देती है? तो अलका जी कप्पासन से आपने जवाब दिया है, भगवान की सेवा में कुछ चीज़ की ज़रूरत हो और अचानक में मिल जाए तो मन को बड़ी खुशी मिलती है। दीपा जी कपासन से आपने जवाब दिया है, मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी राहत और खुशी तब होती है जब अतीत में मेरे साथ गलत बर्ताव करने वाले किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है और वह दिल से पछतावा करता है, तब बड़ी खुशी मिलती है। फिर सुरेश भाई चौटाना से आपने जवाब दिया है कि रेडियो मधुबन सुनता हूँ तो तुरंत ही मूड अच्छा हो जाता है। फिर जगदीश भाई जुड़े हैं इडर से, आपने कहा कि इमली मिल जाए तो तुरंत ही मूड अच्छा हो जाता है। सुभाष भाई महाराष्ट्र से आपने भी कहा है कि रेडियो सुनता हूँ रेडियो मधुबन तो तुरंत ही मूड अच्छा हो जाता है। कंचन भाई मंडाली से आपने कहा है कि बस जब मूड खराब होता है भजन गाता हूँ तो तुरंत ही मूड अच्छा हो जाता है। सुरेश भाई धानेराव से आपने भी कहा कि रेडियो मधुबन सुनने से मूड तुरंत अच्छा हो जाता है। अभय सिंह जी यादव आपने जवाब दिया है कि आप जो लक्ष्य चाहते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो मूड अच्छा हो जाता है। भूरा राम जी और से जुड़े हैं, आपने कहा है कि बच्चे जब बोलते हैं और वो कुछ मुझे मतलब मूड ठीक करने की कोशिश करते तो मेरा मूड तुरंत ही अच्छा हो जाता है। और चलिए, तो सभी ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया है, आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और आप सभी विषय में जुड़े हैं इसके लिए भी ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी। आज का मीठा मोती है, दुर्भावनाएं स्वयं को पहले दुर्गति की ओर ले जाती है फिर दूसरों को, अतः शुभ भावना से स्वयं वह दूसरों की सद्गति में ले जाए। और अब इंदु जी आपको प्यारा सा गीत सुनाएंगे, आप लेंगे गीत का आनंद और हमें देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से पहेली के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: بل
1: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
2: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
1: सोनोग्राफी वो किस लिए?
2: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
1: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
2: फिर तुम शुरू हो गई।
1: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकालकर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
2: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

0: कल राठौड़ परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर था, क्योंकि घर में दामाद पुराना बना है, घर जमाई नया। हमारे देश में दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है, जिसकी आदत सूरजमल को भी थी। लेकिन अब जो इन्हीं घर वालों के साथ रहने लगे हैं, तो क्या वैसी ही इज्जत मिलेगी? या चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आज राठौड़ परिवार में, जहां परिवार के बच्चे भी कैंप से लौट कर आ गए हैं और अब जमाई जी यानी सूरजमल जी लगे हुए हैं नई जॉब की तलाश में।
1: अरे सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में?
2: जाह्नवी क्या है ये, तुम लोग कल ही अपने कैंपस से वापस आए हो, इसका मतलब यह नहीं कि घर को ही कैंपस बना दो।
3: दादी लेकिन मैं ये गाना नहीं बजा रही हूँ, दिस सॉन्ग डज नॉट हैज रिज।
1: चीज? क्या चीज नहीं है, अब गाने में कौन सी चीज आ गई?
3: चीज नहीं दादी, रिज रिज।
4: अरे बेटा हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं, तुम लोग हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो या चलो अंग्रेजी ही बोलो, पर ये कौन सी एलियन भाषा बोलते रहते हो?
3: पापा प्लीज डोंट बी सो बेसिक।
1: अरे ये कैसी अंग्रेजी है, पटर पटर करती रहती है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता।
5: दादी जाह्नवी के कहने का मतलब है कि उसे ये गाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने ये गाना नहीं बजाया है।
1: तो कौन बजा रहा है ये गाना, जिसने मेरे सर में दर्द कर दिया है?
5: दादी चलिए चल के कमरे में देख लेते हैं।
6: चांदनी क्यों फंसा रही है वीरू को?
5: कुछ नहीं होगा, देखती जा।
4: ये लीजिए, ये तो वीर जी है। अरे सर गाना बंद करेंगे आप, पीर पीर।
7: अरे किसने मेरा गाना बंद किया?
4: मैंने किया, कोई आपत्ति है आपको?
7: अरे बड़े बड़े चाचू आप, अच्छा किया गाना बंद कर दिया, किसने चलाया था ये गाना?
3: तुमने।
7: हाँ वो बड़े चाचू वो रॉकिंग गाना है, तो मैं तो बस ग्रूव कर रहा था।
4: सुबह सुबह इतना जोर से गाना चलाया है, घर के बाकी लोगों के बारे में भी सोचा कर, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं।
1: हाँ तो इसमें क्या हो गया, गाना ही तो चलाया है। आजा मेरा पोता, मेरा लाडला बच्चा, सुन तू कर वो क्या कहते हैं, वूम वूम वूम, तू कर।
3: वूम नहीं दादी, ग्रू।
1: अरे वो ही तो कह रही हूँ मैं। अरे हाँ वही वही, अरे करने दो बेचारे को, क्या सुबह सुबह उसको परेशान करने में लग रहे हो सारे।
4: माँ आपके ही सर में दर्द हो रहा था ना।
1: देख वीरेंद्र तू नहीं समझेगा, क्योंकि तेरी तो दो दो बेटियां हैं। अरे लड़कों को ऐसे नहीं रखा जाता मीन मेख निकाल के, आखिर इकलौता चिराग है हमारे घर का, समझा?
5: और हम क्या है दादी?
0: इस सवाल का जवाब है किसी के पास, पोते को टोको नहीं रोको नहीं, और पोती को? वैसे अंबिका देवी राठौड़ शुरू से बेटों पर प्राण न्योछावर करती आई हैं। हालांकि बेटियों को भी शिक्षित तो किया, लेकिन उनकी शिक्षा को अहम नहीं समझा। हम सोचते हैं कि एक लड़की को स्कूल भेज तो रहे, इससे ज्यादा बराबरी क्या होगी, लेकिन रोज किसी न किसी तरीके से बेटी को दिखा ही देते हैं कि बेटा ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं राठौड़ परिवार की सुबह और कौन से रंग दिखाती है।
8: राजकुमारी, ओ राजकुमारी कहाँ मर गई?
9: जिंदा हूँ जेठानी जी, बस आई।
8: राजकुमारी आज ना मेरे पैर में बड़ा दर्द है, आज नाश्ता तू ही बना लेना।
9: जेठानी जी नाश्ता तो बन गया।
8: अच्छा आज नाश्ता इतनी जल्दी बन गया?
9: जल्दी कहाँ जेठानी जी, 8 बज रहे हैं।
8: अरे 8 बज गए, ये बाकी के 7 और 6 कहाँ गए?
10: बड़ी भाभी वो आए थे घर पे, राजकुमारी भाभी के हाथ का नाश्ता खाकर चले गए।
8: हे राम मजाक मत कर किशन, मुझे तो डर लगता है इस कम उम्र में ये मुझे क्या हो रहा है।
10: कम उम्र?
4: हाँ हाँ हाँ भाभी जी, आप तो बस हमसे थोड़ी सी बड़ी हैं, आपको क्या होगा।
8: हाँ वो तो है, वैसे इस घर के नए जमाईसा कहाँ हैं? अभी तक अपने कमरे में पड़े सो रहे हैं का?
11: बड़ी भाभी ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी और जीजू साथ में वॉक करने गए हैं, आते ही होंगे।
4: लो आ गए वो।
12: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो घर आ गया, चलो जमाई सा घर में। हाँ, चलो
13: हाँ, बढ़िया
12: चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
13: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक।
12: वाह आज तो मजा आ गया, सूरजमल बेटा बड़ा समझदार, आज तो पेड़ पौधों के बारे में बड़ी जानकारी दी इसने।
14: हाँ बस इन्हीं खेती बाड़ी के चक्कर में लगे रहते हैं ये, इनको बताइए पापा कि पेड़ पौधे पर पैसे नहीं लगते।
12: शांति, थोड़ा शांति से बात किया कर बेटा।
14: कैसे शांत रहूं पापा, एक हफ्ता निकलने को आया है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, ना नौकरी ढूंढते हैं ना कोई।
13: पापा आप शांति को कुछ मत कहिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
12: शांति चुप हो जा, जमाई साहब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही बैठिए।
14: क्यों पापा, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आपको पता है मैं सुबह ही एक पोस्ट देख रही थी, मेरी क्लास में जो सुषमा थी ना, वो अपने पति के साथ वेकेशन पे लंदन गई है और मैं यहाँ।
15: शांति तू ये क्या बोले जा रही है बहन, एक पोस्ट की वजह से तू जीजा जी को इतना सुना रही है?
14: रागिनी दीदी आपकी शादी नहीं हुई है ना, अभी आप नहीं समझेंगी।
15: मैं इतना तो समझती हूँ शांति कि पैसे कमाना सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी नहीं होती है, जब रिश्ता बराबरी का है तो जिम्मेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन अब मुझे कहनी ही पड़ेगी, ये जो तू रोज पार्टी करती है इधर उधर जाती है, इससे अच्छा है जाके कुछ काम कर पैसे कमा।
14: हाँ जैसे आप कमा रही हैं अपने एनजीओ से, कितना कमाती हैं दीदी आप बताइए जरा।
12: तुम दोनों बस करो, घर के मुद्दों पर बैठ के सम्मान के साथ बात की जाती है, फैसले लिए जाते हैं, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी, गुस्से में एक दूसरे को जो भी कह रहे हो वह शब्द जैसे बाण से छूटे तीर है, वापस नहीं आएंगे। इसलिए जाओ सब हाथ धोकर आओ, पहले सब नाश्ता करेंगे, दिमाग ठंडा होगा तब फिर बात होगी।
4: राजकुमारी जाओ सबके लिए नाश्ता लगा दो।
9: हाँ जाती हूँ।
4: कहाँ जा रही हो, किचन उधर है?
9: वो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है।
4: इतना क्या स्पेशल बना दिया जो किचन के बाहर है?
9: अरे आप बस देखते जाइए, शौक ही हो जाएंगे आप।
4: इसी बात का तो डर है,
9: हा? कुछ कहा आपने?
4: नहीं नहीं बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दी होगी तुमको।
9: तो फिर मैं आती हूँ, मैं कीड़े मकोड़े लेकर आऊँ आपके चूहों के लिए।
4: क्या?
9: अरे मजाक कर रही थी।
4: राजकुमारी घर में वैसे ही कितना टेंशन है और तुम।
10: भैया इस टेंशन में किसी को तो मजाक करने दीजिए, वरना हमारी बहनें तो नदी में आए तूफान की तरह सब तहस नहस कर देंगी।
4: चल ठीक है अब नाश्ता करने चले।
0: वैसे क्या लगता है आपको, राजकुमारी जी ने आज ऐसा क्या बनाया होगा जो किचन की दीवारों में नहीं समा पाया? और भगवत जी ने तो कह दिया कि जो बात होगी अब नाश्ते के बाद होगी, लेकिन नाश्ता करने के बाद ये सब लोग बोलने लायक बचेंगे भी या नहीं? वैसे जिस गुस्से में सब लोग गए हैं उससे तो लगता है कि नाश्ते की टेबल पर भी हंगामा होने वाला है, लेकिन ये राठौड़ परिवार है जी, यहाँ की हवाओं का किसे पता कब किस दिशा में बहने लगे। वैसे भगवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, गुस्से में कही बात का बाद में कितना भी दुख हो, पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे इस घर के शेर शायर किशन कल रात अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिख रहे थे, जाते जाते आप भी सुनते जाइए।
11: रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं, नीचे से सहारा भी देती हैं, ऊपर से उजाला भी देती हैं, अकेली हों तो बस ये धूल बनती हैं। रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं।
16: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
17: घर ऑन एयर, पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही आत्म मंथन से शांति, सच्चाई और समाधान निकलते हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता संदीप त्रिवेदी का नमस्कार स्वीकार करें। दोस्तों, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। हमराही दरअसल एक कार्यक्रम तो है ही, साथ ही साथ एक अवसर होता है किसी अनूठी अनसुनी कहानी से रूबरू होने का भी। तो इस कहानी में अलग अलग किरदार होते हैं, अलग अलग घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं में समाज के लिए छुपा हुआ कोई ना कोई संदेश होता है, और उसी संदेश को आप सब तक पहुंचाने का उद्देश्य रेडियो मधुबन का है। और इसीलिए आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बार बार आप सब सुनते रहे हैं कि समाज बहुत भेदभावों से भरा हुआ होता है, समाज बहुत सारे अंतर विरोधों से भरा हुआ होता है। जहां समाज में अनेक अनेक अच्छाइयां भी हैं, तो कुछ समाज में बुराइयां भी होती हैं, और वो बुराइयां हम सब महसूस करते हैं, लेकिन उनको दूर करने के लिए प्रयास शायद बहुत कम लोग होते हैं जो करते हैं। और रेडियो मधुबन एक ऐसा ही प्रयास कर रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि समाज में किसी तरह का अंतर ना हो, किसी तरह समाज में भेदभाव ना हो, समाज किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक अक्षमता के आधार पर उसको परेशान ना करे, बल्कि समाज में सभी को बराबरी का दर्जा मिले। तो दोस्तों, आज भी हमराही की हम ऐसी ही एक अनूठी और अनोखी कहानी लेकर के आप सबके बीच में हाजिर हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे दो विशेष मेहमान भी हमारे साथ आ गए हैं। अब मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए आप सब का परिचय करवाता हूँ। हमारे साथ आज अहमदाबाद गुजरात से जुड़ रहे हैं श्रीमान सुदीप त्रिपाठी जी और उनकी श्रीमती जी रमा त्रिपाठी मैम।
1: नमस्कार।
2: मेरा भी नमस्कार।
0: जी जी जी जी, आप दोनों का रेडियो मधुबन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।
2: धन्यवाद।
0: तो सुदीप सर, हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप अपनी दिव्यांगता के बारे में बताएं और अपने जीवन की जो भी घटनाएं गतिविधियां रही हैं थोड़ा सा उनके बारे में बताएं।
1: यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में हमारी जन्मभूमि रही है। वहां से मेरे पिताजी, जब मेरा ये आंखों का प्रॉब्लम हुआ और करीब करीब हम एक काश्तकार थे, करीब 150-200 बीघा के काश्तकार थे हम लोग भी जी। लेकिन आंखों के इलाज में बहुत सारा पैसा ऐसे खर्च हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी अहमदाबाद आए और थोड़े दिन बाद हमें भी बुला लिया, और उसके बाद हमारी कर्मभूमि वो अहमदाबाद ही बन गई। और मेरे जो ताऊ थे वो एक कवि थे, और हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारी जो हमारे यहाँ यूपी में चकबंदी होती है, भूमि सुधार कार्यक्रम बोला जाता है, उसमें सभी की भूमि यानी जमा कर ली जाती है, उसके बाद सभी को अलग अलग भूमि अलॉट की जाती है।
0: अच्छा।
1: तो हमारी भूमि अधिग्रहित तो हुई, लेकिन बाद में लोगों ने पैसा खिला के अपनी अच्छी भूमि ले ली और हमें एकदम खराब भूमि दे दी गई। हमारे पास तो पैसे थे नहीं। तो वहाँ एक शर्मा जी एसीओ हुआ करते थे, उनके विरोध में उन्होंने एक अच्छी सी कविता लिखी कि जिसका बच्चा किया कैंसर नए आंखों से अंधा, इलाज में सब कुछ था खोया कौन लगाता कंधा, पैसे के बारे में मिट्टी छांटी वेद कुमार की, सीमा पार हो गई शर्मा जी के भ्रष्टाचार की। तो ये ये कविता पूरे अखबारों में छपी और उनके वहां जो एसीओ थे उनका तबादला हुआ
0: जी।
1: के बाद डिप्टी डायरेक्टर ऑफ चकबंदी जो थे, डीडीसी बोले जाते थे, दीपक राय बृद्ध, कि यहाँ हमारा केस चलना था, हमारे पास तो पैसे थे नहीं, तो केस तो हमने दायर कर दिया। उसके बाद हमें रोज वहां जाना पड़ता, करीब 20-22 कोस हम लोग साइकिल पे जाते और वो मिल नहीं पाते, 8-1 दिन हो गए। तो फिर मेरे ताऊ ने एक कविता लिखी थी और वो मुझे गाने के लिए बोला था, न्याय के लिए
0: जी।
1: तो उन्होंने लिखा कि न्याय कर दो या कह दो कि बेटा

0: का साधन यानी लेने का, क्रय का साधन हमारा नहीं है। जैसे ही मैंने इतना बोला तो अच्छा आपके साथ न्याय होगा, आप परेशान होइए नहीं। और जब भी केस चला तो उन्होंने फिर न्याय किया, उन्होंने हाँ वही ब्लाइंड बच्चा, तो उतना उनको याद आया जब केस चला तो, और हमें उस तरीके से न्याय मिला। तो एक यानी कविता में भी ये ताकत होती है कि वो एक सुधार की ओर समाज को मोड़ सके, ऐसा मैंने महसूस किया। और उसके बाद तो हमारी कर्मभूमि गुजरात रही है
1: जी।
0: यहाँ गुजरात में शिक्षा दीक्षा यानी एमए बीएड के बाद मैंने स्कॉलरशिप वाला आंदोलन था 92-93 के बाद, यानी जो स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट को एडॉप्ट करनी थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, स्टेट गवर्नमेंट को एडॉप्ट करनी थी, तो गुजरात गवर्नमेंट ने 2 साल एडॉप्ट नहीं की। तो हमने 1994 में एक आंदोलन छेड़ा और हम सब साथ में लड़े, और 41 दिनों के बाद हमें गवर्नमेंट से ये एश्योरेंस मिला कि भाई आपकी जो स्कॉलरशिप है, जितने भी दिव्यांगजनों की स्कॉलरशिप है वो बहाल की जाती है। और उसके बाद मैंने अपने व्यवसाय में भी हाथ आजमाया, अपने पुस्तैनी व्यवसाय गेस्ट हाउस का बिजनेस था, करीब 1999 तक वो मैंने अपनाया। उसके पहले मैं STD PCO भी चलाता रहा, और लेकिन गेस्ट हाउस के व्यवसाय में मुझे एक दिन एक बात क्लिक हुई कि ये पैसा वगैरह तो ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग का इसमें कोई ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है, हम जो कुछ पढ़े हैं उसका इसमें कुछ उपयोग नहीं हो रहा। और ऐसा आदमी कभी भी फिक जा सकता है, कभी भी उसकी उपादेयता खत्म हो जा सकती है। तो उसी साल फिर मैंने एजुकेशन में टीचर्स ट्रेनिंग फॉर द ब्लाइंड का डिप्लोमा किया, और बाद में मैं अपने जहाँ पढ़ाता हूँ वहां मुझे तुरंत उसी साल जॉब भी मिल गई। ये बातें हैं,
1: बड़ी दिलचस्प है आपकी कहानी त्रिपाठी जी। और कहीं ना कहीं जो कहा जाता है ना एक, कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो आपके साथ तो पूरी तरह से मतलब घटित हुआ,
0: यानी अनुभवी तक की बात हो गई वो।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके ताऊ जी का नाम क्या हुआ करता था?
0: वो उसके बारे में भी उन्होंने लिखा था कि भाई जनपद इटावा के अंदर मंदना तिवारियों का छोटा सा ग्राम है, बाबा दीनानाथ पिता हरि नारायण, वेदों में रही ललित ललाम है, और कृष्ण गोपाल नाम तरुण उपनाम है, ऐसा
1: क्या बात,
0: तरुण उपनाम से वो कायम लिखा करते थे।
1: तो उनकी कविताओं का प्रभाव समाज पर पड़ा, सरकार पर पड़ा, और आपकी समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन उनकी लेखनी का थोड़ा बहुत प्रभाव आप पर भी पड़ा, कुछ आपने भी बाद में सोचा?
0: हाँ मैंने भी कुछ कुछ लिखना प्रारंभ किया है, कभी कभी इतना
1: वो नहीं होता, लेकिन सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि रमा जी को सुनना भी हमारे लिए बहुत जरूरी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत उत्सुक है कब से। हाँ
1: इंतजार करवा रहे हैं उनको। तो रमा मैम, हमारे सुनने वालों को आप भी अपने बारे में बताएं।
2: हमारे घर में हम 6 बहनें और एक भाई है, तो मैं, मुझसे छोटी सिर्फ एक ही बहन है, बाकी सब मुझसे बड़े हैं। तो मेरे फादर को स्टार्टिंग में सब लोग, मतलब घर के जो उनसे 3-4 बड़े भाई हैं, वो ऐसा कहते थे कि पहले मेरे फादर फौज आर्मी में गए, वहां बोला यहाँ तुम नहीं चल पाओगे, वहाँ के जो भी ऑफिसर्स थे, क्योंकि मेरे पापा ही पढ़े हैं और कोई लोग पढ़े नहीं है उनके फैमिली में, भाई ताऊ जी, एक ताऊ जी और पढ़े थे जिनकी डेथ हो गई, बाकी और कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो उनसे तो सब वहाँ खुश थे। लेकिन बाकी और जो लोग गए थे उन्होंने ये कहा कि फिर घर में कौन देखेगा, इसलिए वो उनको वहां से छुड़ा दिया गया। खेती देखो, फिर के खेती तुम नहीं कर पाओगे, तुमने तो पढ़ाई में ध्यान दिया है, अब तुम दुकान देखो, गांव में कोई दुकान खुलवा दी। फिर ऐसे करके फिर वो दुकान भी उन लोगों ने नहीं ज्यादा चलने दी जी। फिर उन्होंने खुद ही सोचा, वो 1978 में मेरे पापा दिल्ली आ गए
1: जी,
2: तो वहां पे ही उन्होंने लीफ प्रिंटिंग का काम सीखा, जो प्लास्टिक की जो पाउडर और आईने और लिपस्टिक, मतलब जितनी भी जो कंपनियां होती हैं उनके अंदर जो कलर्स किए जाते हैं
1: जी,
2: वो मेरे पापा का काम, फिर उन्होंने ये काम करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरा जन्म हुआ और मैं तो बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। जब मैं 6 महीने की थी तब से लेके निकले मुझे मेरे मदर फादर कि किसी तरीके से अगर इसकी आंखें ठीक हो जाएं, कहीं ले गए जाने कलकत्ता, कभी एम्स में, कभी तब इतने साधन भी नहीं थे कहाँ निकलना जाना, इतना ट्रेन जो भी इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन वो लोग जो बताते हैं यही कि 6 महीने की थी तब से मुझे लेके निकले थे। फिर वहीं दिल्ली में रहने लगे तो हमें वो राष्ट्रीय बिरजानंद स्कूल है दिल्ली में जो ब्लाइंड गर्ल्स का, वहां पे मैं मेरी पढ़ाई हुई। गर्ल्स ज्यादा थी तो उसके बाद हमारे स्कूल के 2 पार्ट हो गए, एक विकासपुरी और एक राष्ट्रीय बिरजानंद
1: जी।
2: तो लेकिन हालांकि दोनों राष्ट्रीय बिरजानंद के ही भाग हैं, एक सेकेंडरी स्कूल हो जाता है जो विकासपुरी है और एक खाली राष्ट्रीय बिरजानंद अन्नकन्या के नाम से जाना जाता है
1: जी।
2: तो वहां मेरी 12th तक पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं AICV से 4 साल वहां पे रह के मैंने 3 साल कॉलेज गोइंग हॉस्टल में रही, उसके बाद 1 साल का गैप रहा मेरा घर पे, फिर वापस वहीं से मैंने स्टेनो किया।
1: अच्छा, तो आपने आगे एमए वगैरह नहीं किया?
2: नहीं, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करके और थोड़े दिन घर पे रही, उसके बाद फिर स्टेनो का कोर्स किया और 2005 में मेरी फरक्का NTPC में जॉब लगी जो बंगाल में 28 किलोमीटर पहले आता है सिर्फ बांग्लादेश से।
1: जी जी जी।
2: तो वहाँ कौन जाएगा इतना दूर, क्योंकि 1500 किलोमीटर दिल्ली से दूर।
1: ठीक बात है।
2: स्वीकृति पत्र में मेरी स्वीकृति दे दी थी तो मुझे तो जाना ही था। फिर बाद में जब घर में पता चला ये बंगाल में है, इतना दूर है, तो मेरे फादर ने बोला कोई बात नहीं कितना भी दूर हो, लेकिन तुम्हारी जॉब लगी है, हमारा मकसद यही था कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ।
1: क्या
2: तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मेरे फादर मेरे साथ रहे 6 महीने तक, उसके बाद फिर मदर आई, फिर फादर, ऐसे करके वहां 3 साल मैंने निकाले। फिर 2008 में मैं गुजरात में आई।
1: अच्छा, तो जॉब के पहले विवाह हो गया था आपका?
2: जी नहीं सर, 2008 में शादी हुई थी।
1: 2008 में शादी। अच्छा, शादी के समय आप गुजरात आए?
2: जी, शादी के 4 महीने बाद मैं गुजरात
1: आया। 4 महीने। आपके परिवार में किसी और को है दृष्टि बाधा की समस्या?
2: सर, मेरे परिवार में जैसे मैंने बताया हम तो बहने भाई जो भी है, हमारे पूरे 6 घर हैं। मेरे जो दादा थे या परदादा जो
1: जी, और
2: भाई 6 भाई उनका, फिर पूरा उन सब में लेके बुआओं के कहीं के भी ले लीजिए, घर में किसी को भी अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: अच्छा सुधीर सर, ये आपकी आंखों की जो प्रॉब्लम है, जब आप कितने साल के थे तब हुई आपको?
0: ऐसा बताया जाता है कि जब मेरी आंखें को खराब हुई, यानी जन्म से मेरी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी।
1: अच्छा।
0: और करीब 2.5-3 साल के आसपास कुछ कभी ऐसा एक दिन देखा गया कि मुझे कुछ भी चीज लेने को बोला जाता, जिस दिशा में वो चीज होती उससे मैं विरुद्ध जाता, या कुछ ऐसा यानी जिससे तारतम्य न बन पाए कोई वस्तु का और मेरा, ऐसा कुछ बिहेवियर मेरा नजर आया
1: जी।
0: और फिर बाद में वहां के लोकल डॉक्टर के पास ले गए तो ऐसा कुछ आंख में सफेद सफेद जैसा दिख रहा था। उसके बाद हम कानपुर वगैरह गए तो वहां पता चला कि ये आंखों का कैंसर, इसको रेटिना ब्लास्टोमा बोलते।

0: मैं, मेरा भाई, मेरी एक छोटी बहन, वो सभी गुजरात में ही पले बड़े हुए हैं।
1: और आपके परिवार में तो नहीं किसी और को ये समस्या आंखों की?
0: मम्मी की दृष्टि थोड़ी कमजोर है एक आंखों से, बाकी वैसे तो किसी को वैसी समस्या नहीं है। ये बताते हैं कि ये कहीं पुश्तैनी ही हो सकता है, ये रेटिना ब्लास्टोमा पहले की 7 पीढ़ियों में कहीं भी हो सकता है, और
1: अच्छा,
0: कहाँ रहा होगा पता नहीं है।
1: पता
0: लेकिन
1: नहीं। राइट, हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं, मुद्दे की बात पर भी आ जाते हैं। जरा आप दोनों का मिलने का जो कार्यक्रम है वो किस तरह हुआ?
0: उसके बारे में रमा जी पहले बताएंगे, फिर मैं थोड़ा बताऊंगा।
1: चलिए चलिए। जी, तो
2: बंगाल में जॉब कर रहे थे, तो उस टाइम में मेरे भाई ने मतलब घर में ये कहा था कि इस तरीके से कैसे रहना चलेगा, मतलब अपने खुद के पैरों पे खड़ी हो चुकी है, तो अब समय तो है कि अब हम इसका अच्छी जगह पर रिश्ता कर दिया जाए।
1: जी,
2: तो
1: जी।
2: मैंने यही कहा था अपने घर में कि कहीं भी करें, लेकिन पहले तो सोचती थी कि मैं फुल्ली साइड से करूंगी या जो भी है,
1: जी जी
2: तो
1: जी
2: लेकिन
1: जी
2: बाद में जब हम विंध्याचल टेस्ट देने गए थे तो वहां सबने बोला भूल के भी ये भूल मत कर, क्योंकि कोई तकलीफ पड़े तुझे बाद में पछताना पड़े कि तू जैसा सोचती है ऐसा नहीं होगा, या तुम अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर अब ब्लाइंड से करूंगी,
1: आपके
2: पार्शली से तो
1: साथियों
2: मुझे
1: ने आपको
2: करनी ही
1: ये
2: है।
1: आपके साथियों ने ये समझाया आपको कि
2: जी सर।
1: आपको विवाह आपके जैसे व्यक्ति से ही करना चाहिए?
2: नहीं हाँ, मतलब उनका यही था, पार्शली से क्यों नहीं सोचती। नहीं,
1: अच्छा,
2: मैंने कहा या तो फुल्ली साइटेड से करूंगी या फुल्ली ब्लाइंड से करूंगी,
1: गुड।
2: लेकिन मैं पार्शली से मैं नहीं करूंगी।
1: जी,
2: तो फिर यही बात रही, तो मैंने कहा ठीक है, अगर नॉर्मल से ऐसा है, कहीं किसी का एक्सपीरियंस रहा होगा हमें
1: बिल्कुल
2: नहीं
1: सही है।
2: पता, अगर तो
1: जी जी जी
2: ठीक है, तो फिर मैं ब्लाइंड से ही करूंगी, मैं पार्सली से तो नहीं करूंगी,
1: जी
2: क्योंकि होता है ना कि थोड़ा बहुत किसी ना किसी चीज में ऐसा, जब नॉर्मल से उन्होंने मना कर दिया तो फिर मन में ये आ जाता है। तो फिर उसके बाद मेरे जो दीदी है, बड़ी दीदी, उनके घर के पास मेरी सास की भतीजी रहती है, तो उन्होंने पहले भी शायद कभी बात की होगी, मुझे नहीं पता चली। उस टाइम में फिर यही बात चली थी कि हम, मेरा एक भाई है अहमदाबाद में है, तो आप उनसे बात कर लीजिए अगर आपकी बहन को ब्लाइंड से शादी करनी है। तो फिर मेरे फादर आए और एक ही दिन देखा, उन्होंने स्कूल विस्कूल भी देखने गए थे इनका, और फिर उन्हें ठीक लगे तो फिर बस उन्होंने तय कर दिया। फिर मेरी उस टाइम तक मुझे कुछ पता नहीं था, फिर अगले 7-8 दिन के बाद हम लोगों ने, वो भी इन्होंने फोन नहीं किया था, मुझे ही फोन करना पड़ा। मैंने कहा ऐसा है कौन जिससे
1: ये पहल आपको करनी पड़ी है।
2: जी सर, मतलब मेरे देवर की शादी पहले हो चुकी है
1: जी।
2: जो अब नहीं है, और वो एक्सपायरी भी मेरे आने से पहले ही हो चुके हैं,
1: ओ
2: लेकिन उनका परिवार है, बच्चे
1: अच्छा,
2: हैं, सब है, क्योंकि काफी जल्दी उनकी शादी हो गई थी। तो
1: ओहो अच्छा,
2: मेरे देवरानी ने मुझसे एक बार बात की थी कि नंबर वाला नंबर ले लो या दे दो कुछ, तब इन्होंने नंबर बताया था, तो मुझे नहीं पता ये कौन है। मैंने कहा खाली नंबर ले लिया, याद कर लिया बस। लेकिन फिर 8 दिन 7 दिन तक कोई फोन ही किसी का नहीं आया। अब मैंने कहा जब नंबर मुझे दिया ही है तो मैं एक बार फोन तो करके देखूं ये है कौन जिससे मेरी बात चल रही है। फिर
1: तो
2: मैंने,
1: आपके मामले में तो ये हुआ कि भाई तय पहले हुआ और बातचीत आप लोगों की बाद में हुई, क्यों?
2: जी सर।
1: अच्छा, तो आपका तो ये विचार चल रहा था साइटेड का, और फिर आपके दोस्तों ने आपको समझाया, लेकिन इस बीच में आपके घर वाले विवाह के लिए तो सोच रहे थे, लेकिन किससे करना है उस बारे में घर वालों की क्या राय थी, आपके मम्मी पापा या भाई वगैरह की?
2: घर वालों की तो एक राय ये थी कि मेरी दीदी एक बहुत हमारे घर के पास ही रहती है, और उनके एक देवर हैं थे उस टाइम में, तो अभी भी हैं, उन्होंने ये सोचा था कि उनसे इसका विवाह कर दिया जाए।
1: अच्छा, वो साइटेड थे?
2: जी हाँ, वो साइटेड हैं, और मतलब देखने देखने में भी काफी अच्छे हैं।
1: जी,
2: तो फिर लेकिन मैंने कहा जब, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई तो है नहीं ना, 10th 12th है जो भी है,
1: बस
2: तो
1: वही
2: मेरे
1: बात।
2: को फिर इस चीज से क्या फायदा जब मुझे काम अपने करवाने दूसरों के पास जाना पड़े,
1: जी
2: कुछ भी लिखाई किए पढ़ाई किया जो भी है।
1: जी
2: तो फिर बात तो वही आई जाए, मैंने कहा अच्छा, तो मुझे ब्लाइंड से पढ़े लिखे ब्लाइंड से करूंगी, तो काम मेरे सही हर तरीके से होते रहेंगे और हम लोग
1: सही
2: एक
1: बात
2: दूसरे
1: है।
2: को समझ सकेंगे। तो फिर इसलिए मेरे मदर फादर ने मेरी बात सुन ली और फादर आए, देख के गए।
1: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि फादर ने हमेशा आगे बढ़कर के आपकी सभी
0: इन्होंने भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं
1: इच्छाओं का सम्मान किया और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके आप भी आगे

0: बढ़े जी त्रिपाठी
1: मैं जब स्कूल
0: जी
1: जाने लगी थी स्टार्टिंग में, जब छोटी थी,
0: जी
1: बहुत तीन
0: जी
1: या 4 साल की थी, उसी
0: जी
1: टाइम में हॉस्टल में था, तभी स्कूल ले गए थे। तो मेरी मम्मी तो रो रो के बीमार हो गई थी, नहीं जाने दूंगी।
0: अच्छा
1: फिर मेरे फादर ने ये कहा कि अगर इसे हम नहीं जाने देंगे तो घर
0: जी
1: में कब तक ये रहेगी और सब बहन भाई पढ़ेंगे, ये फिर बाद में बोलेगी इनको पढ़ाया मुझे नहीं पढ़ाया,
0: मैं बिल्कुल
1: और
0: सही
1: फिर ये
0: कहा
1: अपने
0: जी।
1: पैरों पे कैसे खड़ी हो पाएगी, किसके भरोसे रहेगी।
0: ठीक बात है
1: फिर भी
0: जी।
1: मेरी मम्मी बीमार पड़ गई, तो मेरे भैया के साथ मम्मी को गाँव भेजा, उसके बाद मेरे फादर मुझे स्कूल में छोड़ के आए।
0: हाँ, क्योंकि देखेंगी नहीं तो फिर ज्यादा चिंता नहीं होगी।
1: जी
0: जी जी जी वाह, बहुत
1: इस
0: जी
1: तरीके से
0: फादर आपके
1: स्कूल
0: बहुत ही
1: की।
0: प्रोग्रेसिव विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं।
1: जी सर, उन्होंने सबको, मतलब हम बहने 6 हैं, मैंने आपको बताया,
0: जी
1: मैं पहले ही बताया, 2 बहनों को छोड़ के बाकी सबने ग्रेजुएशन कर ली।
0: वाह बहुत खूब।
2: ये बोलते हैं ना, कोई हसीना पहले कदम बढ़ाती नहीं। अब ये अब उनकी क्या मजबूरी है वही जाने, वो मजबूरी दिल पे ना हो तो। लेकिन 7 दिन बाद हमारी बातचीत शुरू हुई, फिर तो हमें वो 900 रुपया 1100-1100 रुपये के अनलिमिटेड वाले वाउचर करवाने पड़ते थे, और काफी रात को,
0: जमाना वही
2: यानी
0: था जी।
2: हाँ, यानी 2:30-2:30, 3 3 बजे तक बातचीत होती थी, और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन पहले यानी मेरा मेरी सोच ये
0: लेकिन
2: थी कि
0: त्रिपाठी जी,
2: मुझे
0: प्रश्न तो ये उठता है ना कि आपने क्यों नहीं पहल की
2: नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न जरूर होना चाहिए, हर एक किसी को ये प्रश्न जरूर होना चाहिए।
0: जी।
2: मैं पहले ऐसा सोचता था कि मुझे खुद को शादी नहीं करनी, और मैं यानी थोड़ी धार्मिक प्रकृति में उस तरफ मेरा ज्यादा ध्यान था, काफी
0: अच्छा
2: मैं,
0: अच्छा
2: हाँ तो उसी में, हाँ लेकिन इतना तय था, मैं शादी करने की ज्यादा सोचता नहीं था। लेकिन यदि
0: अच्छा
2: जब यदि करनी ही होगी तो मैं किसी साइटेड से या पार्शली ब्लाइंड से, यानी आंशिक दृष्टि वालों से, किसी से मैं शादी नहीं करूं। यदि करनी है तो मैं ब्लाइंड से ही शादी करूं, इतना जरूर तय था।
0: वाह, ये
2: तो
0: बहुत
2: जब इन्होंने प्रयास शुरू किया तो
0: को नहीं
2: बनने
0: लगता कि
2: लगा।
0: आधा काम तो वही खत्म हो जाता है कि हम ये तय कर लें कि हमें निर्णय क्या लेना है कि
2: हाँ
0: वहां
2: नहीं
0: जाना है
2: बिल्कुल,
0: नहीं।
2: वो मैं जब से मैंने अपनी यानी सोच संभाली है तब से मैं बिल्कुल स्पष्ट था कि
0: जी
2: मुझे किसी ब्लाइंड के तरीके से साथीदार मिले तो मुझे कुछ ज्यादा खुशी होगी। तो उस तरीके से मुझे मिला, तो बीच में थोड़ा नोकझोंक भी हो गई थी एक बार, यानी मैंने पूरा ये बताया कि भाई मेरा निर्णय ये है, तो मैं वैसे तो शादी तो करना ही नहीं चाहता हूँ।
0: जी
2: तो फिर इन्होंने कुछ, यानी हमारी 4-5 दिन बीच में बात नहीं हुई,
0: जी
2: फिर फोन से बात शुरू हुई, और हम लोग फिर, यानी ये करीब अगस्त सितंबर की बात है, और फिर अंततोगत्वा फरवरी में हमारी शादी हुई।
0: जी
2: काफी खुशी हुई। करीब 2100 किलोमीटर का फासला था, मैं अहमदाबाद में था, वो फरक्का थी, तो शादी करते ही फिर वो फरक्का पहुंच गई।
0: वो फर्क पड़
2: लेकिन
0: गया फिर
2: बिल्कुल लेकिन
0: फरक
2: इन्होंने भगवान की भी पिटाई नहीं छोड़ी। एक दिन
0: का।
2: यानी हम लोग यानी प्रयास करने लगे कि इनका गुजरात में ट्रांसफर करवाया जाए, तो काफी राजनीतिक वगैरह सब प्रयास करने थे। एक दिन इन्होंने गणेश जी की मूर्ति को काफी पीटा कि अब तो मैं घर के घर से बाहर रख लूंगी, मेरा कुछ काम हो ही
0: बताइए
2: नहीं। और
0: जी
2: यानी यानी काकतालीय न्याय हुआ,
0: जी जी जी
2: और
0: क्या बात है,
2: दूसरे ही
0: वाह,
2: दिन, हाँ दूसरे ही
0: सुनवाई
2: दिन
0: सुनवाई
2: उनके
0: तुरंत
2: यहाँ
0: हुई।
2: उनके ट्रांसफर की खबर उनको पहुंच गई।
0: हाँ जी जी नहीं,
2: तो
0: लेकिन विवाह से पूर्व मैम ने जैसा कि बताया कि उनके एक रिलेटिव ने आपके बारे में बताया, ऐसे ही आपके जहन में और आपके परिवार के जहन में भी तो तैयारियां तो चली रही होंगी।
2: हाँ यानी पापा जी आए थे, तो उन्होंने काफी दिल्ली से आए थे यहाँ, उन्होंने काफी जांच पड़ताल की थी, मेरे स्कूल तक आए थे, कहाँ से
0: आप लोगों
2: तनख्वाह
0: ने,
2: कैसे
0: मेरा मतलब ये
2: मिली।
0: था कि आपने भी कह
2: नहीं
0: रखा था
2: अच्छा
0: किसी से।
2: उसके,
0: हाँ
2: हाँ मैं वही कह रहा हूँ
0: जी।
2: कि हम लोग यानी एक तो क्या है कि ब्राह्मण है और रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज है हमारा,
0: निश्चित
2: तो दूसरी जगह तो हम लोग कुछ, क्योंकि ब्लाइंड में उस यानी समकक्ष मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है,
0: जी
2: तो सब लोग प्रयास में थे लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। फिर जब ये बात रिश्ता तय हुआ फिर हम लोग गए और ऐसे ही देखने गए थे इनको, रमा जी के घर वहां गए थे और उनको ऐसा था कि आज ही मंगनी वगैरह सब हो जाएगी। हम लोग तो देखने गए थे ऐसे ही, कुछ ऐसे कुछ प्रिपरेशन के साथ नहीं गए थे। और उसके बाद इनको बुलाया पापा ने, वो हमारी पहली यानी मेरी तो मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन मेरे पापा के साथ इनकी मुलाकात हुई दो एक मिनट की, और उसके बाद चलो ठीक है बहुत अच्छे हैं ऐसा करके वो ऊपर चली गई। तो ऊपर जाके इनको परिवार वालों ने पूछा कि भाई क्या कुछ हुआ, हाँ हाँ ऐसा ऐसी बातचीत हुई थी। तो फिर क्या, फिर मैं चली आई, असमंजस में पड़ गए, क्या हुआ ये, हम लोगों को बताया गया कि आप लोग ऐसे, मेरे पिताजी के पास तो वैसे कुछ था नहीं, तो कुछ उनके पास कैश या वैसे जो भी कुछ था, तो तुरंत ही उनको फिर से नीचे बुलवाया और तुरंत गोद भरवाई गई। शाम को जैसे दिन हमारा रिश्ता तय हुआ और फिर तो सब आगे बढ़ने लगा, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। पहली बार मैंने उनको एक ड्रेस भेंट की थी
0: जी,
2: यहाँ से यानी मुझे अपने स्कूल के कार्य के लिए कलकत्ता जाना हुआ था और उस टाइम पर वहाँ हड़ताल वगैरह भी हुई थी, तो हम लोग 300 किलोमीटर दूर रह गए थे मिलने से, लेकिन हम शादी से पहले रूबरू में तो नहीं मिल पाए। उसका हमें यानी बहुत उस दिन में बहुत रोया था, ये भी बहुत यानी दुखी थी, हम लोग रात को काफी देर तक उस दिन भी जागे थे, लेकिन हम एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर ही रह गए। शादी के बाद ही वो जो फासला है वो हम दूर कर पाए।
0: जी जी जी जी जी जी जी। अच्छा त्रिपाठी सर, यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में कि आपकी नजर में दो लोगों को विवाह के बारे में सहमत होने के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है?
2: एक तो ये है कि हमारे जो सोच है एक दूसरे की सोच मिलनी चाहिए।
0: अच्छा।
2: और एक जीने का जज्बा होना चाहिए। मैंने एक चीज देखी है रमा जी में, मैंने बहुत अच्छे थे, उनका जीने का जज्बा बहुत ही जोरदार है। कुछ दो चार ऐसी मैं चीज बताऊं उनको, यानी शॉपिंग का शौक है तो शॉपिंग करने जाती हैं और मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन जो उनके जज्बे हैं, जो उनकी ऐसी यानी जो महत्वाकांक्षाएं हैं बहुत ऊंची हैं। कि एक बार ऐसी है कि मैं खाट पे बिछा बिछा के नोटों को गिनना मैं चाहती हूँ, यानी जितने मेरे पास पैसे आएंगे मुझे एक बार खाट पे बिछा बिछा के वो गिनने।
0: क्या बात है।
2: हाँ, और उन्होंने जो भी कुछ यानी जो भी कुछ सोचते हैं उसके पीछे पूरी तन्मयता से लग जाते हैं और वो उनकी आरजू पूरी भी होती है। हम इसी तरीके से, हमारे बच्चा भी नहीं था
0: जी।
2: लेकिन हमने सोचा और अभी हमारा IVF चाइल्ड है, 5 साल का, 5 साल की लड़की।
0: ये तो बड़ी बड़ी दिलचस्प बात बताई सर, मुझे लगता है बहुत सारे साथियों को भी प्रेरणा मिल सकती है इस बात से जो आपने कहा अभी अभी कि
2: हाँ बिल्कुल।
0: ये के बारे में बहुत सारे लोगों को मतलब पूरी जानकारी तो नहीं ही है एक तो, और दूसरा कहीं ना कहीं डर भी है लोगों के मन में।
2: हाँ, ये क्योंकि इसमें काफी यानी मेडिकली भी बहुत जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल ये सब इलाज बहुत महंगे हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं होती और एक शंका भी रहती है हमारे साथ कुछ धोखा हो जाएगा कुछ के कुछ ऐसा, और यानी अच्छा डॉक्टर नहीं मिला या कोई अच्छी सी प्रोसेस इसमें हम कामयाब ना हो पाए तो ऐसा भी हो जाता है। कई लोगों को ऐसा भी रहता है कि किसी दूसरे का गर्भ हमारे में रख दिया जाएगा या अदल बदल हो जाएगा।
0: तो ये सबसे बड़ा ये
2: ऊपर पिक्चर भी बहुत बनी है।
0: एक तो सर सबसे बड़ा ये है जो अभी आपने कहा, दूसरा ये भी रहता है कि शायद बच्चा कुछ विकृत हो सकता है जन्म के समय। भावना होती है,
2: वो भावनाएं रहती है। और हमारे केस में तो ये भी है कि इनका करीब करीब अभी भी रोज का 160 किलोमीटर का अप डाउन है
0: जी।
2: तो आना जाना सब मिला के वहां का जो गिन लिया जाए तो 360 किलोमीटर का अप डाउन उनका डीबी का है
0: जी।
2: और उसके बाद ये प्रेगनेंसी कंसीव करवाना ये बहुत ही अपने आप में काबिले तारीफ यानी प्रयास माना जाए।
0: वाकई में सर बहुत मतलब जज्बे वाली जो बात आपने कही मैम के बारे में वो शत प्रतिशत साबित होती है इस घटना से।
2: बिल्कुल, और वो जो ठान लेती हैं वो करती हैं। हाँ, हमारे पास यानी हम एक मंदिर में गए थे, यानी हम लोग क्या करते थे यानी जो
0: जी, मैं चाहूंगा कि एक एक दो दो सेंटेंस में अगर आप IVF के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं तो उनकी बहुत सारी जो गलत फहमियां हैं वो एक तो दूर होंगी और कई लोग मुझे लगता है आपकी इस कहानी को सुन करके प्रेरित होंगे।
2: IVF ऐसी एक ट्रीटमेंट है कि जिससे कहीं भी यानी स्त्री के ओर से या पुरुष की ओर से कहीं भी जो भी छोटी मोटी कमियां हैं वो चीजें बाईपास हो जाती हैं और जो प्रोसेस है गर्भधारण की वो एक ट्यूब में करवाई जाती है और उसके बाद वो स्त्री के जो गर्भाशय में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है।
0: जी,
2: तो ये करीब इस प्रकार की प्रोसेस होती है।
0: पूरा प्रोसेस कितने समय का रहता है सर?
2: 15वें दिन के आसपास वो स्त्री बीज निकाले जाते हैं, उनको पुष्ट करने वाले इंजेक्शन वगैरह यानी सब कुछ दिया जाता है,
0: वो सारी ट्रीटमेंट भी उन्हीं दौरान चलती रहती है। जी
2: हाँ, यानी हाँ वो बीज निकाल लिए जाते हैं, ट्यूब में रखे जाते हैं
0: जी।
2: और उसके बाद 5-1 दिन के बाद उसमें जितने भी फर्टिलाइज होते हैं उनको अलग रख दिया जाता है। तो दूसरे महीने यानी पूरे फिर 15वें मासिक से 15 दिन के बाद फिर उनका एक छोटी सी प्रक्रिया करके वो जितने यानी जो गर्भ हैं रहे हैं वो फ्रोजन करवा दिए जाते हैं। सामान्य तौर पर 1 साल तक वो फ्रोजन रखे जाते हैं, उसके बाद यदि आपको ज्यादा फ्रोजन करके रखवाना है यानी 1 या 2 आपने ट्रांसफर करवा लिए और आपके पास शेष रह जाते हैं तो वो आगे जाके भी आप उनको फ्रोजन करे हुए यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये सभी चीज के लिए अलग अलग पैसा वगैरह होता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है कि एक बार हमारा अच्छे 4-5 गर्भ हो गए हैं तो वो 2 या 3 या ऐसे साल के बाद भी ट्रांसफर करवाए जा सकते हैं।
0: और ये पूरी प्रक्रिया सर इसमें खर्च कितना लग जाता है पूरी प्रक्रिया में A to Z में मोटा मोटा अगर हम कहें अंदाजे से?
2: अधिकतर जगह पर पैकेज है।
0: अच्छा।
2: तो लोग पैकेज के अंदर जाते हैं तो लोगों को 9 से 10 लाख का पैकेज होता है, उसमें 2 ट्रायल 3 ट्रायल 4 ट्रायल ऐसे हम लोग देते हैं। वैसे देखा जाए एक जो सही अच्छे से ट्रायल हो जाए तो करीब 3-3.5 लाख में ये करीब हो जाता है आराम से। स्त्री की 40 साल की उम्र है तब तक ये करा लेना काफी अच्छा माना गया है, उसके बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा यानी रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है।
0: वाकई में सर आज का कार्यक्रम हमारे श्रोता इस IVF की जानकारी के लिए जरूर याद रखेंगे, ऐसी हम रेडियो मधुबन की तरफ से उम्मीद भी करते हैं।
2: एक चीज भी सर मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा
0: जी,
2: हम हमारे स्कूल में भी एक प्रोग्राम रखते हैं हर एक शनिवार को सुबह
0: जी,
2: और विद्यार्थियों से प्रस्तुतियां भी लेते हैं, हम गेस्ट को भी आमंत्रित करते हैं और उस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है शनि मंच। तो उसमें भी विद्यार्थियों को तवज्जो दी जाती है और उनके कार्यक्रम को यानी एक स्टेज आवंटित किया जाता है तो उनका स्टेज फियर भी कम हो सके।
0: बहुत बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, और ये बच्चों में क्रिएटिविटी जितनी डेवलप की जाए वो हमारे बहुत बढ़िया सर। मैं ये कह रहा था कि इस कार्यक्रम को इस जानकारी के लिए हमारे श्रोता तो याद रखेंगे ही। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने सभी बातों को दरकिनार करके ये कदम उठाया और उसमें आप लोग सक्सेसफुल हुए, और बिकॉज आपका जो जुनून है जो जज्बा है कहीं ना कहीं उसने भी किसी मेडिसिन से कम असर नहीं किया है, मैं सही कह रहा हूँ?
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जज्बा वाली बात तो हो चुकी, क्योंकि हम 4 ट्रायल करवा चुके हैं, जो पहले दूसरे ट्रायल में हमें पहले ट्रायल में सफलता मिली थी लेकिन वो काम नहीं आई, बच्चे की धड़कन नहीं आई थी
0: जी।
2: दूसरे में हमें सफलता नहीं मिली, फिर तीसरे में हमारी बच्ची हुई, हमें प्राप्त, हमने हॉस्पिटल चेंज किया, पूरे सभी पूरी प्रोसेस चेंज कर दी, और चौथी के लिए हम फिर गए, इस बार हमें आंशिक सफलता मिली, यानी फिर इस बार वही चीज हुई कि धड़कन बच्चे की नहीं आ पाई। अच्छा। लेकिन आज हमारे पास भी एक जरिया है, ईश्वर यानी आप सब की दुआ होगी और ईश्वर की इच्छा होगी तो हमें बच्ची का भाई या बच्ची की बहन प्राप्त हो सके।
0: निश्चित रूप से सर, ये हम सब दुआ करते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न जरूरी बन जाता है मैम के लिए भी, तो केवल एक प्रश्न मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा इस संदर्भ में। रमा मैम, तो एक महिला के नजरिए से, एक महिला की दृष्टि में ये सारी प्रक्रिया कितनी तकलीफ देह रहती है, अगर थोड़ा सा बताएंगे तो।
1: सर तकलीफें तो ये जो इंजेक्शन होते हैं जो रोज रोज दो, और किसी किसी की जो बहुत पुराने टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो लोग, वो तीन तीन इंजेक्शन भी देते हैं, जो हमें पहले दो ट्रायल में नहीं पता थी। इसलिए थर्ड में तो हम खुद वेबसाइट से सर्च कर करके हॉस्पिटल चेंज करके गए थे, तो ईश्वर ने हमारी सुनी। तो दो इंजेक्शन कुछ पेट पे देते हैं, एक बैक साइड में देते हैं, तो ये पेन उस टाइम में इतना नहीं पता चलता, लेकिन बाद में जब सर्दियां आती है जी। जो अभी तक भी मुझे होता है, सर्दियों में जैसी हवा चलती है मेरे दोनों पैरों में बहुत दर्द होता है।
0: तो इसका कोई आगे जाकर के कोई समाधान है मैम, कि जो ऐसा तो बॉडी पेन्स हैं वो कम हो सके?
1: अभी तक तो सर ऐसा कुछ नहीं पता चला, क्योंकि हम जो एक फिजियो तेल है वो मैं लगा लेती हूँ, इससे मुझे ठीक हो जाता है।
2: और विटामिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। और इनके बारे में एक चीज मैं बहुत ही अग्रेसिव होके बताना चाहूंगा सर, कि ये एक इंजेक्शन से भी डरती थी, एक इंजेक्शन लेना भी उनको यानी ना गवारा था, कोई भी गवारा नहीं होता था। और उस व्यक्ति ने, यानी मैं गिन लूं तो एक ट्रायल के करीब करीब 45 से 50 इंजेक्शन लेने होते हैं, तो हमारे तो चार ट्रायल हुए, तो आप यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बहादुरी इन्होंने बाद में दिखाई है।
0: ये सारी बातें भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि प्रक्रिया सुरक्षित है और अच्छी है, टेक्नोलॉजी का भी पूरा उपयोग होता है और आधुनिक तकनीकें बहुत विकसित हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक कुछ तकलीफें भी हो सकती हैं।
1: देखिए सर, पेन अब हम कहते हैं कि इंजेक्शन से दर्द होता है, लेकिन कभी कभी अपने आप भी अगर दर्द होने लगेगा आगे जाके एज में, तो उससे तो ये ठीक है ना कि हम कुछ पाने के लिए कुछ सहन कर रहे हैं।
0: ये बात बिल्कुल सही कही, और अल्टीमेटली परिवार के बारे में सोचना भी हम सबका दायित्व है। तो आपकी गुड़िया है मैम, आपने बताया
1: जी सर,
0: क्या नाम है गुड़िया का?
1: देवांशी।
0: देवांशी, तो वो एकदम स्वस्थ है बच्ची, बिल्कुल ठीक है।
3: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते देवांशी, नमस्ते, कैसे हो?
3: मैं अच्छी हूँ, पर मेरा असली नाम तो वो है
0: जी तो बच्ची एकदम खुश है, बच्ची को तो कोई ट्रीटमेंट किसी तरह का नहीं लेना पड़ता इस?
1: जी सर, उसके भी वैसे तो वो ठीक है, कुछ स्टार्टिंग में हमने चेकअप वेकअप करवा लिया,
0: वो तो जरूरी, वो तो चलिए जरूरी है। जी जी जी, ठीक बात है, वो ठीक है।
1: पावर की उसको थोड़ा चश्मा है अभी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: नहीं वो ठीक है, वो तो मैं तो मेडिकली वैसे पूछ रहा हूँ कि ओके ओके, चलिए ये बहुत अच्छी बात है, और देवांशी का भविष्य बहुत उज्जवल हो ऐसी हम कामना करते हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। जी
3: थैंक यू सर।
0: त्रिपाठी सर, एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी शुरू से ही, जब मैंने, मुझे नहीं पता कि रेडियो कार्यक्रम में मुझे ये बात पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए, जब मैम ने कहा, रमा मैम ने, कि आपके छोटे भाई,
2: हाँ जी,
0: उनका कम उम्र में ही देहावसान हो गया।
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: और उनका विवाह भी हो गया था।
2: हाँ बिल्कुल।
0: तो आप के परिवार के लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखदायी उसमें रहा होगा, लेकिन लेकिन पूछना मैं ये चाह रहा था सर कि जो उनकी वाइफ है,
2: हाँ जी,
0: उनके बारे में फिर आगे परिवार में किसी तरह का निर्णय लिया गया, या आपके यहाँ जैसा आपने कहा रूढ़िवादी हमारा ब्राह्मण परिवार है, तो जो है उसको स्वीकार करके ही रहा गया?
2: जरूर।
0: और कहीं तीसरी बात, किसी बोर्ड पर क्या ये बात भी आई इनका विवाह कर दिया जाए?
2: मैं स्वीकार कर लूं ऐसा उनका, वो ही आप पूछना चाह रहे हैं ना। ऐसा था कि जो मेरी भाई की मिसिस है वो मेरे बारे में अच्छी तरीके से एक तो जानती थी, दूसरी बात ये है कि सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर का संकोचन होने के कारण मेरे भाई को जान गंवानी पड़ी, वो उसकी कुछ आदतें ठीक नहीं थी।
0: अच्छा जी।
2: तो उसके कारण गंवानी पड़ी, तो बच्चे एक शायद 9 साल का था और एक शायद 7 साल का ऐसा था, उसी उम्र में गंवानी पड़ी। लेकिन रूढ़िवादी समाज हमारा होते हुए भी ऑप्शन दिए थे उनको कि भाई और हम मेरे भाई की जो मिसिस है उनके परिवार को भी बुला के हमने बिठा के पूरी डिस्कशन की थी कि भाई इनको यदि आप दूसरी जगह इनकी शादी करवाना चाहते हैं तो उसमें भी हम खुश हैं, बच्चे लेके जाएं तो भी खुश हैं और बच्चे हमारे यहाँ छोड़ जाएं तो भी हम खुश हैं और सभी परिस्थितियों में हमें खुशी होगी, हम यथाशक्ति हमारी भी मदद भी करेंगे उनकी शादी दूसरी जगह करवाने में। लेकिन वो कोई पक्ष उसमें राजी नहीं हुआ और अंततोगत्वा हाँ हमारे यहाँ वो है और काफी अच्छे तरीके से हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हाँ एक बात जरूर है जिनका इनको मलाल रहेगा कि यानी मेरे छोटे भाई की मिसेज थी, ये मैं बड़ा हूँ, बड़े आने के बावजूद उनको वो सम्मान जो बड़े का सम्मान होना चाहिए वो रमा जी को नहीं मिल पाया, वो एक कसक जो है वो भी शायद आपके दिमाग में प्रश्न रहा हो ये पूछने के
0: जी।
2: वो कसक एक है कि मुझे वो अमुक जो सम्मान मिलना चाहिए
0: दृष्टिबाधित होने की वजह से,
2: हाँ दृष्टिबाधित होने की वजह से ही वो सम्मान नहीं मिल पाया, वो हमें कबूल करना होगा, मुझे कबूल करना होगा, मैंने प्रयास भी किए लेकिन वो सम्मान भी नहीं, उन्हें जो तरीके से चाहिए वो नहीं।
0: हाँ, हाँ, बराबरी का जो हम कार्यक्रम में भी जिसकी बात करते हैं
2: बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं मिल पाया, वो उन्होंने यानी भाई की मिसेज उतने तक तो स्वीकार नहीं ही किया, तो ये बात भी है वो अपनी जगह है।
0: और मेरा प्रश्न वो भी था सर कि कहीं उनका देहावसान आपके विवाह से पहले हुआ था?
2: हाँ बिल्कुल मेरे विवाह से 3 साल
0: आपके
2: पहले।
0: आपके बारे में भी कहीं बातचीत हुई उनसे इस बारे में?
2: नहीं वो ऐसी कभी नहीं,
0: ऐसी परिस्थिति नहीं आई कभी,
2: ऐसी परिस्थिति नहीं आई क्योंकि वो मैं बहुत ही फर्म था ना, मैंने बताया कि मैं वो शख्स हूँ सर कि मैंने मेरी ससुराल में मैं पहली बार गया था जब इनको देखने के लिए हम लोग गए
0: जी जी,
2: तो वहाँ जाके मैंने 2 घंटे सुंदरकांड किया था शायद यहाँ किसी को बहुत अजीब लगे,
0: मतलब आप वहीं मिलने गए हैं लड़की से और वहाँ जाके सुंदरकांड कर रहे हैं।
2: हाँ जी तो उससे शायद आप अंदाजे लगा पाएंगे वो जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं
0: जी,
2: तो मैं मेरे
0: किसी की हिम्मत नहीं हुई ये बात पूछने की आपसे।
2: बिल्कुल
0: वरना रमा जी का क्या होता फिर है?
2: नहीं हम बहुत खुश हैं, हम एक दूसरे से मिलके बहुत खुश हैं, 14 साल हमारे कहाँ खेलते उठते बीत गए, हर एक चीज में मुझे साथ दिया है, सहकार दिया है, नोकझोंक होती रहती है ऐसा नहीं है।
0: ये बात भी बहुत जरूरी है जो विवाह वाला प्रश्न था उसके लिए कि दोनों के विचार और दोनों के ख्याल सब एक साथ मिलने चाहिए।
2: नहीं हमारा पुश्तैनी काफी कुछ है लेकिन करीब विवाह होने के 3-4 महीने के बाद से ही हम लोग और उसके यानी इतनी फैसिलिटी हमने कुटुंब की कुछ परिवार की यूज की ही नहीं, हम अपने पैरों पे खड़े हैं, जितना भी किया है हमने अपने पैरों पे किया है, तो वो भी हमारे लिए एक यानी मिसाल मैं तो कह सकता हूँ, किसी के लिए भी हो सकती है, हमने अपने पैरों पे घर से कुछ भी लिए बिना अपना पूरा आशियाना बसाया है और हम अपनी जिंदगी जी रहे।
0: बहुत बढ़िया, तो कार्यक्रम तो लगभग अब अंतिम पड़ाव पर है लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आप दोनों के साथ में, आप दोनों की जो आपसी समझ आपसी तालमेल वो लाजवाब किसी के लिए भी सीखने के लिए बहुत जरूरी है।
2: हमारे मैंने ऐसा देखा है सर के जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनकी यानी दोनों यानी पति पत्नी ब्लाइंड है तो उनकी समझ काफी अच्छी होती है और उनके बच्चों की परवरिश भी काफी अच्छी होती है, ऐसा मैंने यानी ये मेरा दर्शन है, उसका शायद मैंने कोई सर्वे तो नहीं किया लेकिन काफी कुछ ऐसा थोड़ा जो अनुभव किया है तो वो हमारे बारे में भी उतना ही सटीक बैठता है, तो हम दूसरे को इतना यानी मेरे किसी भी चीज के बारे में हम दोनों इतनी जानकारी मेरे बारे में वो उनके बारे में कि कोई भी फोन आ जाए या आप किसी कोई भी फोन कर दे और एक या दूसरा आदमी उठा ले तो वही उतनी ही शिद्दत से आंसर मिलेगा सामने वाले को जितनी शिद्दत से मैं उनके बारे में देना चाहूंगा या वो मेरे बारे में, तो उतनी ही शिद्दत से वो आंसर मिलेगा, इतनी समझ हमारी।
0: क्या बात, बहुत खूब। रमा मैम
1: जी
0: आपसे भी प्रश्न रहेगा कि आप कितना खुश हैं
1: सर?
0: मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही आप भी बेबाकी से उत्तर देती हैं अपनी बात का
1: जी। ये तो सर मतलब सभी कहते हैं मैं फरक्का में थी, तो मेरे यहाँ सर मतलब जो हमारे साथ एचआर में है वो सब ये कहते थे कि हम सवाल पूछे पूरा करें उससे पहले रमा जी के होठों में जवाब आ। मैंने कहा सर ऐसे मत बोलिए, मुझे पता नहीं अगर आपको कुछ किसी को कुछ गलत लगे, नहीं गलत कुछ नहीं होता लेकिन आप एकदम स्पष्ट जवाब दे देती है।
0: जी जी जी जी जी जी, तो कुल मिलाकर के आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं?
1: हाँ सर मैं संतुष्ट हूँ।
0: वाह बहुत खूब। और चलते चलते हमारे सुनने वालों को रमा जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस मंच पर?
2: वो 90s के गीत बहुत पसंद करते हैं, तो शायद गीत के रूप में भी आप जवाब।
0: हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। जी नहीं नहीं, दो लाइन गुनगुना दीजिए, आपको त्रिपाठी जी की भी इच्छा है, त्रिपाठी जी की भी इच्छा है।
1: तो फिर वो वही गाना, उनको तो वो एक पुराना गाना गाने तो छोड़ देते हैं
0: जी,
1: लेकिन मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं कि हम इसी को अपना आगे चल के इसी के साथ हमें अपना जीवन बिताना है या
0: जी,
1: जो
0: जी,
1: तो उसके साथ मैं तो ये समझती हूँ कि फिर मिलने के जो जो तरीके है तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना ज्यादा हम मिलते हैं ना उतना ज्यादा ना मिले तो अच्छा है, मैं तो ये समझ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, यानी ज्यादा मिलने जुलने में समय बिताने की बजाय सीधा मतलब जो होना है वो होने देने की ओर
1: जरूरी लगता है उतना ठीक है, लेकिन मैं तो जो हमारे में हमसे हुआ है या भगवान ने कर के उससे, क्योंकि देखिए कलकत्ता तक आए फिर भी हम नहीं मिले, वो भी जा सकते आ सकते थे फरक्का, मैं भी जा सकती थी
0: बिल्कुल,
1: लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, तो मैं तो इसमें भी कुछ अच्छा ही समझती हूँ। तो बाद में मिले हैं एक दूसरे से, बातचीत भी बाद में, बातचीत तो ठीक है फोन में करते ही थे, लेकिन फिर भी साथ बैठ के नाश्ता करना खाना पीना कुछ तो कभी तो बनता है, लेकिन जो आजकल होता है, लेकिन हम हमारा ऐसा कुछ रहा नहीं, तो फिर भी हम काफी खुश हैं। तो ऐसे भी एक दूसरे के बारे में जान जाए इतना ही तो चाहिए, तो किसी भी तरीके से जाना जा सकता है।
0: वाह बिल्कुल। तो त्रिपाठी जी चलते चलते आप भी हमारे श्रोताओं को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे बता दीजिए।
2: नहीं मैं तो यही चीज कहना चाहूंगा कि आदमी को यानी इतनी खुशी से यानी जीवन व्यतीत करना है तो उनके जो संबंध हैं जहां भी, तो उसका उसकी सोच उसके लिए समय निकालना उसके लिए प्रयास होना, हर एक अपने जीवन संगिनी के लिए उसका बच्चों के लिए उसके उसके लिए भी यानी आपके पास एक अलग बैलेंस होना जरूरी है, समय का बैलेंस होना जरूरी है, संस्कारों का बैलेंस होना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें एक मौका मिला है, तो एक आज ही मैं सुबह एक प्रोग्राम में था तो एक बहुत ही अच्छी लिंकन साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पढ़ाया जाए किसी को तो वो रुजुता से पढ़ाया जाए, तो हम वो जीवन में वो चीज उतार लें कि रुजुता से हम अपने जो संबंध हैं किसी के भी साथ जो हमारे संबंध पनपते हैं तो उन्हें इतनी रुजुता से पनपाया जाए तो हमें संसार बहुत ही अच्छा लगेगा, जीने लायक लगेगा, और जो शिकायतें हैं वो थोड़ी कम हो पाएंगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि संबंधों की रुजुता होना, संबंधों में रुजुता बनी रहे, ये मेरे ख्याल से जरूरी है, और उस समय की शायद मांग भी है क्योंकि इतना आज वो नहीं।
0: जी जी बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। और श्रोताओं तो आपने सुना आज सुदीप सर और रमा मैम को, और अगर IVF के बारे में आप लोगों के मन में और कोई कंफ्यूजन है या आपका लगता है कि कोई सवाल छूट गया है, तो आप लोग आगे अगर हमारे दोनों मेहमानों से किसी तरह का गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग क्लब या रेडियो मधुबन में संपर्क करें, हम जरूर सुदीप सर तक आपकी क्वेरी को पहुंचाएंगे और बल्कि सुदीप सर से आपका संपर्क भी करवाएंगे। ये बात मैं उनसे बिना पूछे ही बता रहा हूँ, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हम
2: हमेशा तैयार रहते हैं कि जो हमने अर्जित किया है वो बांटा
0: जी,
2: जाए।
0: जी, जी, जी,
2: हमारे गुजराती में यहाँ एक कहावत है, गमतानो करिए गुलाल, यानी जो हमें चीज अच्छी लगती है वो बांटने में बहुत खुशी होती है।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूब सर। जो अच्छी लगती है चीज वो हमेशा सबके साथ बांटी जाए। अगर ये कार्यक्रम भी आपको अच्छा लगता है तो औरों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो सुदीप सर और रमा मैम, आप दोनों का एक बार फिर से रेडियो मधुबन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये अवसर दिया सबसे मिलने का, और ये अवसर के लिए। और ये सभी चीजें यानी काफी बहुत ऐसा होता है कि इतने डीप में बात नहीं की जा सकती ऐसे प्रोग्रामों में, लेकिन ये जरूरी होती है। तो शायद किसी को भी
0: जी
2: मार्गदर्शन मिल सके, तो इस ख्याल से भी आपने जो प्रयास किया है वो भी वंदनीय है, सराहनीय है। आपको भी हमारी सबकी ओर से, हमारे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चलिए धन्यवाद सर। तो श्रोताओं सुनते रहें रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, और मुस्कुराते रहें हमेशा हर दिन हर पल। और क्या कर सकते हैं, रेडियो मधुबन का ऐप जरूर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रेडियो मधुबन को सातों दिन 2400 घंटे 365 दिन अगर सुनना चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और रेडियो मधुबन के नाम से आप ऐप ढूंढ करके इंस्टॉल कर लें। आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in पर करें, और अगर कॉल करना चाहें तो 9414151415 आपका इंतजार हमेशा करता रहता है। मिलते हैं श्रोताओं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।
4: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूँ, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माँ खायू, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रितु श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। और बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि मैं आपके साथ प्रोग्राम में मंडे आपको टाइम दे सकती हूँ, तो वो समय आ गया है और आज हम लोग रितु जी को सुनेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग किस विषय को लेकर बात करें, विषय तो बहुत रहता है, लेकिन फिर भी आज हम लोग जिस विषय को लेकर बात करेंगे वो विषय है खास लैंग्वेज में कैसे हम अपना करियर कर सकते हैं, इस विषय को लेकर हमसे बात करेंगे। वैसे आपने ऑल इंडिया रेडियो में भी अपनी सेवा दी है, मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी आपने हासिल की है और बहुत सारी चीजें आपने की अपने पास रखी है संजो है तो हम लोग धीरे धीरे जो है आपके पिटारे में से कुछ चीजें निकालने की कोशिश करें और बड़ा अच्छा लगेगा हमारे सभी विशेष श्रोता मित्रों को भी। आपने एमए इंग्लिश में किया है, एमए मास कम्युनिकेशन में किया है, बीएड नेट आपने किया है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और सीओपी इटालियन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इग्नो से भी आपने किया है। अभी वर्तमान में आप केंद्रीय विद्यालय में एज ए इंग्लिश प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में आपका इन चंद तालियों के साथ। रितु जी नमस्ते, कैसे हैं?
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी जी जी। और इसके साथ में हमारे एक और मेहमान है, गेस्ट हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में, आप उन्हें भी स्क्रीन पे देख रहे हैं। कावला जी, आप गुजरात सूरत में एकेडमी चलाते हैं बच्चों के लिए, विशेष डांसिंग मॉडलिंग और भी बहुत सारी चीजें आपसे सुनेंगे हम लोग थोड़ी देर में। तो आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। नमस्ते हरि। चलिए अब बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और आशा करूंगा कि आप सभी को अच्छा फील करेंगे आप। और कुछ सवाल या कुछ पूछना हो तो जरूर कमेंट सेशन में आप यूट्यूब में आप अपना नाम डाल के, नाम लिख कर अपना क्वेश्चन जरूर पेश कर सकते हैं। पूना से मानसी जी ओम शांति लिखा है, अभी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। मानसी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आइए रितु जी से मैं जोड़ना चाहूंगा। रितु जी वर्तमान में आप अपने बारे में बताइए, कहाँ पर क्या कर रहे हैं। जी
1: जी हाँ, मैं धन्यवाद रमेश जी। सबसे पहले वर्तमान में मैं दिल्ली में हूँ और केंद्रीय विद्यालय में हूँ, अंग्रेजी की शिक्षिका हूँ। और वैसे मुझे 17 साल हो गए ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए और अभी भी मैं एज ए पैनलिस्ट वहां पर हूँ और एज एन इंग्लिश न्यूज ब्रॉडकास्टर मैंने काम किया है और अभी भी कभी कभी करती हूँ जब व्हेनेवर आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। और इसके अलावा मुझे लिखने का शौक है तो काफी जगह छपती भी रहती हूँ, कविताएं भी हैं इंग्लिश और हिंदी, इन बोथ द लैंग्वेजेस आई हैव बीन राइटिंग, आर्टिकल्स भी लिखती हूँ और पोर्टल्स में भी है और मैगजीन्स में भी है, न्यूज़पेपर्स में भी है। तो भाषा से मेरा बहुत जुड़ाव रहा है, चाहे वो दो इंग्लिश हिंदी कोई भी भाषा हो, क्योंकि मैं हिंदी बेल्ट की हूँ तो हिंदी डेफिनेटली मेरी मातृभाषा है। तो मुझे तो उस पर बड़ा गर्व होता है कि अगर मुझे लगता है मेरी अगर मैं इंग्लिश में लिख पाती हूँ तो वो इस वजह से क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी है। तो मेरा यही मानना है कि अगर किसी व्यक्ति की एक भाषा अच्छी है तो शर्त यह उसकी दूसरी भाषा भी अच्छी ही होगी। तो पहले हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी एक भाषा को अच्छी कर लें। तो
0: बिल्कुल
1: यही भाषा से मेरा जुड़ाव रहा और इसी वजह से शायद मैं इसी प्रोफेशन में हूँ। ऑल इंडिया रेडियो में भी इसी वजह से रही, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग विद द वर्ड्स एंड हियर आल्सो आई एम डूइंग द सेम।
0: चलिए, शब्दों से खेलना आ गया तो फिर क्या बात है ना, तो वो फिर किसी भी जगह पे जाएगा तो अच्छा ही करेगा। तो निश्चित तौर पे आप अच्छा कर रहे हैं और अभी इंग्लिश आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो रेडियो से डायरेक्ट टीचर का जो रोल है वो ऐसा क्यों किया आपने, रेडियो तो और अच्छा था।
1: हाँ देखिए, ये तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, मतलब क्या कहा जाए, तो मतलब मैं आपको क्या सच्चाई में आपको क्या बताऊं कि पूरा रेडियो है वो ऐसे जो पैनलिस्ट के ऊपर ही मैक्सिमम हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ही होता है। तो बहुत मैंने रैटिक आवर्स में बहुत काम किया, देन आई थॉट यू नो टू गिव सम टाइम टू माय किड्स आल्सो। तो वहां पर मैं एज ए पैनलिस्ट रह गई और फिर मैंने इसको रेगुलर किया, क्योंकि आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग में जाना पड़ता है, शिफ्ट चेंज होती है बहुत ज्यादा, तो आप यू आर अनेबल टू गिव प्रॉपर टाइम टू योर किड्स। तो
0: बिल्कुल
1: इससे
0: बिल्कुल
1: मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे कुछ समय अपने बच्चों को भी देना चाहिए। तो इस वजह से मैंने एक रेगुलर टाइम का, जैसे एक होता है ना नेचुरल टाइम की, हम मैं सुबह गई और दोपहर में आ गई, आई एम विद द किड्स एंड देन होल ऑफ द टाइम, होल ऑफ द डे। और एज ए पैनलिस्ट मैं हूँ, तो जब जब वहाँ जरूरत होती है देन आई एम गेटिंग अ कॉल एंड आई एम डूइंग माई बुलेटिन। तो ऐसा नहीं कि कोई स्विच ओवर है, अभी मैं दोनों में ही, आई एम सेलिंग इन द टू बोट्स बेसिकली। जी सर।

0: हेलो, यस
1: जी।
0: जी सर, जी सर,
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। इस तरह से अलग अलग सरकमटेंस आती हैं, लेकिन फिर भी चीजें अच्छी हो जाती हैं जो आपने बताया। और मैं चाहूंगा कि जैसे लैंग्वेज की बात करें तो आजकल जैसे ना करियर की बात करें तो आईटी या कोई बड़ा फील्ड हमारे बीच में आ जाता है और हम करियर इन लैंग्वेज इस विषय को लेकर कभी सोचते ही नहीं। तो मैं चाहूंगा कि उस पर थोड़ा सा बताइए कि क्या लैंग्वेज सीखने के बाद हमारे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाती हैं और कहाँ हम लोग अच्छा कर सकते हैं, हमारे युवा साथियों की जरूरत है। जी
0: जी, देखिए लैंग्वेज में बहुत सारे करियर हैं आज की डेट में। और सबसे पहले बात तो ये कि अगर आपकी अपनी मातृभाषा जो है, आप उससे भी बहुत ज्यादा अपना करियर बना सकते हैं। टीचिंग में बना सकते हैं, आप एज एन इंटरप्रेटर बना सकते हैं, फॉरेन एम्बेसीज में बना सकते हैं, अगर आप अपनी हिंदी की मैं बात कर रही हूँ। और रिगार्डिंग फॉरेन लैंग्वेजेस है तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे स्कोप्स हैं। आप एकेडमिक में जा सकते हैं, यानी कि आप क्रैक पीजी कर सकते हैं, आप रिसर्च करके प्रोफेसर्स बन सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ सारी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, मैक्सिमम लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, यूरोपियन लैंग्वेजेस, इवन कुछ साउथ एशियन लैंग्वेजेस भी हैं, वो भी पढ़ाई जाती हैं। तो बहुत सारे लोग उसमें, बहुत सारे इवन हमारे कलीग्स हैं जिन्होंने रिसर्च वगैरह किया, नाउ दे आर टीचिंग इन द वेल रेप्यूटेड कॉलेजेस। अच्छा, दूसरा क्या है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर की पोस्ट बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन दिस इज वेरी मच हाई इन डिमांड। पार्लियामेंट से लेकर के एम्बेसी में लेकर के इनकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो बस इसमें ये रहता है कि मैंने जैसे बताया कि नंबर ऑफ पोस्ट आर ऑलवेज वेरी लेस, क्योंकि बहुत सारे इंटरप्रेटर्स तो होते नहीं है, दीज आर यू नो इन द लिमिटेड नंबर्स। तो बट इनकी वैकेंसीज आती है सर, पार्लियामेंट में भी आती है, एम्बेसीज में भी आती है, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। आपको शायद पता नहीं होगा, जब मैं लैंग्वेज सीख रही थी इधर जेएनयू में, तो मैंने देखा इंडोनेशिया भाषा, जेएनयू में एक इंडोनेशिया भाषा भी सिखाई जाती है। यूजली वी आर नॉट अवेयर,
1: अच्छा
0: उसका नाम ही इंडोनेशिया भाषा।
1: अच्छा
0: आप मतलब उस लैंग्वेज का भी आप देखिए, एंड देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यू नो हु वर परस्यूइंग दिस लैंग्वेज। तो आप ये देखिए उस भाषा का भी कितना स्कोप है। और चाइनीज
1: बिल्कुल
0: लैंग्वेज इनफैक्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग राइट नाउ, नो बिकॉज चाइना जैसे इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो वो भाषा भी लोग बहुत सीख रहे हैं बिकॉज ऑफ द आपका ये
1: बिल्कुल
0: प्रोफेशनल पर्पज से। तो सर
1: जी
0: लैंग्वेज का बहुत स्कोप है। और सबसे बड़ी बात, और एक और मैं कहना चाहूंगी, ये तो थोड़ा एकेडमिक और ये हो गया आपका, प्रोफेशनल हो गया। अगर आप राइटिंग में अच्छे हैं, रीडिंग राइटिंग में अच्छे हैं, तो सर यू कैन बी हायर्ड यू नो एज अ ट्रांसलेटर ऑल्सो।
1: बिल्कुल
0: जैसे साहित्य अकादमी है हमारा, वहां पर भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कई भाषाएं जानते हैं, और उन लोग को हायर किया जाता है सर। वो ट्रांसलेशन के लिए जाते हैं, जो बहुत रिनाउंड नॉवेल्स होते हैं, फिक्शन होते, बहुत सारा मटेरियल होता है जो ट्रांसलेशन के लिए जाता है। जैसे सपोज आप कोई रशियन नॉवेल हुआ जो बहुत फेमस है, आप लोग को हायर किया जाएगा, आप उसको ट्रांसलेट करिए, देन इट कम्स यू नो इंग्लिश में आप करिए या हिंदी में करिए, आप जिस भी भाषा में आप मतलब प्रोफिशिएंट हैं। डेफिनेटली अगर हम एक भाषा सीख रहे हैं तो हम दो भाषा का मिलान करके चलते हैं, जैसे इंग्लिश, जैसे रशियन
1: बिल्कुल
0: इंग्लिश, ठीक है, तो हमारी दोनों ही भाषा मजबूत हो गई, हमने रशियन से उसको ट्रांसलेट कर लिया इंग्लिश में, नाउ इट इज अवेलेबल टू एवरीवन। ठीक है, तो ये चीजें बहुत हाई डिमांड में है, लेकिन ये इसके लिए थोड़ा सा आपका जो डिस्पोजिशन होना चाहिए वो थोड़ा सा लिटरेरी होना चाहिए। तो और सबसे बड़ा तो ये है कि टीचिंग तो डेफिनेटली दिस इज एवरग्रीन प्रोफेशन, ये सब लोग कर सकते हैं। आप अपनी रीजनल भाषा को उसे देखिए, हमारी एनईपी जो अभी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी
1: जी जी
0: देखो
1: जी
0: मल्टीलिंगुअलिज्म को बहुत इन्होंने एम्फेसाइज किया है। अभी पहले हम क्या सोचते थे कि भाई एक जो नेटिव लैंग्वेज है वो एक हर्डल है फॉर द लर्निंग, बट अभी ऐसा नहीं सोचा जा रहा। अभी एनईपी में साफ लिखा है कि जो आपका रीजनल लैंग्वेजेस है, दीज आर नॉट द हर्डल्स यू नो इन योर लर्निंग। क्या ये एक आपका एक एक एनहांसिंग फैक्टर हो गया, मतलब अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तो आप इंग्लिश और अच्छे से सीख सकते हो। पहले हम बच्चे को ये था कि हम डायरेक्ट इंग्लिश सिखाना शुरू कर दे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैटर वेदर द चाइल्ड इज गेटिंग और नॉट। अभी तो ये नहीं, बच्चा मातृभाषा में पढ़ेगा, नो वरी। और ये सर इसका फर्क पड़ता है, मैंने देखा, मैं इंग्लिश टीचर हूं तो मैंने खुद देखा है कि बच्चा मातृभाषा में बहुत जल्दी समझता है, तो क्यों ना मातृभाषा के थ्रू फिर हम आगे बाकी भाषाएं पढ़ें, पहले मातृभाषा पढ़ें। जैसे देखिए आप बाकी देशों में, जापान में ही देखिए आप, रशिया में ही देखिए, इनका अपनी मातृभाषा को लेकर के ये लोग बाकी चीजें पढ़, जापान में तो बाकायदा इनकी एक सेल है जो पूरे जितना वर्ल्ड का लिटरेचर होता है, जितना वर्ल्ड का जितनी भी न्यू बुक्स होती हैं वो पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं जापानीज लैंग्वेज, देन इट कम्स टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द कंट्री। तो हमारी एनईपी भी सर इसी चीज को फोकस कर रही है, तो लगता है कि आने वाले समय में मतलब मैक्सिमम रीच होगा ये सारी जितनी भी बुक्स हैं, टेक्नोलॉजिकल है आपका, मेडिकल है या कुछ भी है, व्हाट एवर इट इज, सो इट विल बी इजीली अवेलेबल एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इवन इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री आई थिंक।
1: बिल्कुल बिल्कुल रितु जी, काफी अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से भी अपना करियर बना सकते हैं, और पढ़ाना आसान है लेकिन बस उसके लिए आपको जो है अच्छे थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। वो ट्रेनिंग तो आप कहीं से भी ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और अलग अलग भाषाएं हैं जो अगर हम लोग ठीक से समझ ले, जान ले, तो निश्चित तौर पर हम अपना करियर बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मानसी जी ने याद किया है और लिखती है यहाँ पर कि हेलो मैम, आई एम वेल एजुकेटेड, माई मदर बींग इन मराठी, बट आई स्केयर टू टॉक टू इंग्लिश विद जी।
0: नहीं, मैं मानसिक मैं जवाब देना चाहती हूँ। ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि इंग्लिश सीखने का सबसे इंग्लिश पता है आपको मानसिक बहुत ही बहुत सरल भाषा है, बहुत सरल भाषा है। अगर आप किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज को आप सीखें तो आपको लगेगा ओ ये कितनी कठिन है। क्यों? क्योंकि सारी यूरोपियन भाषाएं जो हैं आप देखेंगे वो उसमें जो पैटर्न है वो संस्कृत का है, और हिंदी जो है संस्कृत का बहुत ही सहज रूप है। तो हिंदी संस्कृत का सहज रूप है, और जो इंग्लिश है वो सारी यूरोपियन भाषाओं का सहज रूप है। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत आसान है, लेकिन हम ये अपना जो स्केयर है हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं मानसिक? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम डरते पता है क्यों है? क्योंकि वी आर इन लैक ऑफ वर्ड्स ऑलवेज। देखिए
1: जी
0: एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन की बातें मत करिए, हमारा तो आर कंट्री इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज। मैं रेडियो में हम लोग जब काम करते तो हम देखते हैं एक वेस्ट बंगाल से कोई हमारा डिस्पैच दे रहा है, कोई कोई साउथ से दे रहा है, और सबका अपना अपना रीजनल, सबकी अपनी इंग्लिश है। वी आर सेइंग कि ये साउथ इंडियन इंग्लिश है, ये गुजराती इंग्लिश है, ये राजस्थानी इंग्लिश है, ये नॉर्थ ईस्ट की इंग्लिश है, बट वी आर टेकिंग प्राइड इन दैट। वाई वी आर सेइंग सो? बिकॉज हमारा यही हमारा देश है, यही हमारा देश। तो एक्सेंट की बात हमें नहीं करनी है, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें पहले शब्दों को बटोरना होता है। तो शब्द मैं बिल्कुल आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप डेली एक कॉलम न्यूज़पेपर का जरूर पढ़िए, और डेली कोई एक न्यूज़ चैनल आधे घंटे जरूर देखिए। बस आप इतना करिए, यू जस्ट सी द चेंज विद इन अ वीक। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, यू डू दिस रिलीजियसली। जो भी आपको पसंद आता है, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर

0: घर के कोने में कुछ किताबें रखा करो, कभी कुछ पढ़ो कभी कुछ लिखा भी करो। ये मैं सबको कहना चाहती हूँ, सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं, आप लिखिए और फिर देखिए आपकी ताकत। एक्चुअली जब हम लिखते हैं सर तो हमारा माइंड बोलता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारा माइंड बोलता है, और एक समय ऐसा आता है कि आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपका पेन चलने लगता है, और वही समय आता है जब ये आपके मुंह में ये चीज आ जाती है, यू डोंट
1: बिल्कुल
0: यू दिस मीन्स कि यू डोंट हैव टू टेक ट्रबल, यू नो, जस्ट फॉर कलेक्टिंग द वर्ड्स, फॉर थिंकिंग एनी आइडिया और द कॉन्सेप्ट, यू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग आउट। तो ये तीन चीज मानसी आप करिए, और जो भी आपको वर्दी पर्सन मिले, चाहे अपने घर में है चाहे छोटे, उसके लिए उसके साथ 10-15 मिनट छोटे छोटे सेंटेंस बात करिए, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स बोलिए, सेंटेंस से बात सोचिए कि ये मेरा काम है, ये मेरा ट्यूशन है, दैट आई हैव टू डू, आई हैव टू गिव द ट्यूशन टू माई सेल्फ, एंड वंस यू विल सी द चेंज, आई एम गिविंग द गारंटी, यू जस्ट ट्राई इट एंड यू विल सी द चेंज।
1: चलिए ऋतु जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ये कैसे हम लोग अपने लाइफ में बदलाव कर सकते हैं। जैसे मानसी जी मराठी लैंग्वेज उनका मदर टंग है, तो इंग्लिश बोलने में उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, ये उन्होंने बताया। लेकिन निश्चित तौर पे कोई भी लैंग्वेज सीखने में आपको दिक्कतें, वैसे तो आप जब शब्दों का, जैसे ऋतु जी ने बताया, शब्दों को समझ लेंगे और उसको बटोरना शुरू करेंगे, जितना ज्यादा शब्द आपके पास आएगा उतना अच्छा आप बोल पाएंगे, शब्दों को आपको बढ़ाना होगा, है ना। वैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में लोग तब आएंगे जब उनके पास किताबें होगी, सिर्फ एक टाइप के नहीं अलग अलग टाइप के किताबें हो तो लोग ज्यादा आएंगे, है ना। तो वैसे ही आपके दिलो दिमाग में भी इंग्लिश के शब्द ज्यादा से ज्यादा हो और आप उसका इस्तेमाल करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर चीजें होगी। और आपको खाली बैठना नहीं है, आप अपने आप से भी बोलना शुरू करें, घर में भी बीच बीच में इंग्लिश को ऐड कर सकते हैं, तो इससे आपका डर निकल जाएगा। तो क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऐसा है, बिना प्रैक्टिस के किसको परफेक्शन मिलेगा नहीं। और जिंदगी क्या है, एक खेल है, ट्रायल एंड एरर, यही इसका जो विधि है वो है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी पैदा होते ही एक्सपर्ट आ गया, है ना। तो हर व्यक्ति को ट्रायल एंड एरर वाला जो मकसद है, इन चीजों को लेकर ही चलना पड़ता है, और इन्हीं चीजों से जीवन बनता भी है। अगर ट्रायल एंड एरर नहीं हो, कोई परफेक्ट ही आ जाए तो वो भी नीरस हो जाएगा। तो जिंदगी का एक खूबसूरत तरीका ये है कि सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, गलती करो, सीखो, आगे बढ़ो, है ना। तो ये चलता रहता है, इस चीज को अगर आप एक्सेप्ट कर लिया तो आपको सीखने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप डायरेक्टली परफेक्शन के बारे में सोचते जाएंगे और फेल होते जाएंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ऑलवेज राइट वे में सोचना जरूरी है, वे में थिंक करना जरूरी है, थोड़ा पेशेंट, मन घबराएगा थोड़ा सा कि अभी तक मेरे को इंग्लिश क्यों नहीं आ रहा है दूसरे की तरह। तो वो तो रहेगा, थोड़ा सा उसको पेशेंटली आपको हैंडल करना पड़ेगा, है ना। चलिए, हमारे साथ कुसुम जी मुंबई से जुड़ गई हैं, तो रितु श्रीवास्तव जी के लिए, हरी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत लेकर आएंगी, तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाइए, स्वागत है। जी
2: मैं
1: आपकी
2: ऑडिबल,
1: आवाज, यस यस, आप ऑडिबल हैं जी।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति जी।
2: ये अक्सर हम जब सवेरे, कई बार सवेरे उठकर मुझे ये गाना सुनना बहुत पसंद है, शायद कि आप लोगों को भी पसंद आए, भजन ही है लेकिन इस तरह का एक गाना है, आपके लिए कोशिश कर रही हूँ।
1: कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: परफेक्शन व्हाट यू सेड राइट नाउ दैट इज मेक द मैन परफेक्ट। ओके,

0: कुसुम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना है, तू प्यार का सागर। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ विशेष हरी चावला जुड़े हैं सूरत से। हरी चावला, बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए हमें।
1: थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इस काबिल समझा कि आपके इस पॉडकास्ट में हम आ सके। मेरा नाम हैरी चावला है, हम सूरत के उधना विस्तार में एसआर प्रोडक्शन नाम के इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जहां हम बच्चों डांस, एक्टिंग, मॉडलिंग, ड्राइंग इन सभी का प्रशिक्षण देते हैं, और हमारे यहां कराटे का भी सेक्शन चलते हैं।
0: अच्छा।
1: और हमारी ये जो संस्था है, ये पिछले 11 साल से हम यहाँ पर चला रहे हैं, और हम बेसिकली YouTube पर म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, और हाल ही में हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था पर्ची, और उसको मैंने ही लिखा था और उसको सूरत नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी मिला है।
0: अरे वाह
1: और
0: जी,
1: हम ऐसे छोटे मोटे शॉर्ट वीडियोस और म्यूजिक वीडियोस को बनाते रहते हैं सभी के लिए, और हमने बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है एज अ लाइन प्रोड्यूसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सभी काम हमने किए।
0: क्या बात, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अपना स्टूडियो बताइए, इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा बताइए हमें।
1: श्योर श्योर सर, मैं अभी अपने ऑफिस में बैठा हूँ, हमारे ये हमारा ऑफिस है, और आपको एक और चीज बता दूं, मैं ड्राइंग टीचर हूँ, तो मैं इस तरीके के स्केचेस बनाता हूँ, मैं स्केच आर्टिस्ट भी हूँ।
0: अरे वाह,
1: ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे कृष्ण भगवान की ये चित्र
0: जी जी
1: मैंने
0: जी
1: बनाया था।
0: अरे वाह,
1: हाँ, और ये हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये एडवांस बेच के हैं जो स्टंट की प्रैक्टिस करते हैं।
0: अच्छा।
1: और ये हमने जब हमारा जो लास्ट म्यूजिक वीडियो हमने किया था जरा सा, उसका पोस्टर है, ये हमने बच्चों के ऊपर शूट किया था जरा सा सॉन्ग। और ये हमारा डांस का बैच है, यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस चल रही है सभी बच्चों की। यहाँ पे डांस की सब हाय करो, सभी बच्चे हाय करो।
0: हेलो,
1: ये हमारे सर हैं बापी सर, ये हमारे बच्चों को डांस सिखाते हैं। हमारे मेरे जो सर हैं, जो हमारे सबके मालिक हैं, ये लोकेश सर।
0: अरे स्वागत है,
1: कल आपकी मुलाकात हुई,
0: कल मेरी मुलाकात हो गई थी।
1: इस तरीके ये हमारा क्लास है सर। प्रॉब्लम चल रहा है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अभी वापस जो है आपसे बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो का पूरा अवलोकन कराने के लिए, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें, बच्चों के साथ जितना जाते हैं।
1: खास बात मैं बता दूं, मैं आपको बता दूं, मैं राइटर भी हूं और एक्टिंग भी करता हूं, मैंने एक मूवी में, साइंस फिक्शन मूवी में एक्टिंग की है, और एंकर हूं, और सबसे अच्छी बात मेरे को ऐसा लगता है कि लोग मुझे जिससे जानते हैं, मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूं, बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करता हूं मैं।
0: क्या बात है, तो लगे हाथ एक दो मिमिक्री कर ही दीजिए, हमें अच्छा लगेगा।
1: ठीक है सर, मैं आपके लिए, आपके पॉडकास्ट के लिए एक मिमिक्री आपको सुनाता हूं। सबसे पहले हमारे बॉलीवुड के जाने माने जो कलाकार हैं, एक्टर नाना पाटेकर सर,
0: जी जी,
1: उनकी मैं थोड़ी गुस्ताखी करके एक नकल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, उनका क्रांतिवीर का जो फेमस डायलॉग है वो सुनाऊंगा, लाइटिंग का थोड़ा। ओके सर
0: जी,
1: ये ले हिंदू का खून, ये ले मुसलमान का खून, बताओ कौन सा हिंदू का, कौन सा मुसलमान का, जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो तू कौन होता है साले। ये सर
0: ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हमें।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: तो हरी, मैं चाहूंगा कि आप ये मल्टी टैलेंट कैसे सीखा, अलग अलग चीजें, डायरेक्टर का काम या फिर ये एक्टिंग का, मिमिक्री का,
1: देखिए
0: इतने
1: सर,
0: सारे
1: वैसे
0: काम।
1: तो मैं वैसे तो सर मैं आपसे काफी ज्यादा छोटा हूँ। मैं इतना कोई बड़ा नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कुछ। मेरी उम्र भी इतनी नहीं है, मैं खाली 24 साल का हूँ। और ये सभी चीजें जो है मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। चित्रकारी, जो कलाकारी जो है, वो मैं शुरुआत से जब स्कूल में था तब से ही मैं सीखते आ रहा हूँ और करते जा रहा हूँ। और अब मेरे को सौभाग्य मिला है कि मेरी ये जो कला है वो आने वाली पीढ़ियों को मैं दूँ और मैं उन बच्चों को भी सिखाऊं। और रही बात मेरे मिमिक्री कर सीखने की, ये सब करने की, तो मुझे शुरुआत से ही शौक था लोगों को ऑब्जर्व करना। मैं देखता था, जिन भी लोगों को देखता था तो मेरे को उनको ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता था कि ये इनके इनका किस तरीके का बोलने का तरीका है, ये किस तरीके से बातें करते हैं, कैसे इनके हाव भाव है, ये सभी चीजें मेरे को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मैं जैसे जैसे बॉलीवुड एक्टर्स को देखता था और वहां पे मैंने कुछ कॉमेडियंस को भी कॉपी किया, उनको देखा, तो मैं सोचा कि ये चीजें मैं भी कर सकता हूँ। तब तकरीबन मैं 10 साल का था, तब मैं ये सब चीजें करता था। तो वो प्रैक्टिस करते करते करते ये सब चीजें मैंने सीखी। और मैं आज अब हमारे लोकेश सर के साथ जुड़ा और इस क्लास में मैंने सब बच्चों को ये चीजें सिखाने का स्टार्ट किया।
0: जी,
1: तो ये मेरी जर्नी थी। और ये जो हमारी क्लास है श्री राशि प्रोडक्शन, ये हमारे लोकेश सर पिछले 11 साल से यहाँ पर चला उधना में। और इसी तरीके से ये डांस, एक्टिंग और मॉडलिंग हम लोग साथ में मिलके बच्चों को सिखाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और मैं चाहूंगा जिस तरह से आप काम कर रहे हैं बच्चों के साथ में, करते रहें और समय समय पर आपको याद करते रहेंगे हम लोग, और आपसे काफी कुछ सीखेंगे भी, जानेंगे भी। तो आइए फिर से मैं रितु जी को जोड़ना चाहूंगा। रितु जी, फिर से एक बार स्वागत है, और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में, जिस तरह से हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं या किसी चीज को सीखने के लिए थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चीजें भी हमारे साथ हो तो ज्यादा बेटर हम लोग सीख पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो एज ए लैंग्वेज सीखने के लिए टेक्निकल चीजें क्या होनी चाहिए हमारे पास में, वो थोड़ा सा बताइए।
2: हाँ
0: जी
2: रमेश जी, हाँ बहुत तो टेक्निकल चीजें आजकल तो बहुत ही मतलब हेल्पफुल हैं सीखने के लिए। बहुत सारे ऐप हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने जैसे खुद भी मैंने ट्राई किया, लेकिन ये ऐप आपको बहुत ही लिमिटेड चीजें आपको सिखाते हैं, मतलब बहुत बेसिक। तो वो बेसिक के लिए ठीक है, लेकिन आगे सीखने के लिए तो डेफिनेटली यू नीड अ फॉर्मल ट्यूटर। आपको एक फॉर्मल स्कूलिंग चाहिए, मतलब बेसिक के लिए ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐप देखे हैं, जैसे डियोलिंगो करके एक बड़ा पॉपुलर है, बहुत से लोग उसको ट्राई करते हैं। लेकिन एक मुझे लगता है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट यू नो फॉर अ फिजिकल टीचर। तो लैंग्वेज सीखने के लिए मुझे लगता है कि एक प्रॉपर टीचर या प्रॉपर एकेडमी या प्रॉपर स्कूल, ये बहुत जरूरी, बहुत फर्क पड़ता है सर उसका।
0: बिल्कुल
2: प्रोनंसिएशन में भी, राइटिंग में भी, प्रैक्टिस में भी, जो कि हमें ये ऐप, मुझे नहीं लगता ये ऐप करा सकते। हाँ आपको बेसिक, हाँ थोड़ा बहुत शब्दों की जानकारी आपको हो सकती, प्रोनंसिएशन आप सीख सकते हैं इनसे, बट नॉट द प्रॉपर थिंग आई थिंक। तो
0: जी।
2: वो कहते
0: अच्छा
2: हैं ना
0: रितु
2: कि
0: जी, मैं
2: टीचर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो थोड़ा मैं इस चीज को सपोर्ट कर रही हूँ, इस आइडिया को।
0: बिल्कुल बिल्कुल। रितु जी, एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे 17 साल आप ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, तो थोड़ा सा उसका भी अनुभव शेयर कीजिए कि कौन
2: हाँ
0: कौन से
2: बिल्कुल
0: कार्य
2: बिल्कुल। ऑल इंडिया रेडियो का अनुभव तो सर बहुत ही वाइब्रेंट, क्योंकि मैंने न्यूज रूम में काम किया, इंग्लिश न्यूज रूम में, तो
0: जी
2: बहुत ही
0: जी
2: वाइब्रेंट रहा। मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं बहुत, आई एम अ वेरी फॉर्चुनेट पर्सन कि मैंने बड़े बड़े मतलब बहुत वेटरन के साथ काम किया। मैं उस पीरियड में गई कि जहां पर वो एक होता ना पुराना लॉर्ड तभी काम कर रहा था, तो मुझे उनके साथ सीखने का बहुत मौका मिला। और मतलब ऐसे राइटर, ऐसे जर्नलिस्ट के साथ उस समय, क्योंकि जब मैं गई रेडियो में तो काफी कुछ टेक्नोलॉजी आ गई थी। जैसे मैंने 2006 में ज्वाइन किया था, तो बहुत कुछ नई चीजें आ गए थे, सॉफ्टवेयर आ गए थे हमारे। लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है जो जिन्होंने सब कुछ मैन्युअली किया है, जिन्होंने
0: अच्छा
2: हाँ जिन्होंने टाइपराइटर पर काम किया, इमिडिएटली उन्होंने बुलेटिन उन्होंने बनाया, न्यूज बनाया, हेडलाइन बनाया, लीड बनाई और तुरंत उसको ब्रॉडकास्ट किया। तो मुझे बड़ा सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का। तो उस समय तो सर बहुत ही कठिन होता था कि कुछ हुआ, ब्रेकिंग न्यूज हुआ, आप तुरंत उसको ड्राफ्ट बनाइए और तुरंत न्यूज रीडर को दीजिए, क्योंकि ऑडियो में सर क्या होता है, रेडियो में हमारे पास विजुअल बेनिफिट होता है। कहा जाता है
0: बिल्कुल
2: रेडियो
0: बिल्कुल
2: में, हाँ, 1 सेकेंड साइलेंस इज अ डेफिनिंग वन, कि अगर एक छोटा सा भी साइलेंस है ना तो वो आपको बहरा कर देगा रेडियो में। तो आपके पास
0: बिल्कुल
2: कोई
0: भाई साहब,
2: मेवे नहीं होता है, हाँ, तो आपके पास हर चीज तुरंत तैयार होनी चाहिए। तो अच्छा, और उस समय जो लिखने वाले लोग होते थे, मतलब उनका राइटिंग, उनका रिपोर्टिंग, मींस कि मैं तो उनके पेपर रखती थी, मैंने एक फोल्डर बना रखा, तो वो जो रिपोर्ट तैयार करती था,
0: बिल्कुल
2: वो कीप इन माय फोल्डर जस्ट टू सी हाउ दे हैव रिटन, इतना क्रिस्प, इतना कम समय में, क्योंकि 15 मिनट्स में आप एक मेजर बुलेटिन दे रहे हैं, और पहले तो मतलब तीन तीन पहले ही मेजर होते थे, अब तो 5 5 मिनट्स के बहुत सारे हो गए। लेकिन उस 3 मेजर बुलेटिन को सुनने के लिए लोग अपना रेडियो ऑन करते थे, वो अपनी घड़ियां मिलाते थे कि ये अच्छा ये मॉर्निंग का बुलेटिन है। तो उस पूरे संसार की न्यूज को इतना क्रिस्प कर देना, 15 मिनट में उसको प्रोड्यूस करना अलॉन्ग विद ऑल ब्रेक एंड अदर थिंग्स, तो मैं उनको बोलती थी 30 सेकेंड 35 सेकेंड्स में एक इतनी अच्छी रिपोर्ट तैयार कर देना कि उसमें सारी बातें हो जाए। तो सो दैट इज कॉल्ड कि ब्रेविटी इज अ सोल ऑफ माइंड, ये मैंने रेडियो से ही सीखा।
0: ओके बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए रितु जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और दर्शना जी भोपाल से जुड़ी हैं, वो भी रेडियो आर्टिस्ट हैं और पढ़ाती हैं आपकी तरह। उन्होंने भी आई एग्री विथ रितु जी करके मैसेज किया है, बहुत बढ़िया करके मैसेज किया है। और मानसी जी ने थैंक यू लिख के भेजा है आपको, और फूल सिंह जो है हमारे सीनियर सिटीजन है लेकिन रेडियो प्रोग्राम को हमेशा देखते हैं, उन्होंने भी याद भेजा है, बहुत सुंदर करके मैसेज किया है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। और मैं चाहूंगा कि किसी भी करियर को अगर आप चूज करते हैं, आज हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन कोई भी करियर आप चूज करते हैं तो उन सभी चीजों को थॉरली आपको टाइम तो देना होगा, क्योंकि किसी चीज को आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आप मेरे पास डायरेक्टली आ जाए। तो ऐसा कोई मैजिक बॉक्स नहीं है कि भाई आप इंग्लिश लिख के बैठ जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास आ जाएगा, क्योंकि हर चीज को आपको समझना है, हर चीज को आपको टाइम देना ही देना है। जब टाइम जितना ज्यादा आप देंगे उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे, है ना? तो ये जरूरी है। अब ये अगर नहीं कर पाते तो शायद मुश्किल है। हरी जी भी मुंडी अपना सर हिला रहे हैं, तो उनको पता है कि उनको अगर नाना पाटेकर का ये दो डायलॉग जो हमने सुना आपको अच्छा लगा तो उसके लिए उनको 100 टाइम प्रैक्टिस भी किया होगा। अदरवाइज वो चीजें उसी फोन उसी टोन उसी कल में बात प्रेजेंट करनी मुश्किल है। तो यही है कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग पूछने का जो स्टाइल है ना हमारा, वो कहीं ना कहीं कम, कोई चीज नहीं आ रहा है तो आप अभिमान में नहीं आया हो कि मैं मुझे नहीं आ रहे तो मैं कैसे पूछूं, है ना? आप बच्चा बन जाओ और पूछते रहो, जब तक आप उसको ठीक से नहीं समझ रहे हो तब तक आप बच्चे ही बने रहो और सबसे पूछो। उस दिन समझ में आ गया, आप अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। बच्चे से बड़े बनने के लिए आपको ऑटो मोड पे है, बड़े से बच्चा बनने में आपको खुद करना पड़ेगा। तब आप सीख पाएंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके लिए कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, जिंदगी ऐसे ही है। आपको सीखना है तो बच्चे बन दो और बिल्कुल प्यार से सीख सकते हैं, सीखना। आपको बच्चा बनना नहीं आ रहा है तो आप सीख भी नहीं पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टेक्निक आपके पास हो किसी भी चीज को सीखने के लिए, तो निश्चित तौर पे आप अच्छा सीख पाएंगे। रितु जी, मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करो हमारे सभी दर्शक मित्रों को।
2: जी सर, एक बार सर फिर से बताइए
0: एक
2: जी।
0: मैसेज कोट कीजिए, पॉजिटिव मैसेज, जैसे कि आप कैसे अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, क्या सोचते हैं, जैसे कोई मुश्किल आ जाए तो मुश्किल को ही लेके बैठते हैं, या क्या ऐसा पॉजिटिव सोचते हैं जिसको मुश्किल मुश्किल नहीं
2: हाँ जी,
0: लगता
2: हाँ जी, मैं कोट, मुझे बहुत पसंद है वो, जैसे नेल्सन मंडेला का एक कोट है, इसको हम
0: अंदर?
2: हिंदी में भी बहुत देखते हैं, मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगी, कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर बट टू कॉन्कर ओवर इट। तो इसको अगर हिंदी में हम कहें, तो मैं हिंदी में बच्चों को ही बताती हूँ कि डर के आगे जीत है, यही इसका हिंदी रूपांतरण है। ये करेज क्या है कि फेयर का एब्सेंस नहीं है, बट कि फेयर को जीतना है, ये करेज है। और इसी को जो हम ऐड वगैरह में देखते हैं, तो बच्चे जब मैं बोलती हूँ डर के आगे, तो बच्चे तुरंत बोलते हैं जीत है। भले वो ये कोट ना बोल पाए, लेकिन वो ये जरूर बोलते हैं, मैंने कहा बस यही यही करना है आपने। Whether it is your examination, whether you have any stage fear, whether you are, आप बहुत ओवर कॉन्शियस बच्चे हो जाते हैं स्टेज पे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा हर बच्चा बोलना सीखे, जो भी उसकी भाषा, whatever languages they are learning। तो ये चीजें, ये मैसेज मैं अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ। तो हमें उस डर को कॉन्कर करना, और डर को कॉन्कर करने का क्या तरीका है कि प्रैक्टिस करना, जैसे रमेश जी ने बताया, प्रैक्टिस, देयर इज नो एनी शॉर्टकट यू नो टू सक्सेस, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इटसेल्फ इज अ शॉर्टकट।
0: रितु जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अपना बहुत ही प्यारा सा कोट आपने याद कराया और उसको प्रैक्टिस भी करते हैं आप। मानसी जी ने भी याद भेजा है और बहुत सारी चीजें लिखा है। मैम आई एम कंप्लीटेड माय मास्टर्स एंड डी फार्मा एंड और कुछ लिखा है उन्होंने, मेरे को पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें हो रही, लेकिन आप पढ़ सकते हैं तो जरूर। डिप्लोमा एंड
2: ठीक है, आई हैव
0: छोटे बच्चों को पढ़ाने का वो भी आपने किया है।
2: मानसी मैंने यही बोला, आप डिप्रेशन में आप अपनी भाषा की वजह से क्यों जा रहे हैं? आपको भाषा आती है आपकी अपनी, आप जो मराठी भाषा जो बोल रहे हो वो खुद एक एसेट है, भाषा तो एसेट आपके पास ऑलरेडी एक एसेट है, आपको डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप वही भाषा बोल करके आइए, आप बाउंस बैक करिए। इंग्लिश तो दूसरी भाषा है, अगर आप इंग्लिश सीख लेंगे तो आपके हाथ में 2 टूल हो जाएंगे, दैट्स ऑल। आप 5 भाषा सीखते हैं, आपके हाथ में 5 टूल हो गए, 5 आपके पास आर्म्स हो गए, हथियार हो गए। मैं तो बच्चों को कहती हूँ ये टूल्स हैं, लैंग्वेज इज अ टूल, तो आप बिना टूल के थोड़ी हैं। आप अपनी बात देखिए कैसे, मतलब मैं तो बार बार कह रही हूँ कि अब तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी मल्टीलिंगुअलिज्म को फोकस कर रही है, तो देयर इज नो व्हाई टू गेट इन शेम, बिल्कुल डिप्रेशन में जाने की बात नहीं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी भाषा ना सीखे। आप भाषा सीखना बहुत अच्छी बात है, आप अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जो मैंने आपको बताया वो करिए, आप डेली पढ़िए, डेली सुनिए और डेली लिखिए बस। और इस पूरे कार्यक्रम में आपको ज्यादा नहीं, ओनली 1 आवर, लेकिन 1 आवर दीजिए एंड यू विल सी द, आई एम गिविंग द गारंटी, आई विल आस्क यू नेक्स्ट टाइम, यू विल सी द चेंज माय डियर। ओके,
0: थैंक यू रितु जी एंड मानसी जी, होप आपको एनर्जी मिल गया होगा रितु जी की बातें सुनकर। एंड चलिए जाते जाते हैरी, आपका एक छोटा सा कोट मैसेज, आप कैसे अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, अपने आप को हैप्पी रखते हैं, क्या सोचते हैं?
1: सर मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में आपको जो भी करना हो, या तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर आपके अंदर जो स्किल्स हो, उसके पीछे लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, कभी भी हार नहीं मान। अगर आपने ये सोच लिया कि अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, तो उसका ये साफ मतलब है कि आप वो चीज कभी नहीं कर पाओगे। तो मैं तो इतना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हैं छोटे छोटे आने वाले, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो किसी भी चीज को छोड़े ना, उसके पीछे लगातार मेहनत करते रहे। और अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हर एक अलग अलग जो चीज होती है ना, हम देखते हैं सब जगह पे, कोई कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो सारी चीजें क्या होती है कि वो देख देख के करते हैं कि हाँ मेरे दोस्त ने ये चीज की तो मैं भी ये करूं। लेकिन अगर आप उस चीज से हट के कुछ अलग करोगे तो शायद वो आगे जाके आपको बहुत अच्छा काम आएगा। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, किसी को कॉपी ना करे, अपना तरीका बनाए, एक नए तरीके से आगे बढ़े, और उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या है कि आप उसमें और ज्यादा निखार ला पाएंगे, बशर्ते अगर कोई दूसरा वो चीज ना कर पा रहा हो। लेकिन शायद आपका नया तरीका लोगों को नए अंदाज में पसंद आए तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो यही मैं मैसेज सभी बच्चों को और सबको देना चाहता हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीजें सिखाता हूँ।
0: चलिए हरी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात है आपने बताया। आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगेगा आपकी बातें, और निश्चित तौर पे हमें अपना एक तरीका अपना के अपना एक स्टाइल बना लेना, ताकि हम अपने स्टाइल के साथ लोगों के बीच में जुड़े, तो लोग हमें कॉपी करें, हम किसी को कॉपी ना करें। बस इसके लिए आपको वही फिर से वापस जो है मेहनत खुद से अंदर से करना चाहिए, है ना। समुंदर से सीखा हमने खामोश रहना, चुपचाप रहना और अंदर से काम करना, है ना। तो वैसे ही आप एक समुद्र की तरह जो है उससे कुछ सीखिए, और जो लोग आपसे मिलने आएंगे तो उनको भी बहुत कुछ मिलेंगे, है ना। तो ये एक हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि भी एक तरीका ये हो सकता है कि आप इससे आगे बढ़े। आपको अपने तरीके ढूंढने होंगे, अपने स्टाइल को बनाना होगा, अपने आप से बहुत अच्छी तरह से खुद को मोटिवेट करके रखें और हमेशा कहिए कि आप वो कर सकते हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर एक दिन आप बन जाएंगे। तो आप सभी अच्छा करें, अच्छा बने, इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर से एक बार रितु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस एपिसोड में जुड़कर अपनी भावनाएं हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड हरी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़कर अपनी भावनाएं शेयर करने के लिए। कुसुम जी, थैंक यू सो मच, आपने एक बहुत ही प्यारा संगीत डेडिकेट किया हमारे मेहमानों को। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर, सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ, आज दर पे चल के आया है मौका।

0: नमस्ते दोस्तों, लगता है बहुत जोर से बारिश होने वाली है। अरे इतने खराब मौसम में ये मीना अपनी छोटी बहन रानी को लेके चमेली के घर क्या कर रही है?
1: चमेली, क्या तुम मुझे आज के लिए अपनी गणित की किताब दे सकती हो? मेरी किताब स्कूल में ही रह गई।
2: हाँ हाँ मीना, अंदर आओ।
3: अंदर आओ, किताब ले जाओ।
2: पिताजी, देखो तो कौन आया है।
1: नमस्ते चाचा जी।
4: जीती रहो मीना बेटी। अले अले अले अले अले, रानी तो रोने लगी। रोते नहीं रानी। अले अले अले अले अले अले। मीना बेटी, मुझे लगता है रानी को भूख लगी है। एक मिनट, ये लो केला, खिला दो इसे।
1: देखा रानी, चाचा जी ने तुम्हारा मनपसंद खाना दे दिया, केला। एक मिनट, पहले मैं साबुन से हाथ धो के ये केला मसल दूं। अब ठीक है। ये लो रानी, केला खाओ।
2: रानी को केले अच्छे लगते हैं मीना।
1: बहुत। माँ और मैं तो इसे रोज मसले हुए केले खिलाते हैं।
3: केले खिलाते हैं, तगड़ा बनाते हैं।
4: लगता है बादल गरजने की आवाज से डर रही है रानी। चमेली, अब तो तेरी बांसुरी का जादू ही चुप करा सकता है रानी को।

0: अरे वाह चमेली, तुम्हारी बांसुरी सुन के तो रानी बिल्कुल चुप हो गई।
1: चमेली की बांसुरी का जादू है ही ऐसा।
0: चाचा जी, चमेली अब मैं चलती हूँ, कहीं बारिश ना शुरू हो जाए।
1: ठीक है बेटी।
2: मीना ये लो किताब, कल मिलते हैं।
0: मुझे कल वीरू चाचा के घर जाना है, तुम चलोगी मेरे साथ? रास्ते में तुम्हारी बांसुरी भी सुन लूंगी।
2: ठीक है मीना, मैं चलूंगी।
3: और अगले दिन मीना और चमेली वीरू चाचा के घर की तरफ चले। चमेली बांसुरी की मीठी सी धुन बजा रही थी।

0: दीपू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
1: मीना, सुनील और मैं यहीं पास में क्रिकेट खेल रहे थे। बांसुरी की इतनी मीठी धुन सुनी तो मैं यहाँ आ गया।
2: चमेली की बांसुरी का जादू है ही ऐसा।
1: जादू?
0: अरे सुनील, क्या हुआ?
3: मीना, बुआ, लाला जी की बैलगाड़ी, उनकी बैल अचानक बेकाबू हो गए हैं।
0: चलो जल्दी।
4: अरे कोई बचाओ, मर रहे ये हिरम होती तो मुझे नीचे ही पटक देंगे।
5: दरअसल जब लाला जी अपनी बैलगाड़ी पे जा रहे थे तो रास्ते में एक सांप के आ जाने से उनके बैल हीरा और मोती बिदक गए और अब वो काबू में ही नहीं आ रहे।
3: अब क्या करें मीना, ये बैल तो।
0: चमेली, शुरू करो अपना जादू।
5: ये तो कमाल हो गया। बांसुरी की मीठी तान सुनके हीरा और मोती तो बिल्कुल शांत हो गए और लाला जी

0: हैरान ही रह गए।
1: मीना बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया।
2: लाला जी, ये कमाल तो चमेली का है, इसकी बांसुरी का जादू है ही ऐसा।
0: लाला जी की समझ में तो कुछ नहीं आया, वो तो बस अपनी बैलगाड़ी पे चुपचाप वहाँ से चल दिए। लेकिन दीपू की हैरानी का ठिकाना नहीं था।
3: मीना, चमेली की बांसुरी में तो सचमुच का जादू है।
2: वो तो है। अच्छा दीपू सुनी, अब चमेली और मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। आओ चमेली।
4: आओ चमेली, मेरी सहेली।
3: सुनील, मुझे लगता है कि चमेली मीना को अपने जादू के बारे में ही बताने जा रही है। आओ हम भी चुपचाप उनके पीछे चलते हैं।
0: दीपू और सुनील बहुत देर तक चुपचाप मीना और चमेली का पीछा करते रहे। और फिर
3: सुनील, ये दोनों तो वीरू चाचा के घर चली गई।
5: दीपू, हम इस पेड़ की आड़ लेकर उनको देखते हैं।
0: दीपू और सुनील तो पेड़ के पीछे छुप गए और वहाँ वीरू चाचा के घर में।
2: लीला भाभी।
6: अरे मीना, चमेली, आओ आओ।
7: ओफो, पता नहीं इतना क्यों रो रहा है संजू।
2: अले अले संजू, भूख लगी है, कुछ खाएगा?
7: नहीं नहीं मीना, संजू को अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी नानी ने खिचड़ी खिलाई थी।
2: मेरे पास संजू को चुप कराने की एक तरकीब है भाभी।
0: मीना ने चमेली से एक बार फिर बांसुरी बजाने को कहा। चमेली ने बांसुरी तो बजाई, लेकिन संजू चुप नहीं हुआ। संजू के रोने की आवाज सुन के उसकी नानी कमरे से बाहर आई।
8: लीला बेटी, ला मुझे दे संजू को, लगता है अभी भी भूखा है। ये ले संजू, खिचड़ी खा ले।
7: ये क्या माँ, इतनी पतली खिचड़ी? मैंने तो ये बहुत गाढ़ी बना के रखी थी, लेकिन अब तो इसमें सिर्फ पानी ही पानी है।
4: पानी ही पानी है, ये कैसी नानी है?
7: माँ, इतनी पतली खिचड़ी खिलाने की वजह से ही संजू का पेट नहीं भरा।
8: लेकिन मुझे तो लगा इसका पेट भर गया।
7: माँ, इसका पेट खिचड़ी से नहीं बल्कि इसमें मिले पानी से भर गया था।
8: अब तू मुझे मत सिखा लीला, जब तू संजू जितनी थी तो तुझे भी इतनी पतली खिचड़ी ही खिलाती थी मैं। हाँ
7: माँ, नरस बहन जी ने मुझे खास कहा था कि जब संजू 6 महीने का हो जाए तो मैं उसे मसला हुआ गाढ़ा खाना दूँ, क्योंकि गाढ़ा और मसला हुआ खाना छोटे बच्चों को जरूरी पोषण देता है।
2: हाँ नानी जी, नर्स बहन जी ने माँ को भी यही कहा था कि 6 महीने के बाद रानी को गाढ़ा खाना ही खिलाना, तभी तो हम अपनी रानी को मसले हुए केले, उबले हुए आलू, गाढ़ी दाल, खिचड़ी, हलवा वगैरह खिलाते हैं।
7: मीना ठीक कह रही है माँ, छोटे बच्चे के खाने में ज्यादा पानी मिला दिया तो उसका पेट तो पानी से ही भर जाएगा, और फिर उसके शरीर को जरूरी पोषण कहाँ से मिलेगा।
8: अच्छा, ये तो नई बात पता चली आज। तू रुक, मैं अभी इस खिचड़ी को गाढ़ा करके आई।
0: और उधर पेड़ के पीछे
5: देखा दीपू, जादू चमेली की बांसुरी में नहीं, मीना की समझदारी में है। चल वापस क्रिकेट खेलते हैं।
0: भाई ये बात तो सही है, अपनी मीना की समझदारी में जादू तो है, तभी तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी चुटकी बजाते ही हल कर देती है। चलो अब सुनते हैं एक प्यारी सी कविता।
2: 6 महीने से बच्चे को 2 ऊपर का खाना,
4: खाना हो वो गाढ़ा, ज्यादा पानी नहीं मिलाना।
0: भाई अपने मीना और मिट्ठू तो पूरे कवि हो गए हैं, खेल खेल में क्या बढ़िया बात कह जाते हैं दोनों। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: गाना गाना मजेदार।
1: अच्छा एक बात बताओ, कहानी तो हो गई, कविता भी सुन ली, गाने का मजा भी ले लिया, बोलो अब क्या बचा?
0: हाँ बिल्कुल ठीक,
1: अब बचा है खेलना।
2: प्यारे बच्चों, आज का खेल है बड़ा मजेदार, भेद खोलना है उसका जो बैठा है बीच में छुपकर। मैं तुम सबको चार खेलों के नाम बताऊंगी, उन चारों में से एक खेल ऐसा है जो बाकी तीन खेलों से किसी खास वजह से अलग है, बस तुम्हें उसी अलग खेल का नाम मुझे बताना है। तो शुरू करें आज का खेल।
3: जी बहन जी।
2: वो चार खेल हैं क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और हॉकी। बोलो कौन सा खेल बीच में छुपा हुआ है, यानी वो कौन सा खेल है जो है बाकी तीन से अलग? सोचो सोचो, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या हॉकी?
4: मैं बताऊं बहन जी?
2: हाँ हाँ दीपू बताओ।
4: क्रिकेट।
2: वो कैसे?
4: क्योंकि हम सब भी क्रिकेट खेलते हैं।
2: ऐसी बात नहीं दीपू, हम सब फुटबॉल और हॉकी भी तो खेलते हैं।
5: बहन जी सही जवाब है टेनिस।
2: सही जवाब मोनू। अब ये बताओ तुमने ये जवाब कैसे बुझा?
5: बहन जी
2: कौन बताएगा सही कारण, टेनिस का खेल क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के खेल से अलग कैसे है?
6: मुझे पता है बहन जी।
2: हाँ हाँ बोलो मीना।
7: बोलो मीना, राज खोलो मीना।
6: बहन जी क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी का खेल 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच खेला जाता है, जबकि टेनिस का खेल दो या चार खिलाड़ियों के बीच ही खेला जा सकता है।
2: शाबाश मीना, बिल्कुल सही जवाब। तो मजा आया बच्चों?
3: जी बहन जी।
0: तो आपको भी मजा आया ना?
1: क्या कहा, बहुत मजा आया।
0: भाई मजा तो आएगा ही, अपनी मीना की बातें हैं ही इतनी मजेदार। अब मुझे दीजिए आज्ञा, जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
8: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, 13वां पाठ, खेत और बाढ़, पृष्ठ 149। रहमत एक किसान है। वो अपने खेत को गेहूं उगाने के लिए तैयार कर रहा है। यहां पर रहमत का खेत और रहमत को दिखाया गया है। रहमत कहता है, मुझे अपने खेत के चारों ओर बाड़ चाहिए, मुझे कितनी तार खरीदनी पड़ेगी? रहमत पता करना चाहता है कि चारों तरफ से खेत के घेरे की लंबाई कितनी है। क्या तुम इस चित्र से ये पता कर सकते हो? हर बाजू की लंबाई उसके पास लिखी हुई है। यहां पर रहमत खेत को नाप रहा है। खेत की भुजाएं हैं 9 मीटर, 9 मीटर, 15 मीटर और 21 मीटर। यहां पर रहमत का चित्र है। वो कहता है, खेत का घेरा 54 मीटर लंबा है। एक अन्य चित्र में रहमत को बाड़ के साथ दिखाया गया है। रहमत ने बाड़ के लिए 70 मीटर तार खरीदा। पृष्ठ 150। यहां पर रहमत के खेत का चित्र और रहमत और बाड़ का चित्र है। रहमत ने बाड़ को हाथ से पकड़ रखा है और साथ ही गणपत का चित्र है। गणपत सोच रहा है,
3: मुझे भी अपने खेत के लिए ऐसा ही करना चाहिए।
2: इसी के नीचे यहां पर एक बार फिर गणपत और रहमत के चित्र हैं। गणपत रहमत से कहता है,
4: क्या तुम मुझे अपना बचा हुआ तार दे सकते हो? मैं उसे अपने खेत के लिए इस्तेमाल करूंगा।
2: रहमत ने कहा,
3: ओह जरूर, क्यों नहीं।

रहमत ने गणपत को कितना तार दिया। रिक्त स्थान। इस पृष्ठ के सबसे नीचे की तरफ खेत का चित्र और गणपत का चित्र है। गणपत ने अपने हाथ में बाण उठा रखी है। गणपत ने रहमत को धन्यवाद दिया और अपने खेत के आसपास बाण लगानी शुरू कर दी, लेकिन उसे और तार की जरूरत थी। गणपत के खेत के घेरे की कुल लंबाई कितनी है? रिक्त स्थान। गणपत को अपने खेत के लिए और कितना तार चाहिए? रिक्त स्थान। यहां पर पांच भुजाओं वाला एक खेत का चित्र है, जिसकी भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है: 9 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, 9 मीटर और 18 मीटर। पृष्ठ 151। अभ्यास का समय एक। यहां कुछ और खेतों के चित्र दिए गए हैं। पता करो कि सबसे लंबा घेरा किसका है। क। यहां पर एक खेत का चित्र है जिसकी चार भुजाएं हैं। भुजाएं इस प्रकार हैं: एक भुजा 15 मीटर, दूसरी भुजा 6 मीटर, तीसरी भुजा 15 मीटर और चौथी भुजा 24 मीटर। घेरा बराबर रिक्त स्थान मीटर। ख। यहां पर एक अन्य खेत का चित्र है जिसकी 6 भुजाएं हैं और इन 6 भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है: पहली भुजा 9 मीटर, दूसरी भुजा 6 मीटर, तीसरी भुजा 3 मीटर, चौथी भुजा 6 मीटर, पांचवी भुजा 6 मीटर और छठी भुजा 12 मीटर। घेरा बराबर रिक्त स्थान मीटर। ग। यहां पर एक 3 भुजाओं वाला खेत दिखाया गया है। इस खेत की भुजाएं इस प्रकार हैं: पहली भुजा 9 मीटर, दूसरी भुजा 12 मीटर और तीसरी भुजा 15 मीटर। घेरा बराबर रिक्त स्थान मीटर। घ। यहां पर 6 भुजाओं वाला एक और खेत दिखाया गया है। इन भुजाओं की लंबाई इस तरह से है: पहली भुजा 15 मीटर, दूसरी भुजा 9 मीटर, तीसरी भुजा 15 मीटर, चौथी भुजा 15 मीटर, पांचवी भुजा 9 मीटर और छठी भुजा 15 मीटर। घेरा बराबर रिक्त स्थान मीटर। पृष्ठ 152। दो। चंदू के पिता उसके गांव में जवान कहलाते हैं। 70 वर्ष की उम्र में भी वो स्वस्थ हैं। क्या तुम उनकी अच्छी सेहत का राज जानते हो? वो रोज सुबह सैर करने चंदू के खेत पर जाते हैं और खेत के चारों ओर 4 चक्कर लगाते हैं। वो कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करते हैं? 4 गुणा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान मीटर बराबर रिक्त स्थान किलोमीटर। यहां पर एक आयताकार खेत का चित्र है जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है। इस खेत के चारों तरफ चंदू के पिताजी को चक्कर लगाते हुए दिखाया गया है। 3। गणपत की पत्नी दर्जी की दुकान पर काम करती है। उसे मेज पोश के चारों ओर लेस लगानी होती है। उसने 100 मीटर लेस खरीदी। नीचे दिए गए मेज पोश का चित्र देखो और ये बताओ कि एक मेज पोश के लिए कितनी लेस की जरूरत पड़ेगी। रिक्त स्थान। यहां पर एक आयताकार मेज पोश का चित्र है जिसकी लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। 3 मेज पोशों के लिए कितनी लेस की जरूरत पड़ेगी? रिक्त स्थान। बंडल में कितनी लेस बची होगी? रिक्त स्थान। पृष्ठ 153। खुद करके देखो। 1। नीचे दी गई अलग अलग आकृतियों के घेरे की लंबाई पता लगाओ। इशारा, तुम धागे का प्रयोग कर सकते हो। यहां पर एक आयताकार चित्र है। इस चित्र में क, ख, ग और घ 4 आकृतियां दिखाई गई हैं। ये आकृतियां कुछ खानों को घेर कर बनाई गई हैं। खाना गिनो और पता लगाओ।
हर एक आकृति में कितने खाने हैं, किस आकृति में सबसे कम खाने हैं, किस आकृति में सबसे ज्यादा खाने हैं। 2, 20 सेंटीमीटर लंबा धागा लो, उसके सिरों को जोड़ते हुए अलग अलग आकृतियां बनाओ। इसे अगले पृष्ठ पर बने चौकोर खानों पर करो। पता करो हर आकृति में कितने खाने हैं, सबसे बड़ी आकृति कौन सी है, सबसे छोटी आकृति कौन सी है, हर एक आकृति का घेरा कितना है। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों से कह सकते हैं कि वो आधे से कम घेरे खाने को ना गिनें और आधे से ज्यादा घेरे खाने को एक खाना मान लें। आगे चलकर ये समझ उन्हें संख्याओं के सन्निकटन यानी राउंडिंग ऑफ में मदद करेगा। पृष्ठ 154। 3, 2 वर्गों को जोड़कर तुम कितनी अलग अलग आकृतियां बना सकते हो। नीचे दिए गए चौकोर खानों पर दर्शाओ हर एक आकृति का घेरा कितना है। यहां पर एक आयत है जिसके 255 खाने हैं। पहली पंक्ति का 7वां खाना और दूसरी पंक्ति का 8वां खाना नीले रंग से रंगा हुआ है और उसमें तिरछी रेखाएं भी खींची गई हैं। इस गतिविधि को 3 वर्गों के साथ भी करो। पृष्ठ 155। अभ्यास का समय 1। एक वर्ग का घेरा 12 सेंटीमीटर यानी सीएम है। क, इस वर्ग के एक कोने से 1 सेंटीमीटर का छोटा वर्ग काट दिया गया है। आकृति ख का घेरा ज्यादा होगा या कम, उसकी लंबाई पता लगाओ। यहां पर 2 वर्गों के चित्र हैं, वर्ग का और वर्ग खा। प्रत्येक वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर की है। वर्ग खा में दाहिनी तरफ का सबसे ऊपर का एक कोना 1 सेंटीमीटर काटकर दिखाया गया है। ख, अगर 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट दें ताकि आकृति ग बन जाए तो ग का घेरा कितना होगा। यहां पर 2 वर्गों के चित्र हैं, वर्ग का और वर्ग ग। नई आकृति ग में ऊपर की भुजा में से एक हिस्सा सबसे बीच में से 1 सेंटीमीटर काटकर दिखाया गया है। 2, क, नीचे दिए गए वर्ग घ के घेरे की लंबाई पता लगाओ। ख, वर्ग घ में से 1 सेंटीमीटर के 8 वर्ग काट दिए गए, इससे नई आकृति ळ बन गई। आकृति ळ के घेरे की लंबाई कितनी होगी। यहां पर 2 चित्र हैं, एक घ और दूसरा ळ। चित्र घ के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आकृति ळ में 1 सेंटीमीटर के 8 वर्ग काटे हुए दिखाए गए हैं। ग, इस 1 सेंटीमीटर के घेरे की लंबाई है। रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान। क्या हम कह सकते हैं कि वर्ग के घेरे की लंबाई 4×1 सेंटीमीटर है। पृष्ठ 156। 3, एक हॉकी का मैदान 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा है। मैदान के घेरे की लंबाई कितनी होगी। 4, ऊषा और वालसम्मा दौड़ लगा रही हैं। ऊषा भीतरी गोले में दौड़ रही है, वालसम्मा बाहरी गोले में दौड़ रही है। वालसम्मा ऊषा से तेज दौड़ती है पर फिर भी दौड़ हार जाती है, क्या तुम बता सकते हो क्यों। रिक्त स्थान। यहां पर 2 गोलों का चित्र है जिस पर एक गोले में ऊषा और दूसरे में वालसम्मा को दौड़ते हुए दिखाया गया है। साथ ही यहां पर 2 बोर्ड लगे हैं, एक में लिखा है आरंभ और दूसरे में अंत। क्या तुमने कोई ऐसी रेस देखी है जहां दौड़ने वाले अलग अलग जगह से शुरू करते हों, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। सोचो ऐसा क्यों होता है। यहां पर 3 गोले दिखाए गए हैं, इन गोलों पर अलग अलग 3 बच्चों को दौड़ते हुए दिखाया गया है। यहां पर 4 बोर्ड लगे हैं जिनमें से 3 पर आरंभ और 1 पर अंत लिखा है। पृष्ठ 157।
स्कूल का बगीचा। कक्षा 3 और कक्षा 4 के छात्रों ने सोचा कि बगीचे में कुछ सब्जियां उगाई जाएं। उन्होंने एक जगह का चुनाव किया जो इस चित्र जैसा लगता था। यहां पर कक्षा 3 और 4 के बच्चे दिखाए गए हैं और उनके बीच में दो बगीचे दिखाए गए हैं, बगीचा 1 और बगीचा 2। इन दोनों बगीचों के बीच में एक रास्ता भी है। दोनों ही कक्षाओं के छात्रों को लगा कि बगीचा 1 बड़ा था, इसलिए दोनों ही बगीचा 1 लेना चाहते थे। अचानक नीतू ने कहा, यहां पर दो बच्चों के चित्र हैं। पहला बच्चा बोला, मुझे लगता है कि दोनों बगीचों में बराबर जगह है। दूसरा बच्चा बोला, हाँ हो सकता है, चलो पता करते हैं कि क्या ये सही है। नीतू ये कैसे पता लगाए कि दोनों बगीचों में बराबर जगह है कि नहीं? पृष्ठ 158। चलो कुछ करके देखें। 1, अपनी कक्षा में रखी मेज को देखो। सोचो कि उस पर कितनी गणित की किताबें रखी जा सकती हैं। याद रहे कि किताबें एक दूसरे पर ना रखी हों और किताबों के बीच में जगह भी ना बचे। अपना अंदाजा यहां लिखो, रिक्त स्थान। अब अपने अंदाजे की जांच करो, तुम कितनी किताबें रख पाए, रिक्त स्थान। तुम्हारे अंदाजे में और किताबों की सही संख्या में कितना अंतर है, रिक्त स्थान। यहां पर एक बच्चा टेबल पर किताबें रखता हुआ दिखाई दे रहा है। 2, एक और मेज ढूंढो। अब इन प्रश्नों के उत्तर तुम स्वयं दो। क, क्या ये मेज पिछली मेज से बड़ी है, हां या नहीं। ख, अंदाजा लगाओ कि इस मेज पर गणित की कितनी किताबें आ सकती हैं, रिक्त स्थान। ग, अपने उत्तर को जांचो, तुम गणित की कितनी किताबें रख पाए, रिक्त स्थान। घ, दोनों मेजों के आकार में अंतर है, रिक्त स्थान किताबें। 3, क, गणित की कितनी किताबों को अखबार के एक पन्ने से ढक सकते हैं, रिक्त स्थान किताबें। ख, अब तुम अपनी गणित की किताब को अखबार के आधे पन्ने से ढकने की कोशिश करो। ग, क्या तुम अपनी किताब को इस छोटे कागज से ढक सकते हो। पृष्ठ 159। घ, वो सबसे छोटा कागज ढूंढो जिससे तुम अपनी किताब को ढक सकते हो। पता करो कि क्या तुम्हारे दोस्त ने तुमसे छोटा कागज इस्तेमाल किया। 4, क, इस चित्र में सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है। यहां पर एक वर्गाकार चित्र है जिसमें 225 खाने हैं। इसमें 4 पत्तियां बनाई गई हैं। ये पत्तियां कुछ वर्गों को ढक रही हैं। ख, बगीचे से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो, हरेक को इस चौखाने वाले कागज पर रखो, उनके किनारों का घेरा बनाओ और पता करो कि हरेक पत्ती में कितने खाने हैं। ग, सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है। घ, सबसे छोटी पत्ती कौन सी है। पृष्ठ 160। 5, क, इस हरे रंग के बड़े वर्ग में 1 सेंटीमीटर वाले कितने छोटे वर्ग हैं। ख, क्या तुम छोटे वर्गों को गिने बिना उनकी संख्या जल्दी से पता करने का तरीका सोच सकते हो। यहां पर हरे रंग का एक वर्ग है जिसमें 1-1 सेंटीमीटर के कुछ वर्ग बने हुए हैं। 6, अनुमान लगाओ कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने वर्गों से ये नीले रंग की आयत भर जाएगी। यहां पर नीले रंग की एक आयत है। इस आयत में खड़े में 4 वर्ग और पड़े में 8 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है और बाकी जगह खाली है। अपना अंदाजा यहां लिखो, रिक्त स्थान। अब इस आयत को छोटे वर्गों से भरकर अपने अंदाजे की जांच करो। 7, इस चित्र को देखो, क्या तुम इसे 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो। हर हिस्से में वर्गों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहां पर एक लड़की का चित्र है। यहां पर एक आकृति है जो समान आकार के 12 वर्गों से मिलकर बनी है। पृष्ठ 161। पहली, घर और कुआं। राघवन के पास जमीन का एक टुकड़ा है। इस जमीन पर 4 घर हैं
और बीच में एक कुआं है। वो इस जमीन को अपने चार बच्चों में बराबर बांटना चाहता है। हरेक को एक घर मिलना चाहिए और सभी दूसरे के हिस्से में जाए बिना कुएं का इस्तेमाल कर पाए। क्या तुम जमीन को बांटने में उसकी मदद कर सकते हो? हरेक हिस्से में अलग रंग भरो। यहां पर एक जमीन के टुकड़े का चित्र है जिसमें बराबर आकार के 16 वर्ग बने हुए हैं। इसके बीचों बीच एक कुआं है और साथ ही चार घर भी बने हुए हैं। इसी के साथ 13वां पाठ खेत और बाढ़ अब यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे। सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है बच्चों की दुनिया। बच्चों की दुनिया सबसे अच्छी दुनिया होती है, जिसमें बहुत सारी मस्ती होती है, बहुत सारी खुशी होती है, बहुत सारा प्यार होता है, एक दूसरे के लिए अपनेपन की नजर होती है और ढेर सारे रंग होते हैं। हम सभी ने ये दुनिया जी जरूर है, और आइए हम सब उस दुनिया को आज एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं चार बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं उनका नाम और वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो आप सभी पहले तो हमारे दोस्तों को बोलिए हेलो दोस्तों।
3: हेलो दोस्तों।
2: और एक बार अपने अपने नाम बता दीजिए।
4: मेरा नाम है हसी सरकार।
2: और आप कौन सी क्लास में हो?
4: मैं फोर्थ क्लास में हूँ।
5: मेरा नाम है याना रावत, मैं फिफ्थ क्लास में हूँ।
6: मेरा नाम है देवेश्री बियानी, मैं फोर्थ क्लास में हूँ।
7: मेरा नाम है खुशी सरकार, मैं सेवेंथ क्लास में हूँ।
2: ओके, आप सभी स्कूल जाते हो, अच्छा लगता है स्कूल जाना?
8: हाँ।
2: अच्छा लगता है?
8: हाँ।
2: छुट्टियाँ ज्यादा अच्छी लगती है कि स्कूल जाना?
8: स्कूल जाना।
2: ऐसा क्यों, क्या अच्छा लगता है?
8: स्कूल में मजा आता है।
5: स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं और
7: खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, मजा आता है। सर लोगों के साथ भी मजा आता है, सर मैडम टीचर्स के साथ बहुत मजा आता है।
8: सर मैडम एक्टिविटीज भी करते हैं।
7: सर मैडम भी मजा करते हैं हमारे साथ,
5: कुछ आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स और स्विमिंग क्लास।
2: वाह, इतना सब कुछ करते हो आप लोग। गेम्स में क्या क्या खेलते हो आप?
7: खो खो
5: और क्रिकेट, बास्केटबॉल।
2: आप क्या खेलते हो?
6: डॉज बॉल।
2: ओके,
7: बैडमिंटन, छुपन छुपाई।
2: इतने सारे गेम्स, पढ़ाई नहीं होती स्कूल?
5: होती है,
2: होती होती होती है। पढ़ाई के साथ साथ गेम्स खेलते हैं ना?
7: यस, जब फ्री पीरियड रहेगा तब
2: खेलते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अगर आपसे कभी किसी ने पूछा है कि आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हो?
5: बहुत लोगों ने
2: है। उसके बाद मतलब ये क्वेश्चन कैसा लगता है आपको? अच्छा क्वेश्चन है या डिफिकल्ट क्वेश्चन?
5: डिफिकल्ट नहीं, मेरे लिए तो सिंपल।
2: सिंपल है
5: मेरे लिए भी, सिंपल है।
2: डिफिकल्ट क्यों लगता है आपको? क्योंकि अभी छोटे हो आप, इसलिए या कोई और कारण है?
7: नहीं, लोग बार बार पूछते रहते हैं।
2: बार बार पूछते रहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। बार बार क्या पूछना, ना जो बनना है वो बनना है ना?
7: बड़े होने बनना है
2: सबको, कुछ ना कुछ बनना है। ये बात तो सही है, तो मतलब मैं नहीं पूछूंगी फिर।
7: आप पूछ सकते हैं।
2: अच्छा चलो फिर बता दो क्या बनना चाहते हो आप?
7: मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
2: ओके,
5: मैं इंडियन आर्मी बनना चाहती हूँ।
2: इंडियन आर्मी में जाना है आपको? वंडरफुल, डॉक्टर आर्मी, क्या बात है।
6: मैं आईएएस बनना चाहती हूँ और दीदी बनना चाहती हूँ।
2: बहुत कमाल की बात, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है लेकिन उसके लिए, है ना?
7: मैं टीचर बनना चाहती हूँ।
2: क्या बात है, बहुत नोबल प्रोफेशन है टीचिंग, है ना? सबको पढ़ाना, आगे पढ़ाना, वंडरफुल। ड्रीम्स तो आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों को लगता है कि लड़के और लड़कियों में कुछ डिफरेंस होता है?
5: हाँ
2: होता है, बता सकते हो जो भी फील होता है?
5: गर्ल्स की हैबिट मतलब कुछ अलग होती है, उन लोग को प्रिंसेस पसंद रहता है, बॉयज को एडवेंचर्स पसंद रहता है, लाइक दिस।
2: ऐसा पसंद अलग अलग होती है। और कुछ
7: वो दिखते भी अलग अलग है।
2: दिखते भी अलग अलग हैं, बिल्कुल सही बात है।
7: गेम्स भी अलग अलग खेलते हैं।
2: गेम्स कैसे, कौन से?
7: क्योंकि लड़के लोग ज्यादातर फ्री फायर, फिर कार गेम,
4: ये सभी खेलते हैं। और लड़कियां जैसे खो खो फिर ऐसे खेलते रहते हैं, बैठ के लड़कियां बातें भी करते
5: बिना फोन के।
4: और लड़के लोग तो फोन चलाते हैं और लड़कियां आपस में बात करते हैं।
2: लड़के फोन ज्यादा चलाते हैं?
4: हाँ, फ्री फायर में घुसे रहते हैं।
8: और लड़के लोग ज्यादा तो क्रिकेट खेलते हैं, मोस्टली
5: नहीं पबजी।
2: पबजी बहुत खेलते हैं। लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती?
8: हम तो खेलते कभी कभी,
4: कभी कभार,
2: कभी कभार।
5: मैं बास्केटबॉल भी खेलती हूँ,
2: बहुत पसंद है। लड़कों को ज्यादा क्रिकेट पसंद होता है। लेकिन आउटडोर गेम्स तो आप सब भी खेलते हो। सबने अभी अभी कितने सारे गेम्स के नाम बताए मुझे, है ना? और कुछ डिफरेंस होता है?
8: हेयर कट्स।
2: हेयर कट, हाँ हेयर कट तो अलग होता है। उनके छोटे छोटे बाल होते हैं ना,
4: उनकी ड्रेस भी अलग होता है।
2: छोटे बाल भी अच्छे लगते हैं, लड़कियों भी अच्छे लगते हैं।
4: लड़कियों में भी अच्छे लगते हैं। हाँ, उनकी ड्रेस भी अलग होते हैं।
2: ड्रेस भी अलग होती है, स्कूल यूनिफॉर्म अलग अलग होती है।
8: शूज भी अलग होते हैं।
2: होते हैं अलग?
4: हाँ,
2: स्कूल तो सेम होते होंगे।
4: बॉयज लोग का अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है।
2: अच्छा, उनके वो फीते वाले होते
4: हैं। हमारे बिना फीते वाले,
2: बिना फीते वाले होते हैं। वो कौन से अच्छे लगते हैं आप लोग को पहनना, अगर चांस मिले कि वो वाले पहन सकते हैं? कौन से?
8: लेस वाले तो मैं कभी नहीं पहन।
4: मैं दोनों भी पहन सकती
2: हूँ। दोनों पहन सकते
4: हैं आप? हमको अच्छा नहीं लगता लेस।
2: नहीं, लेस वाले नहीं अच्छे लगते।
8: बार बार लेस खुल जाता है,
4: फिर कभी कभी गिरने भी होता है।
8: गिर
2: भी सकते
8: हैं,
2: लेस खुल जाए तो गिर सकते
8: हैं। रिस्क होता है
4: खेलने टाइम, तो ज्यादातर गिरते ही है।
2: ये बात तो है,
4: जैसे वॉलीबॉल खेलते है।
8: मुझे लेस बनने में मजा आता
2: है। आई तो आप फिर पहन सकते हो लेस वाले, है ना? जिसको मजा आता है वो पहन सकता है। अच्छा है ना, ऐसे नॉट बनानी होती है ऐसे। कलरफुल कलरफुल भी आते हैं आजकल, लेकिन स्कूल में कलरफुल नहीं।
4: मुझे रिबन से बनाने बहुत अच्छा लगता है।
2: रिबन अच्छा लगता है?
4: रिबन से
8: वो बनाना पसंद है
2: उतना पसंद है।
8: ओके ओके
2: ओके ओके, ज्यादा नहीं पसंद है, थोड़ा थोड़ा।
4: मेरे को भी वो बनाना पसंद है।
2: और कुछ अंतर होता है क्या नेचर में, कोई अंतर होता है या आपको लगता है सेम होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स? क्या उनके साथ ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है, लड़कियों के साथ अलग होता है? ऐसा लगता है आपको सेम होता है? क्या लगता है, सेम लगता है या नहीं लगता है?
8: सेम
2: सेम
8: सेम।
2: अच्छा, और ओके फेयर है ना, सेम होते हैं।
4: कुछ कुछ डिफरेंस होता
2: है
4: बस।
2: ओके, जैसे
4: जैसे अभी
2: हाँ हाँ हाँ ये सब डिफरेंस होता है, पर बाकी और कोई डिफरेंस है? कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती, या लड़कियां कर सकती हैं लड़के नहीं कर सकते?
8: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
2: ऐसा कुछ नहीं
8: नहीं,
2: कुछ नहीं? क्या लगता है आप लोगों को, सब कुछ सब हर कोई कर सकता है? पक्का? अरे वाह, वेरी गुड। और आप सभी जो भी, मतलब ऐसा तो नहीं लगता आपको कि, अच्छा घर के काम आप लोग पहले बताओ, फैमिली में कौन कौन है?
8: मैं, मेरे पापा, मेरी नानी और मम्मी।
2: ओके, और आपके?
4: मेरे पापा, मम्मी, नानी, मैं और मेरी सिस्टर।
2: आपकी फैमिली में?
4: मेरी सिस्टर है।
2: आपकी सिस्टर और, अच्छा आप दोनों सिस्टर
8: और मौसी।
2: मौसी
4: कजन सिस्टर।
2: कैसे सिस्टर है, तो कौन कौन घर पे कौन कौन रहता है साथ में?
4: मम्मी, पापा, नानी, मैं और मेरी सिस्टर।
2: अच्छा, अरे वाह, साथ साथ रहते हो, तो मजा आता होगा ना?
4: मेरी नानी तो अभी कहाँ पे थी, आ जाइए।
2: और आपके घर पे कौन कौन है?
8: मेरी मम्मी, पापा, मेरा भाई, मैं, मेरे नानी नाना, मेरे मामा और मेरे दादी दादा।
2: क्या बात है,
4: पूरी फैमिली,
8: जॉइंट फैमिली।
2: वाओ, कितना मजा आता होगा ना सबके साथ रहने में, है ना? कभी इसके पास चले जाओ, कभी उसके पास चले जाओ, है ना? सब प्यार करते हैं, है ना? वाह, आप लोगों के ब्रदर्स नहीं है ना?
4: नहीं,
2: सिस्टर्स हैं।
4: बाबा है ना ब्रदर?
8: बाबा है, मैंने तो बाबा को साथी बनाया है।
2: हाँ, वेरी,
4: मैंने अपने भाई बनाए।
2: बहुत अच्छा, भगवान को आप लोगों ने
4: भाई बनाया
2: बनाया
8: मेरे तो सब कुछ है,
2: सब कुछ है, क्या बात। अच्छा ये बताओ, घर के काम कौन करता है, आप लोगों में से कौन कौन करता है?
4: मैं।
2: सब करते हो? क्या क्या करते हो घर पे?
4: झाड़ू मारना, पोछा,
8: बर्तन धोना,
4: खाना धोना, खाना बनाना,
8: खाना बनाना,
2: खाना बनाना।
4: हाँ,
2: क्या बात कर रहे हो,
4: आप जो डिश बोलोगे वो हम बना देंगे।
2: सब बना लेते हो? आलू का पराठा,
8: अरे
4: सिंपल है,
2: सिंपल है। और मोमोज?
4: सिंपल है,
8: सिंपल। हम तीनों ने बनाया था एक बार।
2: आप लोग तो बड़े टैलेंटेड हो। कब सीखा आप लोगों ने ये सब?
4: मैं जब तीन साल की थी, मैं जब तीन साल की थी ना, सबसे पहले मैं आलू वाला चावल बनाया था।
2: तीन साल के थे आपने बना लिया?
4: और मैं देख देख के, मम्मी जब खाना बनाते थे ना, तब मैं मम्मी एक सब्जी वगैरह बनाती थी तो मैं भी हेल्प करती थी मम्मी के साथ। तो मम्मी बोलती थी कि तू भी जब 10-5 साल होगी तू भी देखना खाना बनाना सीख जाएगी। तो मम्मी के पास सच हुआ,
2: मम्मी को देखते देखते सीखा।
5: हाँ, हाँ।
2: क्या बात है,
5: मैं भी रोज मम्मा के साथ हेल्प करती हूँ स्कूल से।
4: मम्मा तो सबसे बड़ी गुरु है हमारे सिखाने वाले।
2: हाँ। सब मम्मा सिखाते हैं ना। हाँ। आपने किससे सीखा?
4: मम्मा से। मम्मी पापा दुकान जाते तो बोलते आज तुम बना लो, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है बना लेंगे, आप लोग बस आराम से आ जाना फिर खा के सोचेंगे।
2: और आप?
8: मैं भी वही बोलती हूँ।
2: क्या करते हो, क्या बनाते हो आप?
8: और रोटी बना सकती हूँ, फिर आलू की भाजी, पोहे, मैगी तो सबको आती है वो भी, और राइस।
2: रोटी बना लेते हो सब? गोल गोल बना लेते हो सारे?
8: हाँ, रोटी तो बहुत सिंपल है। मेरी ज्यादा गोल नहीं बनती,
2: धीरे धीरे हो जाते ना, कोई बात नहीं, थोड़ी गोल नहीं होती, दो भी अच्छी होती
4: है। की बन गोल होती है।
5: मेरी गोल बन जाती है।
4: मेरी भी गोल बनती है।
2: पराठे तो देखो ट्रायंगल बनते हैं, वो भी मस्त होते हैं।
8: मैं ट्रायंगल बनाती हूं।
4: मेरी मामी स्टार को भी बना देती है, कभी हार्ट बना देती है, अलग अलग
2: स्टार भी कितना अच्छा लगता है।
4: मेरी मामी की बेटी 5 साल की है, वो अभी गोल गोल रोटी बनाना सीख गई है।
2: अरे आप लोग तो बहुत टैलेंटेड है। अच्छा ये बताओ, किसी
4: मुझे लच्छा पराठा बनाने भी अच्छा लगता है।
2: वो तो डिफिकल्ट होता है ना, धीरे धीरे, लेकिन आप बनाते हो, वेरी गुड। अच्छा आपको लगता है भाई जो होते हैं वो लोग काम करते हैं घर पे ये सब, या उनको
4: नहीं? नहीं, वो नहीं करते, बस सोते हैं, फोन में बिजी रहते हैं,
5: या फिर मारते ज्यादा हमें।
2: मारते? हाँ, हाँ। फिर आप लोग भी मारते हैं वापस जवाब में?
5: मारना, झूठ झूठ बोलते हैं
4: मम्मी पापा से, झूठ झूठ बोलते हैं।
2: क्या बोलते हैं?
5: मारा हमने, मारा,
2: अरे इसने मारा, मैंने नहीं मारा।
4: मारा नहीं है तो भी झूठ झूठ बोल देते
8: हैं। मारते मैं, मेरे भैया ने कभी मजाक में मारा तो मैं भी मजाक करती हूँ उसके साथ।
2: करते हो आप भी?
8: हाँ, वो मारता नहीं है, मजाक करता है बस।
2: बड़े भाई है आपके?
8: हाँ,
2: इसीलिए। आप क्या बोल रहे थे?
4: मतलब जैसे अगर मेरा भाई है छोटा सा, मतलब मेरी मासी का बेटा, वो अगर बदमाशी करते है मैं उसको कुछ नहीं बोलती, वो जाके सीधा मेरी मासी को बोल देता है, फिर मासी से मुझे डांट पड़ती है।
2: डांट पड़वा देता है ना?
4: हाँ,
5: वो मेरा भी भाई है, उसका नाम निया है, छोटा है, 5 साल का है, मेरे मामा का लड़का है। अगर कोई चीज हमें दिलाइए तो जब वो चीज मेरी खत्म हो, उसकी पहले खत्म हो जाएगी और मैं खाती रहूंगी ना, तो उसकी नजर मेरी चीज पर है
4: और मांगते रहेगा,
2: फिर अपना खत्म करके फिर अपना
4: दोबारा मार भी खिलाएगा
5: और अलग से खरीद के भी देते हैं उसे।
4: हाँ,
2: उसको एक्स्ट्रा खरीद के देते हैं? क्यों
4: पता नहीं,
5: रोता इतना।
2: ओ, ऐसा
4: बहुत परेशान करते हैं भाई ना।
2: परेशान करते हैं ना भाई?
4: हाँ, जब छोटे
5: छोटे तो ज्यादा करते हैं,
2: छोटे होते हैं तो
5: अपने जितने बहुत करते हैं।
8: मुझे जो भैया अंकित, मेरा भैया, मुझे जो प्रोजेक्ट मिलता है स्कूल में वही करते हैं, मैं नहीं करती क्योंकि लिए थोड़े हार्ड हार्ड होते तो भैया करते हैं।
4: मेरी भी मेरी दीदी करती है।
5: मेरा जैसा भाई अंकित, अगर उसकी अगर मैं कंप्लेंट भी करूँ ना तो इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है।
2: किसे झूठ बोलता है? मम्मी को बताते हैं झूठ झूठ?
4: एक्चुअली भाई लोग थोड़े छोटे होते हैं तो
5: बदमाश भी होते
4: हैं मम्मी पापा के।
2: बदमाश छोटा वाला जो बच्चे होते हैं वो लाडले होते हैं ना?
4: हाँ, छोटे वाले भाई, और बहुत झूठ बोलते हैं लोग,
2: इसलिए बच जाते हैं।
4: और उल्टा हमको मार पड़ती है,
2: बड़े वालों को मार पड़ती है ना?
5: सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है।
2: बड़ी गलत बात है ना,
4: भाई लोग का संभालना ही हमारा ही है,
2: बड़े भाई बहनों के साथ होता है ये।
5: सारी जिम्मेदारी हम पे ही रहती है उनकी।
4: जैसे मैं,
2: जिम्मेदारी रहती है बड़े भाई बहनों, तो लगता है ना कि वो भी ध्यान रखेंगे, संभालेंगे, है ना? प्यार भी करते हैं बड़े भाई बहन, लेकिन
4: जैसे मेरी एक बहन है,
5: अगर मैं इसे कुछ बोल दूँ तो ये मुझे डांटती है। हाँ, और अगर इसे ऐसा कुछ बोल दे तो मैं इसको सीधा मारती हूँ।
2: अच्छा, ऐसा?
4: अगर कोई ये मुझे बोलती है ना, ये सीधा लगा देती है।
2: मतलब मेरी बहन को कुछ नहीं बोलती।
4: हाँ, कोई बड़े हो कि छोटे हो, बोल देता गुस्सा आता है तो मैं अगर मारती वारती तो नहीं, बस बोलती हूँ मेरी दीदी को कुछ मत बोलना, मेरे को जो करना है करो।
5: पापा मेरी दीदी को बोल देती है।
2: पापा को भी बोल देते हो?
5: हाँ,
2: कि मेरी दीदी को कुछ नहीं बोलना।
5: हाँ, मेरा भी छोटा भाई है नियर, उसको ना क्या हुआ था, कुछ तो होता था, तो उसको चाची ना बेलन लेके आ रही थी मारने के लिए, तो फिर मैंने उसको पलंग के नीचे छुपा के बैठ गई वहां पर.
2: बचा लिया ना. बड़े भाई बहन बचा लेते हैं.
8: और कभी बस पापा को भैया पे गुस्सा आता है तो मैं रोने लगती हूँ, तो पापा शांत हो जाते हैं.
2: हाँ, तुमने बड़े भैया को भी बचा लेते हो.
4: तो बिना भाई लोग सुधरते नहीं है.
2: तो भी नहीं सुधरते.
4: नहीं,
2: क्या शैतानी करते हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है?
5: हमारे सामान तोड़ देंगे.
2: हाँ,
5: कुछ भी कर सकते हैं, पेपर भी फाड़ देंगे.
4: उन लोग खुद का तोड़ के खुद का फाड़ के हमारे पर.
8: और अपने भाई को अपन बचाए तो वो बाद में फिर मम्मी आपको अगर हमको मार रही होती है तो और वो हंसते
4: और उल्टा उल्टा बोलते
5: हैं और झूठ बोलते हैं.
2: अच्छा,
8: कि उसने ऐसा किया था, उसने मुझे मारा था.
2: ऐसे बोलते रहते हैं. पर आप लोग तो उनको बचाते हो.
4: पर क्या करे, भाई तो हमारे ही है.
2: हाँ. फिर उनकी पिटाई होती तो आप लोग नहीं बोलते ऐसे कि अरे इसने और किया था मम्मी?
8: नहीं, नहीं,
5: क्योंकि जब वो चीज गलत होती है तब
2: ऐसे नहीं बोलते. ऐसी शैतानी के लिए, मस्ती के लिए नहीं बोलते.
8: नहीं,
4: खुद के भाई को मार खिलाने में देख
5: मजा नहीं आता. देख के अच्छा
2: बुरा लगता है ना.
4: फिर लास्ट में बात नहीं
8: उनको मारने से बहुत अच्छा लगता है.
2: वो पिटवाते हैं तो उनको. अच्छा अच्छा, भाई लोग क्यों नहीं किचन का काम सीखते? आप लोगों ने तो सबने सीखा है, इतना कुछ आता है.
8: मेरे
5: उनको इन सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है.
4: नहीं है, बस खेलने में, मोबाइल देखने में, बस इससे नहीं है.
8: मेरे भाई ने ये मेहती के पराठे बनाना सीखा है मम्मी से.
2: अरे वाह, तो उन्होंने खुद बोला होगा कि मम्मी मुझे सिखाओ, कि मम्मी ने सिखाया.
8: नहीं, हम जब इधर आ रहे थे मधुबन तभी मम्मी बोली, अभी वो पापा और भैया ही घर पे, तो उसके लिए फिर वो पापा रोटी बना लेते और भैया ये पराठे.
2: अरे वाह, तो मतलब मम्मी सिखा के आए ना.
8: हाँ.
2: बहुत अच्छा. तो बाकी लोगों के भाई लोग नहीं सीखने आते ना? मम्मी बुलाया अगर सिखाने के लिए कि आओ सीखो तो भी नहीं आएंगे?
8: नहीं, टाइम नहीं है.
4: टाइम नहीं है मम्मी,
8: टाइम नहीं.
4: हम जा रहे खेलने जा रहे हैं.
2: अच्छा, ऐसा.
8: टाइम नहीं है.
4: हम भी बोल रहे
2: हमें भी कुछ बना के खिलाओ, हम तो बनाते हैं.
4: नहीं, वो सीधा दुकान से खरीद के लाते हैं.
2: अच्छा.
4: और बोलते हैं ये लो हमें बना के दिखा दे.
5: और अगर
2: अच्छा
5: और मतलब हमें ही डांटते हैं और उनका सारा सामान लेने भी हम ही जाएं.
8: मुझे किचन का सामान जो जैसे कि पोहे का पैकेट नीचे जाने में मजा आता
2: है ना, लेके आने में. दुकान पे जाओ, लेके आओ, थोड़ा बाहर निकलो, है
5: ना. अकेले में नहीं,
2: धूप में
5: नहीं.
8: बारिश के मौसम में बहुत मजा आता है. ठंड और बारिश के
2: भीग में बड़ा
4: मजा आता है. भीग भीग के आने में मजा आता है.
2: मुझे भी अच्छा लगता है भीगना, बड़ा मजा आता है. फोन में लगे रहते हैं ना इन लोग का. ये आप लोग फोन नहीं खेलते इतना?
8: ज्यादा तो नहीं,
4: कभी कभार जब मन होता है
5: 10 मिनट
4: देखने से हम कृष्ण वाला कार्टून देखते हैं.
5: हाँ, कृष्णा लाइफ या फिर कोई प्रिंसेस का कार्टून,
2: वो अच्छा लगता है.
8: मैं तो
4: अभी कृष्णा का देखते
8: हैं. मैं कभी कभी 10 मिनट अभी मोबाइल ले रही हूँ तो मैं भाग्य विधाता मूवी है बाबा की, वही देख रही हूँ.
2: अच्छा अच्छा, आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे आपने कहा कि आप लोग बाहर भी जाते हो, खेलते भी हो, घर का काम भी करते हो, तो क्लीन कौन रखता है अपना कमरा? ज्यादा क्लीन कौन रखता है?
4: मैं मुझे अपना घर का कमरा क्लीन करना बहुत
5: पसंद. मुझे बिल्कुल गंदगी नहीं पसंद.
2: बिल्कुल नहीं,
4: नहीं. और डिजाइन भी करने में अच्छा लगता है.
5: हाँ, और साथ में
8: मुझे पेंटिंग करने में पसंद है.
4: मुझे भी.
5: मुझे
2: भाई लोग क्लीन रखते हैं कि नहीं?
4: नहीं,
8: नहीं.
4: वो तो कुछ भी खाएंगे तो यहाँ पर फेंक देंगे
5: या फिर हमें बोलेंगे दीदी डस्टबिन में फेंक के.
2: अच्छा, खुद डस्टबिन में भी नहीं डालते?
4: दीदी मैं इधर जा रहा हूँ, थोड़ा मेरा रूम को सफाई कर देना, ऐसे बोल देते.
2: फिर कर देते हो आप?
8: करना ही पड़ता है,
4: नहीं तो मम्मी पापा को बोल देते हैं.
2: लेकिन फैलाया तो उन्होंने, तो फिर क्या बोलेंगे मम्मी पापा को? मम्मी
8: पापा बोलेंगे छोटा है कर दे,
2: छोटा है कर दे, है ना, छोटा है. अगर बड़ा होता
8: तो मम्मी नहीं करते बिल्कुल.
4: उन लोग से कराते,
2: उन लोग से ही कराते.
8: उनको कान पकड़ के लेके आते हैं और करवाते हैं.
4: और जब उन लोग बड़े हो जाते हैं ना तो हम भी बोलते हैं मम्मी इसको करने बोलो.
2: बड़ा ही है.
4: बड़ा है, हम छोटे हैं, उसको करने बोलो.
2: मतलब बड़ों को, बड़े जो होते हैं उनको करना पड़ता है.
4: हाँ.
2: है ना सारा काम?
4: छोटे छोटे भाई लोग, बहन लोग, वो लोग नहीं करते बस.
2: अच्छा, जब ये बड़े हो जाएंगे भाई आपके, मान लो आज से 10 साल बाद, हाँ. तब फिर आप उनका काम करोगे कि वो खुद करेंगे?
4: खुद करेंगे।
5: आदत बनानी चाहिए,
2: बनानी चाहिए ना।
4: अकेला रहेगा तो खाना भी बनाएगा, रूम भी साफ रखेगा, सीख जाएगा।
2: आपको क्या, आपके तो बड़े भैया, वो करते हैं कि आप करते हो?
8: दोनों कर लेते हैं, अल्टरनेट।
2: अरे वाह। और आप?
8: और अगर कभी भैया ने मेरा काम नहीं सुना बाय चांस, तो मैं उसको पीटती हूँ।
2: आप तो इतने प्यारे प्यारे हो, आपका ज्यादा जोर से लगता ही नहीं होगा। अच्छा, लेकिन आप लोग को सबको क्लीनलीनेस बहुत पसंद है।
4: और मुझे भी खेती भी अच्छा लगता है। मुझे भी खेती करना अच्छा लगता है। पानी के अंदर पैर रखो, फिर धान दो। हमारे गांव पे ना धान टाइम ना हम ही जाते हैं।
5: मुझे जरा
4: गांव में मुझे बहुत पसंद है, गांव में मैं अभी भी करके आई हूँ।
5: मुझे ज्यादा प्लांटिंग करना बहुत पसंद है, प्लांट्स लगाना।
4: मुझे भी, मैं क्या सोचती हूँ बड़े होके ना,
5: मुझे हरियाली
4: बनू,
5: ग्रीननेस बहुत पसंद है मुझे।
4: मेरा खुद का रूम हो बड़ा सा, फिर मैं उसमें गार्डनिंग करूँ।
2: क्या बात है। आजकल तो पता है जो इंडियन फार्मर्स हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑर्गेनिक खेती, मालूम है आप लोग को कितनी ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक चीजें तो सेल भी होती है, अच्छे प्राइस भी मिलता है ना, और डिमांड भी बहुत बढ़ रही है आजकल, क्योंकि हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, केमिकल फ्री रहना चाहता है, तो वो भी बड़ा अच्छा प्रोफेशन है ना, कि आप अच्छे से।
4: मेरे दादा करते हैं।
2: हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है, सबको हेल्दी रखने वाला है।
8: और पिछले जमाने में मेडिसिन भी नहीं थी, वो कुछ चोट लग जाती,
5: जड़ी बूटी, हाँ, नीम की पत्तियाँ, इन सब से।
8: और कुछ लग जाता था, नीचे गिर जाते थे, तो वो हल्दी लगाते थे।
5: हल्दी, मेरी मम्मा मुझे हल्दी लगाती है।
4: लंबा लंबा पत्ता होता है, वो भी लगाने से खून बंद हो जाता है।
5: हाँ,
2: तो मतलब हम डॉक्टर, हम ये इसके भी बन सकते हैं ना, आयुर्वेद के और इन चीजों के भी बन सकते हैं, हमें पता हो कैसे काम करना है।
5: पहले अगरबत्ती ये सब था नहीं, पहले कपूर ज्यादा जलाया जाता था।
2: बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग।
4: मुझे अगरबत्ती
2: बनानी आती है।
4: हाँ, सिंपल है,
5: बहुत सिंपल
2: है ना। आप लोग के लिए तो कुछ डिफिकल्टी नहीं है?
5: नहीं,
4: बस लड़के लोग के थोड़ा डिफिकल्ट।
2: लड़कों के लिए डिफिकल्ट है, क्यों?
5: उन लोग ने वो सब चीज पहले सीखी नहीं है, तो फिर एंड में जाके उन लोग के लिए डिफिकल्ट हो गई।
2: सीखा नहीं उन लोगों ने,
4: फिर उन लोग ऐसे सोचेंगे हमने बचपन में करे होते तो अभी हम सीख जाते,
2: बाद में ऐसे सोचेंगे। बचपन में सीखा होता, अभी तो मोबाइल ही देखते रहते हैं।
8: मेरा भाई ज्यादा तो नहीं देखता, कभी कभी लेता है।
2: तो आप लोगों ने बोलते नहीं हो कि मोबाइल छोड़ो, हमारे साथ खेलो, हमारे साथ रूम क्लीन करो,
4: उनको जितना भी बोले वो बोलते, सुन के भी ना सुना कर।
5: नहीं, मेरे भैया दीपक भैया तो सुनते हैं मेरे, मैं अगर कुछ लाने को कहूँ तो लेके आ जाते कभी कभार।
2: ओके,
4: ज्यादातर भाई लोग से तो मेरे को ज्यादातर मामा को अच्छे लगते हैं।
8: और कभी कभी मैं लेट उठती हूँ तो बिस्तर उठाना होता है ना, क्लीन करना होता है, तो भैया मुझे उठा के गाड़ी पे डाल देते।
2: अच्छा।
8: और मुझे पता ही नहीं चलता, एकदम डीप नींद,
2: डीप स्लीप पे होते। अरे वाह, फिर आप उठते हो तो आपको लगता है कहाँ हूँ
8: मैं वही सोचती हूँ मैं इधर कैसे क्या आ गई,
2: कहाँ से आ गई।
4: मेरे मामा भी ऐसे करते हैं, कभी कभार आते हैं ना तो कभी इधर से ला देते हैं, कभी उधर से ला देते हैं। मैं नींद से जगती हूँ, तुरंत उठ जाती हूँ, मैं यहाँ कब आ गई,
2: कहाँ से आ गई।
4: जब ना नींद से उठते ना, अचानक से कुछ भी उठ देखते थे ना, शॉक लगता, शॉक हो जाता है
2: एकदम से, उठने पे शॉक लगता है ना।
5: हाँ,
4: चल चल के थोड़ी ना यहाँ पर आ सकते हैं,
2: दो मिनट तो ऐसे समझने में लगता ना। बस है ना,
8: फिर बाद में समझते हैं कि भैया ने इधर डाला था।
5: और इतनी गहरी नींद में भी रहते हैं।
2: तो मतलब बड़ा मजा आता है आपको फैमिली के साथ सब को, है ना, इंजॉय करते हो आप लोग, वेरी गुड। चलिए, फिलहाल तो हमारा वक्त हो गया है अपने दोस्तों को बाय बाय कहने का, लेकिन बड़ा मजा आया आप लोगों से बातें करके, है ना। और आप लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हो इतने यंग एज में, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो ऐसे ही कॉन्फिडेंट रहना, ऐसे ही सीखते रहना,
5: हमेशा इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं,
2: इंडिपेंडेंट बनना है, सबको इंडिपेंडेंट बनना है, चाहे वो भाई हो,
5: किसी पे डिपेंड नहीं रहना है।
2: वेरी गुड, सब आप लोग एकदम पावरफुल हो। चलो फिर हम अपने दोस्तों को बाय बाय बोल दे इसी बात
3: पे।
5: ओम शांति,
4: ओम शांति।
2: तो दोस्तों फिलहाल लेते हैं इजाजत, और फिर मुलाकात होगी बच्चों की दुनिया के अगले एपिसोड में। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए,
3: मुस्कुराते रहिए।

0: बेस्ट राइटर अवार्ड गोज टू मिस सुरेखा।
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंट्स इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।

0: स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बाल संसार में, सही दिशा हेतु मार्गदर्शन द्वारा न्यायोचित निर्णय। आज के वक्ता हैं डॉक्टर अजय शुक्ला। विषय की महत्ता, न्यायोचित निर्णय लेने के महत्व पर संक्षिप्त चर्चा। मुख्य विषय, अनुभव से सीखना, जीवन में अनुभवों से सीखने का महत्व और यह कैसे सही निर्णय लेने में मदद करता है। मूल्य और नैतिकता, हमारे मूल्य और नैतिकता का न्यायोचित निर्णय लेने में योगदान। ज्ञान और समझ, विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने और सूचित निर्णय लेने के लिए ज्ञान और समझ का महत्व। सलाह और समर्थन, परिवार, दोस्तों, शिक्षकों और गुरुओं से सलाह और समर्थन प्राप्त करने का महत्व। आत्मविश्वास और अंतर्ज्ञान, आत्मविश्वास और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना और अपनी भावनाओं को सुनना। बचपन में सही दिशा बोध, प्रेम और सुरक्षा, बच्चों को प्रेम और सुरक्षा का वातावरण प्रदान करना। सकारात्मक मूल्य और नैतिकता सिखाना, बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाना। समय बिताना, बच्चों के साथ समय बिताना और उनकी बात सुनना। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो हमें कॉल करें और अपने सवाल पूछें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए बाल संसार।
1: बाल संसार, बाल संसार।
2: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूँगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और बाल संसार कार्यक्रम में जैसे कि हम लोग अलग अलग विषय को लेकर बातें करते हैं, और आज हम लोग का जो विषय है वो बहुत ही यूनिक विषय है जिसके ऊपर आपने कभी सोचा नहीं होगा, और सोचा भी होगा तो कहीं कहीं हमें जो है उसमें डिसीजन लेने में या उस पर काम करने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं। सही दिशा हेतु मार्गदर्शन या फिर इसके बारे में चिंतन या निर्णय कैसे लेना चाहिए, इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आज के हमारे वक्ता जैसे कि आप सभी जानते हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी हैं। अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
3: बहुत आनंद में हूँ, सादर प्रणाम। ओम शांति जी।
2: ओम शांति। तो आइए, आज का जो विषय है हमारा उस पर हम लोग कुछ चार प्रश्न आपको पूछेंगे। पहला प्रश्न है, अनुभव से सीखने का महत्व क्या है और ये न्याय उचित निर्णय लेने में कैसे मदद करता है?
3: बहुत ही सटीक प्रश्न है, और एक्सपीरियंस के बारे में ये कहा जाता है कि अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। कई बार बच्चों के जीवन में भी उनके कुछ वर्षों पहले के जो अनुभव होते हैं उनकी पढ़ाई के संबंध में या अपनी लाइफ में करियर का जो डेवलपमेंट वो कर रहे होते हैं, करियर काउंसलिंग को वो समझते हैं कि अगर मार्गदर्शन हमें मिले तो हम सही दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। ये सारी बातें उनके मन में रहती हैं और इसके प्रति वो अवेयर भी रहते हैं। कई बार करियर कैंप वगैरह स्कूल में, कॉलेजेस में लगाए जाते हैं, और कई बार सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके भी थोड़ी सी ऊहापोह उनके मन में रहती है। तो कई बार वो अपने सीनियर से पूछते हैं, कई बार उनकी स्कोरिंग के लिए काउंसलर ये बोलते हैं कि लास्ट मोमेंट पर या पिछले कुछ वर्षों में किस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर रहे थे, तो वो बताने का प्रयास करते हैं कि स्कोरिंग तो हमारी इसमें अच्छी है, लेकिन जैसे ही काउंसलर कहते हैं कि नहीं आप एक काम करिए कि इसमें आप 80+ में लेके आ रहे हैं तो आप ये सब्जेक्ट ले लीजिए, तो वहाँ पर वो धीरे से कहने का प्रयास करते हैं कि मेरी स्कोरिंग तो है लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ थोड़ा सा एक अंतर्द्वंद क्रिएट होता है, और वो चाह रहे हैं, उनकी अभिलाषा है कि ये सब्जेक्ट मैटर है और ये वो जान भी रहे हैं, लेकिन एक कन्फर्मेशन के लिए कई बार उनको डिस्कशन करना होता है, अपने बड़ों से चर्चा करना होता है, विचार विमर्श करना होता है। स्वतंत्र वे में जब वो रहते हैं अपने सर्कल के साथ में, अपने जो उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं, तो उनके बीच में जरूर वो कहते हैं कि मैं अपने इस फील्ड में करियर बनाना चाहता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा द्वंद है। द्वंद से यहाँ अर्थ है कि कई बार आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट को, आप कम पढ़ रहे हैं, थोड़ी मेहनत कम कर रहे हैं, और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है वहाँ संभावनाएं बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हाई स्कूल के अंदर आप हैं तो टेंथ के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बड़े ही आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं है या साइंस में नहीं है, लेकिन बाई फोर्स या ट्यूशन या कोचिंग लगा के अपने आप को आप थोड़ा सा इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं इसमें अच्छा मैं रैंक लेके आ जाऊँ। तो होता क्या है कि एक्सटर्नल जो वैल्यू है वो ये है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, बाई फोर्स उसको आप पढ़ रहे थे, गाइडेंस आप ले रहे थे, तो उसमें आपने स्कोर अच्छा कर लिया, लेकिन उस सब्जेक्ट में अगर ये गाइडेंस नहीं मिला होता तो वहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट को पास करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इस बीच में क्या हुआ कि जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, फॉर एग्जांपल हिंदी लिटरेचर आपको बहुत अच्छा लगता है, इंग्लिश लिटरेचर आपको अच्छा लगता है, संस्कृत लिटरेचर अच्छा लगता है, और ये आप जानते भी हैं कि ओवरऑल लाइफ में अगर ये लिटरेचर में से किसी एक भी लिटरेचर को हम बहुत अच्छा फॉलो कर लेते हैं तो हमारा जो फ्यूचर है, हमें जो वर्किंग प्लेस मिलेगा वहाँ पर एक मास्टरी होने से उस सब्जेक्ट के संबंध में हम मनन चिंतन कर पाएंगे। मनन चिंतन में इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ है तो वहाँ आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उधार की थिंकिंग नहीं होगा, मैंने किसी ने सोचा है और मैं उसको केवल प्रयोग करूँ। लेकिन अगर भाषा पर बहुत अच्छा आपका नियंत्रण है तो आप क्या करेंगे, उस भाषा में भले ही वो हमारी मातृभाषा हो, रीजनल लैंग्वेज हो, लोक संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन किसी में आपका एक कमांड होता है तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल, आपकी पर्सनैलिटी का लेवल, आप जो कुछ भी संसार तक, जगत तक पहुँचाना चाह रहे हैं वो आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आपके पास में होती है तो आप विश्वास से भरे होते हैं। अब ये सब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो हिंदी इंग्लिश या संस्कृत लिटरेचर पढ़ने के लिए आपके पास में समय नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें आप वीक हैं उसमें आपको स्ट्रेंथन करने के लिए परिवार से या सोसाइटी से या स्कूल से या एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से आपको गाइड किया जा रहा है। अब स्कोर तो आपने वहाँ अच्छा लेके आ गए, जिन सब्जेक्ट को आपने पढ़ा ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है या बाकी और भी आपका इकोनॉमिक्स है, तो ये सब्जेक्ट आपके अछूते रहेगा, लेकिन इसको आपने ओवरनाइट प्रिपरेशन किया और आप अच्छी स्कोरिंग लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ या दूसरी साइंस में आपका 80% है और इसमें आप 70% ले आए। अब लोगों ने आपसे पूछा कि भैया ये जिसमें इंटरेस्ट नहीं था इसमें तो आपने पढ़ाई नहीं की, बोले इंटरेस्ट था ना मेरा तो कम टाइम में भी मैं रिकवर कर लेता था। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि दो फैक्टर आप देखिए कि एक आपका इंटरेस्ट एरिया अगर होगा और उस क्षेत्र में आप जाते हैं भले ही वहाँ गाइडेंस नहीं मिला है, तो आप कल्पना करिए कि अगर हिस्ट्री में या इकोनॉमिक्स में आपको गाइडेंस मिला होता तो आपका स्कोरिंग इट मे बी पॉसिबल कि वो 90% से ऊपर होता। तो ये दोनों जब कंपेयर करते हैं, और इसको कंपेयर करने में हमें कौन मदद कर रहे हैं, हमारे टीचर मदद कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स मदद कर रहे हैं और काउंसलर मदद कर रहे हैं, और काउंसलर आपको ये कह रहे हैं कि आप एक काम करिए कि जो इंटरेस्ट एरिया है उस क्षेत्र में आप जाएं, लेकिन सोसाइटी आपको क्या कर रही है कि आप मैथ साइंस लो, इंजीनियर बनो, दूसरी फील्ड में आप जा सकते हो, ये सारी बातें आपको कहेंगे। फिर कई बार तो ये द्वंद जो मैं विषय सिलेक्शन का बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरे भारत में ये बड़ी एक प्रॉब्लम है कि हम सब्जेक्ट कैसे चुने और ऐसी स्थिति में मार्गदर्शक हमें कितने हद तक मदद कर सकते हैं, इस प्रकार के द्वंद बने रहते हैं। और उसका परिणाम देखिए कि अगर आपने बाई फोर्स साइंस ले लिया, अब आपने ट्वेल्थ साइंस से कर लिया, जैसे ही ग्रेजुएशन में आए तो आपने कॉमर्स ले लिया, और जैसे ही पीजी करने लगे तो आपने आर्ट्स ले लिया। ऐसे बच्चों की भीड़ है, और जब ये बच्चे अप्लाई करते हैं कहीं और हम लोग एज ए एक्सपर्ट बन के वहाँ इंटरव्यू लेते हैं, तो जब ये बायोडाटा देखते हैं कि जिस बच्चे को ये नहीं पता कि जो उसने सब्जेक्ट लिया है उसने पूरी यात्रा तो की नहीं, मैथ साइंस लिया था तो पूरी यात्रा पोस्ट ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए थी। अब मैथ साइंस के बाद में, अब मैथ साइंस लेना हमारे लिए क्या हो गया, एक स्टेटस सिंबल बन गया कि बाकी बच्चों ने लिया है वो क्या बोलेंगे मेरे को। तो ये सारे दबाव के कारण आपने सोशल प्रेशर के कारण मैथ साइंस ले लिया। अब वही आप धीरे से बाद में आते हैं तो बोलते नहीं अब मैं बायो कर लेता हूँ, फिर कॉमर्स कर लेता हूँ, और लास्ट में आप आर्ट से। अब ये जो रेशियो है या सब इसमें जो कन्फ्यूजन है, तो एक कन्फ्यूजन वाली व्यक्तित्व तो आपके जीवन में प्रिपेयर हो गई, और वो जब इंटरव्यू प्रोसेस में आप लिखते हैं कि मैथ साइंस भी लिया, उसके बाद में हमने बायो ले लिया, उसके बाद कॉमर्स ले लिया, उसके बाद आर्ट्स ले लिया, तो आप कहीं के नहीं रहते हैं क्योंकि स्पेशलाइज आपके पास में कुछ भी नहीं है। पीजी आपने किया, पीजी किस में किया, तो बड़े समाजशास्त्र में कर लिया। अब बताइए चला व्यक्ति मैथ साइंस को लेके और न जाने वो उसको भोपाल से दिल्ली जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है, और वो चला कहीं और गया, या गया भी तो ब्रेक जर्नी करते गया, तो इन इन जगहों पर गया तो वो कहीं पहुंच नहीं पाया। यात्रा उसने जारी करना शुरू किया लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाया। ऐसे हजारों बच्चों की लाइफ कोलॉप्स हो जाती है, और कई बार चाहकर भी अपना करियर वो बहुत अच्छे से नहीं बना पाते हैं। इसलिए मार्गदर्शन और सलाह की अति आवश्यक है, लेकिन उसमें जो सेल्फ का इंटरेस्ट एरिया है और बाई फोर्स जो हमने स्कोरिंग किया है, वो दोनों को अपने बड़ों को हमें शेयर करना पड़ेगा। जी
4: जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया है, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि कैसे हम नया उचित निर्णय लेने में बच्चों को मदद कर सकते हैं। और कई बार अनुभव के आधार पर सीखने की महत्वता को अगर ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा उनको हेल्प मिलेगी। दूसरा एक सवाल यहाँ पर आता है, मूल्य और नैतिकता का न्यायोचित निर्णय लेने में क्या योगदान होता है?
3: देखिए यहाँ मूल्यों की बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारे सामने, बच्चों के सामने दो एस्पेक्ट हैं। अगर एक हाथ में उनका करियर डेवलपमेंट है तो एक हाथ में उनकी लाइफ है। अब प्रश्न उठता है कि जहाँ वो करियर के डेवलपमेंट की बात करते हैं और बाई फोर्स या तमाम स्ट्रेस में रह के ये करते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि वो एक भौतिकवादी संसार में जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल कर लेते हैं, सोशल सिक्योरिटी उनके पास में आ जाती है, लेकिन बाद में उनको ये समझ में आता है कि व्हाट इज़ दिस लाइफ, ये जीवन क्या है। अब इसके लिए एक स्टेटमेंट मैं अगर दूं तो मैं जगह पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था कि एक राइटर ने कहा कि वह जिंदगी भी क्या है जो चिंताओं से परिपूर्ण हो और मेरे पास खड़े होकर देखने का समय नहीं है कि आखिरी जिंदगी क्या है। तो व्हाट इज दिस लाइफ इफ वी फुल अप केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो ये बड़ी जो दुविधा होती है उस समय जब बच्चे मुझे देश में से या विदेशों से फ़ोन करते हैं कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया, गाड़ी है, बंगला है, नौकरी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक करियर तो हमारा बन गया लेकिन लाइफ को हम कैसे बनाएं। तो वहाँ पर इन नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है और नैतिक मूल्य का अर्थ यहाँ पर ये बहुत बड़ा है कि वो जीवन के प्रति एक बड़े दृष्टिकोण के साथ में जीना शुरू करें। ये जो जिंदगी है, इस जिंदगी की जो महत्ता है, जो इसका अमूल्य स्वरूप है, इसको जब वो जानने और समझने का प्रयास करता है और ये पैरेलल रूप से काम करते हैं, अर्थात करियर के साथ में लाइफ का भी हम प्लान करें कि अल्टीमेट हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें कई बार अब बहुत सारे बच्चे उद्योगपति बन जाते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अपना सेल्फ एनजीओ में काम करते हैं, ये सारी स्थिति आती है। लेकिन इन्हें जब बाधा आती है और उस समय नैतिकता और मूल्य को लेकर जब प्रश्न खड़ा होता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी स्थिति में वो खरे उतरते हैं। खरे नहीं उतरने का सेंस क्या है कि उनके जीवन में उन्होंने कोई डिमार्केशन लाइन आइडेंटिफाई नहीं की। फॉर एग्जांपल कि एक व्यक्ति मुझे मार्ग में मिले, मुझे इंदौर से भोपाल जाना है, गाड़ी में बैठा और बातचीत होते होते बहुत समय तक मैं बातचीत नहीं कर पाया और मैं बिल्कुल शांत होकर बैठा, तो उन्होंने गाड़ी को काफ़ी स्लो किया, बातचीत मेरे से शुरू की और ये पूछने का प्रयास किया कि मेरे पास खूब पैसा है और जिस गाड़ी में आप चल रहे हैं मेरी ही गाड़ी है, मैं उद्योगपति हूँ और आप मुझे दिखे तो मैंने आपको गाड़ी में बिठा लिया और हम यात्रा कर रहे हैं, भोपाल तक हमें जाना है, लेकिन आपसे कुछ ऐसे वाइब्रेशन मिल रहे हैं जिससे मुझे लग रहा है कि आप मेरी बड़ी मदद कर सकते हो। तो मैंने बताया, बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। तो उन्होंने मेरे से एक प्रश्न किया कि मैं रुपया, पैसा, नाम सब मैंने कमाया है और अब मुझे शांति नहीं है, रात को नींद नहीं आती है। तो मैंने बोला कि रात को नींद नहीं आती है तो फिर आपके पास जो आपने मेजर प्रिकॉशंस लिए हैं वो क्या लिए हैं, मूल्यों को लेके क्या आपका जीवन है। तो उन्होंने बताया कि आनंदमयी मार्ग में मैं जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे प्रवचन भी रात को सुनता हूँ, एक दो बजे तक सुनता रहता हूँ फिर सो जाता हूँ, लेकिन कहीं कुछ कंक्लूजन नहीं मिला। तो मैंने उनको बताने का प्रयास किया कि देखिए कई बार सारे मार्ग में बहुत अच्छे इथिकल वैल्यूज़ हैं, सभी धर्मों के अंदर हमें जीने का मार्ग बताया जाता है और आप कह रहे हैं कि एक मेच्योर सिचुएशन 35-40 के बीच में आप मूव कर रहे हैं लेकिन आप वो चीज़ नहीं प्राप्त कर पाए जो आप पाना चाहते थे। इसका मतलब ये कि करियर का पार्ट तो पूरा हुआ, वहाँ मेरी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो लाइफ का पार्ट है इसमें मैं कुछ आपको कम्युनिकेट करता हूँ। हो सकता है कि आज ही यात्रा 3 घंटे की इसमें पूरी बात नहीं भी हो पाए तो फिर मिलेंगे, तो वो नहीं, मैं गाड़ी स्लो चलाऊंगा, आप तो बताइए। और फिर उनके जीवन का एक मूल्य उन्होंने शेयर किया कि मैं आपकी बातचीत को, चूँकि गाड़ी के द्वार बंद हैं अच्छे से और एसी चल रहा है और हम लोग दो ही लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति और हैं जो मेरे ड्राइवर हैं साइड में, मैं गाड़ी खुद चला रहा हूं, तो मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि क्या आपकी बातचीत को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो बधाई इस बात के लिए कि एक बहुत बड़ा नैतिक मूल्य आपके अंदर है और वो जीवित स्वरूप में, आप मेरे को नहीं भी बताते और रिकॉर्डिंग कर लेते तो मैं क्या करता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट आपने किया और कॉपीराइट एक्ट और तमाम चीज़ों के तहत में ऐसा कोई नहीं करना चाहिए, ये मूल्य है लेकिन लोग कर लेते हैं, लेकिन आपने मेरे से परमिशन ली। और मैंने कहा नहीं, सहज रूप से बातचीत रिकॉर्ड कर लीजिए, कभी भी रिकॉल करके आप सुन सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जब मैं बातें कर रहा था तो मैंने उनको ये बताया कि आप बताइए मुझे कि एक छोटा सा गहरा भाव आपके जीवन में उस समय आया होगा जब स्कूल या कॉलेज में स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई एक बात आपके दिमाग में आई होगी और वो मेरे कहने के पहले ही आप उसको अपने मुख से उस स्टेटमेंट को दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल समझ गया और मेरे को लग रहा है कि आप यही बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि उठो और जागो और उस वक्त तक मत रुको जब तक कि तुम्हें मंजिल नहीं मिल जाती। बस मैंने संवाद यहीं से स्टार्ट किया। मैंने बोला उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इस पर आपने कभी विचार किया? बोले इस पर तो विचार नहीं किया। मैंने बोला यही प्रॉब्लम है। हमारे यूथ एक पक्षीय निर्णय को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें लगा कि जो भी आपने प्राप्त कर लिया है उसमें ये बात पूरी हो गई, क्योंकि आप उठो जागो और उस वक्त तक मत रुको जब तक कि तुमको मंजिल नहीं मिल जाती। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक बात कही थी जो हमारी लाइफ में करियर के साथ साथ में हमारी लाइफ को भी स्टेब्लिश कर रही थी। तो बोले वो क्या लाइन है? तो मैंने बोला उस पर कि बाद उन्होंने कहा था कि आप क्या आप सोचते हो कि कोई आएगा और तुम्हारा हाथ पकड़ के उठाएगा तो तुम भारी भूल के शिकार हो गए हो, तुम्हें अपनी मंजिल पर खुद ही चलना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये व्यक्ति को वहां इसलिए सपोर्ट करता है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वहां एक बैरियर अगर क्रिएट हुआ तो उस समय डिपेंडेंट सिचुएशन में आप भागे, कोई हमें सपोर्ट करे, कोई मदद करे, मैं क्या करूं चाहते हैं। भले ही आपने इसको मेमोरी में नहीं रखा लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन तमाम टूल्स को आपने यूज किया होगा तब आप एक करियर को इस्टेब्लिश कर पाए हो। अब मैंने कहा कि मैं दूसरे पक्ष पर आता हूं कि जब हम विस्तार से स्वामी जी के संपूर्ण जीवन को, उनकी पूरी जो लाइफ हिस्ट्री है उसको पढ़ते हैं, उनके गुरु को जानने का प्रयास करते हैं, रामकृष्ण परमहंस को हम देखने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर आप देखिए कि संपूर्ण भारतवर्ष में रामकृष्ण परमहंस जी, माँ शारदे और स्वामी विवेकानंद सभी जगह आपको मंदिरों में ये मूर्तियाँ मिल जाएंगी। तो क्यों एक व्यक्ति के अंदर सारा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के फ्लो से स्थानांतरित हुआ? उसका सिर्फ एक कारण था कि वो पात्र बहुत अच्छा था। तो जैसे ही हम अपने आप को मूल्यगत प्रणाली में रखते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा बना के रखते हैं, तो उस स्थिति में संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वहाँ मूल्य को प्रत्यारोपित किया जा सकता है, एस्टेब्लिश किया जा सकता है, और वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वही हमारे लिए करियर के साथ साथ में लाइफ को प्लान करता है। और कुल मिला के एक शॉर्ट एग्जाम्पल दिया मैंने कि आपके पास बहुत धन है और आप कल सड़क पर खड़े होकर अगर कपड़े बांटना शुरू कर दें तो वो फिल्म जगत के महानायक के द्वारा ऐसा किया जाता है, तो वो एस्टेब्लिश फॉर्म में है, उनकी इतनी बड़ी ब्रांडिंग है कि एक छोटी सी एक्टिविटीज़ भी पूरी दुनिया उनको फटाफट शेयर कर लेगी। लेकिन आप या हम इस प्रकार की सामान्य एक्टिविटीज़ को करते हैं तो वो केवल हमारे तक सीमित रहेगी और हम उससे जो संतोष का मूल्य है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बातें जो लगती हैं देखने में या समझने में या स्वीकार करने में, उसके पीछे एक तथ्य छोटा सा है और वो ये है कि आपने ये प्लान नहीं किया कि ओवरऑल इस लाइफ में अगर मैं धन कमाऊंगा, इंडस्ट्री आपने खोली है, 100 इंडस्ट्री होगी पूरी

0: भारत में इंडस्ट्री होगी तो इस पैसे का करेंगे क्या आप? तो जैसे ही ये मैंने बोला तो आधे रास्ते में हम लोग पहुंचे थे और वहां उन्होंने गाड़ी रोक दिया। बोली ये आपने मेरी चेतना में ऐसी बात दे दी कि मेरे को अब गाड़ी चलाने का मन नहीं हो रहा है, मैं आपको फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे भी पहुँचना है, मुझे भी जरूरी है जाना, आप धीरे धीरे चलाइए, मैं चल रहा हूँ आपके साथ में। तो आप बिलीव करेंगे, मैंने जब उनसे कहा कि आप जानते हैं कि रतन टाटा जी ने अपनी लाइफ का विजन क्या रखा था, तो मैंने कहा कि उन्होंने अपने पैसे को दो जगह उपयोग किया। उनके मन में था कि संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर जो एक हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो संपूर्ण मानवता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मैं दूंगा, और दूसरा उन्हें पक्ष रखा था शिक्षा का, एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो ये दोनों ही सेक्टर को न केवल कंट्री में बल्कि दुनिया के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले और उसमें इन दोनों पक्षों पर सेवाएं दे रहे हैं। यहां अर्थ यहां है कि जो धन हमने कमाया था उसकी उपयोगिता क्या है और उसको कब तक कमाएं और कितना कमाएं, और जब आप उसको रीइन्वेस्टमेंट के फॉर्म में लेके आते हैं तो वहां पता चलता है कि आपने अपनी लाइफ का विजन बनाया था और उसका सलूशन आपको मिला। ये पक्ष आपको बहुत मदद करता है कि आपने अपने जीवन में जो भी करना है उसका एक फॉर्मेशन करियर है और दूसरा फॉर्मेशन लाइफ है, और उस लाइफ को जीने के लिए आपको विजनरी अप्रोच पर काम करना होगा। और जब आप ये काम कर लेंगे तो उस समय आपकी निर्णय शक्ति, आपकी एजुकेशन के प्रति या जो भी आपने गेन किया है, धन भी एक शक्ति है, उस शक्ति का सदुपयोग आपसे हो पाएगा। जी
1: जी जी अजय शुक्ला सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। और बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना, नदिया चले चले की धारा। तो आइए फिर से अजय शुक्ला सर से आपको जोड़ना चाहते हैं। सही दिशा हेतु मार्गदर्शन के विभिन्न सूत्र कौन कौन से हो सकते हैं और उनका भी क्या महत्व है, ये बताइए।
1: बहुत अच्छी बात है कि जब भी मार्गदर्शन की बात आती है तो उसमें परामर्श शब्द जुड़ा होता है। मार्गदर्शन कई बार हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, अपने बड़ों के अनुभवों से भी जानने का प्रयास करते हैं, और इसमें जब हम कुछ परामर्श लेने की बात करते हैं तो दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो जहाँ हमारे जीवन में मार्गदर्शन का महत्व है, वहीं हमारे लिए कुछ एडवाइस या फ्यूचर में हमसे क्या हो सकता है, हमारी अंदर जो संभावनाएं हैं उसकी तलाश काउंसलर कर लेते हैं, और उसमें आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस और थ्रेट्स और जो अपॉर्चुनिटीज़ सोसाइटी में अवेलेबल है उनको देखने के बाद वो ये बताते हैं आपको कि अभी इस दिशा में आप जाएंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। और उसके लिए उनके पास में कुछ टेस्टिंग टूल्स होते हैं। अब्रॉड में तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा किया जाता है कि छोटे बच्चों को एक समूह के अंदर रखा जाता है और उस समूह में सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं, उसमें कैमरे लगे होते हैं और वहाँ पर कुछ खेल का सामान रखा हुआ है, कुछ पढ़ने लिखने के लिए किताबें रखी हुई हैं, कुछ धर्म ग्रंथ से संबंधित हैं, कुछ लिटरेचर से संबंधित हैं। तो उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, कुछ मेडिकल्स के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, कुछ इंजीनियरिंग के सामान रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ एरिया ऐसा भी होता है जहाँ आप सोसाइटी में कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, अर्थात ह्यूमैनिटी के बेस पर कुछ चीज़ें वहाँ पर डिस्प्ले की जाती हैं। तो कुछ आवर्स उनको दिए जाते हैं, उसमें वो बच्चे अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, कई बार वो दो तीन चीज़ों में एक साथ जाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे ने अपनी अभिरुचि के हिसाब से किस एरिया में वो जा रहा है, कितना समय वो किताबों के साथ बिता रहा है, कितना समय वो गेम्स खेलने का वहाँ प्रयास कर रहा है, कितना समय वो म्यूजिक के कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ में देने का प्रयास कर रहा है, कितना समय वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, कुछ उसके मन में जो टूल्स और टेक्निक्स हैं उनको लेके बहुत सारी जिज्ञासा है। और कुल मिला के इस पूरे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा अलग अलग एंगल पर स्टडी किया जाता है, उसकी रिपोर्ट्स निकाली जाती है और उसके बाद बच्चे के बारे में बताया जाता है कि आपके बच्चे के अंदर ये पहले से कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं और कुछ इसको गॉड गिफ्ट भी है, कुछ ईश्वरीय देन भी है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता के संस्कार, पूर्व पीढ़ियों के संस्कार और हमारा कुल मिला के अध्यात्म की भाषा में कहें तो प्रारब्ध भी होता है। तो ये सारी चीज़ों का जब अध्ययन हो जाता है और उसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे को एस्ट्रोलॉजी के एंगल से भी देखा जाता है कि वहाँ पर इन फ्यूचर इस बच्चे के साथ में क्या क्या हो सकता है। ये तमाम चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं, कुछ समय इसके लिए लगता है और इस पूरी प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद में ये जब स्टेप बाय स्टेप, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार सिलेक्शन प्रोसीजर में भी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सिलेक्शन होते हैं उसमें भी कुछ साइकोलॉजिकल गेम्स हम लोग प्ले करते हैं, उसमें रिंग टॉस्क एक प्रोसेस होती है, ब्लॉक बिल्डिंग के द्वारा एक प्रोसेस की जाती है, कई बार ग्रुप में कुछ सब्जेक्ट दिए जाते हैं, डिस्कशन की बात की जाती है, उसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि इनिशिएटिव पावर क्या है और वहाँ पर इंटरवेंशन कोई बच्चा कितना कर रहा है, और इंटरवेंशन कर रहा है तो उसमें वो क्या सजेशन और तमाम चीज़ें रखने का प्रयास कर रहा है, ओवरऑल उसका व्यूज़ क्या है, ये सारी बातें देखने के बाद ये तय हो पाता है कि कम्युनिकेशन के लेवल पर वो इन फ्यूचर में उससे के बच्चे के माध्यम से क्या कुछ हो सकता है, उसका राइटिंग स्किल क्या है। कई बार राइटिंग स्किल के बारे में स्कूल या कॉलेज में भी हमारे टीचर बोल देते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा लिखा है, डिबेट वो बच्चा करता है तो एक्स टेम्पो में उससे बुलवा के देखते हैं। तो ये तमाम तरह के जो टेस्ट हैं ये बच्चे को एक लेवल पर पहुंचाते हैं और उसे वहाँ पर सेल्फ एनालाइज भी करना पड़ता है, उसको लगता भी है। कई बार अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में ये ज़्यादा कहा जा रहा है कि ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन हो सकता है कि वहाँ उसका मूड, उसके मेंटल लेवल का सिचुएशन क्या है, उस लेवल पर उसने वहाँ पर प्ले किया है या इन्वॉल्व हुआ है तो ये भी वो शेयर करता है कि नहीं अभी मेरा मूड ऐसा था और मैं वहाँ चला गया, एक्चुअली मैं बेसिकली इस काम के लिए बना हूँ। तो ऐसे भी कई बार डायलॉग वहाँ पर क्रिएट होते हैं, तो उन स्थितियों को भी एज ए काउंसलर हम लोग हैंडल करने का प्रयास करते हैं। ओवरऑल यहाँ कोई बाय फोर्स प्रोसेस नहीं है बल्कि नेचुरल प्रोसेस है, और इस नेचुरल प्रोसेस में वहाँ हमने एक स्पेस और भी भी दिया हुआ है, जहाँ पर एक सिंपल छोटा सा गार्डन भी प्ले है, वहाँ पर वो बच्चा जाके बैठा हुआ है, कुछ थिंकिंग कर रहा है, कुछ लिखने का प्रयास कर रहा है, कोई पोएम लिख रहा है, कुछ स्क्रिप्ट लिखने की बात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसकी मन स्थिति में रहती हैं। और जितने भी बैकग्राउंड हैं और स्पेशलाइज एरियाज हो सकते हैं, वहाँ जाके जब ये बैलेंस सिचुएशन में हम लोग कंक्लूड करते हैं, तो ये पता चलता है कि एक बच्चे के सामने कितनी संभावनाएँ हैं और उसकी खुद की एनर्जी क्या है और वो किस लेवल पर अपने आप को शिफ्ट करता है, तो उसका जो बैकग्राउंड है और जो फ्यूचर है उन दोनों के बीच में कैसे अच्छे से कोरिलेशन रह सकता है। कुल मिला के ये गाइडेंस और की जो प्रक्रिया है, ये निश्चित रूप से एक बच्चे के करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत बड़ी मदद करती है। जी
0: डॉक्टर अजय शुक्ला सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर, और ढेर सारी जो इन्फॉर्मेशन है और सटीक इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति, हर माता पिता, अभिभावक इस चीज़ को ठीक से समझ पाए। तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ बाल संसार में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए एक सुंदर विचार से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कर्म ज्ञान और भक्ति का संगम ही जीवन का तीर्थराज है। कर्म ज्ञान और भक्ति का संगम ही जीवन का तीर्थराज है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आशा करूँगा कर्म यानी जो आप एक्शन करते हैं, ज्ञान अर्थात आपको खुद का ज्ञान और इस संसार का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, और भक्ति अर्थात आप अपने आप को समर्पित कर दें परमात्मा के साथ में जो इस संसार के रचयिता है। तो इन तीनों का संगम हो जाए तो जीवन ही आपका तीर्थ बन जाए। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज 9 सितंबर तो है और 9 सितंबर की बातें आपसे शेयर करूंगा। आज विशेष भारतेंदु हरिश्चंद्र, विक्रम बत्रा, लीला चिटनीस, गोपाल चंद्र प्रहराज, कांति कुमार जैन, मणि मधुकर, अक्षय कुमार, अर्जुन लाल सेठी, महबूब खान, ज्योति बसु, इन सभी का जन्मदिन है। इसके साथ ही राम वृक्ष बेनीपुरी, अकबर इलाहाबादी, वर्गीश कुरियन, आनंद कुमार स्वामी, लाला जगत नारायण, सदाशिव त्रिपाठी, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को जोड़ना चाहूँगा और विशेष कुछ लोगों की बातें मैं आपसे शेयर करता ही हूँ। जैसे रेगुलर हम किसी फिल्म हस्ती की बातें या फिर किसी देशभक्त के बारे में आपको कहानी अच्छी तरह से सुनाते हैं तो निश्चित तौर पे हमें भी अच्छा लगता है जब आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं तो आप भी खुश होते हैं और हमें आपकी खुशी से और खुशी मिल जाती है। तो आइए आज दो लेजेंडरी एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। एक अक्षय कुमार जिन्हें आप सभी जानते हैं, एक जिन्हें आप कम जानते होंगे जिनका नाम है लीला चिटनीस। ये ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की एक्ट्रेस है, उनकी कहानी भी आपको सुनाएंगे तो शायद आपको उस जमाने में फिल्म कैसे बनते थे, किस तरह के डायलॉग होते थे, ये सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत से। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। आइए बात करते हैं अब एक विशेष व्यक्ति के बारे में, विक्रम बत्रा के बारे में। जी हां, पालमपुर हिमाचल से ये बिलोंग करते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित भारत के सैनिक थे। इन्हें ये सम्मान 1999 में मरणोपरांत इनको मिला है। पलम निवासी जीएल बत्रा और कमलकांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को दो बेटियों के बाद दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। माता कमलकांता से रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा रखती थी और उन्होंने दोनों का नाम लवकुश रखा। लव यानी विक्रम और खुश यानी विशाल। पहले डीएवी स्कूल, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिला करवाया गया और सेना छावनी में स्कूल होने से सेना के अनुशासन को देख और पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम में स्कूल के समय से ही देश प्रेम का प्रबल जो है इच्छा जागृत हो उठी। स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे बल्कि टेबल टेनिस जो खेल है उसमें भी अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का उनके अंदर जज्बा था। जमा दो तक की पढ़ाई करने के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान विषय में पढ़ाई पूरी कर दी और इस दौरान एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी चुने गए और उन्होंने गणतंत्र दिवस का परेड भी उसमें भी भाग लिया और उन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया और डीसीडीएस सम्मिलित रक्षा सेवा की तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि विक्रम को इस दौरान हांगकांग में भारी वेतन में मर्चेंट नेवी की नौकरी भी मिल रही थी लेकिन देश सेवा का सपना लिए विक्रम ने इस नौकरी को ठुकरा दिया और सेना में इनका चयन हो गया। तो है ना कमाल की बात, जिस व्यक्ति को जहाँ जाना होता है उसके लिए वो फिर बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी ठुकरा देता है। तो विक्रम बत्रा भी इसी तरह के व्यक्ति रहे और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को फोकस्ड देश सेवा ही रखा है इन्होंने। विज्ञान विषय में डिग्री हासिल करने के बाद विक्रम का चयन डीएसीडीसी के जरिए सेना में हो गया और जुलाई 1996 में भारतीय सेना अकेडमी देहरादून में प्रवेश लिया और 1997 में शिक्षा समाप्त होने पर 6 सितंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक गांव में सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर इनकी नियुक्ति हो गए। और फिर बात आती है 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ साथ कई ट्रेनिंग भी लिए और 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम वराके नाब स्थानों को जीतने के बाद उसी समय विक्रम को कैप्टन बना दिया गया जिसके बाद श्रीनगर ले मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा भी कैप्टन विक्रम बत्रा को दे दिया गया। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। शेरशाह के नाम से ये प्रसिद्ध हुए विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपने विजय उद्घोष ये दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इस दौरान विक्रम ने कोड नाम शेरशाह के नाम से जाने जाने लगे। उन्हें कारगिल का शेर भी ये संज्ञा भी दी गई। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आया तो हर कोई उनका दीवाना हो उठा और इसके बाद सेना ने चोटी 4875 को भी कब्जा में लेने का अभिनय शुरू कर दिया। इसकी भी बागडोर विक्रम को सौंपी गई। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नैयर के साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को हटा दिया, खत्म कर दिया। कैप्टन के पिता जीएल बत्रा कहते हैं कि उनके बेटे के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाईके जोशी ने विक्रम को शेर शाह उपनाम से नवाजा था। तो है ना कमाल की बात, और मिशन लगभग पूरा हो चुका था जब कैप्टन अपने कनिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट नवीन को बचाने के लिए लपके। लड़ाई के दौरान एक विस्फोट में लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। जब कैप्टन बत्रा लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए पीछे घसीट रहे थे तब उनकी छाती में गोली लगी और वो जय माता जी कहते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 16 जून को कैप्टन ने अपने जुड़वा भाई विशाल को दास सेक्टर से चिट्ठी में लिखा था, प्रिय कुशु, माँ और पिताजी का ख्याल रखना, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ। और फिर इसी तरह कुछ ना कुछ हो ही गया और वो इस दुनिया से लेकिन भारत के लिए बलिदान हो गए। अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को परमवीर चक्र के सम्मान से नवाजा गया, जो उनके पिता जीएल बत्रा ने प्राप्त किया। विक्रम बत्रा ने 18 वर्ष की आयु में ही अपने नेत्र दान करने का निर्णय ले लिया था। वो नेत्र बैंक में कोड को हमेशा अपने पास रखते थे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। चलिए, ये कहानी थी वीर विक्रम बत्रा की आपके लिए। शेरशाह कारगिल के शेर ये नाम से उन्हें जाना जाता है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हिंदुस्तानी सिनेमा आने वाली अभिनेत्रियों में दुर्गा कोटे के बाद लीला चिटनिस का नाम शिखर पर है। अपने जीवन में भी विशेष रूप से उन्होंने अपना काम किया और पति गजानन यशवंत चिटनिस से तलाक के बाद चार बच्चों की परवरिश उन्होंने बड़े जतन से की और 93 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु भी अमेरिका में उनके ज्येष्ठ पुत्र के घर पर हुई। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। और लीला चिटनिस एक खास व्यक्ति इसलिए भी है कि अपने पति के साथ आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में इस तरह से सहयोग किया कि क्रांतिकारी मनोवेंद्र नाथ राय को अपने घर में ब्रिटिश पुलिस की निगाह से बचाकर रखा था। तो है ना कमाल की बात। तो आइए ऐसे विशेष एक्ट्रेस और स्वतंत्रता सेनानी लीला चिटनिस की कहानी अभी आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ये कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिए थे। ये उस जमाने की सबसे पढ़ी लिखी अभिनेत्रियों में से एक थी, नाम लीला चिटनिस।
2: तो मेरी तस्वीर पत्रिका में छपी है?
3: जी हाँ। कौन थे वो सब?
2: शहर से एक बड़े फोटोग्राफर आए थे, उन्होंने मेरी तस्वीर ली थी झूले पर।
3: ओ,
2: कैसी लगती हूँ मैं उसमें?
3: बहुत अच्छी।
2: सच?
1: लीला चिटनिस का जन्म कर्नाटक में हुआ। इनके पिता अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे, इसीलिए लीला चिटनिस ने उस जमाने में ग्रेजुएशन की और फिर ये आ गई नाट्य मनवंतर में। ये एक थिएटर ग्रुप रहा और इस थिएटर ग्रुप में ये मराठी नाटक किया करती थी।
2: मैं आज महिला मंदिर नहीं जाऊंगी।
3: क्यों?
2: मेरा जी अच्छा नहीं।
3: क्या हो?
2: कुछ नहीं, ये सिर दुख रहा है।
3: मैं अभी दवा लाती हूँ।
2: रहने दे गीता, ऐसे ठीक हो जाऊंगी।
3: नहीं नहीं दीदी, कहीं बुखार आ गया तो? मैं अभी लाई।
1: ये ग्रुप इब्सन, शॉ, स्टानिस्लावस्की के मेथड से बहुत ज्यादा प्रभावित था। शुरुआती दौर में लीला चिटनिस ने जो स्टेज पे काम किया उसमें उसना नावरा और उदयचा संसार नाटक बड़े मशहूर हुए।
4: अगले महीने नवदीप बैरागी के साथ मेरा ब्याह होगा। तुम्हारे पिता खर्च देंगे।
5: तुम्हारा ब्याह नवदीप के साथ नहीं होगा।
4: तो क्या मैं 200 बरस का पुराना मठ जल जाने दूं? ये मेरे बाबा के लिए मौत से भी बदतर होगा।
1: ये बात भी गौर करने लायक है कि लीला चिटनिस दरअसल फिल्मों में क्यों आई। ये अपने चार बच्चों का भरण पोषण करना चाहती थी, इसलिए बतौर एक्स्ट्रा इन्होंने शुरुआत की और वो भी स्टंट फिल्मों में। 1937 में फिल्म आई थी जेंटलमैन डाकू। इसमें लीला चिटनिस ने वो किरदार निभाया जिसमें एक महिला पुरुष के रूप में दुनिया के सामने आता है।
2: जाके कह दो अपने सतीश बाबू से मैं प्रेम नहीं कर रही थी। तुम दोनों के प्रेम का नाटक देखकर मैं वहाँ जाके बेहोश हो गई थी। मुझे दोष देने चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सतीश बाबू से ब्याह करना चाहती थी तो मुझसे क्यों न कहा?
1: लीला चिटनिस उस जमाने की प्रगतिशील फिल्मों में भी नजर आईं, जैसे कि कंगन।
4: तुम मेरे हो गए, इसी आशा को लेकर अब मैं जिंदा रहूंगी। अगर यह आशा टूट गई तो तुम्हारे कंगन तुम्हें सौंप कर नदी में डूब मरूंगी।
1: बॉम्बे टॉकीज में काम करने वाली देविका रानी की जगह लीला चिटनिस ने ले ली और इसमें कुछ ज्यादा वक्त भी ना लगा। सिर्फ देविका रानी की जगह ही नहीं ली बल्कि बॉम्बे टॉकीज के ओनर हिमांशु राय के फेवरेट हीरो अशोक कुमार की ये हीरोइन भी बनी।
2: क्या कहते थे रहमान भैया?
6: तुम अभी नहीं आवत चैन।
2: ओ,
6: क्यों विश्वास नहीं होता?
2: कैसे हो आप, तो शहर जाके मुझे भूल ही गए थे।
6: नहीं गीता, मुझे माफ करो, मैं कभी तुम्हें भूल सकता हूँ?
2: जाइए।
1: आजाद, बंधन, झूला ये फिल्में बड़ी मकबूल हुई। 1940 के दशक के मध्य में लीला चिटनिस बतौर माँ के किरदार निभाती नजर आने लगी, चाहे वो दिलीप कुमार स्टारर शहीद रही या फिर राज कपूर की फिल्म आवारा और देवानंद की फिल्म गाइड को कौन भूल सकता है। इन तीनों दिग्गजों की माँ का किरदार इन्होंने निभाया था।
4: माँ से कफन की बातें कर रहे हो और फिर कहते हो डर किस बात का? ये बात माँ के दिल से पूछो। अब मैं क्या करूँ?
6: तुम फिक्र न करो माँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा।
4: चले जाओगे कहाँ? और तुम्हारे पिताजी को क्या कहूंगी मैं? वो सही वाकया जानना चाहते हैं, उन्हें क्या जवाब दूं?
1: इन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट भी की थी आज की बात और एक फिल्म प्रोड्यूस करी थी कि किसी से ना कहना। ये सारी बातें इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी चंदेरी दुनियात में लिखी है। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि यूं तो ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थीं, लेकिन इनके पिता ब्रह्मो सामाजिक बन गए थे। इन्होंने शादी की थी डॉक्टर गजानन यशवंत चिटनिस से, तब इनकी उम्र मात्र 15 या 16 की थी और इनके पति इनसे उम्र में काफी बड़े थे। ये अपने पति के साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शरीक हुई थीं, लेकिन इनके और इनके पति की बनी नहीं और तलाक हो गया। उसके बाद ये बतौर स्कूल टीचर काम करती रही और इसी तरह से ये फिल्मों में भी आ गईं।
4: डॉक्टर आएगा, तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा, पुलिस आएगी, मुकदमा होगा, जेल, फांसी।

0: इनके तीन बेटे हुए। इनके बेटों के नाम रहे मानवेंद्र, विनोय और राज। उस जमाने के मशहूर प्रोड्यूसर मास्टर विनायक के साथ ये नजर आई थी छाया में, सोहराब मोदी की फिल्म जेलर में, और फिर ये फेहरिस्त लंबी बनती गई। बिमल रॉय की फिल्म माँ में भी इन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी। ये अपनी आंखों से अपने जज्बात बयां कर देती थीं। यही वजह रही कि लीला चिटनिस ने एक लंबी पारी खेली।
1: आज अपनी दौलत के जोर पर आप एक बेटे को उसकी माँ के घर से निकालने आए हैं, मगर ये आपका महल नहीं है। जहाँ से जब चाहे आप उसको निकाल दे, ये उसकी माँ का घर है, यहाँ से उसे कोई नहीं निकाल सकता।
0: और फिर धीरे धीरे ये फिल्मों से दूर हो गई और 14 जुलाई सन 2003 वो तारीख बनकर आई जब महान अभिनेत्री लीला चिटनिस ने हमेशा हमेशा के लिए सबको अलविदा कह दिया।

0: रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए, लीला चिटनिस की कहानी सुनकर आपको पुरानी कुछ यादें ताजे हो गए होंगे, तो आइए अब बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। जी हाँ, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह इन्हें कहा जाता है। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी चारमोख पर थी और शासन तंत्र से संबंधित संपूर्ण कार्य अंग्रेजी में होता था। अंग्रेजी हुकूमत में पद लोलुपता की भावना प्रबल थी और भारतीय लोगों में विदेशी सभ्यता के प्रति आकर्षण था। ब्रिटिश आधिपत्य में लोग अंग्रेजी पढ़ना और समझना गौरव की बात समझते थे। हिंदी के प्रति लोगों में आकर्षण कम था, क्योंकि अंग्रेजी की नीति से हमारे साहित्य पर बुरा असर पड़ रहा था। हम गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर किए गए और हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ऐसे वातावरण में जब बाबू हरिश्चंद्र अवतरित हुए, तो उन्होंने सबसे पहले समाज और देश की दशा पर विचार किया और फिर अपनी लेखनी के माध्यम से विदेशी हुकूमत का पर्दाफाश किया। भारतेंदु का जन्म नगरी काशी नगरी के प्रसिद्ध सेठ अमीरचंद के वंश में 9 सितंबर 1850 को हुआ। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र भी एक कवि है। इनके घराने में वैभव और प्रतिष्ठा बहुत थी। इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। इनकी माता चल बसी और 10 वर्ष की आयु में पिता भी चल बसे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। अपने परिस्थिति से गंभीर प्रेरणा ली। इनके मित्र मंडली में बड़े बड़े लेखक, कवि और विचारक थे, जिनकी बातों से वे प्रभावित थे। इनके पास विपुल धनराशि थी, जिससे इन्होंने साहित्यकारों की सहायता हेतु मुक्त हस्त से दान किया। इनकी साहित्यिक मंडली के प्रमुख कवि थे पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्रा, पंडित बद्रीनाथ उपाध्याय, प्रेमधन आदि। बाबू हरिश्चंद्र बाल काल से ही परम उदार व्यक्ति थे। यही कारण था कि इनकी उदारता लोगों को आकर्षित करती थी और इन्होंने विशाल वैभव धन राशि को विविध अलग अलग संस्थाओं को दे दिया और प्रभावित होकर विद्वानों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी और उच्च कोटि के लेखन कार्य के माध्यम से ये दूर दूर तक जाने जाते थे। इनकी कृतियों का अध्ययन करने पर अभ्यास होता था कि इनमें कवि, लेखक और नाटककार बनने की प्रतिभा थी। वो अद्भुत थी। ये बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। तो आइए इनके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आप ही लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत, आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी एक और शख्सियत के बारे में जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग बात कर रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की। और बाबू हरिश्चंद्र बाल्यकाल से ही परम उदार व्यक्ति थे, यही कारण था कि इनकी उदारता लोगों को आकर्षित करती थी और अपनी उच्च कोटि के लेखन कार्य के माध्यम से ये दूर दूर तक जाने जाते थे। इनकी अध्ययन करने की अभ्यास होता था कि इनमें कवि, लेखक, नाटककार और अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। भारतेंदु जी विविध भाषाओं में अपनी रचनाएं करते थे, किंतु ब्रज भाषा पर इनका बहुत ज़्यादा अधिकार था। इस भाषा में उन्होंने अद्भुत श्रृंगार कविता का परिचय दिया था और इनकी साहित्य प्रेम मय था, क्योंकि प्रेम को लेकर ही इन्होंने अपने सप्त संग्रह प्रकाशित किए हैं। प्रेम माधुरी इनकी उत्कृष्ट रचना है, जिसकी कुछ पंक्तियों में अगर मैं बात करूं तो उनका कहना है, मर्ग प्रेम को समुझे हरिचंद्र यथार्थ होत यथा है, लाभ कुछ ना पुकुरन में बदनाम ही हो उनकी सारी कथा है, जनत ही जिए मोरो भाली विधि और उझाई सभी भिरथा है, बावरे है ब्रज के शिग्रे मोही नाहक पूछत कौन बिथा है। भारतेंदु जी अत्यंत कम अवस्था में से ही रचनाएं करने लगे थे और नाटक के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था। और इनके मुख्य नाटक और रचनाएं निम्नलिखित कुछ लंबी संख्या है, एक तो 10 इन्होंने जो है नाटक लिखे, नाटकों की किताब लिखे, और साथ इनके प्रेम पर आधारित सप्त प्रेम संग्रह है। और काव्य कृतियों की बात करें तो टोटल इनके पास 20 अलग अलग काव्य संग्रहों का एक बड़ा साहित्य सृजन है। हरिश्चंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो उन्होंने साहित्य के हर क्षेत्र में काम किया है। कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि पर उन्होंने कार्य किया है। सुलोचना आपका मुख्य रचना है, बादशाह दर्पण आपका इतिहास की जानकारी प्रदान करने वाला ग्रंथ है, संयोग का बड़ा ही सजीव और सुंदर चित्रण है, रोकते हैं तो अमंगल होए और प्रेम न से जो कहे प्रिय सजाए, जो कहे जहु ना तो प्रभुत्व, जो कुछ ना कहे तो स्नेह बन न साए, जो हरिचंद्र कहे तुमरे बिन जिए न तो क्या ये क्यों बताए, तसो पयन समो तो सौ हम का काहे प्यारे हम समझाए। तो प्रगतिशील लेखक के रूप में इन्हें याद किया जाता है। साहित्य में इनका विशेष योगदान, ये कह सकते हैं कि बाबू हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के आकाश के एक दीपमान नक्षत्र के समान थे। उनके द्वारा हिंदी साहित्य में दिया गया योगदान महत्वपूर्ण और सराहनीय रहा है। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म और उत्तर प्रदेश वाराणसी में ही 6 जनवरी 1885 को अल्प आयु में इन्होंने इस संसार को अलविदा कहा। तो ये थी कुछ खास बातें भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अक्षय कुमार के बारे में। शायद आप सभी को बड़ा अच्छा लगेगा इनके बारे में सुनकर, और इन्हें आप सभी पहचानते भी हैं अच्छी तरह से। तो आइए, बॉलीवुड के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता हैं अक्षय कुमार। 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और 90 के दशक में हिट एक्शन फिल्में जैसे खिलाड़ी, मोहरा और सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय करने के कारण अक्षय कुमार को बॉलीवुड का एक्शन हीरो की संज्ञा मिल गई है और खिलाड़ी श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें खिलाड़ी कुमार भी कहा जाता है। कई बार फिल्मफेयर पुरस्कारों में नामांकित होने के अतिरिक्त 2 बार फिल्मफेयर पुरस्कार, खलनायक अजनबी, सर्वश्रेष्ठ खलनायक अजनबी 2002 और सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता गरम मसाला 2005 ले चुके हैं और 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है और 2015 में अमेरिकन बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा फीस पाने वाले अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार 9वें नंबर पर आते हैं। अक्षय कुमार को फिल्म रुस्तम में उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए 64वें राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। आइए जीवन परिचय की बात करें तो इनका असली नाम राजीव भाटिया है और उनका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था 1967 में। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे और अक्षय का बचपन दिल्ली के चांदनी चौक गलियों में बीता। अक्षय ने अपनी पढ़ाई डॉन बॉस्को स्कूल और खालसा कॉलेज से पूरी की। अक्षय को बचपन से ही स्पोर्ट्स का काफ़ी शौक था और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए अक्षय बैंकॉक गए और वहां उन्हें सेफ की नौकरी मिल गई। हालांकि उनका सपना था आर्मी में या नेवी में जाने का, अभिनय के बारे में तो अक्षय ने कभी सोचा भी नहीं था। अक्षय ने खाना बनाने को लेकर कार बेचने तक का काम किया और अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्होंने कई छोटे काम भी किए। बैंकॉक में काम की तलाश में अक्षय को बांग्लादेश में भी जाना पड़ा। वहाँ से कोलकाता जाकर अक्षय ने एक ट्रैवल एजेंसी में भी काम किया। कोलकाता से अक्षय मुंबई पहुँचे जहाँ वे कुंदन के गहने बेचने लगे थे। तो ये विशेष रूप से मुंबई अक्षय मशहूर फोटोग्राफर जयेश के पास गए और उनको अपना असिस्टेंट बनाने के लिए कहा। अक्षय जयेश की मदद के लिए लाइट उठाने तक का काम करने लगे। काम के दौरान मशहूर अभिनेता गोविंदा की कुछ फोटोज़ उन्हें देने गए। उस वक्त गोविंदा अक्षय को देखकर कहा कि तू हीरो क्यों नहीं बनता। ये सुनकर अक्षय के दिल में भी ये बात घर कर गई और वो भी हीरो बन सकते हैं ये उनके दिमाग में आ गया और 1990 में उन्होंने एक्टिंग का कोर्स भी किया, जिसके बाद उन्हें एक फिल्म आज का ऑफर मिला। जब फिल्म रिलीज हुई तो पता चला कि उनका रोल सिर्फ 7 सेकंड का था। इस फिल्म में हीरो का नाम था अक्षय। उसी वक्त राजीव भाटिया ने यानी अक्षय ने अपना नाम बदलकर उस फिल्म के हीरो के नाम पर अक्षय रख लिया। तो इस तरह राजीव भाटिया अक्षय कुमार बन गए। अक्षय अपना फोटोफोलिया लेकर हर स्टूडियो के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई मायूसी की हाथ लग रही थी। उन्हीं दिनों अक्षय की मुलाकात मेकअप मैन नरेंद्र से हुई। नरेंद्र ने जब अक्षय को देखा तो उनका पोर्टफोलियो लेकर एक निर्देशक के पास गए और उसी दिन अक्षय की किस्मत बदल गई। उन्हें एक दिन 3 फिल्मों का ऑफर मिला और साथ में 51,000 रुपये का साइन अमाउंट भी। हीरो के तौर पर अक्षय को पहली फिल्म मिली सौगंध। उसके 1 साल बाद अक्षय की फिल्म खिलाड़ी रिलीज हुई, जिस फिल्म ने सच में अक्षय को बॉलीवुड का खिलाड़ी बना दिया। तो आइए इसकी कहानी मैं आपको डायरेक्टली सुनाता हूँ, संगीत गीत और संवाद के साथ। अभी आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: गीत संगीत की इस महफिल में आप मिलेंगे ऐसे कलाकार से, ऐसे डांसर से जो संगीत का सौदागर है।
2: नाम राजीव हरिओम भाटिया, जिसे हम खिलाड़ी कुमार के नाम से जानते हैं, और ये हैं फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अक्षय कुमार।
3: भाई वैसे तो लोग हमें संगीत का जादूगर कहते हैं, नाम है राजा।
2: इन्होंने अपने लिए खुद ही कहा है, ना हम अमिताभ, ना हम दिलीप कुमार, ना ही किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय। फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आया ये लड़का सुपरस्टार बना। जन्म 9 सितंबर सन 1967। अक्षय कुमार का जन्म अमृतसर में हुआ था और परवरिश हुई पुरानी दिल्ली यानी कि दिल्ली 6 में। इनके पिता हरिओम भाटिया और माँ अरुणा भाटिया। पिता हरिओम भाटिया एक मिलिट्री ऑफिसर रहे। अक्षय कुमार बचपन से ही स्टेज पर एक परफॉर्मर की तरह जाने जाते थे, खासतौर पे डांस में। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रहते थे और उसके बाद ये मुंबई आ गए, जहाँ पे ये कोलीवाड़ा इलाके में रहने लगे।
3: कामयाबी की उन बुलंदियों को छू सकूं जिसका सपना पापा और आपकी आंखों ने देखा था।
2: मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और मुंबई के ही गुरु नानक खालसा कॉलेज से हायर एजुकेशन की।
3: तो तुम्हें लगता है कॉलेज की लड़कियों के पीछे मैं पढ़ाऊं? अरे वो मेरे आगे आगे घूमती है।
2: वो और बात है कि एक साल के बाद ही ये पढ़ाई छोड़ बैंकॉक चले गए मार्शल आर्ट सीखने के लिए। अक्षय कुमार की एक बहन भी है जिनका नाम है अलका भाटिया।
4: भैया मैं एक बात सोच रही हूँ, आपके दिल की एल्बम में हजारों लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं, मगर उनमें से क्या कोई एक भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते जो मेरी भाभी बन सके?
2: जब अक्षय 14-15 साल के थे तब इनके वालिद ने इनसे एक बार सवाल पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, और तब अक्षय कुमार ने कहा था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ।
5: दोस्तों
2: हिंदुस्तान में ही इन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की। बैंकॉक में मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई की, जहाँ पे ये बतौर शेफ और वेटर काम किया करते थे।
6: कल से तू होटल जाएगा बस।
2: मुंबई वापस आ जाने के बाद अक्षय कुमार ने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया और अभी भी एक्टिंग की मंजिल काफी दूर थी, कोई राह नजर नहीं आ रही थी। और तब सूरज चमका।
3: अगर आपको अपने डांस पर इतना ही नाज है तो एक मौका हमें भी दिया जाए अपनी किस्मत आजमाने का।
2: अक्षय कुमार जब मार्शल आर्ट्स की क्लासेस लिया करते थे तब इनके एक स्टूडेंट ने, जो कि खुद एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, इनका नाम मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भेजा।
1: अरे राजा तुझे कौन हराएगा यार, जीत ले कॉम्पिटिशन और बन जा स्टार फटाफट।
2: मॉडलिंग के पहले ही 2 दिनों में अक्षय कुमार को लगा, 2 दिन में जो पैसा मैंने कमाया है वो तो मैं पूरे महीने में नहीं कमा पाता, इसलिए मॉडलिंग का ही रास्ता चुन लिया जाए। बहुत सारी फिल्मों में ये बतौर बैकग्राउंड डांसर भी काम कर रहे थे और एक दिन इन्होंने फ्लाइट मिस कर दी और किस्मत के हवाई जहाज पे ये सवार हो गए। किस्सा यूं मशहूर रहा कि अक्षय कुमार को बैंगलोर जाना था एक एड की शूटिंग के लिए, पर ये फ्लाइट मिस कर बैठे। ये बहुत दुखी थे और सोच रहे थे कि अब क्या होगा। अच्छा हुआ कि इन्होंने फ्लाइट मिस की, क्योंकि उसी शाम जबरदस्त प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती ने इन्हें फिल्म दीदार के लिए साइन किया।
7: राजा तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है बल्कि अपने हाथों से अपनी सुनहरी तकदीर लिख ली है।
2: हालांकि ये पहली बार नजर आए थे फिल्म सौगंध में, जिसमें जबरदस्त अभिनेत्री राखी और शांति प्रिया इनके साथ थी। साल था सन 1991। उन्नीस सौ 87 की फिल्म आज, जिसे महेश भट्ट साहब ने बनाया था और जिसमें कुमार गौरव स्टार थे, उसमें अक्षय कुमार मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर की तरह नजर आए थे। शुरुआती दौर में लोगों ने कहा कि लड़के के पास लुक्स तो हैं, एक्शन भी है, लेकिन शायद एक्टिंग में कमी है। और तब अब्बास मुस्तान की फिल्म खिलाड़ी आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाया।
3: तुम दोनों को ही इस दुनिया से जुदा कर दे, क्या इस बहाने अपना पिछला हिस्सा भी प्याज के साथ क्लियर?
8: अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो इसे हाथ लगा के दिखाए।
2: अक्षय कुमार खिलाड़ी सीरीज के साथ आगे बढ़ रहे थे, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, और फिर आई फिल्म मोहरा। अक्षय कुमार की इमेज एक एक्शन हीरो की इमेज बन गई थी। उसके बाद यश चोपड़ा साहब की फिल्म दिल तो पागल है में इन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया, हालांकि सपोर्टिंग रोल था पर बहुत तारीफ की गई। यश चोपड़ा साहब की फिल्म ये दिल्लगी में भी इन्होंने एक रोमांटिक किरदार ही निभाया था और तब ये जरूर लगा था कि ये हरफन मौला है। और फिर आई प्रियदर्शन साहब की फिल्म हेरा फेरी, जिसमें परेश रावल और सुनील शेट्टी साहब के साथ मिलके इन्होंने धमाल मचा दिया और फिर धर्मेश दर्शन की धड़कन ने इन्हें एक इमोशनल एक्टर की तरह भी एस्टैब्लिश किया।
3: अगर तुम्हारे रगों में सिंगानिया का खून है तो मैं भी किसी बुजदिल बाप का बेटा नहीं।
9: मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरा हाथ प्रेम।
3: नहीं,
2: एक बड़ा मजेदार किस्सा रहा। एक बहुत बड़ी फिल्म फ्लॉप हो गई और अक्षय कुमार शादी के बंधन में बंध गए। जी, आमिर खान, फैजल खान और ट्विंकल खन्ना स्टारर मेला। अक्षय और ट्विंकल ने ये बात तय कर ली थी कि अगर मेला फ्लॉप हुई तो शादी कर लेंगे। फिल्म चल गई तो शादी कुछ वक्त के लिए रुक सकती है, और आमिर खान के होने के बावजूद फिल्म मेला बुरी तरह से फ्लॉप हुई और अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी सुपरहिट। इस तरह से अक्षय कुमार बने हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के दामाद और सासू माँ बॉबी यानी कि डिंपल कपाड़िया। इस शादी से अक्षय और ट्विंकल को दो बच्चे हुए, बेटा आरव और बेटी नेत्रा।
9: Yes, it is a very good, great thing which has happened and I'm thankful and obliged.
2: धीरे धीरे वो मोड़ भी इनके जीवन में आया जहाँ पे इन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोली, हरिओम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी।
9: I've done so many things in my life, from stunts to films to everything in my life.
2: अक्षय कुमार ने नई हीरोइंस के साथ भी काम किया और पहले से ही अपना मकाम बना चुकी हीरोइंस जैसे कि माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ भी, लेजेंडरी रेखा के साथ भी ये नजर आए थे फिल्मों में, और फिर हर बड़ी हीरोइन के साथ काम करना चाहने लगी।
9: जितने भी मेरे को स्टार्स हैं, जितने भी मेरी एक्ट्रेसेस हैं, कैरेक्टर एक्टर्स हैं, जितने भी, उन सबको जानता हूँ।
2: अक्षय कुमार उन गिने चुने एक्ट्रेस में से हैं जिन्होंने हर कदम पे बहुत ज्यादा मेहनत की, फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आए और सुपरस्टार्स की फेहरिस्त में अपना नाम शामिल कर दिखाया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, आज भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हमने बातें की, विक्रम बत्रा के बारे में बातें की और लीला चिटनिस की कहानी आपको सुना, इसके साथ अक्षय कुमार की भी कहानी आपको सुनने को मिला। तो चलिए, आशा करूँगा विक्रम बत्रा की कहानी सुनकर आपके आँखों में नमी आ गई होंगी और जिस तरह से उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में जलवा दिखाया और अपनी बलिदान देकर विशेष अशोक चक्र से सम्मानित हुए बाद में। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को आज के दिन, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही और एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं। महात्मा गांधी एक जगह लिखते हैं, तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है, इसीलिए इसे हमेशा अपने साथ रखिएगा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफ़र। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मस्त गाते रहो।
1: अभी बजे हैं शाम के 5।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम का नाम है युवा मंच और दोस्तों हम सब आ गए हैं आपके पास लेकर एक नए विषय और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है मोनिका. और दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज उस विषय के बारे में जो एक जीवन को कुछ इस तरीके से प्रभावित करता है कि समझ लें कि वो एक नया मोड़ ही ले आता है. हम बात कर रहे हैं कि जब कुछ ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन आ जाती है, एक बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है. कुछ मजबूरी होती है, कुछ चॉइस भी होती है, लेकिन कभी कभी लैक ऑफ अवेयरनेस यानी हमें ये महसूसता नहीं होती कि क्या असर पड़ जाएगा. कई बार होती है मगर परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि वो हम कुछ नहीं कर सकते. तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी सिचुएशंस में क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी जानेंगे, क्या उपाय हैं वो भी जानेंगे और बात करेंगे इस विषय में. मोनिका आपका स्वागत है.
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया.
0: तो मोनिका सबसे पहले तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में.
1: वैसे शिक्षा का महत्व तो आजकल सभी को पता है और शिक्षा के मामले में आजकल सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई है. तो वैसे आजकल सारे लोग शिक्षा लेते हैं पर ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जिन्हें इस मामले में जागरूकता नहीं है और कोई ना कोई ऐसे कारण होते हैं जिनके वजह से वो स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं बीच में ही. और फिर एक ऐसा मोड़ आता है ज़िंदगी में जब उन्हें लगता है कि हम क्या हम फिर से जा सकते हैं, क्या हम फिर से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. तो उनके लिए आज ये हमारा सेशन है. राइट.
0: ओके. तो जैसा आपने कहा कि क्या हम एक शिक्षा दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ये मन में आता है, पर क्या रीज़न होते हैं, मतलब क्यों आपको लगता है कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, क्या विश प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या लगता है आपको?
1: जी सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि किसी कोई परिवार होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल वित्तीय प्रॉब्लम्स होती हैं. पर आजकल सरकार ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्लान अमेंडमेंट किया है, राइट टू एजुकेशन जिसको बोलेंगे. 2009 में ही हमारी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो पास हुई थी जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षण प्राप्त किया जाता है. तो ये प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, मतलब
0: सॉल्व करने का प्रयास तो हो रहा है बिल्कुल, लेकिन हम अगर गांव-गांव में देखते हैं, आज बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं. जब माता पिता दोनों काम पे जाते हैं और घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें देखने के लिए कोई नहीं होता, तो कई बार बड़े भाई बहनों को स्कूल छोड़ना पड़ता है. कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जो बच्चे हैं वो उन्हें वो माहौल नहीं मिलता कि घर पे पढ़ाई के लिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, तो उन्हें लगता है कि शायद पढ़ाई करके क्या ही फ़ायदा है. कई

0: माता पिता को भी ऐसा लगता है क्योंकि इतनी नौकरियां अब कहाँ से गांव में दिखेंगी, गांव में खेती करनी है या वही काम करना है, तो माता पिता को भी ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो अभी कमाएं क्योंकि बाद में भी यही काम करना है और अभी भी यही काम करना है, एक ये भी सिचुएशन होती है। और कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि छोटी सी बात बड़ी बुरी लग जाती है किसी टीचर की, कोई टीचर डांटेगा या फिर उनसे डर लगने लगता है या किसी और बात से डर लगने लगता है और लगता है कि छोड़ो मेरे दोस्त भी तो नहीं जा रहे, मैं भी नहीं जाता हूँ, और वो एक दिन एक महीना और एक महीना एक साल और एक साल न जाने कितने साल बन जाता है और स्कूल जाना ही बंद हो जाता है। कई बार एक सब्जेक्ट पसंद नहीं आता उस चक्कर में ऐसा हो जाता है। कई बार लड़कियों के साथ ऐसा होता है दोस्तों कि रास्ते में छेड़छाड़ के मामले हो जाते हैं और वो ना घर पे बता पाती हैं ना स्कूल में किसी की मदद ले पाती हैं, और ऐसे में किसी को पता चलता है तो मुश्किल का सामना लड़कियों को ही करना पड़ता है, उनका स्कूल जाना कॉलेज जाना बंद करा दिया जाता है। ये सब समस्याएं हैं लेकिन हल नहीं है। स्कूल बंद करा देना हल कभी नहीं हो सकता, सल्यूशन कभी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि पूरे जीवन का जो आधार है वो है शिक्षा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, कर रहे हैं, ये इतना आसान तो नहीं है लेकिन हम सभी के प्रयास से मिलकर हम कुछ सफलता हासिल ज़रूर कर सकते हैं। और मोनिका, और क्या लगता है, आपने आपने इस बारे में और पढ़ भी रहे थे आप, क्या पढ़ा आपने?
1: जी कहीं कहीं पे लड़कियों के को शिक्षित करना एक समझा जाता है कि क्या ही करेगी पढ़ के, आगे जाके शादी करनी है और ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर वर मिलना, वो भी चीज़ें हो जाती है जो माता पिता सोचते हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्ची। और लड़कों के मामले में रहता है कि आगे जाके इसने हमारा ही बिजनेस संभालना है तो क्या फ़ायदा, मतलब पढ़ के
0: ऐसा भी सोच लेते हैं।
1: जी और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कोई कोई स्कूल्स में एक ही एक साथ बहुत काफ़ी बच्चों को बिठा देते हैं और काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ाते हैं, उसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट भी चला जाता है और कहीं पे जो सिखाते हैं स्कूल में वो ऑफ टॉपिक हो जाता है, जो बच्चों को लगता है कि इसका हमारे जीवन में रिलेशन नहीं है कुछ भी, इसका कहीं कहाँ उपयोग हो सकता है तो हम क्या ही करेंगे पढ़ के
0: क्या फ़ायदा है।
1: जी तो इसके लिए शिक्षा इसका शिक्षा इस तरह से बनाई जानी चाहिए, नॉलेज एजुकेशन इस तरह का हो कि वो बहुत एंगेजिंग हो, बच्चों का ध्यान आकर्षित करे और
0: टीचर्स कुछ नए नए तरीके इस्तेमाल
1: करें, नए तरीके होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल अच्छी बात है।
1: जी और जो लड़कियां होती हैं उन्हें वो क्यों, वो कभी कभी इस कारण से भी स्कूल नहीं जाती है कि स्कूल में शौच घर नहीं होता है तो उस कारण से भी वो नहीं जाते हैं, क्योंकि वो आजकल काफ़ी स्कूल्स में बनाया भी जाता है, अवेलेबल किया जाता है, पर कहीं कहीं पे नहीं भी है तो वो भी एक कारण है,
0: बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल
1: जी,
0: तो इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ऐसा लगता है कि अभी उस समय महसूस नहीं होता कि कितना बड़ा ये हमारे जीवन पे असर डालेगा, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं देखते हैं कि और उनके साथ के जो लोग हैं वो आगे निकल रहे हैं या अच्छे पदों पे नौकरी कर रहे हैं या कुछ अपना कर रहे हैं तो महसूस तो होती है और फिर गिल्ट भी होता है, बुरा भी लगता है माता पिता को भी और बच्चों को भी। हाँ ये ज़रूर है कि भाई जिनका वो समय निकल गया, वो यूथ हो गए, बड़े हो गए, वो भी पढ़ सकते हैं हालांकि, लेकिन जो बच्चे हैं अगर आप लोगों ने किसी भी कारण से स्कूल छोड़ दिया है ना दोस्तों, तो उस कारण का दूसरा निवारण ढूंढ लीजिए, क्योंकि स्कूल छोड़ना सल्यूशन नहीं है, आपके जीवन के लिए स्कूल जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस बारे में और भी बात करेंगे मोनिका, एक छोटा सा गीत हमारे दोस्तों को सुनाते हैं, लौट कर आएंगे। कार्यक्रम रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं युवा मंच, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

रेडियो पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम या उससे जुड़ी किसी सामग्री से समुदाय के किसी भी श्रोता को आपत्ति हो तो आप अपनी शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में दर्ज करा सकते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी, डेप्यूटी डायरेक्टर, रूम नंबर 116, इवनिंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001, फोन नंबर 0112338654, ईमेल prabhudat.sharma@nic.in या CISCELL-MOIB@NIC.IN।

0: पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच और हम बात कर रहे हैं आज दोस्तों स्कूल ड्रॉप आउट कैसे हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं। अब लेकिन कैसे और क्यों, मुझे लगता है सबके कारण अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसे सोल्यूशंस भी हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए शो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों हमारे साथ मोनिका जुड़ गई है स्टूडियो में। मोनिका, और क्या कारण है, आपको क्या लगता है क्यों होता है स्कूल ड्रॉप आउट?
1: जी कुछ बच्चे होते हैं जो साइंस में JEE और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जिन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनना होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तो इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। तो कुछ बच्चे इन्हें टाइम इसके लिए तैयारी करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम इसमें देते हैं और उसकी वजह से वो स्कूल के जो क्लासेस होते हैं वो मिस करते हैं और फिर वो स्कूल में फेल हो जाते हैं। उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और फिर वो छोड़ देते हैं स्कूल। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार फेल होते होते फिर उनका फिर वो छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं करते, हम ऐसे ही कोई बिजनेस कर लेंगे। ये भी एक कारण है। और कुछ पेरेंट कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो इधर उधर वो शिफ्ट करती रहती हैं, जो बहुत सिटीज में जो डिफेंस फैमिलीज होती हैं और उसकी वजह से
0: होते हैं वो बहुत सारे जो मजदूरी करते हैं, भाई बहन बंजारे भी होते हैं, वो एक जगह पे नहीं टिकते तो उनका कहीं पे बच्चों की उनकी पढ़ाई एक जगह नहीं हो पाती है।
1: जी डिस्टर्ब हो जाता है उनका और वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो भी उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, उसकी वजह से वो छोड़ देते हैं। और जैसे कि हमने बुलिंग के बारे में भी बात की थी, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल और कॉलेज छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। और इसके अलावा कुछ फैमिलीज में बैकग्राउंड ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पे शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं होता है और बच्चे जुआ और सट्टा ज्यादा खेलते हैं,
0: गलत आदतों में पड़ जाते हैं।
1: जी तो वहाँ शिक्षा का महत्व नहीं होता है तो इस वजह से भी वो स्कूल छोड़ देते हैं।
0: और कई बार लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है, मैंने कहा ना कि लड़कियों ये स्कूल छोड़ने की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है और कई बार तो शुरुआत भी नहीं हो पाती, उनको स्कूल भेजा ही नहीं जाता। कई बार भेजा जाता है तो उनकी पढ़ाई को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता जितना लड़कों की पढ़ाई को समझा जाता है।
1: हाँ जी।
0: और कई बार तो छुड़वा भी दिया जाता है स्कूल।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: हाँ, किसी के पास अगर आर्थिक समस्या है, पैसे वित्तीय समस्याएं हैं तो उनकी शादी करवाई जाती है, तो इसलिए ये भी कारण है, खास करके जो लड़कियां होती है।
0: बिल्कुल। और कई बार लड़कियों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे अगर छोटा भाई बहन है घर में तो भले वो लड़की खुद बहुत छोटी है बट उसे खुद अपने छोटे भाई बहन को देखना संभालना होता है। दोस्तों परिस्थिति को हम समझ सकते हैं और अगर परिस्थिति इतनी बड़ी है ना कि नहीं हैंडल हो रही, तब भी मिलकर पूरा परिवार कोई ना कोई सल्यूशन निकालने की कोशिश ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर वो छोटी बच्ची की पढ़ाई छुड़वा दी गई तो उसका पूरा भविष्य दांव पर लग जाएगा और उसके पूरे भविष्य में अगर वो कल को चाहेगी कि एक अच्छे जॉब के लिए अप्लाई कर पाए, या मान लीजिए आज हम देखते हैं घरेलू हिंसा, कितने लोगों को इस घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, कितनी लड़कियों को अत्याचार सहने पड़ते हैं शादी के बाद भी,

0: तो अगर एक लड़की आत्मनिर्भर है, अगर वो पढ़ी लिखी है, फिर उसकी शादी होती है, ज़रूरत पड़ने पर वो अपने को इतना संभाल सकती है, अपनी केयर कर सकती है, बल्कि दूसरों की भी केयर कर सकती है, सिर्फ अपनी नहीं, उसको मदद मिलती है, उसको हौसला मिलता है। तो पूरे जीवन के लिए पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं चाहिए, पढ़ाई जीवन के लिए चाहिए। तो इसीलिए लड़कियों की पढ़ाई तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं छुड़वानी चाहिए। आप अगर मिलके सोचेंगे, मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। लेकिन वो बच्चे अगर स्कूल के अगर रास्ते को भूल गए ना, तो कल को हो सकता है उसका भविष्य उतना अच्छा ना हो पाए जितना चाहते हैं या वो खुद चाहती है। तो बहुत दुख होता है कई बार जब बच्चियों को छोटे-छोटे देखते हैं और उनको स्कूल जाने को नहीं मिलता है ना?
1: जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी। एक्चुअली हमारे हम भी ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पे बोलते थे कि ज़्यादा पढ़ाना नहीं है और शादी करा देते हैं जल्दी। और हमें भी बोला जाता था कि क्या करोगे पढ़ के। और मतलब हमें ऐसे फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे थे कि उनकी शादी करा देते थे पढ़ाई होने के बाद। फिर ऐसी सोच थी, पर आज हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। हमारे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे से शिक्षित किया है और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए या सिर्फ पैसे कमाने के लिए शिक्षा का महत्व खाली वहाँ तक नहीं है, लेकिन हमारा व्यक्तित्व बहुत बहुत विकसित होता है, बहुत इम्प्रूवमेंट्स अच्छा दिख के आता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन जीने की कला हमें शिक्षा से मिलती है, शिक्षा में बहुत कुछ सिखाती है।
0: बिल्कुल, और कितनी सही बात की। और देखिए, आपके घर वालों ने इस बात को समझा है ना?
1: जी
0: नहीं तो अगर समाज की, अड़ोसी पड़ोसियों की या कई बार रिश्तेदारों की बातों में भी आ जाते
1: जी
0: तो हो सकता है। अब कई बार ऐसा होता है उन लोगों की बातों में हम आ जाते जिनकी हमारे जीवन से कोई लेना देना भी नहीं है, वो हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले ना हम उनके किसी काम आने वाले हैं भविष्य में, तो जो होना है वो होना है, लेकिन फिर भी उनकी बातों का असर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लड़की को
1: जी
0: तुमने इतना पढ़ा दिया, लड़की को तुमने इतनी छूट दे दी, अब
1: हाँ
0: है ना? तो इस तरह की बातें भी बहुत होती हैं। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, आपके लिए ज़रूरी कौन है? आपके बच्चे ज़रूरी हैं या लोग ज़रूरी हैं? और लोग तो बातें करते ही रहेंगे, कभी भी वो बातें खत्म नहीं होंगी। हाँ, जो बातें सही हैं तो समाज को समाज बनाने के लिए ज़रूरी हैं, ज़रूरी है, हम सब एक समाज में रहते हैं तो हम उनका पालन करें। लेकिन अगर एक बच्चे की पढ़ाई की कुर्बानी देनी पड़ रही है उन बातों को पूरा करने के लिए, अगर किसी का भविष्य खराब करना पड़ रहा है उन बातों को सही ठहराने के लिए, तो आपका निर्णय अपने बच्चों के लिए बल्कि समाज के लिए भी गलत होगा। क्योंकि हमें समाज भी ऐसा चाहिए, वो बच्चे जो कल का भविष्य है वो पढ़े लिखे चाहिए, है ना? तभी तो बदलाव होगा, तभी तो परिस्थिति बदलेगी।
1: जी
0: जो हम चाहते हैं कि बेटर हो हमारा, कल को पैसे ज़्यादा आए घर में, घर की कंडीशन बेहतर हो, सब कुछ बेहतर चाहते हैं, कोई तो नहीं चाहता और बिगड़ जाए चीज़ें, नहीं? तो वो सुधरने का बहुत बड़ा हथियार है शिक्षा,
1: जी
0: बहुत ज़रूरी है।
1: जहाँ पे लोग पूछते हैं, ऐसी बातें करते कि क्या करोगे, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं आपने क्या पढ़ाई की है,
0: बिल्कुल,
1: तो उन्हें जवाब देने के लिए भी हमें पढ़ना तो ज़रूरी है।
0: कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता है हमें बोलने का।
1: कॉन्फिडेंस, हाँ जी
0: अगर हमने पढ़ाई नहीं की है तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो लोग तो बोल रहे हैं इतने अच्छे से, हम डर जाते, कॉन्फिडेंस नहीं आता, उस चक्कर में हम जो टैलेंट है ना, जो हुनर है, वो भी दिखा नहीं पाते आप।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के महत्व को समझना ही होगा। हाँ, जो हो गया सो हो गया, जो नहीं पढ़े, जिन्होंने कार्य जल्दी शुरू कर दिया, अपने घर को संभाला, उनकी बहुत बड़ा त्याग है उन्होंने किया, और वो त्याग जाया ना हो इसके लिए आप आने वाली जनरेशन को पढ़ाइए, इस जनरेशन को पढ़ाइए। इनफैक्ट जो घर में लोग हैं, अक्षर ज्ञान तो वो भी ले सकते हैं ना, मम्मी को अपने, आप बच्चे जो स्कूल जाते हैं अपनी मम्मी को आप लिखना सिखाओ, अपनी मम्मी को ABCD क ख ग सिखाओ, और आप उनको साइन करना सिखाओ ताकि वो कल को बैंक में जाते हैं या बस में बस लेने जाते हैं तो वो पढ़ पाए, उन्हें किसी को पूछना नहीं पड़े कि वो क्या लिखा है, कहाँ साइन करना है, कैसे साइन करना है, उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाए, उनके साथ कोई गलत नहीं कर पाए। तो आप अपनी माँ को भी पढ़ाइए, आप अपने बहन को भी पढ़ाइए, आपके घर में जो लोग नहीं पढ़े हैं, भले उम्र में बड़े हैं, अक्षर ज्ञान ज़रूर दीजिए, बहुत ज़रूरी है ना मोनिका
1: जी? बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस मुहिम को आप सब आगे लेकर जाएंगे हमारे साथ साथ। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। फिलहाल बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: लौट कर आ गए हम कार्यक्रम युवा मंच में और दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्कूल को ही बीच में छोड़ देने से क्या होता है. वैसे अनुभव जो स्कूल छोड़ते हैं उनको भी है, उनके माता पिता को भी है, उनके अड़ोसी पड़ोसी और परिवार वालों को भी है. कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत ऐसी बात है कि सब कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. अब भाई किसी के दोस्त सारे अगर स्कूल छोड़ के बैठे हैं खेल रहे हैं तो बच्चे को भी लगता है कि मैं भी खेलूं, मैं क्यों जाऊं, रोज़ मुझे टीचर मारती है डांटती है, ये करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, जाना पड़ता है, क्यों मैं, मेरे दोस्त कितना इन्जॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी अपना मस्ती कर रहे हैं, जो कर अपने दिन में खुश हैं, तो मैं भी क्यों ना खुश रहूं, मेरे साथ ये. लेकिन अब बात यह है दोस्तों, ऐसे में उस समय वो बच्चा तो नादान है, छोटा है, लेकिन माता पिता को उन्हें बहुत बहुत अच्छे से समझाने की ज़रूरत है कि बेटा तुम्हें पढ़ाई करनी ही है, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है. इसका ये मतलब नहीं है कि तुम टॉप ही करो, एकदम परसेंटेज 90 आ जाए 80 आ जाए, लेकिन पढ़ाई करो, समझो और आगे बढ़ो. और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा जीवन इससे अफेक्ट होता है. और मोनिका क्या लगता है आपको इस बारे में? और
1: जी बिल्कुल आपने सही कहा, जब मैं छोटी थी और ऑफ़ कोर्स जो भी बच्चे होते हैं उन्हें ऐसा ही लगता है कि पढ़ाई से छुटकारा हो जाना चाहिए, बस खेल कूद होनी चाहिए और मज़े होने चाहिए. लेकिन अभी हमें लगता है कि नहीं, पढ़ाई का शिक्षा का बहुत इम्पोर्टेंस है. जब हम देखते हैं हमारी एज के कुछ बच्चे हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ विदेश में जाते हैं, अच्छी कमाई करते हैं. तो अभी हमें शिक्षा का महत्व पता चलता है, हम छोटे रहते हैं तो नादान रहते हैं. और एज अ पेरेंट हमें तो पता है इम्पोर्टेंस, तो हमें बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए. अगर बच्चों का मोटिवेशन, बच्चे खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है.
0: पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है बिल्कुल. और दोस्तों अगर हम बात करें कि कुछ आपको अगर डेटा आपके साथ शेयर करना चाहें, तो दोस्तों एक रिसर्च हुई, एक स्टडी हुई जो कि डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ने कराई. और हम बात कर रहे हैं इस वक्त 2023 की. 2023 को 9 अगस्त को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जागरण में. और दोस्तों उसमें बताया गया कि उन्होंने एक स्टडी की थी और जिसमें उन्हें ये पता चला कि जो रूरल इंडिया है, अगर हम बात करें गाँव की बात करें, कई ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को ग्रेजुएशन लेवल तक भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों के माता पिता हैं 78% और लड़कों के 82 यानी 82%. यानी लड़कों के माता पिता अभी भी उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों के माता पिता हाँ अवेयर हैं, ग्रेजुएशन कराना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कंपैरिजन में कम है. लड़कियों की पढ़ाई को अभी भी महत्व कंपेरेटिवली लड़कों से कंपेयर किया जाए तो कम मिलता है. और ये जो स्टडी हुई यानी जो रिसर्च हुई, ये ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने करवाई. और ये रिसर्च जो 6 से 16 साल तक के बच्चे होते हैं गांव में, रूरल कम्युनिटीज़ में, उनके माता पिता से पूछा गया था, बात की गई थी और करीब 20 स्टेट में ये रिसर्च कंडक्ट की गई. तो दोस्तों जब ये रिज़ल्ट आता है तो एक ये भी एहसास होता है कि हाँ पहले से हालात बहुत बदल गए हैं, लेकिन अभी भी एहसास होता है कि अभी भी लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं मिल रहा जितना लड़कियों की शिक्षा को मिलता है ना
1: जी.
0: तो दोस्तों ज़रूरी है कि हम ये बातें जानें. और अगर हम ड्रॉप आउट की इस वक्त बात कर ही रहे हैं, टोटल जो ड्रॉप आउट है, अब उसकी बात करें तो ड्रॉप आउट रेट जो है कि लड़कियों के जो छोटी बच्चियां होती है उनमें ज़्यादा है. और इसी रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ, 35%, आप सोचें 35%. और आप अगर लड़कों की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल ये रेट ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों में हो ही नहीं रहा, लड़कों में नहीं हो रहा, लेकिन लड़कियों में अभी भी ज़्यादा है. यानी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लड़की सिर्फ शादी करके दूसरे घर नहीं जाएगी, बल्कि उसका जीवन भी उतना ही, उम्र वो जीने वाली है उतना ही, वो ज़रूरी है उतना ही, वो समाज का हिस्सा है उतना. और सोचिए एक लड़की, कहते हैं ना कि भाई एक लड़के को पढ़ाते हैं तो एक लड़के को पढ़ाते हैं, लेकिन एक लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरे परिवार को पढ़ाते हैं, ये कहावत है. और आप कुछ कहना चाहोगे, आपने जो पढ़ा जो इस बारे में विषय में समझा?
1: जी वैसे आजकल लड़कियां लड़कों से आगे ही है हर क्षेत्र में. हम स्कूल में भी देखते थे कि जो टॉपर्स रहते थे और आजकल यूनिवर्सिटी टॉपर्स मोस्टली लड़कियां रहती है और लड़कियां किसी के मामले में कम नहीं है. कहीं कहीं पे लड़कियों ने दिखा दिया कि लड़कों से कम नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे आज भी ऐसे लड़कियों की शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता है. हम भी पढ़े लिखे हैं तो हम लड़कों वाले लड़कियों वाले दोनों काम कर लेते, तो एक अच्छा लगता है कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं,
0: अपने माता पिता को भी संभाल सकते हैं, उनको कोई ज़रूरत पड़े तो हम मदद कर सकते हैं, चाहे ट्रेन का टिकट करना हो, कुछ सामान खरीदना हो, कुछ भी करना हो
1: जी.
0: तो लड़कियां गाड़ियां चलाती हैं, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, तो अगर वो शिक्षित नहीं होती तो वो संबल कैसे होती
1: जी.
0: और दोस्तों जब भी बात शिक्षा की आती है तो मुझे लगता है एक प्रश्न सबके मन में आता ही है, और वो ये भी अभी भी हमें ये ज़रूर लगता है कि पढ़ा के क्या होगा. अगर मान लो काम वही करना है जो हमारे माता पिता कर रहे हैं, तो पढ़ के क्या फ़र्क पड़ जाएगा.
1: नहीं, पढ़ने से तो बहुत फ़र्क होता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं. सिर्फ पढ़ाना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कमाई का साधन नहीं है, बहुत कुछ सीखते भी हैं, तो पढ़ाई से बहुत फ़ायदे होते हैं.
0: अब पता है मानेगा एक प्रश्न ये ना, छोटे छोटे बच्चे, गांव में एक प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पास के ही, और उन बच्चों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि मतलब स्कूल, अगर मान लो आपको स्कूल से क्या, स्कूल जाने से क्या होगा. तो उसमें से एक छोटी सी लड़की थी, वो लड़की ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, 6-7 साल की थी शायद, तो उस लड़की ने बोला कि अगर मुझे खाना भी बनाना है तो अगर मैं पढ़ लिख जाऊँगी ना तो मैं कुछ नया नया और बना पाऊँगी, मुझे पता चलेगा और कहाँ कहाँ क्या बनाते हैं, कैसे मैं पढ़ पाऊँगी, कैसे कैसे बनाते हैं. तो सिर्फ जो यहाँ बनता है, जो हम खाते हैं, हम कुछ और भी नया नया आपको बना के खिला पाएंगे. वहाँ एक छोटा बच्चा भी था, उसने कहा कि अगर मुझे खेती करनी है, मान लो मुझे अपने माँ बाप का जो काम है उसको आगे बढ़ाना है, अच्छे से खेती करनी है, अच्छा फार्मर भी तो देश की नींव है ना
1: जी.
0: तो उसने बोला कि मैं और तरीके से खेती कर पाऊँगा और स्टाइल अपना पाऊँगा इरिगेशन के, या फिर उसने मतलब इरिगेशन शब्द का उपयोग तो नहीं किया, परंतु उसने ये ज़रूर कहा कि मैं खेती के नए तरीके ढूँढूँगा, बेहतर करूँगा खेती को. तो अब ये कितनी बड़ी बात है, वो छोटे छोटे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि वो जो जीवन जी रहे हैं उसी को बेहतर कर सकते हैं अगर वो शिक्षा हासिल कर लें तो.
1: जी, आपको एक बात बताऊंगी. एक्चुअली मैंने तो वैसे कॉमर्स किया है, पर अचानक से मुझे ऐसे इंटरेस्ट आया कि साइंस की बुक होती है जो NCERT जो UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनकी मैंने साइंस की बुक पढ़ी थोड़ी सी, और मुझे इतना सारा नॉलेज मिला उसमें से कि कौन सी चीज़ों में विटामिन्स मिलते हैं, कौन सी चीज़ में एनर्जी मिलती है, और जो जैसे कि आपने कहा जो खेती करते हैं उन्हें उस क्षेत्र में भी बहुत सारा नॉलेज मिला. मैंने एक ही किताब पढ़ी और इतना नॉलेज अगर मिल रहा है तो पूरी की पूरी अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप कितने ज़्यादा शिक्षित हो जाओगे, और वो आपको काम में आएगा. आप कैसे जीना है, अच्छे से अपने आप को कैसे रखना है. आप हम पढ़ाई क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण है ना. पढ़ाई ऐसे ही थोड़ी करेंगे, डिग्री मिल गई उसके लिए, हमें उसमें से सीखने को मिल रहा है. अगर वो प्रथा चलती आ रही कि पढ़ाना है तो उसमें से फ़ायदा हो रहा है, तभी हम पढ़ाई को, शिक्षा को इतना महत्व दे रहे हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. और देखो आपने वो बुक पढ़ी इसलिए कि आपको जानकारी मिले, आपको एग्जाम नहीं देना था, वहाँ स्कूल की किताब नहीं थी आपकी. तो नॉलेज जहाँ से मिले आपको काम ही आएगी एक ना एक दिन, आपको वो मदद ही करेगी कभी ना कभी. खाली नहीं जाती कोई भी चीज़ अगर आपने सीखी है तो. ये कहता है हमारे बड़े बूढ़े हमें समझाते आए हैं, कहते आए हैं इस बात को. और मोनिका, क्योंकि हमारे शो भी ख़त्म होने वाला है थोड़े समय में, आपने कुछ NIOS के बारे में भी पढ़ा है और उपाय सॉल्यूशंस की भी अगर बात करें तो आप क्या सोचते हो.
1: जी, जो लोग सोचते हैं कि हमने बहुत साल हो गए और हमने स्कूल छोड़ दिया था, हमने 4th-8th पढ़ाई की थी, और हम क्या हम फिर से पढ़ सकते हैं, क्या हम फिर से स्कूल जा सकते हैं और कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए खुशखबर है कि हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हो. और उसका सॉल्यूशन ये है कि एक NIOS जैसे कि आपने कहा कि इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार ने जारी किया है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल ओपन स्कूलिंग कहा जाता है. एक ये ऑप्शन है. उसके अलावा जिन बच्चों ने हाल ही में स्कूल छोड़ा है और अभी स्कूल जाने की एज में है, वो स्कूल जा भी सकते हैं तो वो रेगुलर स्कूल में जाके भी फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, और जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है वो NIOS के थ्रू जा सकते हैं. हर एक स्टेट का ओपन स्कूलिंग का इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है. मैंने एक्चुअली सर्च किया था ये, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, वो जनरल है, और
0: यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान
1: जी, और एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है,
0: इग्नू जिसे कहते हैं
1: जी. और उसके अलावा काफ़ी स्टेट्स हैं जिनके अपने अपने NIOS हैं, ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बैंगलोर में भी अपने अपने ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. तो इतनी व्यवस्था आई है, मतलब आप कभी भी पढ़ना चाहो, कभी भी वापस शिक्षा प्राप्त करना चाहो तो बहुत इजी है. आपको क्या करना है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप किसी भी स्कूल में या कॉलेज में जाके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो. एजुकेशन काउंसलर्स होते हैं स्कूल में, टीचर्स होते हैं, उनसे.
0: जैसे आपने इग्नू वगैरह की बात करी या और ऐसे कॉलेजेस की बात की, तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं. यूनिवर्सिटी वो होती हैं जहाँ पे आप ग्रेजुएशन करते हैं, यानी आप बारहवीं कर चुके हैं, आप उसके बाद की पढ़ाई होती है. NIOS की बात कर रहे हैं हम, वो ओपन हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं. तो ड्रॉप आउट जिन्होंने स्कूल में किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो ओपन लर्निंग कर सकते हैं. मतलब आपको रोज़ स्कूल नहीं जाना है, आपको किसी पर्टिकुलर जगह एडमिशन नहीं, लेकिन हाँ आप वो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते हैं और आपके पास वो डिग्री वो आपको आ जाता है कि एक क्लास आपने पास कर ली है. तो अगर आप किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वैसे तो सबसे अच्छा है स्कूल जाना, लेकिन आप बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र निकल गई है या कुछ और मुश्किलें अगर आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा कर सकते हैं. ये लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है पूरी दुनिया का. आप सोचें कितना बड़ा ये कार्य चल रहा है. और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार के अंडर आता है. और आप अगर इस बारे में जानना चाहें तो दोस्तों आप nios.ac.in इस वेबसाइट पे जा सकते हैं. मैं फिर से दोहरा देती हूँ, nios.ac.in.
1: जी, मैं एक बात बोलना चाहूँगी. लोगों को कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत साल निकल जाएंगे पढ़ने में, लेकिन NIOS का ओपन स्कूलिंग का एक फ़ायदा होता है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है. आपकी आपको किस क्षेत्र में पढ़ना है, आपको क्या पढ़ाई करनी है, वो अपने उसके हिसाब से आपका प्लान बनाते हैं, और आपका पढ़ाई भी आपकी स्पीड आपके ऊपर है, आपको कितनी स्पीड से पढ़ना है. तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, अगर आप चाहते हो कि जल्दी हो जाए तो वो भी पॉसिबल है. इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है.
0: और दोस्तों अगर आपको इसकी और अधिक जानकारी चाहिए तो एक टोल फ्री नंबर भी है जहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वो नंबर है 1800 1800 9393. नंबर मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 1800 1800 9393. तो ये नंबर भी है जहाँ आप संपर्क कर सकते हैं. और आप पढ़ाई अपनी पूरी ज़रूर कीजिए दोस्तों. जाते जाते भी हम यही दरख्वास्त करेंगे आप सभी से, अगर आपके आसपास कोई है जो स्कूली शिक्षा अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए तो उन्हें भी मोटिवेट कीजिए, उनको जिस तरह से मदद कर सकते हैं वो मदद कीजिए. वैसे तो हम एक दूसरे के लिए कितना कुछ करते हैं ना, बर्थडे होता है तोहफा लेकर आते हैं, कुछ और उसको खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को शिक्षा का उपहार दिया है दोस्तों तो उससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता. समझ लीजिए आपने उसे जीवन का नया उपहार दे दिया है. तो शिक्षा पूरी करने में किसी न किसी की मदद ज़रूर कीजिए. अगर हम एक एक की भी मदद करेंगे तो हम समझ लीजिए भारत की मदद कर रहे हैं, पूरे अपने देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं. और ये कर्तव्य तो हमें निभाना है मिलकर. आप जाते जाते मोनिका कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी, मैं कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, और कोई उम्र नहीं होती है शिक्षा सीखने, शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मर्यादा नहीं रहती है. आप किसी भी उम्र में आप चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो फिर से, तो आप कभी भी कर सकते हो, वापस कंटिन्यू कर सकते हो.
0: जी, तो ज़रूर कीजिए आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई. और फिलहाल हम लेते हैं आपसे इजाज़त, हम आएंगे अगली बात अगले विषय के साथ. इस कार्यक्रम को सुनते हैं शाम 5 से 6 बजे। देखिए मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: बंधन है
1: रिश्तों की डोरी से। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम
2: उड़ान के साथ।
1: मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम लेकर आ गई हूँ और पूछूंगी आज आपसे खास पहेली, साथ ही साथ होगी कहानी, कविता और होमवर्क भी। होमवर्क है तो चलिए दोस्तों, जरूर इन चीजों के साथ जुड़े रहिएगा, सुनते रहिएगा,
2: मुस्कुराते रहिएगा
1: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM।

0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। तो चलिए कुछ अमेजिंग जानकारी के साथ जोड़ लेते हैं आपको एक ऐसे राजधानी के विषय पर बताते हैं जो भारत की सबसे बड़े स्टेट्स में से या सबसे बड़े राज्यों की राजधानी मानी जाती है, राज्य की राजधानी मानी जाती है। कहते हैं लोकसभा में सबसे बड़ी सीट इसी राज्य से ही आता है, सबसे ज्यादा सीट भी। और ये जो खूबसूरत शहर है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पर किसी समय पर लक्ष्मणपुर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा इस राज्य में पिछले ही दिनों में क्या बोलते ना, राम लल्ला का जो मंदिर है उसकी स्थापना हुई थी। नवाब असफुद्दौला 1775 के ईसा पूर्व में अवध के नवाबों की राजधानी इसी जगह पर थी। कहते हैं ये एक खूबसूरत संस्कृति, विनम्र वाली संस्कृति है। लेकिन यहाँ पर कोठियाँ काफी देखने को मिलती है। सितार, तबला, कथक नृत्य का जन्म भी इसी खूबसूरत राज्य से ही हुआ है। पर आज का सवाल, आज की पहेली आपके लिए ये है।
1: ल से मेरा नाम है, हूँ नवाबों का शहर, राजधानी एक राज्य की नहीं मैं कोई गैर।
0: जी हाँ, ल से मेरा नाम है। भाई आपको ल से कौन सा नाम याद आता है? नवाबों का शहर है, राजधानी एक ऐसे राज्य की है जो किसी से गैर नहीं है, किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। तो चलिए इस सवाल का जवाब या पहेली का जवाब आप दे दीजिए। नंबर है हमारा
1: 9414151415।
0: रिश्तों की डोरी में ये खूबसूरत गीत आप तक पहुंचाते हैं उड़ान में। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ये तंबाकू क्या होता है?
1: अरे तिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर का माए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, खूबसूरत इस कविता को आप तक पहुंचाते हैं। ये लखनऊ है मेरी जान, गोमती की बहती लहरों सा, या यहाँ का है पावन प्यार, अदब और नजाकत से सजी है इसकी हर एक बहार।
5: चौक नखास की गलियों में दिखता है पुराना मान, अरे मुस्कुराइए जनाब, ये लखनऊ है मेरी जान।
4: महिलावादी आमों की सी मिठास है यहाँ की बोली में, रंग घुला है तहजीब का यहाँ की हर एक टोली में।
5: हजर तंगज की रौनक देखो या अमीनाबाद का बाजार, पत्थर भी यहाँ करते हैं अपनों साथ।

0: हमारा
1: 9415151415 पर
0: जरूर दीजिए। और ये खूबसूरत जो जगह है वहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा, शाहिद स्मारक, रेसिडेंसी, भूल भुलैया, छोटा इमामबाड़ा और हुसैनाबाद क्लॉक टावर भी है, पिक्चर गैलरी भी मौजूद है। तो यदि आप ल जगह पर पहुँचते हैं तो ये सब कुछ आपको देखने को जरूर मिलता है। झटपट जवाब दीजिए, नंबर फिर से एक बार दोहरा दीजिए।
1: 9415151415।
0: सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।
0: आ चल के तुझे मैं लेके चलूं।
2: अच्छी है? हाँ, और ये देख क्या है, मैं बजाऊं तो मैं गाना गाऊं? अरे घर, मुझे गाना कहाँ आता है?

0: जहाँ दूर नजर दौड़ाए, हमारे नजर दौड़ाते दौड़ाते हमारे बीच एक श्रोता भी आ चुके हैं। नमस्कार, कौन है?
1: नमस्कार, मैं जी साजिया बोल रही हूँ, पीरोज खान की लड़की बोल रही हूँ।
0: साजिया कैसी हो?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। साजिया, आप कौन सी कक्षा में हो?
1: मैं आठवीं कक्षा में।
0: और हमारी रूहानी?
2: मैं नाइन्थ क्लास में हूँ।
0: देखो, नाइन्थ क्लास की है। साजिया, आपकी एज कितनी है?
1: हा?
0: आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है?
1: हमारी उम्र 13 वर्ष।
0: 13 साल, और हमारी रूहानी का 14 इयर्स। तो आप लोग दोनों करीबन करीबन सेम हो, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी दो सखियां, एक 14 की, एक 13 की। चलिए, क्या सुनाने वाली हो आज?
1: जी आज मैं गीत सुनाने वाली हूँ।
0: सुनाओ।

0: बहुत अच्छा साजिद, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज पहेली का जवाब भी दोगे आप साथ साथ?
1: हाँ हाँ, वो पहली का जवाब है लखनऊ।
0: लखनऊ, अच्छा सजीदा आप कहाँ कहाँ जा चुकी हो अपने गुजरात के शहरों में?
1: शहरों में?
0: हाँ, जैसे आप रहती कहाँ हो? पालनपुर।
1: पालनपुर।
0: हाँ, आप माउंट आबू आई हो कभी?
1: हाँ,
0: माउंट आबू कभी आई हो?
1: कहाँ पे?
0: माउंट आबू। माउंट आबू?
1: माउंट आबू नहीं। नहीं।
0: अच्छा, अब की बार जरूर आना, ठीक है? अपने नाना जी के साथ जरूर आना, हमें बहुत खुशी होगी आपसे मिलना। थैंक यू। हाँ। थैंक यू सजीदा, उम्मीद करते हैं कल हम फिर से जुड़ेंगे।
1: ये आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है?
0: व्हाट्सएप नंबर?
1: हेलो।
0: हाँ है, यही नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर भी है, आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। चलिए दोस्तों, एक नन्ही सखी जिसने आज की पहेली का जवाब जरूर पहुंचाया। आगे बढ़ते हैं और हम चल रहे थे, सुन रहे थे, आ चल के तुझे

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: पालनपुर से फिरोज भाई बोलता हूँ, ओम शांति।
0: हाँ जी फिरोज जी, आपकी पोती ने तो बहुत कमाल किया, कमाल का गीत सुनाया, शुक्रिया कॉल करवाने के लिए आपकी पोती ने। जी जी जी जी जी
1: तो इसके नाना ऐसे हैं तो फिर वो भी होगी ना।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, असर तो आएगा ही। खैर चलिए आगे बढ़िए, और आज की पहेली का जवाब आप क्या चुनकर देखना चाहते हैं? ल से तो बहुत सारे शहर आते हैं।
1: पहेली का जवाब जो है ना अपना, ये लखनऊ के नवाब।
0: जी लखनऊ के नवाब, थैंक यू।
1: लखनऊ लखनऊ,
0: थैंक यू थैंक यू। नमस्कार, रेडियो मधुबन में जुड़ने के लिए सुनते रहिए।

0: मैं इसे बाजार में बेच कर आता हूँ। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छी फसल हुई है इस बार तो। हाँ, मैं इसे बाजार में बेच कर आता हूँ। हाँ, वाह, बहुत अच्छी फसल हुई है इस बार। अरे आओ भाई आओ, ताजी ताजी सब्जियां ले जाओ। लाल टमाटर ले लो, सिर्फ 15 रुपए किलो, सिर्फ 15 रुपए किलो। ताजे ताजे बैंगन ले लो, मात्र 10 रुपए किलो, मात्र 10 रुपए किलो।
1: अरे काका, टमाटर कैसे किलो दे रहे हो?
0: मात्र 15 रुपए किलो है भाई, ले जाओ। टमाटर के साथ धनिया बिल्कुल मुफ्त है।
1: हाँ तो 4 किलो दे दो मुझे।
0: अरे आओ भाई आओ, ताजी ताजी सब्जियां ले जाओ। लाल टमाटर ले लो, सिर्फ 15 रुपए किलो, सिर्फ 15 रुपए किलो। ताजे ताजे बैंगन ले लो, मात्र 10 रुपए किलो।

0: अरे आज भी सारा सब्जी बिक गया, तो फिर आज तो आप बहुत अच्छी कमाई किए होंगे आज।
1: अरे हाँ वही हुआ है थोड़ा बहुत, इस बाजार में सब्जी बेचने में कितना मुनाफा होगा तुम ही बताओ। हाँ कितना मुनाफा होगा?
0: अरे ज्यादा पैसे से क्या होगा बताओ, इससे तो हमारा अच्छा खासा चल रहा है न दिन।
1: ओ तुम नहीं समझोगी भाग्यवान, जाओ जाओ खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है मुझे।
2: एक्सक्यूज मी, क्या आपका नाम विनोद है?
1: जी जी जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं?
2: मैं पासी के शहर से एक ऑनलाइन ग्रोसिंग कंपनी की तरफ से आया हूँ, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। आप इस एरिया के सबसे बड़े किसान हो और आपके पास बहुत बड़ी जमीन भी है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इतना कुछ मेरे बारे में कैसे जानते हैं?
2: मेरी कंपनी की टीम ने गांव-गांव जाकर सर्वे किया था।
1: ये सर्वे क्या होता है?
2: जाने दीजिए, हम आपके लिए ऑफर लेके आए हैं।
1: ऑफर? कैसा ऑफर?
2: हमारी कंपनी सिटी टू सिटी जाकर सब्जियां सप्लाई करती है, यानी कि दूर दूर शहर के हर बाजारों में सब्जियां पहुंचाने का काम करती है, इसलिए हमें बहुत सारे सब्जियों की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम गांव-गांव जाकर बड़े बड़े किसानों को ढूंढते हैं और उनसे डायरेक्ट सब्जी खरीदते हैं।
1: तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपको फसल बेचूं?
2: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम आपसे एक एग्रीमेंट करेंगे और आपको एडवांस भी देंगे, उस एडवांस से आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, फिर वो सारी सब्जियां हम खरीद लेंगे।
1: अरे वाह ये हुई ना बात, वाह वाह, मतलब मेरा कुछ खर्च ही नहीं है।
2: तो आप तैयार है ना?
1: हाँ हाँ मैं तो तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ मैं।
2: तो ये लीजिए फिर, इस कागज पे अपना अंगूठा दे दीजिए।
1: ठीक है। ये लीजिए आपका एग्रीमेंट।
2: ठीक है विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय आने पर हम आपसे फसल लेके जाएंगे।
0: कौन आया था जी दरवाजे पर?
1: अरे भाग्यवान, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक आया था। भाग्यवान आज से मैं अपनी फसल कंपनी को बेचूंगा, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। भाग्यवान हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे।

0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी फसल हो गई। अब मैं जल्दी जल्दी इन सब्जियों को तोड़कर अपने टोकरी में जमा कर लेता हूँ। हाँ, कंपनी वाले सर आज ही आएंगे ना।
1: क्या हुआ, दिन तो ढलने जा रहा है, कहाँ है आपका बड़े कंपनी का मालिक?
0: अरे भाग्यवान, थोड़ा सबर तो रखो, आते ही होंगे। वो देखो आ गए सर। अरे आइए आइए आइए सर, आइए, आपका इंतजार कर रहा था।
2: फसल कैसी हुई है विनोद बाबू?
0: फसल तो बहुत अच्छी हुई है सर, बहुत अच्छी हुई है।
2: वाह वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे बताइए कि वो फसल कहाँ पर रखी है, मेरे आदमी वहाँ जाकर फसल लेकर आएंगे।
0: हाँ हाँ, घर पे ही है। भाग्यवान, वो सब्जी की पूरी टोकरी लेकर आ जाओ। हाँ जाओ।
1: हाँ आइए आइए, मेरे साथ आइए।
2: ठीक है, जाओ जाओ, ये सब सब्जियाँ गाड़ी में जाकर रख दो। विनोद बाबू, ये रहा आपका पैसा और ये रहा आपका अगली बार का एडवांस, ठीक है ना? बराबर है ना?
0: अच्छा सर, आप लोग एक बार में कितनी सब्जी खरीद सकते हैं?
2: आप जितनी फसल उगा पाएंगे हम उतनी फसल खरीद सकते हैं। हम आपको ज्यादा पैसे देकर ज्यादा फसल खरीद सकते हैं और सब्जियाँ एकदम ताजी होनी चाहिए।
0: नहीं नहीं सर, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
2: ठीक है, मैं एक महीने के बाद फिर से आता हूँ। हाँ चलो,

0: अरे ये क्या लाए हो?
1: दवाई लाया हूँ, दवाई।
0: दवाई? किसका दवाई है ये?
1: ज्यादा फसल उगाने के लिए।
0: मतलब क्या करने वाले हो?
1: अरे कंपनी वाले सर बोले थे ना, जितना फसल उगा सकता हूँ वो उतना खरीद लेंगे, इसलिए मैं ये ऐसा दवाई लेकर आया हूँ जिससे बहुत बहुत बहुत फसल हो जाएगी और फसल का साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा। हम लोग अमीर हो जाएंगे भाग्यवान, हम लोग अमीर हो जाएंगे।
0: लेकिन दवा से जो फसल बनेगी वो अच्छी तो होगी ना?
1: अरे उसकी चिंता मैं क्यों करूं? बहुत ज्यादा पैसा होगा, बस बहुत ज्यादा पैसा पैसा पैसा।
0: सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ऐसा मत कीजिए ना, कुछ गड़बड़ हो गया तो?
1: अरे रहने दो रहने दो, तुम्हें तो बोलकर ही गलती कर दी मैंने। अरे सब लोग अमीर बनने के लिए यही सब कुछ करते हैं।
0: क्या पता, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये।
1: अरे रहने दो रहने दो, तुम्हें और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं कर लूंगा। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेता हूँ। अब मुझे इस गांव का सबसे अमीर किसान बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।

0: क्या बात है विनोद बाबू, इस बार तो इतनी सारी फसल उगी है। बड़ा काम काज हो गया आपका तो।
1: जी जी हाँ सर, वह थोड़ी ज्यादा मेहनत किया था इस बार। आपको तो छाट छाट कर दिया हूँ अच्छी सब्जियाँ, खराब सब अपने पास रख लिया हूँ बाजार में बेचने के लिए।
0: अच्छा अच्छा, ये लो आपके पैसे।
2: अरे वाह वाह वाह, इतना सारा पैसा। हा, हा, हा, हा, अब मैं अमीर हूँ। जाता हूँ, अब मैं बाजार जाके खराब सब्जी बेचकर आता हूँ। दोनों तरफ से पैसा, अच्छे से भी और बुरे से भी।
3: अरे रे रे रे रे, यहाँ पे क्यों आए हो?
2: अरे यहाँ क्यों मतलब, मैं तो सब्जी बेचने आया हूँ।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम अब यहाँ सब्जी नहीं बेच सकते हो।
5: हमारे पास पक्की खबर है, तुम अब अच्छी कंपनी को अपनी पूरी सब्जी बेच रहे हो। तुम दोनों तरफ से लाभ कमाओगे तो हम क्या करेंगे?
3: जाओ जाओ जाओ, तुम अपने घर चले जाओ। इस बाजार में तुम सब्जी नहीं बेच सकते, बिल्कुल नहीं, जाओ।
2: अच्छा, ठीक है, मैं जाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ।
6: अरे ये क्या, लोग तुम्हें बाजार में सब्जी बेचनी नहीं देगा तो क्या होगा?
2: अरे क्या होगा इससे, हाँ कंपनी के पास बेचूंगा और बाजार से दोगुना पैसे कमाऊंगा, समझी? चार गुना पैसा होगा, समझी? चिंता की कोई बात नहीं है। क्या क्या क्या हुआ सर?
0: क्या हुआ, यह सब्जियां हैं कि ऊपर जाने का रास्ता?
2: मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ।
0: अरे आपके द्वारा दी गई सब्जियां हमारे क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है, इसे तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा। ये लो तुम्हारी घटिया सब्जियाँ, इनमें से हमें केमिकल्स मिले हैं जिससे कि भयानक रोग और लोग बीमार पड़ जाते हैं। आपने इतने कम समय में केमिकल की मदद से इतनी सारी सब्जियाँ उगा ली?
2: नहीं,
0: अब कोई बहाना नहीं चलेगा। लो लो मेरे सारे पैसे वापस दे दो, एडवांस पैसे भी, नहीं तो मुझे पुलिस बुलाना होगा।
2: पैसा पुलिस?
0: हाँ पैसा पैसा, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ है कि क्वालिटी टेस्ट में अगर सब्जियाँ फेल हो जाती है तो सारे पैसे वापस देने होंगे। वापस दे दो वरना मुझे पुलिस बुलाना पड़ेगा।
2: पुलिस? नहीं, लीजिए, आपका पैसा लीजिए, अपना पैसा।
0: आज के बाद कभी भी आपसे कोई भी सब्जियां नहीं खरीदूंगा।
2: मेरा सब खत्म हो गया, बागीवान, सब खत्म हो गया, सब तरफ से लाभ पाने के लालच में सब चला गया बागीवान।
6: इसलिए तो मैंने आपको बार बार मना किया था कि यह सब मत करो, ऐसा कुछ मत करो, मगर आपने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। अब देखो अब क्या होगा, हमारा क्या होगा।

0: हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे?
1: नहीं नहीं, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा, लालच करना पाप होता है, कभी लालच नहीं करूंगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
3: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: वेलकम बैक दोस्तों, पुनः आज की पहेली एक बार दोहरा देते हैं।
5: ल से मेरा नाम है, हूँ नवाबों का शहर, राजधानी एक राज्य की नहीं मैं कोई गैर।
4: झटपट जवाब दीजिए इस पहेली का। नंबर है हमारा
5: 9414151415।
6: सर जो मेरा चकराए

0: जा प्यारे साथ हमारे काहे घबराए। गोल्डन स्टार वाली टीचर, चौथी कक्षा में पढ़ने वाली रिंकी अपनी क्लास टीचर की सबसे फेवरेट स्टूडेंट थी। रिंकी पढ़ाई लिखाई में तो आगे थी, वो क्लास में भी अनुशासित रहती थी। उसकी क्लास टीचर अनीता मैम विद्यार्थियों को ज्यादा रोकती टोकती नहीं थी।
1: उन्होंने एक अनोखी युक्ति अपनाई हुई थी जिससे विद्यार्थी समझ जाते थे कि ऐसा नहीं करना है। दरअसल उन्होंने क्लास में एक सफेद चार्ट लगाया हुआ था। उस चार्ट पर सभी विद्यार्थियों के नाम लिखे थे। जो बच्चा अच्छा काम करता था उसके नाम के आगे वे एक गोल्डन स्टार चिपका देते करते थे।
0: इसी प्रकार यदि कोई गलती करता था या गलत काम करता था वो उनके नाम के आगे ब्लैक स्टार लगा देती थी। अब तो सभी विद्यार्थियों में होड़ लग गई थी कि कौन सबसे ज्यादा गोल्डन स्टार पाए, इसलिए वे क्लास में पहले से ज्यादा अनुशासित रहने लगे।
1: अभी कुछ ही दिन बीते कि अनीता मैम को वायरल बुखार हो गया, इसलिए उन्होंने स्कूल से छुट्टी ले ली। अब उनकी जगह कुछ दिनों के लिए दूसरी टीचर पढ़ाने लगी। उनका नाम रेखा था। पहले दिन जब वे क्लास में आई तो उन्होंने बच्चों से उनके नाम पूछे।
0: फिर वो बोली सभी चुपचाप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करती हूँ। पूरी क्लास अपने अपने काम में लग गई। कोई चित्रकारी करने लगा तो कोई अपना होमवर्क अधूरा होमवर्क करने लगा। कुछ बच्चे कक्षा में ही खेल रहे थे, स्टोन पेपर सीजर। रिंकी को पुस्तक पढ़ने की आदत थी, सो वो चुपचाप बैठकर पुस्तक पढ़ने लगी।
1: क्लास शांत थी और रेखा टीचर कॉपियां जांचने में व्यस्त थी। तभी रिंकी अपनी सीट से उठी और टीचर के पास आकर कुछ बोलने लगी। रेखा मैम का ध्यान कॉपियों में था, सो वे बोली, रिंकी जाओ अपने स्थान पर बैठो।
0: रिंकी बैठ गई। थोड़ी देर में जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने क्लास में शोर मचाना शुरू किया। रेखा मैम ने उन्हें 2-3 बार मना किया। विद्यार्थी एक बार तो चुप होते लेकिन फिर शुरू हो जाते। इस बार मैम को गुस्सा आ गया
1: और उन्होंने सभी को ब्लैक स्टार दे दिया। क्लास में शांति छा गई। थोड़ी देर में रिंकी फिर अपनी सीट से उठी और टीचर के पास
0: आने लगी। मैम ने उसे इस बार भी टोका, रिंकी तुम्हें वॉशरूम जाना है क्या? तुम बार बार अपनी सीट से क्यों उठ रही हो?
1: मैम वॉशरूम तो नहीं जाना, लेकिन उसके बाद पूरी होती उससे पहले ही मैम ने उसे ब्लैक स्टार दे दिया।
0: रिंकी रुआंसी हो गई। अगले दिन अनीता मैडम ठीक होकर आ गई। उन्होंने बच्चों से पूछा, कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स?
1: तभी उनका ध्यान स्टार चार्ट पर गया। ऊपर से नीचे देखते हुए वे रिंकी मैम रिंकी के नाम तक पहुंची तो चौंक कर बोली, अरे रिंकी तुम्हें ब्लैक स्टार क्यों मिला? क्या शैतानी की तुमने?
0: रिंकी उदास चेहरे से बोली, अपनी सीट से उठी और अनीता टीचर की टेबल में आकर पास में खड़ी हो गई। क्या हुआ रिंकी, तुम रुआसी क्यों हो गई?
1: टीचर जी आपको तो पता है मैं किताबें पढ़ती हूँ।
0: हाँ वो तो मुझे मालूम है।
1: और उन किताबों में जो मुझे पसंद आता है वह मैं आकर आपको बताती हूँ।
0: लेकिन रेखा टीचर को बताने के लिए मैं जैसी उठती वो कह देती अपनी सीट पर बैठ जाओ।
1: फिर उन्होंने नाराज होकर मुझे ब्लैक स्टार दे दिया।
0: ओहो तो ये बात है। असल में रेखा टीचर तुम्हारी ये बात उन्हें पता न थी। वे अभी स्कूल में नई नई आई है ना, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगी। तुम फिक्र मत करो और चलो मुस्कुरा दो।
1: रिंकी मुस्कुराने लगी तो अनीता टीचर ने रिंकी का ब्लैक स्टार हटाकर वहां गोल्डन स्टार लगा दिया। अब तो रिंकी के मुस्कुराहट दोगुनी हो गई थी। उसने टीचर को धन्यवाद दिया।
0: अब टीचर्स डे आया तो रिंकी ने स्टार के आकार का एक सुनहरा कार्ड भी बनाया। उसमें उसने लिखा, टू माय गोल्डन स्टार टीचर, और अनीता मैम को गिफ्ट दिया। इस सम्मान को पाकर
1: मैम बहुत खुश हुई और उन्होंने उसे गले से लगा लिया
0: और मेरा सर चकराने लगा।

0: सुन सुन सुन, अरे बाबा सुन।
1: ल से मेरा नाम है, हूँ नवाबों का शहर, राजधानी एक राज्य की नहीं मैं कोई गैर।
0: झटपट जवाब दीजिए, 9 4 1 4 1 5 1 4 1 5 पढ़ दीजिए।

0: काहे घबराए। तो चलिए आज के पहेली का जवाब भी अब दे देते हैं। ल से मेरा नाम है, हूँ नवाबों का शहर, राजधानी एक राज्य की, नहीं मैं कोई गैर।
1: इसका जवाब है लखनऊ।
0: जी हाँ, सही जवाब लखनऊ है, नवाबों का शहर लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा करते हैं, ठीक शाम
1: 6 बजे।
0: तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे
1: गुड बाय,
0: सुनते रहो
1: मुस्कुराते रहो
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। सही में अपना गांव और अपना अंचल को कभी नहीं भूल पाते, जिस गांव जिस अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुँचे हैं। आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल के मिलित सहयोग से बच्चों का हुनर को, प्रतिभा को, भाव और भावना को, दिल का भावना को, हृदय का तार, संगीत का माध्यम से, कविता का माध्यम से, भजन के माध्यम से आपका पास प्रस्तुत रखेंगे। आज हम पहुंचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल जो कि रेबुदर ब्लॉक में आता है। तो हमारे इस कार्यक्रम को सजाने के लिए पहला प्रस्तुति एक समूह गीत भजन के रूप में माँ सरस्वती को याद करते हुए हमारा इस कार्यक्रम को सजाएंगे पायल, रुचिता, काजल, नीता और विटल। चलिए विटल रेडी है, सभी बच्चे रेडी? ओके, सभी हमारा विद्यार्थी टैलेंट बच्चे कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे। पहला प्रस्तुति प्रार्थना के रूप में शुरू हो जाइए। शुरू।
1: शुभ प्रभातम, मेरा नाम पायल कुंवर देवड़ा, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ, राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल की अध्ययन करती हूँ और मैं मकावल की निवासी हूँ।
2: नमस्कार, मैं रुचिता चौधरी, क्लास 12 की छात्रा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल से।
3: सुप्रभात, मैं काजल कुंवर, कक्षा 12 की छात्रा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल में पढ़ती हूँ।
4: सुप्रभात, मैं नीता कुमार, कक्षा 12 से छात्रा।
5: नमस्कार, मैं बित्तल सोलंकी, कक्षा 12 से, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल में पढ़ती हूँ।

बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपना अपना नाम और कौन सा क्लास में और कहां से आते वो चीज रखें और इस तरह कार्यक्रम को सजाए। आज उनको एक मंच मिला जिस मंच का माध्यम से अपना भाव और भावना को प्रकट किए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और बच्चों का साथ हम भी बच्चे बन के अपना भाव और भावना को जन जन तक पहुंचा रहे रेडियो मधुबन कार्यक्रम के माध्यम से। एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आज हमें खुशी है बच्चों को एक स्टेज जो आवश्यकता था आज दे रहे हैं और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ भावर जी उपस्थित है। तो सुनेंगे एक गीत के रूप में कबीर जी का वाणी को लेकर। तो अपना नाम और कहां से वो भी अपना बताएंगे, है ना? ओके शुरू करें।
1: नमस्कार, मैं भवनलाल क्लास 12 से गांव मारो राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय का छात्र हूं। भाग भला रे जनगर संत पदारे, कर कृपा भव सागर तारे। भाग भला रे जनगर

0: வை சரணாமர்த்தலேனோ, சரணா தோவே வை சரணாமர்த்தலேனோ, பாகபலாரே ஜனகர் சந்த பதாரே, பாகபலாரே ஜனகர் சந்த பதாரே, சந்த சாயபமே அந்தர நாயி, சந்த சாயபமே அந்தர நாயி, சந்தோரா கர் தோ சாயப் மாயி, சாயபரா கர் தோ சந்தோரே மாயி, பாகபலாரே ஜனகர் சந்த பதாரே, பாகபலாரே ஜனகர் சந்த பதாரே, ஹே கோயி ஏக சந்த ஆயா உபகாரி, ஹே கோயி ஏக சந்த ஆயா உபகாரி, சரணோ மே ஆவே வை லேவே உதாரி, சரணோ மே ஆவே வை லேவே உதாரி, பாகபலாரே ஜனகர் சந்த பதாரே, பாகபலாரே ஜனகர் சந்த பதாரே, கயே கபீரா சந்த பதாரியா, கயே கபீரா சந்த பதாரியா, சரணோ மே ஆவே வை லேவே உதாரி, சரணோ மே ஆவே வை லேவே உதாரி, பாகபலாரே ஜனகர் சந்த பதாரே.
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए. सीख भरी प्रेरणादायी गीत के माध्यम से अपना बात को रखें और रेडियो मधुबनी इस तरह कार्यक्रम को सजाने के लिए सभी को मौका देते हैं, तो कोई उल्हाना न दे जो हमें हमारा पास कोई आया नहीं, हमारा भाव को भावना को रुचि को जन जन तक नहीं पहुंचाए. तो आज रेडियो मधुबन रेबदर ब्लॉक के मारोल राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे और बच्चों का भावना को संगीत के रूप में गीत के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं. तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक.

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: तो ब्रेक का बाद हम मिल रहे हैं और भावर जी को सुन रहे थे। इसका पहले बहुत सारे बच्चे अपना भावना को रेडियो कार्यक्रम में सजा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए मंजू भी उपस्थित है। मंजू अपना भावना को भी प्रकट करेंगे, उसका दिल का आभार और खासकर परिवार में माँ और बाप का कितना महत्व है हम भलीभांति जानते हैं। नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं और प्रथम शिक्षिका माँ को कहते हैं, पहला गुरु माता पिता है। तो आज माँ का महिमा जितना भी कहे कम ही होगा और इस गीत का माध्यम से मंजू अपना भाव को प्रकट कर रहे हैं और डेडिकेटेड मदर के लिए, अबाउट मदर, मदर क्या होता है और मदर जो चीज है उसको कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनको कोई कंपेयर नहीं कर सकते, इतना वो महत्व है रखता है। तो लीजिए मंजू से प्रस्तुति।
1: मेरा नाम मंजू कुमारी है और मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल में पढ़ती हूँ और भीमबोड़ा से आती हूँ।

क्या खूब क्या खूब, कितना दिल का अभाव को माँ का प्रति जो उद्गार है, जो प्यार है, जो स्नेह है, और मेरा माँ, मेरी माँ, सही में माँ में इतना स्नेह ममत्व रहता है, प्यार रहता है, कभी नहीं भूल पाते, हमेशा याद रहता है माँ का प्यार, स्नेह, दुलार। तो इस गीत का माध्यम से सुनाए, जो भी माँ सुन रहे हैं इस तरह बच्चों का भाव को जरूर अंग लिभाई और उनको आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगाकर सब चीज त्याग करते हैं, इसलिए तो माँ कहलाता है। माँ का जगह कोई नहीं ले पाएगा, और माँ तो माँ होती है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला कड़ी में भावर और सुमित उपस्थित हैं, तो दोनों इस कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाएंगे और क्या प्रस्तुत करेंगे सुनेंगे। और सद्गुरु, गुरु तो बहुत होते हैं लेकिन सद्गुरु एक होते हैं, तो सद्गुरु का महिमा, सद्गुरु का मार्गदर्शन आज इस गीत का माध्यम से सुनेंगे और दोनों सजाने के लिए उपस्थित हैं। तो रेडी भावर और सुमित, ओके शुरू करिए।
2: मेरा नाम भवर है, मैं क्लास 12 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल का छात्र हूँ।
3: हेलो, मेरा नाम है सुमित, मैं क्लास 12 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल से, और हम गा रहे भजन।
4: वारी जावा रे बलिहारी जावा रे, ओ
5: वाली जावा रे बलिहारी जावा रे, ओ
4: मारा सतगुरु आंगन आया रे, मैं वारी जावा रे,
5: मारा सतगुरु आंगन

0: रे
1: मारा सतगुरु आंगण आया रे में वारी जावा रे
0: मारा सतगुरु आंगण आया रे में मारी जावा रे
1: सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया रे
0: सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया रे
1: मारी निर्मल हो गई काया मैं वारी ही जावा रे
0: मारी निर्मल हो गई काया मैं मारी जावा रे
1: वारी जावा रे बलिहारी जावा रे ओ
0: वारी जावा रे बलिहारी जावा रे ओ
1: मारा सतगुरु आंगण आया रे में वारी जावा रे
0: मारा सतगुरु आंगण आया रे में मारी जावा रे
1: सतगुरु दर्शन दीदा मारा भागे उजे कर किनारे गुरु दर्शन दीदा मारा भागे उजे कर किना मारा कर्म भरब सब सीना में वारी जावा रे।

0: મારી જાવા રે, મારા સતગુરુ આંગણાયા રે, મેં વારી જાવા રે, મારા દાતા ઓંગણાયા રે, મેં વારી જાવા રે.
1: क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर प्रस्तुति. और सद्गुरु का महिमा और सद्गुरु का मार्गदर्शन, सद्गुरु को कभी हम भूल नहीं पाएंगे. और इस गीत का माध्यम से अपना भावना को दिल से, हृदय से, प्यार से प्रकट किए. तो आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खास कर मारोल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की आवाज, जो कि रेवदर तहसील में मारोल ग्राम पंचायत आता है. तो आज मारोल से आपको कवरेज सुना रहे हैं. तो लेते छोटा सा ब्रेक.

वालियां पुछता है कैंदी सुन तारू मैं तेरे अपने मेरे अब से मेरे अपने तेरे तू कदम हो रहा।

ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भवर तपुरा नाम जैसे काम उस तरह करते सबका साथ मिलजुल कर काम कर सुमित भी उनको साथ दिया और वो भवर बोला मैं और एक प्रस्तुति सुनाऊंगा तो सुनाइए और वो भी मारवाड़ी में है ना। तो आज कंटिन्यू कर रहा है एक का बाद एक गीत। रेडी भवर? ओके शुरू करिए।
1: शरणा में आया घना सुख पाया रे, शरणा में आया घना रे सुख पाया, मिट गया जमय डोरा जाया उगुरा सा मारा, शरणे आप वाली आया। ओम न मारो काग स्वरूपी, ओम न मारो काग स्वरूपी, अवगुण बोध कराया उगुरा सा मारा,

माया, मेरा में मोती पाया, उगुरा सा मारा सरने आप वाली आया। सुरता मारी घनी नखराली, फिर भी गोता खाया साधु भाई सरने।

0: पदरारे वाया नुरता निशान गुराया रे साधु भाई सरने आप वाली आया शरणों में आया गणारे सुख पाया शरणों में आया गणारे सुख पाया मिट गया जमर डोरा दाया वो पूरा सा मारा शरणे आप वाली आया। अब मारी सूरता लागी राम से तारो तार मिलाया रे साधु भाई सरने आप वाली आया। आटो पोर अमरी सबर से आटो पोर अमरी सबर से पीवत प्यास बुझाया रे साधु भाई सरने आप वाली आया। शरणों में आया गणारे सुख पाया शरणों में आया गणारे सुख पाया मिट गया जमर डोरा दाया वो बुरा सा मारा शरणे आप वाली आया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बावर को। और एक गीत प्रस्तुत करने के लिए हाथ उठा रहे तो लीजिए और एक प्रस्तुति।
0: सावरिया थारा नाम हजार कैसे लिखू कंकु पतरी ये कंकु पतरी है थारी प्रेम पतरी कंकु पतरी है थारी प्रेम पतरी बनवारी थारा गिरधारी थारा नाम हजार कैसे लिखू कंकु पतरी कोई कहवे राधा जीरो कोई कहवे रुक्मण जीरो कोई कहवे राधा जीरो कोई कहवे रुक्मण जीरो कोई कहवे नंद जीरो लाल कैसे लिखू कंकु पतरी बनवारी थारा गिरधारी थारा नाम हजार कैसे लिखू कंकु पतरी हे कंकु पतरी है थारी प्रेम पतरी कंकु पतरी है थारी प्रेम पतरी बनवारी थारा नाम हजार कैसे लिखू कंकु पतरी। अरे कोई कहवे बंसी वालो कोई कहवे मुरली वालो कोई कहवे बंसी वालो कोई कहवे मुरली वालो कोई कहवे घाया रोगवाल कैसे लिखू कंकु पतरी सावरिया थारा नाम हजार कैसे लिखू कंकु पतरी हे कंकु पतरी है थारी प्रेम पतरी हे कंकु पतरी है थारी प्रेम पतरी बनवारी थारा नाम हजार कैसे लिखू कंकु पतरी। अरे कोई कहवे मथुरा वालो कोई कहवे गोकुल वालो कोई कहवे मथुरा वालो कोई कहवे गोकुल वालो कोई कहवे द्वार कोरो नाथ कैसे लिखू कंकु पतरी सावरिया थारा नाम हजार कैसे लिखू कंकु पतरी हे कंकु पतरी है थारी प्रेम पतरी बनवारी थारा सावरिया थारा नाम हजार कैसे लिखू कंकु पतरी।
1: बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति के लिए और एक का बाद एक प्रस्तुति दे रहे उनका पास जो खजाना है बारी बारी दे रहा है और रेडियो मधुबन कार्यक्रम को सजा रहे हैं और रेडियो मधुबन ऐसे कार्यक्रम को लेकर आपका पास पहुंचता है तो आपका गांव और अंचल में भी कुछ इस तरह कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415 यानी 9414151415।

एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वही मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे।

0: चलिए बच्चों का आवाज, विद्यार्थियों का आवाज, विद्यार्थी विकास में और खास कर इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे मनरेगा हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे प्रशासन गांव के संघ हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, सभी ने इस कार्यक्रम को सजाते हैं क्योंकि अपना रेडियो है, थेमर रेडियो, थेमर वास्ते। चलिए इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ मंजू को पुनः स्वागत करते हैं। मंजू के पास खजाना है, एक के बाद एक खजाना लुटा रहे हैं और इस कार्यक्रम का माध्यम से उनको जब मौका मिला पहला बार तो क्यों छुपे, तो अपना जो चीज है वो छपा रहे हैं रेडियो कार्यक्रम का माध्यम से, गीत का माध्यम से, भाव का माध्यम से। और एक प्रस्तुति मंजू देगी और बारी बारी उनके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन गीत उसके पास है, तो आज उसको रेडियो कार्यक्रम में सुनाएंगे, सुनाएगी ना। ओके मंजू रेडी? ओके शुरू करिए।
1: अरे

0: चले।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। वंस मोर कहते हुए राणा प्रताप को कौन भूल पाएगा। तो राणा प्रताप जो कि मेवाड़ी का आन बान शान है और चेतक उनका दोस्त, चेतक जो हर्ष है घोड़ा, उनके लिए कितना वफादारी किया और अंतिम समय तक उनका साथ दिए, तो उसका ऊपर एक गीत सुनाएगी, है ना। तो रेडी शुरू।

0: जोजी।
1: कितना प्रशंसा करे मंजू को तो कम ही होगा। और मंजू नाम जैसे उनका माँ बाप को भी धन्यवाद देते हैं, और इसका सब प्रेरणा जिससे लिए उन सभी को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनका बिना ये कार्यक्रम अधूरा होता है। और उनका अंदर में जो विशेषता है, जो प्रतिभा है, आज रेडियो कार्यक्रम का माध्यम से सुना रहे हैं। और रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, सभी से मिलते हैं। हमारा विद्यार्थी विकास में विद्यार्थी का अंदर में जो भावना है, जो दिल का उद्गार है, इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से संपर्क रखते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रहा है और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक को देखकर एक भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे। सभी ने अपना बात को सुंदर रूप में प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और कोई प्रस्तुत नहीं थे, लेकिन अचानक में एवर रेडी रहते हैं बच्चे और जब मिलता है मौका वो मौका का फायदा लेते हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए पुनः पायल उपस्थित है। पायल, आज जैसे मंजू ने माँ का ऊपर में अपना भाव को गीत के माध्यम से प्रकट किए, तो पायल भी कम नहीं है। वो बाप का ऊपर में अबाउट फादर, पिताजी क्या होता है घर में, मुखिया तो है ही है, इसका साथ साथ बच्चों के लिए, माओ के लिए, भाई बहन के लिए पिताजी का जो दायित्व, जो मुखिया, जो मर्द होते हैं घर के, तो कितना संभालते वो चीज रखेगी, है ना पायल? ओके, तो पिताजी तो नाम सुनते हैं तो एक शक्ति मिलता है और सभी चीज अपना लगता है। तो सुनाइए पायल।
2: सुप्रभात, मैं पायल कुंवर, राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल से कक्षा 12 की छात्रा। आदरणीय पिताजी, आज मैं आपके बारे में कुछ कहने के लिए मंच पर हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किन शब्दों में अपनी भावना व्यक्त करूँ। पापा, आप मेरे लिए केवल मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे सबसे पहले हीरो, मेरे मार्गदर्शन और मेरी पूरी दुनिया है। मैंने बचपन से देखा है आपने अपनी खुशियों का त्याग कर हमारी हर जरूरत को पूरा किया है। धूप हो या छांव हो, आपने हमेशा हमारे सिर पर मजबूत डाल बनकर पहरा दिया है। दुनिया के लिए आप भले ही साधारण इंसान होंगे, लेकिन मेरे लिए आज वो शख्स है जिसने मुझे उड़ान सिखाया, और आपकी डांट में भी प्यार छिपा होता है। मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे पिताजी हैं। अंत में मैं आपके लिए दो पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की छुरी बिंदी सुहाग और है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद पायल को सुने, और सुनने का पश्चात मंजू भी अपना हाथ को इशारा से उठा रही है। तो मंजू भी एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेगी शायद। ओके, चलिए दोनों इस कार्यक्रम को सजा रहे और ये अंतिम प्रस्तुति होगी। तो लीजिए मंजू से और एक प्रस्तुति।
3: मेरा नाम मंजू कुमारी है और मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ और निम्बोड़ा की निवासी हूँ।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ, चाहे ग्रुप में पायल, रुचिता, काजल, नीता, विठल, भावर, मंजू और सभी को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया, और संस्था का संस्था प्रधान सभी स्टाफ को भी धन्यवाद देते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल विद्यार्थियों का दिल का बात, मन की बात और अपना भावना को आज प्रकट किए। पुनः धन्यवाद का पात्र है, सबको धन्यवाद देते हैं। तो आप सबसे लेते हैं इजाजत, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर।
1: अभी बजे हैं शाम के 8। स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें। शाम

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की केन हो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस आबो की शर्त वाली शाम, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार। नौ जी नमस्कार। जब आप आ जाते हैं तो हमारी खुशियां बढ़ जाती है, हमारे वो सारे काम छोड़ करके आपके साथ में मिलना हो जाता है।
0: धन्यवाद धन्यवाद बुरीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: और मिल करके भी हमारे नए नए गाने, अच्छे अच्छे गाने आप सुना देते हैं, हमारा दिल भी भर जाता है।
0: क्या बात,
1: खुश हो जाता है।
0: वाह वाह।
1: तो आज की मूवी है
0: जी
1: मुकंदर का सिकंदर।
0: अच्छा,
1: आवाज है किशोर कुमार की।
0: ओके।
1: दिल सच्चा चेहरा झूठा, दिल को न देखो।
0: ठीक है, जरूर, बिल्कुल सही। ये गाना हम आपके लिए,
1: तेरे बिना क्या जीना है, ये गाना है सर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, दिल सच्चा चेहरा झूठा या फिर मुकंदर
1: के? दिल सच्चा चेहरा झूठा।
0: हाँ, तो ये मूवी अलग है, मुकंदर का सिकंदर मूवी से गाना नहीं है।
1: ये मूवी छोड़ेंगे पहले।
0: हाँ ठीक है, चलिए, दिल सच्चा चेहरा झूठा आपके लिए आज ये गाना प्ले करते हैं।
1: ये गाना
0: ठीक है,
1: ठीक है सर,
0: ठीक है।
1: और सभी साथियों को मेरा प्यारे बीच है, वो उनके बीच से मैं नमस्कार कर रहा हूँ
0: जी।
1: और वो मेरे सुरेंद्र भाई है, प्यारे प्यारे लाल
0: जी।
1: और वो एक भूरालाल जी है, और एक प्यारा मदन भाई है, एक वो नहीं है महाराष्ट्र भाई है।
0: हाँ जी।
1: उनके नाम मेरे को जल्दी जल्दी नहीं आता है।
0: सुभाष
1: भाई, सुभाष भाई
0: जी,
1: सुभाष भाई को मैं मेरे अपने बीच से याद करता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सही मेरे घर के साथी है वैसे।
0: हाँ,
1: वो उनकी आवाज ऐसी आती है मेरे को, वो मीठी मीठी अच्छी अच्छी लगती है।
0: अच्छा।
1: चलो साहब, धन्यवाद
0: धन्यवाद, थैंक यू,
1: नमस्कार।
0: बिल्कुल,
1: कोई इंतजार करते होंगे दूसरे साथी भी।
0: चलिए, थैंक यू सो मच बुरीलाल जी कॉल करने के लिए, हम आपकी फरमाइश को जरूर से पूरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त केवल, और आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आपका पसंदीदा शो खुशी के नगमे दिल की बात है। जी हाँ दोस्तों, मौसम में बदलाव, आज हल्की शाम को हल्की हल्की ठंड, सुबह भी हल्की हल्की ठंड थी। यहाँ आप रोड में आपके तरफ क्या मौसम के हाल चाल है? हाँ, दिन में थी गर्मी, लेकिन मौसम में बदलाव जरूर से देखने को मिला है। बारिश इस साल बिल्कुल भी नहीं है। आपके सब जगह पे क्या हाल है बारिश के, आप बिल्कुल से हमें बता सकते हैं कॉल करके। और दोस्तों, आज हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, बस आपकी फरमाइशों को हम पूरा करेंगे। और उसी के साथ सबसे पहला ये जो नगमा है रेडियो मधुबन पर आप सुनिए 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों। अभी जो हमने गाना सुना मूवी इज्जत से 1968 में आई, इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब जी ने। क्या खूबसूरत इसको गाया है या खूबसूरती से इसे लिखा गया है, अपने जीवन की जो सच्चाई होती है। चलिए सबसे पहले हमारे कॉलर से हम बात करते हैं। हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार,
1: सुरेश भाई बोलता हूँ जताना से। कैसे हो सर?
0: बढ़िया, गुड इवनिंग सुरेश जी, कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे बिल्कुल, और आपकी दुआ से बहुत अच्छे हैं। जी आप आ जाते हैं तो हमारे जो हमारे बुरीला जी अक्सर कहते हैं कि आप आ जाते हैं तो खुशियां ही खुशियां बढ़ जाती हैं। तो हम भी ऐसे ही, बस हमारे जब आप आ जाते हैं तो हमारा जो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है।
0: चाहे
1: पूरे दिन हम काम करते हैं लेकिन जब रात का कार्यक्रम खुशी के नगमे दिल की बात है, हमारा पूरे दिन की थकान उतारने वाला कार्यक्रम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और हम बीच में वो बंद हो गया था और हमने बार बार उसको बोला था कि ये कार्यक्रम शुरू करो, तो हमारे लिए बहुत एक खुशी की बात होती है।
0: क्या बात है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चलो हमारी बात सभी ने सुन ली और आपका कार्यक्रम शुरू हो गया और हमने भी खुशियाँ
0: जी।
1: बस उसको जो हमारे सभी जो अर्ज भाई बहन हम सुनते हैं तो ये कार्यक्रम शुरू किया, इसलिए आपका भी सबका भी धन्यवाद बहुत बहुत
0: जी।
1: और चलो हमारे बुरेला जी तो आके गए
0: जी,
1: एंट्री तो मार दी हमारे फायदे शुरुआत में।
0: हाँ।
1: और शायद हमारे सभी आ जाएंगे धीरे धीरे, हमारे के बाद आएंगे हमारे बुराराम जी आएंगे, और से
0: बुराराम जी आएंगे, मदनलाल जी आएंगे,
1: मदनलाल जी आएंगे, हमारे सुभाष भाई आज आएंगे जलगांव महाराष्ट्र से।
0: कल सुभाष भाई ने आपकी बहुत बातें की है, शायद पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना।
1: उसको पता है, मेरा सभी पता है, क्योंकि हमने कई सारी बातें साथ में की है, पहले बात हुई हमारी। और हम तो सब सर, हम जब से मैं बताऊं तो मैं जब कम से कम 10 सालों से मैं ये जो पुण्य का काम कर रहा हूँ, हमारे पूरे गांव के जो पानी की जो पुण्य होते हैं पक्षियों के लिए
0: जी।
1: मैं सुबह में 5 बजे 6-5, 5:30 बजे मेरा काम शुरू से रूटीन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है
0: जी।
1: पक्षियों के लिए दाना पानी, पक्षियों के लिए कई सारी, सुबह में चल के पैदल भी जाता हूँ 2-3-4 किलोमीटर, और वहाँ भी मैंने कई सारी पक्षियों के लिए पानी की पर्दे रखी है।
0: अच्छा।
1: और साथ साथ में मैं खाना पीना भी साथ में ले जाता हूँ कुत्ते के लिए।
0: अच्छा।
1: गाय के लिए और पक्षियों के लिए, मेरा टूटिंग का काम है सर सुबह में।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: तो पहले तो मतलब तो पहले तो हमारे घर हजारों पक्षी आते थे।
0: हाँ।
1: लेकिन अब धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन फिर भी मैंने ये काम मैंने छोड़ा नहीं है। चलो यहाँ नहीं तो बाहर,
0: नहीं नहीं बिल्कुल,
1: तो मेरा काम बंद होना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: बस यही काम मैं हर पल करता रहता हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छा सुकून भी मिल जाता है सर।
0: बिल्कुल, ये पुण्य के काम कभी छोड़ने नहीं चाहिए। खैर पक्षियों का आना कम
1: है, इससे इससे एक लाभ और मिलता है हमको कि हमारा जो बॉडी का हमारा जो शरीर है बहुत अच्छा रहता है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: क्योंकि कहते हैं कि हम किसी की दुआ तो हमको लग ही जाती है और मिल ही जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो चलो आज मैं एक अच्छा गाना भी आपको दे दूँ, वो फिल्म का नाम है गहरा दाग
0: जी,
1: और मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तुम्हें पाके हम क्या

0: ने पाके हुई, वही गाना है सर
1: जी। चलिए बिल्कुल से कोशिश करेंगे
0: आपके लिए। हमारे साथी मित्रों को आपकी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते सर।
1: थैंक यू सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और यहाँ दोस्तों, तो हम जो बात कर रहे थे अभी इस गाने के बारे में कि जो लिखी है इसमें, जिसने इस गाने के बोल को लिखा है, साहिल लुधियानवी जी ने इस गाने के बोल को लिखा है। और मैं जो बात कर रहा हूँ मूवी, अभी जो हमने गाना सुना था, क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में ऐसे दोहरे मुखड़े वाले लोगों से बहुत बहुत सावधान रहना पड़ता है। क्योंकि चलो ये खैर, तो ये इस मूवी में तो जिस तरह से ये बात की गई है, जिस चीज़ के लिए बात की गई वो डिफरेंट है, लेकिन आज के समय में भी ऐसा होता है। हम दोस्त दोस्त में भी देखते हैं कि कई बार दोस्तों के साथ भी जब हम रहते हैं तो उनके ऐसे दोहरे चेहरे रहते हैं कि एक चेहरा तो आपके लिए बहुत ही अच्छे से, हाँ आप ऐसे है वैसे है बात करेंगे, लेकिन पीछे कुछ और होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। अगला नगमा है हमारा, हमारे बुरीलाल जी की तरफ से है। बुरीलाल जी ने आज हमें एक ऐसा नगमा पेश किया, दिल को देखो चेहरा ना देखो, फिल्म सच्चा झूठा से। चलिए सुनते हैं ये नगमा और फिर करते हैं 7.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओए रुक रुक, ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो, हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी

वेलकम बैक दोस्तों। और आप सुन रहे थे ये जो गाना सच्चा झूठा मूवी से, ये गाना सुन रहे थे आप रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, सबसे पहले तो इस मूवी के बारे में मैं आपको बता दूँ, फिल्म सच्चा झूठा से ये गाना अभी हमने सुना था। ये जब गाना मुझे बुरीलाल जी ने फरमाइश में दी तो मुझे आज सुबह की एक वाकया याद आ गई। सुबह सुबह जब मैं नहा करके जब मैं रूम पर आया और अपने आईने के सामने खड़ा होकर के अपने चेहरे को देख रहा था, चेहरे पर क्रीम वगैरह लगा रहा था, तो यही चीज़ हो रही थी कि हम अभी वो ख्याल आ रहा है कि हम आईने को कितनी अहमियत देते हैं, अपने चेहरे को कितना हम देखते हैं, उस चेहरे को हम देखते हैं कई बार, उस पर कितनी सच्चाई कितनी झूठी चीज़ छुपी होती, लेकिन उस दिल का क्या। यहाँ दोस्तों आपसे ये सवाल है कि जब आप भी कभी ऐसा होता है तो क्या करते हैं, और ऐसा डाग जब दिख जाए तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस दिल का क्या जो सीने के अंदर छुपा है, उसका हाल कौन पूछता है। इसी बात पर ही जो आज आपने गाना सुना 1970 की सुपर हिट फिल्म सच्चा झूठा का, राजेश खन्ना साहब, मुमताज़ जी और वो आइकॉनिक गाना जिसे लिखा था हसर जयपुरी साहब ने, संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने, और अपनी दमदार आवाज़ दी थी हमारे प्यारे किशोर जी ने। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहाँ हम इंसान को फिल्टर और प्रोफाइल पिक से जज करने लगे हैं, वहाँ ये गाना हमें ये ठहराव देता है, ये गाना हमें याद दिलाता है कि चेहरे की चमक तो वक्त के साथ ढल जाएगी, लेकिन जो साफ दिल है उसकी खूबसूरती ताउम्र कायम रहती है। जैसे हम किसी किताब को सिर्फ उनके कवर से नहीं आंक सकते, ठीक वैसे ही किसी इंसान की सच्चाई उसके चेहरे की मुस्कान से ज़्यादा उसके दिल की नीयत में होती है। चेहरा कई बार नकाब बन जाता है पर दिल कभी झूठ नहीं बोलता। जी हाँ दोस्तों, आज के जो हमने दोनों गाने सुने, मुझे पता नहीं ये कोइंसिडेंस था या बुरीलाल जी ने ये पहला गाना सुना भी नहीं था, उससे पहले हमें ये फरमाइश दी थी कि दिल सच्चा और चेहरा झूठा, लेकिन आज के हमारे जो दोनों गाने थे, पहला गाना क्या मिले ऐसे इंसान से और ये जो दूसरा गाना दिल को देखो चेहरा ना देखो, दोनों आज बिल्कुल आज के इंसान की सच्चाई पे बिल्कुल से फिट बैठती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक और नगमे की ओर, और ये जो हमारा अगला नगमा था हमारे सुरेश जी ने हमें फरमाइश के रूप में दिया हुआ है, और मतलब ये गाना भी मेरी फेवरेट है। आज सुरेश भाई मुझे बहुत, मतलब दो तीन दिन से मैं देख रहा हूँ, मेरे जो फेवरेट गाने हैं वही मुझे दे रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो लिंक होते जा रहा है। चलिए सुनते हैं ये अगला सा नगमा प्यारा सा, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या होता है?
1: अरे टिकू नहीं पता क्या? इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

वेलकम बैक दोस्तों। और बहुत ही प्यारा अभी नगमा हमने सुना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। जी हाँ दोस्तों, कल या परसों भी हमने ये गाना जब सुना था तो इसके बारे में कहा था कि जब, चलो ठीक है, ये तो इस दुनिया में हम जो गाना फिल्माया गया है दो दोस्तों के, दो प्रेमियों के बीच में है, लेकिन कभी ये जब हम खुदा की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो ये गाना भी हमें बड़ा सा आता है कि जब भगवान हमें तुम मिल जाते हो, तुम्हें पा के जब हम तुम्हें जब हमने पा लिया, तो ये जहाँ हमने पा लिया, जमी तो जमी आसमान हमें पा लिया। यह फिल्म था गहरा डाग 1963 में, अपनी सुरीली आवाज़ से सजाया था आशा भोसले जी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसे लिखा था शकील बदयानु जी ने, और इसे म्यूज़िक दिया था रवि जी ने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगले नगमे की और, अगला नगमा बहुत ही प्यारा सा, सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ माया खालसी और आप सुन रही हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: वेलकम बैक दोस्तों। और दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसके जाने के बाद हर खुशी अधूरी सी लगने लगती है, है कि नहीं दोस्तों? ऐसा होता है, कभी आपके साथ भी कभी हुआ है? दिल किसी काम में लगता ही नहीं, खुशी अधूरी लगती है, है कि नहीं? ऐसी बेकरारी और मोहब्बत की दास्तान बयां करता है 1968 में आई फिल्म इज्जत का वो ये अमर गाना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। साहिर लुधियानी साहब ने लिखे इन खूबसूरत शब्दों को जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का साथ मिला तो संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की इस धुन ने हर प्रेमी का दिल छू लिया। दोस्तों, इस मूवी में आपको मैंने एक चीज़ पहले बताई थी या नहीं बताई मुझे याद नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ। इस मूवी में, ये इज्जत जो मूवी है, इसमें तनुजा जी, धर्मेंद्र जी, जयललिता जी, आप शायद जानते हैं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जयललिता जी की पहली और इकलौती हिंदी फिल्म, जिसे इस फिल्म की सबसे अनोखी बात यह है, इन्होंने एक ही बार, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट शायद ये था इनका हिंदी सिनेमा में एज अ लीड रोल, जयललिता जी ने इन्हें इसमें काम किया है। फिल्म में धर्मेंद्र साहब ने दोहरी भूमिकाएं निभाई है, एक तरफ शेखर और दूसरी तरफ झुमरी का किरदार, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। और इसमें एक गीत भी है, साहिर साहब, मतलब यही इसी गीत की बात कर रहा हूँ, साहिर साहब की शायरी का जादू ऐसा था, उन्होंने इस गाने में प्यार की तड़प के साथ साथ जिंदगी की कड़वी सच्चाई को भी जोड़ दिया। आपने इस गाने में एक बोल सुने होंगे, हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं हम क्या करें। कि लुटे दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें, तुम्हें कह दूँ अब ये, सॉरी आज गला थोड़ा खराब है तो माफ़ कीजिएगा, आज हम ठीक से नहीं गा पा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी हमने गाया है आपकी फरमाइशों को हम कोशिश करते हैं पूरी करने के लिए। चलिए सुर तो बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। जो अगला नगमा है, अभी अभी हमें ऑफलाइन जब गाना चल रहा था उस वक्त हमारे मदन लाल जी ने हमें कॉल किया था और हमें ट्रैफिक के बारे में भी बता रहे थे कि वो रास्ते में चल रहे हैं और गाड़ियाँ कैसे चल रही है। और पहले आप वाली जो थ्योरी है कि अगर हम गाड़ियाँ भी चलाते हैं तो पहले आप वाला, कि अगर भीड़ में कहीं है तो ये कोशिश करें कि पहले आप निकले फिर मैं निकलूँ, तो ये जो पहले आप वाली जो थ्योरी है वो हमें बता रहे थे, तो उसी पे आधारित आज उन्होंने एक हमें नगमा सुना है ऊँचे नीचे रास्तों पर। चलिए सुनते हैं ये अगला जो नगमा है, ऊँचे नीचे रास्ते, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। और दोस्तों, हम लेंगे आपसे इजाज़त क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी साइन आउट करेंगे, लेकिन खुशी के नगमे दिल की बातें यूं ही चलता रहेगा ठीक 9 बजे तक, और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते यानी कि सोमवार को ठीक शाम 8 बजे। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर और हमें दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रुक जा जरा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। सहज स्वास्थ्य कहते ही हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसा समझते हैं कि स्वास्थ्य और सहज ये तो दो ऑपोजिट चीजें हैं जिसे हम एक साथ मिलाकर हम एक ऑक्सीमोरॉन बना रहे हैं। कई लोग तो ये भी समझ लेते हैं कि ये हैप्पी मैरिज जैसी बात करी जा रही है, मगर बहुत सारे लोग ये भूल गए हैं कि वास्तविकता में किसी भी संबंध को खुशी के लिए ही जोड़ा गया होता है। आज हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें इन चीजों में ज्यादा तकलीफें महसूस होती हैं। सहज स्वास्थ्य का भी अर्थ कुछ ऐसा ही है कि स्वास्थ्य हमेशा से सहज रहा है, मगर धीरे धीरे हमने कुछ ऐसी चीजें बदलते बदलते आज अपने स्वास्थ्य को मुश्किल कर लिया है। आज कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्वास्थ्य के परिचायक अस्पताल हैं या चिकित्सक हैं या चिकित्सा कर्मी हैं, मगर हमेशा से भारत में या दुनिया में भी इसका डेफिनेशन ऐसा नहीं रहा है। प्रायः लोग स्वास्थ्य को एक घरेलू मुद्दे की तरह देखते थे और छोटी मोटी चीजों के लिए तो घर में ही इलाज कर लेते थे। आज ये देखने को मिलता है कि हम हर छोटी मोटी चीज के लिए या तो अस्पतालों की ओर भागते हैं या फिर तुरंत दवाई की दुकान पर जाकर दवाइयां खरीदते हैं। और तो और हालात यहाँ तक पहुंच गए दोस्तों कि हम में से लगभग हर एक के घर में दवाइयों का एक डब्बा मौजूद ही रहता है। सिर दर्द हो गया तो ये ले लो, पेट दर्द हो गया तो ये ले लो, बुखार हो गया तो ये ले लो। ये दवाइयां तो हम बिना डॉक्टर के जांच पड़ताल के उनके परामर्श के खुद ही अपने अनुभव के आधार पर लेने लगते हैं और समझते हैं कि ये होने से इस चीज में हमें राहत मिलती है। कई लोग तो एंटासिड्स और एंटासिड जैसे अनेक द्रव्यों का भी उपयोग करते हैं जिनको एसिडिटी इत्यादि की समस्या होती है। कई लोग तो और अनेक ब्रांड्स की चीजें इस्तेमाल करते हैं जो है तो मेडिकल दवाइयां, मगर उसे घरेलू स्वास्थ्य से संबंधित इलाज के रूप में उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या ये सब कुछ सही है या हमें चिकित्सकीय राय सही तरीके से लेना है या स्वास्थ्य का जो मापदंड है उसे ही हम बदल चुके हैं, यही सब कुछ हम समझते हैं सहज स्वास्थ्य में। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी हैं। डॉक्टर राहुल मोदी पेशे से एक ऑस्टियोपैथ हैं। भारत के प्रसिद्ध ऑस्टियोपैथ होने के साथ साथ भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। आइए आज करते हैं उनसे बातचीत और लेते हैं उनसे मार्गदर्शन। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि आज हम सहज स्वास्थ्य को मुश्किल समझ लेते हैं, सोचते हैं कि डॉक्टर, अस्पताल या स्वास्थ्य कर्मी ही स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने वाले लोग हैं और स्वास्थ्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी हो जाए वो लोग जिम्मेदार हैं, हम वहां जाएंगे, वो ठीक करेंगे और वापस भेज देंगे। साथ ही हम अपने घरों में इतनी सारी दवाइयों की दुकान लगा रखे हैं कि भाई जब चाहे हम दवाई की दुकान पे जाके खुद ही दवाई ले लेते हैं। और आजकल घरेलू दवाइयों के नाम पे हमारे पास एक डब्बा पड़ा रहता है जिसमें अनेक दवाइयां हम रख लेते हैं। और साथ ही साथ हमारे रिश्तेदार, दोस्त, किसी को भी अगर हम बोल दें कि आज मेरे को ये तकलीफ हो रही है तो वो अपनी दवाइयां और प्रिस्क्राइब कर देते हैं फोन पे कि जाओ ये दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में क्या ये स्वास्थ्य का डेफिनेशन सही है?
1: श्री भैया, इस समय हम एक बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं। आपने जैसे आज एंटासिड की अभी बात की, सर दर्द होने पे दवाई गोली खाने की बात करी, लोग इस समय अपने आप बहुत कुछ सेल्फ मेडिकेट कर ले रहे हैं। ये बहुत इजी हो गया है। हम सबके पास अब एक दवा की कुंजी है जो हमारा मोबाइल फोन है, हम उससे अपनी समस्या का नाम डालते हैं। और भैया, अब तो ये स्थिति हो गई है कि हम जाकर एक डॉक्टर से दवा लिखवा के लाते हैं, वो जो दवा लिखता है उसका सस्ता स्वरूप क्या मिल सकता है या और क्या हम उसकी जगह खा सकते हैं ये भी ढूंढने लगे हैं। हमारे भारत की एक और जो समस्या मैं महसूस कर रहा हूं कि आदमी अब दवा खाने से पहले ये सोचता ही नहीं है कि उससे नुकसान क्या होगा। जैसे भैया आपने मेरा बताया कि मैं ऑस्टियोपैथ हूं, मैं कमर दर्द के मरीज को देखता हूं और पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, नसों में तनाव है, पैर में तनाव आ रहा है। तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरे पास एक पेशेंट आया, उन्होंने बताया मैं दवा खा रही हूं। मैंने कहा ये दवा आपको किसने लिखी? तो उन्होंने किसी ने नहीं लिखी, जो मेरे को जिम में एक्सरसाइज कराता है उसने बताया। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि वो एक बहुत ही ऐसी मेडिकेशन है जो हमारे यहाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिकती है, वैसी दवा को उस आदमी ने बताया। वही सेम मेडिसिन भाई थोड़े दिनों बाद मैंने ये नोटिस किया कि एक फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब की और उस पेशेंट ने फिर अपने किसी और घर वाले को भी प्रिस्क्राइब कर दी, ना ये जानकर कि उस दवा से और दवाइयों का क्या इंटरेक्शन होगा और आपको अगर कोई बीमारी हो रही है तो आप क्या करेंगे। मैं ये देखने लगा हूं कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो अपने पेशेंट को बहुत जल्दी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो मसाज करने वाले, फिजियोथेरेपी करने वाले, आयुर्वेद के ज्ञानी, होम्योपैथी के ज्ञानी, इवन एलोपैथ के ज्ञानी अपने मरीज को तुरंत दवा लिख दे रहे हैं और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि उससे क्या नुकसान होगा। अच्छा, और मरीज भी चाहता है कि मुझे तुरंत दवा लिख दी जाए या मुझे तुरंत लाभ दिया जाए। आप किसी भी एक व्यक्ति को कहिए कि जैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा चला रहे हैं, लोग आप पूछे कि आप वजन कम करना है, आप बोलिए आप हमारे हिसाब से भोजन करेंगे, इलाज कराएंगे, आपको महीने में 8-10% आपका वजन कम होगा। उसके बाद 2-3 दिन बाद वो तुरंत पूछता है कोई दवाई है क्या जिसको मैं खा लूं और मुझे ये व्यायाम न करना पड़े, एक्सरसाइज न करना पड़े, ये नीरस भोजन न करना पड़े, मुझे तुरंत इससे छुटकारा बता दीजिए। सो मैं ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो गई है कि व्यक्ति को तुरंत लाभ चाहिए और इससे भी गुरेज नहीं कर रहा है कि हमको दवा दे दी जाए और उसका क्या नुकसान होगा उसके बारे में उसको एकदम चिंता नहीं करनी है। अब बस डायबिटीज के मरीज आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कोई अच्छी गोली लिख दीजिए कि हम मीठा खा सकें। ये तो मतलब इसको हम कैसे समझाऊं लोगों को कि आपके शरीर में आप मीठा अब नहीं खा सकते हैं और हम आपको गोली खिलाकर आपकी शुगर को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, आयुर्वेद से, विभिन्न योगासनों से आपकी शुगर को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मैं मीठा खिलवा दूं कि आप उसको तुरंत ऊपर बढ़ा दें। तो ये सारी समस्याएं आजकल होने लगी है। हम सोच नहीं रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं और हम मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, हमको तुरंत लाभ चाहिए और उस लाभ के स्वरूप हमको उससे क्या हमें नुकसान हो रहा है हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। श्री भैया आपने एक बात और बोली कि अब हर एक के घर में एक दवाई का डब्बा है। भैया अब एक दवा की अलमारी हो गई है, वो इतने दवाइयां बढ़ गई हैं और दवाइयां बीमारियों के साथ साथ आजकल हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पे भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ खा रहे हैं क्योंकि वो प्रकृति से वो भोजन नहीं ले पा रहे हैं या वो प्रकृति से वो भोजन लेना नहीं चाहते हैं, वो तुरंत सप्लीमेंटेशन के नाम पे दवा खा रहे हैं। और मुझे विदेशों की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप चाहकर भी एंटीबायोटिक दुकान पे जाके नहीं खरीद सकते जब तक कोई एक डॉक्टर ने उसे लिखा नहीं है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ आप जाइए आप तुरंत जो दवा चाहेंगे वो ले लेंगे। मैंने अभी एक पेशेंट करीब 5-6 दिन पहले देखा, उसमें जो डॉक्टर साहब मुझसे पहले जिन्होंने देखा था उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे ये लिखा था सेल्फ मेडिकेटेड थ्रू मेडिकल शॉप फॉर 6 मंथ। मतलब उस मरीज ने 6 महीने तक जो दवा की दुकान में काम करते हैं उनके सहयोग से अपना इलाज किया और उन्होंने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो इस समय हम सबको ये, मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा, कोई भी दवा खाने से पहले कृपा करके प्लीज उसके बारे में पढ़ लीजिए, उसके नुकसान के बारे में पढ़ लीजिए और जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई दवा को या कोई औषधि को मत खाइए।
0: अब जब आप दवाई के बारे में कह रहे थे, अब हम दवाई के एक डब्बे से हटकर अब दवाई की अलमारी या दवाई का एक कबर्ड बन गया है, ये चीज हम समझ गए हैं। प्रायः घरों में ये चीज देखने को मिलती है कि घर में अगर 4 लोग रहते हैं या 6 लोग रहते हैं जिसमें से 2 बुजुर्ग हैं, 2 बच्चे हैं और 2 युवावस्था के 2 लोग और रहते हैं, तो ये चीज अक्सर देखने को मिलती है कि छोटे बच्चों की दवाइयों का एक खाना बना हुआ है उस कबर्ड में, बड़ों का जो उम्रदराज लोग हैं उनकी दवाइयों का एक खाना बना हुआ है और दूसरी चीजें जो इन युवाओं के लिए चाहिए वो दवाइयां रखी हुई। प्राय ये चीज सोचने में आती है कि जो बुजुर्गवार हैं उन लोगों के लिए सिर्फ दवाइयों का एक खाना नहीं है, वहां पर

0: उनका दवाइयों का एक ट्रे बना हुआ होता है कि सुबह ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, खाने से पहले ये खाना है, खाने के बाद ये खाना है, शाम को ये खाना है, रात को सोने के बाद खाना है, सोते समय खाना है। अब ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और ये भी हम देखते हैं कि आज हम ये मान लेते हैं कि जैसे पिछले दिनों हम डायबिटीज के बारे में बातचीत कर रहे थे, लोग सोचते थे कि हाँ डायबिटीज तो चलो ठीक ही है ना, दवाई लेना है और जीते रहना है तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब डायबिटीज के साथ साथ एक और चीज, या कई कई घरों में डायबिटीज न सही तो बीपी की भी एक बीमारी है, उसके लिए भी गोलियां लोग ले लेते हैं। लोग अक्सर पूछते भी हैं, मतलब ये कॉमन सी चीज हो गई है, जैसे लोग हालचाल पूछते हैं ऐसे पूछते हैं किसी को। अगर आप किसी के घर चले जाएं, आपको चाय नाश्ता इत्यादि ऑफर करने से पहले पूछ लेते हैं आपको बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है आपको। तो अब ये बीपी जो चीज है ये भी डायबिटीज जैसा ही एक कॉमन नेम बन चुका है। तो पहले हम ये समझें बीपी क्या है, ये भी कोई बीमारी है, क्या चीज है, ये लोग इतने आसानी से बीपी बीपी कह देते हैं।
1: बीपी को अगर हम, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर है। तो नॉर्मली मेरा भी रक्त एक प्रेशर के साथ हमारी धमनियां जो हैं, जो आर्टरीज हैं, उनमें चल रहा है, और मेरा खून, आपका खून, हम सब का खून किसी न किसी प्रेशर के साथ उस धमनी में चल रहा है। जब भी शब्द बीपी का प्रयोग किया जाता है तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर की तरह इसको समझा जाता है। ये मतलब आपको बीपी हो गया है, ये मतलब हम सबके पास ब्लड प्रेशर है, हम सबके पास बीपी है, मगर जब ये बोला जाता है कि आपको बीपी हो गया है, इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। और नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो स्पिग्नोमैनोमीटर या ब्लड प्रेशर वाली मशीन से मापा जाता है, और ये 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसको माना जाता है। और अब एक रेंज की बात करते हैं तो मतलब 130 से लेके 110 के बीच में हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं, और नीचे 90 से लेके 70 तक हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। और ये किसी की लंबाई, मोटाई, उसने क्या काम किया है, क्या अवस्था है, जैसे अगर कोई दौड़ कराया तो उसका बीपी अपने आप नॉर्मली बढ़ा मिलेगा, तो इस तरीके से हम देखते हैं। पर अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर वाला, मतलब जो 120 है उसकी जगह अगर 140 आ रहा है, और नीचे आपका जो बीपी है वो करीब 90 के ऊपर है या 100 के ऊपर है, तो आपको ब्लड प्रेशर का मरीज माना जाता है। और एक बार में, मतलब 3 बार अगर हम इसकी जांच करें और आपको कुछ ब्लड प्रेशर के लक्षण हो रहे हो कि आंख से धुंधला दिख रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, घबराहट हो रही हो, पसीने छूट रहे हो, तो एक माना जाता है कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है। अच्छा भैया, ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अधिकतर लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, जो जो मतलब अगर हम बीपी का शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो अधिकतर जो मरीज हमें भारत में मिलते हैं वो हाई बीपी के मिलते हैं। अभी का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का और वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन का जो डेटा है उसके हिसाब से करीब 10 से 11 करोड़ आदमियों को भारत में ब्लड प्रेशर की समस्या है। मतलब इतने लोगों को ब्लड प्रेशर की दवा की आवश्यकता है। और आपको ये जान के अचंभा होगा कि वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन कहता है कि हमारे यहाँ करीब 12 से 14 करोड़ को शायद ब्लड प्रेशर हो। मतलब उनका ब्लड प्रेशर कभी ना कभी बढ़ जा रहा है, जो उनको नुकसान दे रहा है। तो ये जो फिगर है, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये करीब 22 से 24 करोड़ आता है। मतलब हमारे देश की अमूमन 18 से 20% की जनसंख्या को इस ब्लड प्रेशर की बीमारी से वो ग्रसित है, और मोटा मोटी 7 से 8% से लेकर 10% की तो जनसंख्या इसकी दवा खा रही है। और हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि 1-2% भी हमारे यहाँ करोड़ों में होता है। तो सोचिए, 15 से 20% की जब जनसंख्या इस समस्या से ग्रसित है तो हमारा देश कहाँ जाएगा।
0: जब आप ये बात बता रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आबादी को ब्लड प्रेशर की समस्या है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो लोग इसे एक आम रीति के रूप में ही देखते हैं कि भाई बढ़ा हुआ है, तो ये चिंता का क्या विषय है? क्यों, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा होना कोई सोचने वाली बात होनी चाहिए?
1: बड़ा अच्छा सवाल आपने श्री भैया पूछा। आप एक साधारण सा बात समझिए कि आप पाइप से पानी दे रहे हैं और एकाएक आपने जो पाइप है उसका मुंह आगे से बंद कर दिया, तो जैसे ही आप बंद करेंगे तो उस पाइप में प्रेशर बढ़ जाएगा तो पानी निकलने की कोशिश करेगा। तो हम अमूमन देखते हैं कि जहां से पाइप नल से लगा हुआ है वहां से निकल जाता है, या आप जब दबाते हैं आगे से पाइप को तो वो पानी जो की धार है वो ज्यादा दूर तक जाके गिरती है। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और ये धमनियों में चल रहा होता है तो इससे हमारी धमनियां जो हैं वो फट सकती हैं। इसीलिए बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है। इससे भैया हमारे हृदय की धमनियां फट सकती हैं, हमारे दिमाग में जो छोटी छोटी धमनियां हैं वो फट सकती हैं, और बड़ी धमनियों में कुछ नहीं होता पर जो छोटी छोटी धमनियां जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारी ब्रेन में हार्ट में वहां चल रही हैं, उनमें एकाएक ब्लीडिंग हो जाती है और एक इतने जरूरी जो हमारा अंग है उसमें खून बहने लगता है, उस पे प्रेशर पड़ने लगता है और इससे हमको हमारा हृदय काम करना बंद कर सकता है, हमारी किडनियां हैं वो काम करना बंद सकती हैं, हमारा दिमाग है वो काम करना बंद सकता है। ये हमको एकाएक झटके में हमको इससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आप बहुत बार सुन भी लेंगे अब कि अरे वो तो ठीक से चल रहे थे, एकाएक उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई, या एकाएक उनके हार्ट में कुछ परेशानी हुई उनकी मृत्यु हो गई। तो ये इतना खतरनाक है, इससे एक एक सेकेंड में मतलब तुरंत इससे मृत्यु हो सकती है, या किसी अंग में रक्त सराव के बाद वो अंग का काम करना बंद हो सकता है या नुकसान हो सकता है। जी भाई, आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि आप हैं और मैं हूं, हम लोग बहुत सारे अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं विश्व भर में वहां जाकर काम करते हैं या वहां जाकर लेक्चर देते हैं, वहां जाकर इंट्रैक्शन करते हैं लोगों से। मैंने इधर नोटिस करना शुरू किया कि अब भारत की जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मानव जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वो सब अपने यहाँ अस्पताल खोल रहे हैं, वो सब अपने यहाँ डॉक्टरों को रख रहे हैं, वो सब यही शिक्षा दे रहे हैं कि हल्का खाइए, मानसिक रूप से शांत रहिए, मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, अपनी लालसाओं को अपनी जरूरतों को संयम में रखिए। सब यही बात कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं कि शांति बनी रहे। और भैया शांति रहेगी तभी ब्लड प्रेशर कम रहेगा, तभी नॉर्मल रहेगा।
0: डॉक्टर साहब जब आप ये बात कहते हैं तो ये बात समझ में आ रही है कि आज हम ब्लड प्रेशर को कोई बड़ी समस्या के रूप में ना देखते हुए ये भी एक आम चीज है, इसके लिए हम गोलियां खा रहे हैं, उस हिसाब से हम चल रहे हैं, मगर ये बात समझ में आ रहा है कि कितना खतरनाक हो सकता है बीपी का बढ़ा होना। और अगर हम इसे चलिए दवाई खा रहे हैं तो फिर तो कम से कम समझ में तो आता है, अगर किसी को पता ही ना हो उसको बीपी हो रहा है या नहीं हो रहा है या है भी ये समस्या मेरे को, ये व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? मतलब कोई सिम्टम्स हैं जिससे व्यक्ति जाके जांच करा ले कि भाई हाँ, जैसे डायबिटीज के लिए हम जानते हैं कि कुछ सिम्टम्स हैं जिसके बारे में आपने बताया था, ऐसे बीपी के लिए क्या व्यक्ति को जागरूक रहने की जरूरत है कि अगर हाँ मेरे शरीर में ये चीज मैं नोटिस कर रहा हूं तो मैं जाके डॉक्टर की सलाह लूं या मैं चिकित्सक के पास पहुंचूं?
1: जो सबसे कॉमन चीज मैंने अनुभव की है और बोला भी जाता है कि सबसे पहले आपको सरदर्द होने लगेगा और आपको अक्सर सरदर्द होगा और आप ये सोचेंगे यार कोई कारण नहीं है मेरे सरदर्द होने का, मुझे सरदर्द हो रहा है। आपको थकान होने लगेगी, आपको ऐसा समझ में आएगा कि मेरी धड़कन बढ़ रही है, हल्का एंग्जाइटी होने लगेगी। भैया कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि नाक से खून निकलने लगता है, अक्सर बार बार नाक से नोज ब्लीड हो रही है, तो ये आपको यही दिखेगा। और कभी कभी ऐसा लगेगा कि सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, अगर बैठे बैठे आपको आपकी आंख के सामने धुंधलापन होने लगेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा फिर थोड़ी देर में, फिर तो ये सिम्टम्स जैसे ही आपको महसूस हो तो आपको तुरंत अपना बीपी की जांच करानी चाहिए, ये कि आपको ये सारी समस्या हो रही है और आपको तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
0: ये बात बहुत ही फायदेमंद है कि हम पहले तो इस बात पे सजग रहें कि हमारे शरीर में क्या हमें तकलीफें हो रही हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे बीपी का मरीज हूं या बीपी की समस्या मुझे है, ये समझने के लिए आवश्यक है। साथ ही ये भी चीज समझ में आती है कि बीपी को आपने साइलेंट किलर कहा कि पता भी नहीं चलेगा और व्यक्ति उसकी वजह से आप

0: कबर्ड या बक्सा बनाकर रख लेना और छोटी मोटी चीजों के लिए खुद ही दवाई लेना, ये हितकारी नहीं है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहतर समझ को ले आने की आवश्यकता है, और जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सही समझ लाएंगे तब हम सहज रीति से स्वस्थ रह पाएंगे। आज डॉक्टर राहुल मोदी हमारे बीच आए और उन्होंने हमें स्वास्थ्य से संबंधित मार्गदर्शन दिए हैं। अगले एपिसोड में बीपी और उससे जुड़ी हुई अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां उनसे लेते रहेंगे। आज हम सभी श्रोता मित्रों को उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप सभी श्रोताओं की ओर से मैं डॉक्टर मोदी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य और आज हम सहज स्वास्थ्य को सहज बनाने की ओर, हमें क्या जागरूकता रखनी है, क्या हमें करने की जरूरत है, बीपी जैसे बीमारियों के बारे में भी नई जानकारी आज हासिल हुई है। अगली चर्चा में इस विषय पर और गहराई से चिंतन करेंगे। आज आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की ओर एक कदम लेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हेलो बच्चों, सपनों की सैर कार्यक्रम शुरू हो गया है क्योंकि घड़ी ने बजाए हैं 9:30। परी और मनी दीदी आ गए हैं आपसे बातें करने।
2: हाँ, और आपको सपनों की दुनिया में ले जाने और सपनों की सैर कराने के लिए।
1: और पता है ना बच्चों, आजकल परी आपको परी लोग की कहानियाँ सुना रही है।
2: हाँ, नई नई बातें पता चल रही हैं बच्चों अभी तो हमें परी लोग के बारे में।
1: बच्चों पता है क्या हुआ, परी लोग में एक दिन एक छोटी सी परी को जादुई छड़ी मिली।
2: अच्छा, जादुई छड़ी?
1: हाँ, वो तो बहुत खुश हो गई। उसको लगा इससे तो अब मैं खूब सारा जादू करूँगी।
2: अच्छा, सही बात है, परियों के पास तो छड़ी होती है और वो तो छड़ी से बहुत सुंदर सुंदर जादू भी करते हैं।
1: हाँ बच्चों, लेकिन ये जो परी थी ना, वो बहुत नन्ही सी थी तो उसको ये नहीं समझ थी कि कौन सी बात में जादू अपनाना चाहिए।
2: अच्छा, फिर क्या हुआ?
1: फिर उसकी माँ ने उसको समझाया।
2: अच्छा,
1: कि सबसे बड़ा जादू जादुई छड़ी में नहीं है लेकिन हमारे अच्छे विचारों में है, अच्छे कर्मों में होता है।
2: अच्छा, बिल्कुल सही समझाया उसकी मम्मी ने उसे।
1: हाँ बच्चों, फिर बच्चों क्या हुआ पता है, इस नन्ही सी परी ने जो सपने देखे थे ना, मैं इस जादू की छड़ी से ये करूँगी वो करूँगी, उसने सारा कुछ कैंसिल करके अपनी जादुई छड़ी से उसने सूखे पेड़ों में पानी पहुँचाया, भूखे पक्षियों के लिए दाना रखा, जंगल को फिर से हरा भरा कर दिया।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया उस नन्ही सी परी ने। दूसरों की मदद करना है ना, कितना अच्छा काम है।
1: बिल्कुल बच्चों, तो इसीलिए आपके पास भी वो जादुई छड़ी है, आप चाहे तो सबकी मदद कर सकते हैं।
2: सही कहा, और सच्चा जादू हमारी दयालुता, प्रेम और अच्छे कर्मों में होता है।
1: तो देखा बच्चों, आप भी ऐसे ही करेंगे ना, सबकी मदद करना।
2: हाँ परी, बहुत अच्छी बात बताई। तो बच्चों चलो, ये कदम हम उठाएंगे, कल से ही सबकी मदद करेंगे। तो चलो, अभी तो फिर और भी ढेर सारी बातें करनी है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

बच्चों चलो बैठो रेडियो के पास, कहानी शुरू हो रही है। आज आपको एक मोर और सारस की कहानी सुनाएंगे। एक मोर था, वो बड़ा घमंडी था और अपनी सुंदरता का बखान करता रहता था। रोज नदी के किनारे जाता, पानी में अपनी परछाई देखता और अपनी सुंदरता की तारीफ करता। वो कहता, जरा मेरे पंख तो देखो, कितने मनमोहक रंग है मेरे पंखों के। वास्तव में मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। एक दिन मोर को नदी के किनारे एक सारस दिखाई दिया। उसने सारस को देखकर मुंह फेर लिया। सारस का अपमान करते हुए उसने कहा, कितने रंगहीन पक्षी हो तुम, तुम्हारे पंख तो एकदम सादे और फीके हैं। बच्चों सारस ने क्या कहा पता है? तुम्हारे पंख तो सचमुच सुंदर है, मेरे पंख तुम्हारे पंखों जितने सुंदर नहीं है, पर इससे क्या होता है, तुम अपने पंखों से ऊंची उड़ान तो नहीं भर सकते हैं ना, जबकि मैं तो अपने पंखों से आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ। इतना कहकर सारस तो उड़ता हुआ आकाश में बहुत ऊंचा चला गया। मोर तो बच्चों शर्मिंदगी से उसकी ओर सिर्फ देखता ही रह गया। तो देखा बच्चों, कहानी क्या समझाती है? केवल सुंदरता की अपेक्षा उपयोगिता अधिक महत्वपूर्ण होती है ना बच्चों? केवल बाह्य रूप नहीं देखना, लेकिन हम किसी के काम आए, हमारे अच्छे गुण हो, हम सबको सुख दे कर्मों से, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम किसी की मदद करें, तो बच्चों आप भी ऐसे ही बनना, मिथ्या अहंकार मत करना। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सब

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, मनी दीदी आ गई है आपके लिए लेकर तेनालीरामा की कहानियाँ। और हम पढ़ रहे हैं तेनालीराम की अनोखी दुनिया, और उसमें भी जो शीर्षक है कहानी का वो है मृदुभाषिता, जिसमें तेनालीराम को महाराज के दामाद को कड़वे वचनों से मृदुभाषिता की ओर लाना है, जिसमें तेनालीराम ने महाराज के साथ उनके दामाद को अपने आवास पर निमंत्रण दिया है। अब आगे क्या होता है चलो मैं बिना देर किए पढ़ना शुरू करती हूँ। दूसरे दिन तेनालीराम अपने आवास पर इन लोगों की आवभगत में लगा हुआ था। उसी समय उसके दरवाजे पर एक वृद्ध महिला अपने पौत्र के साथ आकर खड़ी हो गई। उसके पौत्र ने ऊंची आवाज में पुकारा, अरे इस घर में कौन रहता है, बाहर आओ। पौत्र की आवाज बहुत कर्कश थी, तभी सभी ने सुना। बुढ़िया अपने पौत्र को समझा रही थी, इस तरह किसी को आवाज दोगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी और तुम्हें भी जवाब मिलेगा, बाहर निकलो। ठहरो, देखो अब मैं बुलाती हूँ, कोई है बेटा, जरा बाहर आना, इस विवश बुढ़िया की बात तो सुनते जाना। तत्काल तेनालीराम बाहर निकला, उसने बुढ़िया की बात सुनी, फिर दोनों को कक्ष में लाकर बिठाया तथा उनके लिए अच्छा सुंदर स्वादिष्ट भोजन मंगवा कर परोस दिया। बुढ़िया और उसका पौत्र भोजन करने लगे और फिर दोनों तृप्त भी हुए। तब तेनालीराम ने बुढ़िया से कहा, माँ तेरा पोता बहुत कर्कश स्वर में कड़वी बातें बोलता है। तो बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा मगर समझ जाएगा, अभी इसने दुनिया नहीं देखी है, वही दिखाने ले जा रही हूँ। मैंने आज इसे यही समझाया है कि कड़वे और मीठे का बोध सीधे जीभ को होता है, कड़वे का स्वाद विरक्त करता है जबकि मीठे से तृप्ति मिलती है। ऐसी ही स्थिति वाणी की है, वाणी का संबंध भी जीभा से है, मुंह से निकली बोली स्वयं पर नहीं दूसरों पर असर करती है। मीठा बोलोगे तो मीठी प्रतिक्रिया होगी, कड़वा बोलोगे तो कड़वी। वृद्धा ने कहा, तो बच्चों अभी एक तरीके से तेनालीराम ने महाराज के दामाद के सामने ये सारा प्रसंग दिखाया, अब क्या शिक्षा मिली वो तो अगली कड़ी में दामाद से ही पता चलेगा कि उसने क्या लर्न किया। तो चलो अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं प्यारे से गाने के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बच्चों चलो बैठो रेडियो के पास। मनी दीदी और परी फिर से इस ब्रेक के बाद आपसे मिलने आ गए हैं। और परी, अब परी ने जो पहेली पूछी थी उसका आंसर बताने वाले हैं। हमने पूछा था, सुबह सुबह मैं गाऊं, सबको जगाऊं, बिना घड़ी के समय बताऊं, बताओ मैं कौन हूँ।
3: और बच्चों सही जवाब है कुकड़ू। मुर्गा सुबह सुबह बिना अलार्म क्लॉक के ही जगा देता है कि नहीं?
2: बिल्कुल मनी दीदी, तो देखा कितने सारे बच्चों ने सही जवाब भेजा है। और फिर नोट कर लो आज की पहेली। वो कौन सा जानवर है जो पानी में रहता है और जिसकी 8 टांगे होती है?
3: बच्चों इस प्रश्न में ही जवाब छुपा हुआ है। 8 बाहें होती है तो किसकी होती है 8 बाहें? तो चलो जल्दी से उठाओ फोन और हमें वॉइस नोट या मैसेज कर दो 9414151415 पर।
2: हाँ बच्चों, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और साथ में क्या करना है?
3: भगवान जी को सॉरी और थैंक यू करना है।
2: तो चलो हम करते हैं गुड नाइट,
3: स्लीप टाइट,
2: गुड बाय। सुनते रहो
3: मुस्कुराते रहो
2: रेडियो मधुबन
3: 107।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। हर दिन शुभ होता है, हर घड़ी शुभ होती है, हर एक का चेहरा शुभ ही होता है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, इमली कैसे हमारे हेल्थ के लिए फायदा करती है, कौन सी बीमारियां ठीक करती है, जरूर जानेंगे आप घरेलू उपाय के द्वारा। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो व्यंजन में आप क्या पसंद करते हैं? अरे भाई, कभी तो अपनी पसंद बता दिया करो, हमेशा हम अपनी पसंद सुनाते हैं। चलिए ठीक है, आज हम इंतजार करेंगे कौन अपनी पसंद रखता है, नहीं तो फिर हम तो बेटे ही है। और आज का प्रश्न बहुत सुंदर रहेगा, बहुत ही जनरल प्रश्न है, ठीक है, तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। तो ये सब कुछ सुनेंगे कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है कि हर दिन शुभ होता है, हर घड़ी शुभ होती है, हर एक का चेहरा भी क्या होता है, शुभ ही होता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। एक व्यक्ति के बारे में प्रसिद्ध हो गया कि उसका चेहरा बहुत ही मनहूस है। लोगों ने उसके मनहूस होने की शिकायत राजा से की। राजा ने लोगों की इस धारणा पर विश्वास नहीं किया, किंतु इस बात की जांच स्वयं करने का निर्णय किया। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाकर अपने महल में रखा और एक सुबह स्वयं उसका मुख देखने पहुंचा। संयोग से व्यस्तता के कारण उस दिन राजा भोजन नहीं कर सका। वह भी इस नतीजे पर पहुंचा कि उस व्यक्ति का चेहरा सचमुच मनहूस है, शुभ नहीं है। उसने जल्लाद को बुलाकर उस व्यक्ति को मृत्युदंड देने का आदेश सुना दिया। जब एक वरिष्ठ मंत्री ने राजा का यह आदेश सुना तो उसने पूछा, महाराज, इस निर्दोष को मृत्युदंड क्यों दे रहे हैं? राजा ने कहा, मंत्री जी, यह व्यक्ति वास्तव में मनहूस है। आज सर्वप्रथम मैंने इसका मुख देखा तो मुझे दिन भर भोजन भी नसीब नहीं हुआ। इस पर मंत्री जी ने कहा, महाराज, क्षमा करें, प्रातः इस व्यक्ति ने भी सर्वप्रथम आपका ही मुख देखा था ना। आपको तो भोजन नहीं मिला, किंतु आपके मुख दर्शन से इस बेचारे को तो मृत्यु दंड मिल रहा है। अब आप स्वयं निर्णय करिए कि कौन अधिक मनहूस है। राजा बहुत चक्का रह गया, उसने इस दृष्टिकोण से तो सोचा ही नहीं था। राजा को किंकर्तव्य विमुट देखकर मंत्री जी ने कहा, राजन, किसी भी व्यक्ति का चेहरा मनहूस नहीं होता, वह तो भगवान की देन है। मनहूसियत हमारे देखने या सोचने के ढंग में होती है। आप कृपा करके इस व्यक्ति को मुक्त कर दीजिए। राजा ने उसे मुक्त कर दिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, अक्सर हम कहते हैं कि ये दिन अच्छा नहीं है, ये मुहूर्त अच्छा नहीं है, ये घड़ी अच्छी नहीं है, फलाने का चेहरा मनहूस है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हर घड़ी शुभ होती है, हर दिन शुभ होता है।

हर एक का चेहरा शुभ ही होता है, बस देखने का नजरिया अपना अपना होता है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और आइए फिर से ले लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद पुनः रूबरू होते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुइया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा मैं सबना हार्दिक कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरे संपर्क हुए तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम्स जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इन्हें सब मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारे लोगों ना बोलूंगा कि आपने जो भी काम आप करा मन लगाकर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाएंगे आप। नमस्ते, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब आपको देंगे बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। पहले तो आप दो लाइन सुन लीजिए। इमली

देर धिनक धिनक धिन तारा धिनक धिनक रे धिनक धिनक धिन तारा धिनक धिनक रे। तो भाई इमली से आपने सुना है गीत, तो बिल्कुल आज मैं आपको घरेलू उपाय इमली पर ही बताने वाली हूँ कि इमली हमारे कौन सी बीमारी ठीक करती है, तो आप जानेंगे। देखिए, अगर शराब या भांग का नशा चढ़ गया हो ना, तो नशा समाप्त करने के लिए पकी इमली का आप गुदा जल में भिगो करके उसको मथिए, मथ कर छान कर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके पीजिएगा, तो शराब और भांग का नशा उतर जाएगा। शराब और भांग का नशा उतारना चाहते हैं तो इमली का गुदा लीजिए, पानी में भिगो दीजिए, फिर इसको मथिएगा, मथने के बाद छान करके इसको पी लेना है, ठीक है? तो शराब और भांग का नशा छुमंतर हो जाएगा। अगला उपाय भी बहुत ही सुंदर है। इमली के गुदे का पानी पीने से वमन, पीलिया, प्लेग, गर्मी के ज्वर में भी काफी राहत मिलती है। तो इमली के गुदे का पानी पीजिएगा, इससे वमन बोले तो वोमिटिंग, उल्टी, पीलिया, प्लेग की बीमारी, गर्मी के ज्वर में भी काफी राहत मिलेगी, ठीक है? हृदय की जलन या दाहकता को शांत करने के लिए पकी हुई इमली के रस में मिश्र मिलाकर पीजिएगा। हृदय की जलन या दाहकता को शांत करना हो तो पकी हुई इमली के रस में आप मिश्र मिलाकर पीजिएगा, तो इस तरह हृदय की दाहकता शांत होगी। अगर लू लग गई हो तो क्या करेंगे? आपको अक्सर हम ये नुस्खा बताते रहते हैं, पकी हुई इमली के गुदे को हाथ और पैरों के तलुओं पर मलिए, इससे लू का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अगर लू लग गई है तो पकी हुई इमली के गुदे को हाथ और पैरों के तलुओं पर मलने से क्या होता है, लू का प्रभाव कम हो जाता है। और चलिए लास्ट उपाय भी आपको बता देते हैं। गले की सूजन है तो इमली 10 ग्राम 1 लीटर पानी में आप इसको भिगोइएगा, फिर छानिएगा, और इसका गुलाब जल इसके अंदर मिलाना है आपको, ठीक है? और रोगी को घरारे और कुल्ला करने के लिए कहिएगा, तो गले की सूजन ठीक हो जाएगी। अगर गले की सूजन है तो इमली 10 ग्राम 1 लीटर पानी में आप डालिएगा, अच्छी तरह मत करके, और फिर इस पानी को छान करके इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके घरारे करिएगा, कुल्ला करिएगा, तो गले की सूजन ठीक हो जाएगी। तो ये सारे उपाय बहुत ही अच्छे हैं, आजमा सकते हैं। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन की ऐसी कौन सी छोटी सी खुशी है जो आपका मूड तुरंत अच्छा कर देती है? अब ये भी आपके ऊपर छोड़ा है, आप अपने अपने मूड के अनुसार जवाब दीजिएगा। जब आपका मूड ऑफ होता है तब आपको ऐसी कौन सी चीज आपको लगता है कि मिल जाए तो तुरंत ही मेरा मूड चेंज हो जाएगा, तो इस तरह का प्रश्न

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे, लेकिन आज हम आपको सरप्राइज देना चाहेंगे मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि आज हमारे रेडियो मधुबन परिवार के ही सदस्य जो अभी बहुत दिनों से गायब थे, वैसे अभी बहुत दिनों से फोन नहीं कर रहे थे, इनसे शिकायत भी है कि आप बहुत दिनों से फोन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी रेडियो से दूर नहीं हुए हैं, तो आप पहचानिएगा, मैं इनका नाम नहीं लूंगी। नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम।
0: आपको यार रेडियो मधुबन में आकर के कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी मिल रही है। मैं तो आई हूँ, मुझे बहुत खुशी से आई हूँ मैं।
0: और इतना सा परिचय देना चाहूंगी कि आप माउंट आबू ढूंढाई से पधारे हैं, अब हिंट आपको मिल गया, इनका नाम आप बता सकते हो, नहीं तो फिर हम तो बताएंगे ही लास्ट में, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता बंधु, क्योंकि सभी एक दूसरे के अच्छे करीब में हैं, सभी जैसे कहते ना कि रेडियो के जरिए हमारे सभी श्रोता बंधुओं में इतनी फ्रेंडशिप हो गई है कि सभी रेडियो मधुबन परिवार के ही सदस्य है और स्वयं को समझते भी है, तो आप भी हैं, तो आपको पहचान कर बताइएगा कि आप कौन है, आप माउंट आबू ढूंढई से पधारे हैं, ठीक है? थोड़े दिन से आप रेडियो मैं किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन अब जुड़ते रहेंगे, तो चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
2: हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: बस अच्छे हैं, मेरे हिसाब से तो कमलेश बहन जी हो गए।
0: थोड़ा सा और आप माउंट आबू ढूंढई से क्या है, अपने दो श्रोता बंधु है, दो का फोन, दोनों ही बहने हैं और दोनों के फोन आते रहते हैं, दोनों ही अभी कुछ दिनों से गायब है, अब पहचानिए कि कौन है।
2: हमारे इंदू बहन जी। कमलेश बहन जी,
0: बिल्कुल, तो आपने पहचान लिया है, आपके लिए ढेर सारे इंदू जी आए हैं आज।
2: जब आए थे जन्मदिन पर हम दोनों को मिले थे, तो आवाज तो हम पहचान के लेते हैं एकदम, क्योंकि कई दिनों से तो नहीं जुड़ा, लेकिन पहले बहुत जुड़ते थे।
0: जी जी जी जी,
2: कई दिनों से नहीं जुड़ रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, आज आप स्टूडियो में बता रहे हैं, तो आपका विधि स्वागत है कमलेश बहन जी और इंदू।
0: कमलेश बहन जी नहीं आए, इंदू जी आए।
2: अच्छा, इंदू जी आए। हाँ, चलो कोई बात नहीं, तो इंदू जी आपको भी बहुत नमस्ते।
1: नमस्ते आपको भी, आप सबको नमस्ते। आपकी आवाज पहचाना, इसके लिए तो मैं बहुत आश्चर्य हूँ कि पहचान लिया।
2: हाँ हाँ, पहचान तो लेते हैं, क्योंकि हमारे परिवार के हिस्से हैं, तो कैसे न पहचाने। तो बहुत अच्छा लगा आप आए आज इंदू जी। और हमारे कमलेश बहन जी तो अभी बाहर है, क्योंकि वो तो अलग से गए हैं रहने के लिए,
0: पाली चले गए, लेकिन बहुत दिनों से रेडियो से दूर है वो भी।
2: हाँ, दूर है।
0: हाँ जी,
2: तो अच्छा है आप आ गए।
1: हाँ, मैं आज आ गई, मैं मैडम से, मैडम को मिले बगैर मैं रह नहीं सकती ना, मैडम
0: आज आपका नीचे आबू तलेटी में आना हुआ, तो फिर आप रेडियो मधुबन में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
2: अच्छा किया आपने, क्योंकि आप तो पास में हैं, बहुत दूरी पर नहीं है, इसलिए आए तो अच्छा है, क्योंकि आप तो नजदीक है, तो आवा नवा जाना ही चाहिए आपको।
1: नहीं, अब आती जाती रहूंगी मैडम को मिलने।
2: चलो कोई बात नहीं। और
0: आज का विषय है समझदारी की बातें केवल वो ही लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों ही अधिक हो, और दूसरे वे जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो। क्या कहेंगे?
2: एक बार आपने वो सवाल किया था, लेकिन अब दोबारा आपने बताया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं हमारी बात करते थे, तो हमारे जो पिताजी छोटे सी उम्र में चले गए थे,
0: तो
2: कैसे कई सारी हमने दुखों को भी पार किया है, और कहा कई दुखों से गुजरे हैं, कई मुसीबत से गुजरे हैं, तो कभी सारे अनुभव है दीदी हमको कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन में कैसे कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, कैसे उसको पार करना है, कैसे उसको कोई अच्छी रीति को संभाल के चलना है, सब कुछ हमने देख लिया दीदी, इसलिए हमारे कई सारे अनुभव है जीवन में, क्योंकि छोटी सी उम्र होती है और नहीं होता है, माथे का छत नहीं होता है दीदी, उसको तो
0: जी जी बिल्कुल
2: छोटे सब कुछ ही पता ही चल जाता है।
0: सही है,
2: बहुत दुख चलाए दीदी हमने, इसलिए हम तो कुछ ऐसा नहीं है, दुख सुख तो हम आते जाते हैं दीदी, लेकिन ऐसे तो हम कभी हारे नहीं है, वराना भी नहीं, आज भी कभी नहीं हारते, पहले भी नहीं हारता, आज भी नहीं हारते, बस आगे चलते हैं, क्योंकि ऐसे दुख का पहाड़ लेके बैठेंगे तो दुख ज्यादा आक्रमण करेगा, इसलिए ऐसा तो करना ही नहीं है
0: जी।
2: तो काफी सारी अनुभव दे दी हमको जीवन में, कैसे चले कैसे संभाले सबको
0: जी।
2: और जो आपने एक सवाल किया छोटा सा कि जीवन की कोई
0: आपके जीवन की ऐसी कौन सी छोटी सी खुशी है जो आपका मूड तुरंत ही अच्छा कर देती है?
2: बता दीदी, मैं जब मुझे तो पहले आपको पता है मुझे रेडियो का बहुत शौक है बचपन से। तो एक बार क्या हुआ था, मेरा रेडियो टूट गया था, तो मैंने दिल्ली से रेडियो मंगवाया था। जिन सब पहले तो क्या था, डाक में आता था, पोस्ट में आता था
0: जी।
2: तो इस वक्त देखिए रेडियो आया था और हमको समाचार दिया कि आपका रेडियो आया है दिल्ली से, तो इतना खुश हुए कि हम तुरंत चले गए वहाँ। और आज भी हम जो बात याद करते हैं तो इतने खुशी होती है कि भाई हमने दिल्ली से रेडियो मंगाया था, तो ये कैसा होगा, कैसा कैसे आता है, क्योंकि छोटी उम्र में तो पता ही नहीं चलता है क्या होता है
0: जी,
2: कैसे आता है। तो लकड़ी की पेटी में आया था और हमने यह निकाला, देखा, तो इतनी खुशी। आज हम जो ये बात सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है। और अब तो रेडियो नहीं है लेकिन मोबाइल में सब कुछ है, तो फिर भी रेडियो ही सुनते हैं।
0: अच्छा,
2: तो बस वही खुशी मेरी सबसे ज्यादा खुशी है दीदी, क्योंकि जीवन अच्छा, में तो कई सारी बातें हैं लेकिन वो तो जीवन की बातें हैं, उतार चढ़ाव तो सभी आता जाता है।
0: तो जब आपका मूड ऑफ होता है तो आप रेडियो सुनते हो तो आपका मूड वापस फ्रेश हो जाता है?
2: वही बात याद कर लेते हैं और रेडियो ही सुनते हैं
0: जी। तो रेडियो में आपको क्या सुनना पसंद है?
2: बस रेडियो में तो दीदी जब से रेडियो मधुबन हमारे हाथ में पकड़ में आया सबसे तो वही हम सुन रहे हैं। पहले तो कई सारे चैनल थे लेकिन आज जो एक अच्छी धार्मिक चैनल है आपका रेडियो साबरमती है, रेडियो मधुबन है हमारा खास, है बस वही सुनते रहते हैं पूरे दिन।
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है।
2: नमस्ते दीदी और दोबारा हमारे इंदी जी के नमस्ते।
1: नमस्ते आपको भी, सबको हमारे।
0: बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, इंदु जी से भी बात कर सकते हैं। इंदु जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए लोग सलाह उन्हीं से लेते हैं जो अनुभवी होते हैं। तो या तो एक परिपक्व उम्र होती है तब अनुभव बढ़ता है, या फिर कम उम्र में ही दुख आते हैं तो अनुभवी हो जाता है इंसान। क्या कहेंगे आप?
1: मेरे तो दुख सुख दोनों ही आए, लेकिन दोनों ही बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ आया नहीं, महादेव की कृपा है, आने नहीं दी, ठीक ठीक है, चल रहा है, बस सही है। और रही वो जो मूड खराब होता है अच्छे बुरे, वो मैं चाय पीती हूँ तो मेरा मूड सही हो जाता
0: अच्छा।
1: है
0: अच्छा। ये भी बहुत बढ़िया है, चाय पीने से मूड इनका अच्छा हो जाता है। देखो सबके अपने अपनी बात है भाई।
1: गाना वाना सुन लूंगी, चाय वाय पी लूंगी तो मेरा मूड एकदम बढ़िया हो जाएगा, चाहे वो कितना ही खराब क्यों ना हो मूड, मैं ऐसा
0: अच्छा,
1: कर लेती हूं।
0: बहुत बढ़िया। तो आप क्या कहेंगे भाई? आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रखिएगा। और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है, इसमें भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। तो इंदु जी कभी आपको जरूरत पड़ी किसी से सलाह लेने की?
1: हाँ सलाह लेने की जरूरत तो पड़ी है, लेकिन मैं तो अधिकतर मैंने जिठानी से ही लिया है सलाह।
0: अच्छा, वो घर में बड़े हैं?
1: बड़े हैं वो, सास बड़ी थी पर वो तो है नहीं, तो मैं जिठानी से लेती रहती सलाह।
0: अच्छा,
1: कुछ कभी बीमार हो गई, कभी कुछ है, कोई बार त्योहार का है, कैसे करना है, तो वो सब मैं उनसे ही पूछती।
0: अच्छा, हेलो।
3: हाँ जी नमस्कार बेन।
0: हाँ जी नमस्ते, जगदीश भाई बोलो छो? हाँ केम छो जगदीश भाई, बहुत दाड़ा पची जोड़ाव्या।
3: બેન મજામાં, તમારો પ્રોગ્રામ સાંભળું છું, ઇમલી માટે તમે કીધું આજનો જવાબ એવું આવી જાય।
0: અચ્છા, તમારો મૂડ ઓફ હોય ત્યારે તમે આમળી ખાઓ છો એમ?
3: હા
0: અચ્છા, બહુ સરસ। ઓર આજના વિષય માટે શું કહેશો?
3: આજનો વિષય શું કીધું બેન?
0: આજનો વિષય એ છે કે તમે કોના પાસેથી સલાહ લો છો? અનુભવી લોકો પાસેથી સલાહ લો છો કે નાના ઉંમરવાળા જે અનુભવી બની ગયા, જેમને જીવનમાં તકલીફ પડી ઓછી ઉંમરમાં અને એ અનુભવી થઈ ગયા, તો કોના પાસેથી સલાહ લો છો?
3: બેન મોટી ઉંમરના માણસ હોય કે અનુભવી હોય, તે રસ્તા ઉપરથી ગુજરી ગયા હોય, એ રસ્તા એમને દુઃખ પડી ગયું હોય, કોઈ પણ આપણે ગાડી લઈને જતા હોય તો ઉંમરવાળા કે બેટા હતું તેમ તેમ જજે, અને વળખમાં તું હોર્ન મારજે, સાચવીને જજે, ધીમે ધીમે જજે, હેલ્મેટ લગાવજે, સીટ બેલ્ટ લગાવજે. આ બધું તો વૃદ્ધ માણસ હોય એમના જોડે ઘણું શીખવા મળે. કારણ કે એ તકલીફ માંથી ગુજરી ગયા હોય, પછી કોઈ લોન માટે કહેતા હોય તો લોન નું બેટા લોન ના લેતો, આટલા વ્યાજમાં પૈસા જોયું, બને ત્યાં સુધી ઓછું ખાજે પણ લોન માં તું ના પડતો, નકર લોન માં ઘણાનો દેવ થઈ જાય છે. એટલે જે લોકો અનુભવી હોય, જે એમના ઉપર ગુજરી ગઈ હોય વાત, તો એ લોકો સલાહ એ જોડે થી કહીએ ને તો એ આપણનું કામ લાગે.
0: જી જી જી. અને ઘણા જણા ઓછી ઉંમરમાં અનુભવી થઈ જાય, કેમ કે નાની ઉંમરમાં એમના જીવનમાં તકલીફ પડી હોય ને તો એ અનુભવી થઈ જાય.
3: એ મોહું છે, નાની ઉંમરમાં એમને ઘણા અનુભવો થવાનું કારણ હું છે. એમની નાની ઉંમરમાં માં ગુજરી હોય, નાની ઉંમરમાં બાપ ગુજરી હોય, આવું એકલો પડ્યો હોય, એને માથે બધો ઘરનો બધો કારભાર એના માથે આવી ગયો, એટલે એને બધા અનુભવ થયો. એને કોઈ મરણ થયું હોય તો લાકડા જવાનું હોય, લોકાઈમાં જવાનું હોય, સગા સંબંધીમાં હાથ જવાનું હોય, કમાવાનું હોય, બધી રીતે એના ઉપર બધું બોજ આવે, એટલે એને કોઈ પણ બુદ્ધિ છે ને એને ખુલી જાય છે.
0: જી જી જી જી.
3: કોઈ પણ વસ્તુ એને માથે પડે કે એટલે એની બુદ્ધિ એ જે પડી હોય સુષુપ્ત અવસ્થામાં તો એ જાગૃત થઈ જાય.
0: અચ્છા.
3: એટલે એના પોતે અનુભવ મળે છે.
0: બહુ સરસ. ઇન્દુબેન જોડે કશું વાત કરવી છે તમારે? ઇન્દુબેન જોડે કશું વાત કરવી છે? એ રેડિયો તમારે જેમ રેડિયો સાંભળે છે એ પણ.
3: હા હા, ઇન્દુબેન જોડે આ ફિલ્મનું ઘણું સાંભળ્યું.
0: અચ્છા, હા, ફિલ્મી ગીત સાંભળ્યા અંતાક્ષરીમાં, બધું યાદ છે તમને એમ? ઓકે જગદીશભાઈ, બહુ બહુ આભાર તમારું. હા
3: બેન, મજામાં છો કે?
1: હા હા, ઠીક હું.
3: ઓકે
0: જગદીશભાઈ, બહુ બહુ આભાર તમને.
3: હા બેન, હા સારું થઈ ગયું કે?
0: એ ચાલે છે, થઈ જશે, તમારા બધાના દુઆથી ચાલુ, સરસ થઈ જશે. ઓકે, તો યે થે જગદીશભાઈ ઈડર સે. ઓર અબ આપ ભી જુડ સકતે હૈ ઓર અપની બાત કો રખ સકતે હૈ. નંબર રેડિયો મધુબન કે હૈ 94-14-15-14-15. ઓર ઇન્દુજી ભી આજ રેડિયો મધુબન કે સ્ટુડિયો મે આપકે સમક્ષ બેઠે હુએ હૈ. ઇનસે ભી અગર બાત કરના ચાહતે તો ભી કર સકતે હૈ. વિષય બહુત હી સુંદર હૈ. અનુભવી યા તો ઉમ્ર વાલે હોતે હૈ યા ફિર કમ ઉમ્ર મે જિનકે જીવન મે દુખ તકલીફ આતા હૈ વો ભી સમય સે પહેલે અનુભવી હો જાતે હૈ. હેલો,
4: ઓમ શાંતિ, ગુડ મોર્નિંગ દીદી.
0: ઓમ શાંતિ, નમસ્કાર સુભાષભાઈ, કેસે હો આપ?
4: હમ બહુત હી બઢિયા હું. ઓર આજ કે જો હમારે પરિવાર કે સદસ્ય દીદી ઇન્દુજી જો પધારે હૈ તો ઉનકા દિલ સે સ્વાગત ઓર ઉનકો નમસ્કાર. સભી રેડિયો મધુબન પરિવાર કો સભી ભાઈ બહેનો કો દોસ્તો કો નામ સહિત નમસ્કાર. ઓર પ્રોગ્રામ બહુત હી અચ્છા ચલ રહા હૈ, વિષય ભી અચ્છા હૈ ઓર પ્રશ્ન ભી અચ્છા હૈ. તો હમારે સુરેશભાઈ જી જો ડાલના વાલે ઉન્હોને બહુત હી અચ્છી બાત કહી ઓર આપ ભી કહેંગે તો વિષય કે બારે મે તો મેં જ્યાદા કુછ નહીં બોલતા, લેકિન સવાલ કા જવાબ દે રહા હું.
0: હા જી, હા જી.
4: તો દેખો દીદી, જબ ભી હમારા મૂડ ડિસમૂડ હો જાતા હૈ, હમ કભી નારાજ હો જાતે હૈ, કભી ટેન્શન મે આ જાતે હૈ, કભી કભી હોતા હૈ સ્વાસ્થ્ય ઠીક નહીં હોને કે કારણ, દૂસરા કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, લેકિન હમ ક્યા કરતે હૈ, હમ બસ રેડિયો મધુબન લગા દિયા कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी भाई हो, बहन आजे भाई हो, बहन हो, क्योंकि सभी फैकल्टी के ऊपर मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक बातें ही ज्यादा होती है, आध्यात्मिक गीते सुनने को मिलता है, तो टेंशन भाग जाता है और पास की बातें भी भाग जाती है, व्यर्थ बातों से भी हम अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक विचार करने लगते हैं, तो हम फिर से ताजे सवाने होकर खुशी में नाचते झूमते गाते मुस्कुराते हैं और टेंशन भाग जाता है। तो सभी वो नमस्कार और ओम शांति दीदी, ओम शांति
0: जी। बहुत बहुत आभार आपका सुभाष भाई। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, और इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन समय हो चला है एक ब्रेक लेने का। तो एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में कंचन भाई मंडाली से जुड़ चुके हैं। नमस्ते कंचन भाई।
3: नमस्कार बहन जी, सुप्रभात।
2: हाँ जी सुप्रभात, कैसे हो आप?
3: बस अभी अभी खेत से आए, अब खाद वगैरह लेके जाने का है, वही बोला है कि भी जल्दी लेके आओ
2: जी।
3: पानी कुएं में इस साल तो बारिश बनासकाठा में तो नहीं आई ना हमारे तो
2: जी,
3: तो थोड़ा मक्का बोया है, थोड़ा सोयाबीन है, तो पानी खेतों में किया है, तो खाद वगैरह डालना पड़ता है
2: जी।
3: तो अभी जाने वाले थे, अभी निकलने वाले थे फिर से खेत में, तो मैंने सोचा कि चलो बहन जी आ गए हैं जो, तो थोड़ी बात कर लूं। ठीक है, आपका क्या है विषय आपका?
2: जी विषय तो आज का है कि देखिए, समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं, एक तो वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों अधिक हो और दूसरे वे जो बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो। और आज का प्रश्न भी है, आपके जीवन की ऐसी कौन सी छोटी सी खुशी है जो आपका मूड तुरंत अच्छा कर देती है?
3: जीवन की खुशी?
2: हाँ, आपका मूड खराब है और आपका मूड अच्छा हो जाता है तो किस वजह से होता है? ऐसी कौन सी खुशी आपको याद आ जाती है तो आपका मूड तुरंत ही अच्छा हो जाता है?
3: हमारा तो मूड एक एक भजन गा लेते हैं ना बहन जी।
2: अच्छा, तो मूड अच्छा हो जाता है।
3: पूरे दिन हम खुश खुश हो जाते हैं, दिन कहीं साथ बात कोई ना हो, खेत में जाते हैं तो एक भजन गा देते हैं तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है बहन जी।
2: जी जी जी, जी।
3: कई छोटे थे तब से हमारा ये रहा है
2: जी,
3: संगीत से लगा। ठीक है।
2: हाँ जी हाँ जी।
3: और विषय के बारे में तो देखो ना, अनुभवी
2: जी, जैसे देखो एक तो उम्र वाले होते तो उम्र के साथ साथ परिपक्वता बढ़ती है, अनुभव बढ़ते हैं, तो लोग सलाह या तो उनसे लेते हैं या फिर कोई कोई कम उम्र में भी जब दुख तकलीफ उठाते हैं, दुख तकलीफों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो भी अनुभवी हो जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे?
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो कम उम्र में जवाबदारियां सभी आई घर परिवार की खेती की, तो हमें भी उम्र तो 70 वर्ष चल रहे हैं अभी, लेकिन काफी अनुभव हो गया है बहन जी
2: जी।
3: अच्छे बुरे काम का कोई ऐसा हो ऐसा हो तो देखो, ज्यादा तो बात मेरी बात तो नहीं करूंगा क्योंकि भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे
2: पेड़ खजूर।
3: तो क्या है कि भाई बड़ा बड़ा ही ना करे, बड़ा ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल,
2: लाख टका हमारा मोल।
3: तो ये क्या है कि भाई हमें हमारा वखाण करे तो ये कोई काम का नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है
2: जी,
3: हमसे बड़े हैं वो भी हमको बात करते हैं कि ऐसा करना है तो कैसा करे क्या करे, छोटे हैं वो भी हमें बात करते हैं, सिलाई की दुकान है तो बैठते हैं, तो सभी आते हैं गाँव गाँव से, बड़े छोटे सभी, सलाह तो अच्छी ही देनी चाहिए, क्या के अनुभव जो है ना वो बांटना चाहिए बहन जी, कोई किसी का बुरा कहीं भाई ऐसा करो वैसा करो, ऐसा ट्रैक्टर लाएगा तो ये सब बिक जाएगा और जमीन भी बिकेगा तो हमें देगा, ऐसी सलाह नहीं देने की है
2: जी।
3: सलाह जो अनुभव से जो गरीब परिस्थिति से बाहर आए हैं तो कैसे आए क्या किया ये बांटने का है, सच्ची सलाह देने की है
2: जी।
3: थैंक यू बहन, सभी दोस्तों को जुड़ना है, मैं भी अब निकलने वाला।
2: चलो बहुत बहुत आभार आपका।
3: तो चालू चालू जेब में चालू रहेगा, मैं सुनू
2: जी जी जी। ठीक है
3: जी, थैंक यू, सभी दोस्तों का नमस्कार।
2: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई, ये थे कंचन भाई मंडाली से। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर आज का विषय है, प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। आपके जीवन की ऐसी कौन सी छोटी सी खुशी है जो आपका मूड तुरंत ही अच्छा कर देती है? और आज का विषय है समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र अनुभव दोनों अधिक हो और दूसरे वे जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो। क्या कहेंगे आप? कहते हैं ना, अनुभव हमारे पास है तो हम कहीं पर भी हार नहीं खा सकते, है ना। इसमें भले कम उम्र वाले हो चाहे अधिक उम्र वाले हो, और लोग भी उनसे ही सलाह लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि या तो ये उम्र का भी एक तवज्जा रहता है कि भाई उम्र अधिक है तो अनुभव तो बढ़ते ही हैं, दुनिया देखी होती है, इसलिए क्या कहते हैं कि ऐसे ही बाल सफेद नहीं किया है भाई, पूरे उम्र का अनुभव है, इतनी एज है। जैसे कंचन भाई बता रहे थे 70 साल का हूँ, बिल्कुल 70-80 साल, 60 साल वालों को भी आजकल तो अनुभवी ही कहेंगे, लेकिन कम उम्र वालों को अनुभवी नहीं कह सकते जब उनके जीवन में सुख दुख नहीं आए हो तो। हेलो, हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। आपकी आवाज बहुत ही स्लो आ रही है सुरेश भाई।
4: अब आई मेरी आवाज?
2: हाँ, अब आई आपकी अच्छी तरह।
4: हाँ दीदी, तो जो इंदु बहन बैठे है के वहाँ?
2: हाँ है, है।
4: हाँ?
2: बैठे हैं, बैठे हैं।
4: हाँ जी। तो मेरा भी नमस्कार, मैं सुरेश भाई धानेरा से बात करा हूँ दीदी।
2: एक मिनट, इनसे
4: इंदु बहन काफी टाइम से बैठे है तो बात नहीं करवाए, कुछ इंदु बहन से भी बात करिए।
2: सुरेश भाई धानेरा से है, आपसे बात करना चाहते हैं।
5: नमस्ते।
4: नमस्ते दीदी, नमस्ते। और आप भी बहुत अनुभवी होगी, और जो अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमारी में जो आप जो जुड़े हैं या रेडियो मधुबन से जुड़े हैं तो बहुत अच्छे अनुभव रहे होंगे आपके। और दीदी ने भी आज बहुत अच्छा विषय उठाया है, हर दिन अच्छा अच्छा विषय लेके आते हैं। तो थोड़े से आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके इस विषय के बारे में क्या अनुभव है?
5: क्या पूछो, आप पूछो।
4: हेलो,
5: मैं तो ज्यादा अनुभवी नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी है ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, वही है
4: जी।
5: हाँ, मेरे तो ये सब बातें मेरे पति बताएंगे अच्छे से।
4: वो तो सही बात है। हाँ। दीदी की जो उषा दीदी ने जो बात कही, तो मैं क्या करता हूँ कि ज्यादातर जो बड़े उम्र वाले लोगों से मैं बहुत सारा अनुभव लेता हूँ, और जो मित्र वगैरह उसी को ही बनाता हूँ। क्योंकि देखो ना दीदी, आज के जो क्या बोलते हैं टाइम आ गया है, तो मोबाइल रील्स ऐसे वगैरह, तो जो आज के बच्चे या अब तो बड़े भी ये उसमें सब हो चुके हैं, तो
5: वो सब सुनते रहते हैं। पर मैं तो कथा पर ही अनुभव अपना जो पसंद है तो मैं साड़ियां देखती रहती
4: हूँ। और जो हमारी जो छोटी सी खुशी की बात कही ना दीदी ने, तो मैं तो एक तो सभी दोस्तों ने बताया कि रेडियो मधुबन से ही हमें बहुत सारी खुशी मिल ही जाती है अगर कोई मूड ऑफ हो तो।
5: हाँ, वो बात सही है, रही, कि बहुत सारी खुशी तो रेडियो मधुबन से मिलती है, पर मैं थोड़ा नाराज रहती हूँ ना, तो मैं तो साड़ी वाड़ी खरीद के लिए आती तो मुझे तो बहुत खुशी मिल जाती है, बहुत ही पूरे दिन फिर मैं गाने वाने गाऊंगी, खुश रहूंगी, ये अच्छा सा खाना भी बना लूंगी और फिर सब दुख खत्म।
4: और
2: साड़ी खरीदने से दुख खत्म हो जाता है, इंदु जी बता रहे हैं।
5: मेरे तो यही है, मेरे जो सच है वो बताया है।
2: हाँ, वो तो अपने अपनी चॉइस है, सही बात है,
5: चॉइस है, मेरी मन की बात है, और जो सच है, जो मैं जैसा करती हूँ वैसा मैंने वो सच ही बताया है। मेरे तो ऐसा, मैं चाय वाय बना के पी लूंगी, गाने वाने गाने लग जाऊंगी, फिर बस सब खत्म, सारी दुखे मिट जाएगा और लगेगा कि मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।
4: जी। और बाकी जो रेडियो मधुबन सुन के सभी तरीके की खुशी मिल जाती है मनोरंजन के साथ साथ।
5: हाँ।
4: और जो दीदी ने बताया ना कि परिवार मानते हैं, मानते नहीं, मान चुके हैं।
5: हाँ। हाँ, परिवार तो
4: बहुत
5: मैं भी
4: खुशी मिलती है आजकल, खुशी कहाँ पैसे से भी नहीं मिलती तो
5: हाँ,
4: ये तो फ्री में खुशी मिल रही है।
5: हाँ, ये तो फ्री में मिल रही, सही बात है।
4: जी जी जी, और चलो और भी दोस्तों का जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ेंगे, और आप भी अनुभव अपना शेयर करें और हम जरूर सुनेंगे।
2: चलिए, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से। अब आपके पास 2-3 मिनट है, कोई भी जुड़ना चाहे तो आप भी जुड़ सकते हैं, इंदू जी से भी बात करना चाहे तो कर सकते हैं, और आप अपनी बात रख सकते हैं। आज के प्रश्न का आप जवाब भी दे सकते हैं कि भाई अगर मूड खराब होता है आपको क्या मिल जाता है कि तुरंत आपका मूड ठीक हो जाता है। सभी के जवाब आप सुन रहे हैं, आप अपना भी जवाब दे सकते हैं। और विषय बहुत ही सुंदर है, देखिए उम्र वाले तो अनुभवी होते ही हैं, उम्र का तकाजा जो होता है समय के साथ अनुभव बढ़ते जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, कोई भी अगर सलाह लेना चाहते हैं तो चलो बड़ों के पास चलते हैं, कोई भी बात होती चलो बड़ों के पास चलते हैं, तो बड़ों से सही मार्गदर्शन मिल जाता है, सही राह मिल जाती है, सॉल्यूशन मिल जाता है। इसलिए बड़े तो है ही है, लेकिन आप देखते होंगे कभी कभी छोटे भी है ना, उम्र में छोटे होते हैं लेकिन क्या है, उनके जीवन में कुछ ऐसी समस्या आई हुई होती है कि वो समय से पहले ही अनुभवी हो जाते हैं, तो उनसे भी लोग सलाह लेते हैं, कह रहे भाई फलाना देखो बहुत तकलीफ उठाकर आगे बढ़ा है, जीवन में सफल हुआ है, तो चलो उससे पूछते हैं आपकी सफलता का राज क्या है, या कोई भी बिजनेस या सर्विस या पढ़ाई या कुछ भी करने जाना हो तो सलाह लेंगे, क्या कौन सा फॉर्म भरे, बच्चे को पढ़ाना है क्या करें, आप सलाह दीजिए। बहुत सारे, मेरे को यहाँ पर एक बात याद आ रही है, एक बच्चा है जिसके पिताजी बहुत ही कम उम्र में चले गए और अपने परिवार वालों ने रखा नहीं, ननियाल में बड़ा हुआ, ननियाल वालों ने उसको पढ़ा लिखा कर होशियार किया, और कम उम्र में सही डिसीजन ले करके उसने सब्जेक्ट भी अच्छा लिया और उस सब्जेक्ट में भी सफल हो करके उसको गवर्नमेंट जॉब भी लग गई। तो लोग उससे सलाह लेते हैं कि अच्छा हमारे बच्चों को पढ़ाना है, आप बताइए ना कि कौन सा फॉर्म भरे, कौन सा सब्जेक्ट दिलाए। तो कम उम्र में अगर अनुभव बढ़ जाता है तो लोग उनके पास भी जाते हैं। हाँ, सभी का थोड़ा सा भाई कि शिक्षा के स्तर में आगे है तो शिक्षा के स्तर में बात करते हैं। हेलो,
6: नमस्ते मैडम जी।
2: हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, दयाराम जी बोल रहे हैं।
6: मधुबन के सभी श्रोताओं को और प्रसारण के जो सभी पात्र हैं सभी को राम राम, राधे राधे
2: जी, राधे राधे। आप नाम गले में अटक रहा है आपका
6: जी, जयपुर से अतर सिंह
2: जी, जी अभय सिंह जी
6: यादव।
2: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में, और कैसे हो आप?
6: बढ़िया है मैडम जी, अच्छे हैं, प्रोग्राम का फायदा उठा रहे हैं।
2: अच्छा अच्छी बात है
6: जी,
2: जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में, आज के प्रश्न का जवाब भी आप दे सकते हैं।
6: हाँ जी मैडम, दो सवाल कर रखे हैं आपने।
2: नहीं, एक तो प्रश्न है आपका मूड खराब होता है तो कौन सी चीज मिल जाती है जिससे आपका तुरंत ही मूड चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और विषय है कि देखिए अनुभवी वो होते हैं जो या तो बुजुर्ग है उम्र वाले है और अनुभव उनके गहरे तो वो अनुभवी है, या फिर कम उम्र में जिसके जीवन में तकलीफ आता है वो भी अनुभवी हो जाते हैं, क्या कहेंगे आप?
6: जी मैडम, पहले सवाल का तो है, जो जिसने भी जो लक्ष्य अपना बनाया है और उसको उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, वो लक्ष्य किसी का भी छोटा भी हो सकता है मैडम जी, बड़ा भी हो सकता है, मगर उसका जो लक्ष्य प्राप्ति होने पर उसको बहुत खुशी की अनुभूति होती है
2: जी।
6: तो ये भक्ति का भी हो सकता है, कोई सर्विस का भी हो सकता है, कोई सेवा का भी हो सकता है, कोई कार्य जटिल हो और वो संपन्न हो जाए तो जो खुशी महसूस होती है वो उस क्षण में वो सबसे बड़ी खुशी होती है मैडम जी।
2: जी जी जी।
6: और रही बात दूसरा सवाल जो उम्र है
2: जी,
6: और ये कोई जरूरी नहीं है ज्यादा उम्र वाला ही ज्यादा अच्छा सोच सके, लेकिन ज्यादा उम्र वाले के पास अनुभव होता है, उसने दुनिया देखी है और जीवन उनका लंबा हो जाता है, यदि वो सब कुछ अपने आंख नाक कान खोल के और सही रास्ते पे सही कर्म को करता हुआ और चलता है तो वो बहुत अनुभवी और बहुत ही प्रतिभावान हो जाता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है।
2: जी जी जी।
6: और छोटे उम्र में भी कष्ट है वो बहुत आदमी को बहुत अच्छे से सिखाते हैं, जो कभी भूल नहीं सकता है।
2: जी।
6: तो ये हमारा जीवन है मैडम जी, एक चक्कर के माफिक है, कभी सुख कभी दुख।
2: जी।
6: हमारी ऋतुओं के मुताबिक ये आते जाते रहते हैं।
2: जी जी जी।
6: तो ये जो सुख दुख का जो है, ये हम जो भी जो सच्चे दिल से और दूसरे को कष्ट को अपना कष्ट से भी ज्यादा बड़ा महत्व देता है
2: जी,
6: तो वो आदमी जीवन में शायद किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा
2: जी।
6: और जीवन में जो भी कष्ट है उसको अच्छी तरह भली भांति पता रहता है, और वो आदमी उस कष्ट से उबारने के लिए उस जो कष्ट भोग रहा है, कष्ट जिस समय कष्ट में पड़ा हुआ है, जो भवन में जिसकी बेचारे की नैया अटकी हुई है, उसको पार लगाने के लिए वो तन मन धन सब कुछ अर्पण करने की बिल्कुल मैडम जी। और बहुत आदमी ऐसे उदाहरण भी रहे हैं और उन्होंने बहुतों के कष्ट हरण करके और उनको कष्टों से उभारा भी है
2: जी।
6: और ऐसा आदमी जो कष्टों से उभरता है ना मैडम जी, वो आदमी वो उनसे भी बड़ा कष्ट निवारक बनता है
2: जी जी जी।
6: वो कभी दूसरे को इनसे भी बड़ा ज्यादा कष्टों से निकालेगा। ये हमारी संस्कृति और हमारा धर्म, हमारे आचरण, हमारे कर्म बोलते हैं
2: जी,
6: ये सब अच्छे के लिए है मैडम जी। बाकी जिनकी सोच अच्छी नहीं है वो तो पता नहीं मैडम जी क्या क्या जघन्य अपराध कर सकते हैं, उनसे तो पता नहीं कितना सावधान रहने की आवश्यकता है
2: जी। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका भाई सिंह जी।
6: जी मैडम जी, नमस्ते। हाँ जी। राधे राधे।
2: जी नमस्ते, राधे राधे। तो ये थे अभय सिंह जी यादव जयपुर से, और बस इस विषय को यही समाप्त करेंगे। कहने का भाव यही है कि देखिए, कम उम्र वाले भी अनुभवी हो जाते हैं और उम्र का तो तकाजा रहता ही है, इसलिए सलाह लो तो ऐसे लोगों से ही लीजिएगा, और संग करो तो भी ऐसे लोगों का ही करना है। ठीक है, जो अनुभवी है तो वो आपको राह भटकने की सलाह कभी नहीं देंगे। ठीक है, और अब आइए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते, बात कर लेते। हेलो
7: हेलो, बुरा राम बोल रहा हूँ। और से
2: हाँ जी, बुरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
7: मैं अभी बोले तो लगाया फोन भी, अभी जस्ट आया और लगाया, पहला ही लगाया, लेकिन मैं बोला मैं ऊर्जा बहन जी को राम राम तो कर दूं।
2: जी जी जी जी। और बढ़िया।
7: और बहन जी, हेलो।
2: हाँ जी हाँ जी, मैं सुन रही हूँ, बढ़िया हूँ।
7: क्या विषय, क्या कुछ मेरे को तो मालूम नहीं।
2: विषय तो अब समाप्त हो गया। प्रश्न है आज का कि अगर आपका मूड ऑफ होता है, मान लीजिए मूड खराब है, तो क्या चीज आपको मिलती है कि तुरंत ही आपका मूड अच्छा हो जाता है, उस समय आप क्या चाहते हैं?
7: तो प्रश्न अच्छा है
2: जी।
7: मेरा तो ऐसा है कि बोलने का मतलब, अभी मैं कभी भी घर में या किसी बात से लेन देन से थोड़ा उदास बैठता हूँ, और मेरे बच्चा और लड़कियों के वो मेरे लड़कियों के बच्चियां मेरे पास में आती है, कुछ ना कुछ टॉपिक सुना के हूँ, वो सब पूरा भूल जाता है, उसमें मेरी खुशी हो जाती है।
2: अच्छा,
7: टेंशन नोट है। बच्चे भी कहते हैं दादाजी बोले तो थोड़ा उदास बैठे तो वो कोई ना कोई मना करके मेरे को वो चीज भुलवा देते हैं।
2: अच्छा। चलिए,
7: तो वो मेरे कल सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चे लोग का कुछ भी जब हुआ तो ले जाना या लाना करना कुछ भी है तो बच्चे लोग मेरे आगे कर देते।
2: अच्छा अच्छा,
7: मतलब उदास देखना नहीं चाहते बच्चे को।
2: जी जी, तो बच्चों की बात सुन के आप खुश हो जाते हैं।
7: सबसे बड़ी खुशी है
2: जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत आभार बुरा राम जी।
7: ओके सर।
2: तो ये थे बुरा राम जी ओर से, और आइए यहाँ पर अब एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आज एक और मेहमान हमारे बीच पधार चुके हैं, सविता जी कुलकर्णी जो पत्रकार है, आप नागपुर महाराष्ट्र से पधारे हैं और आज की रेसिपी आप देंगे। आप क्या पसंद करते हैं? पूरनपोली पसंद है, महाराष्ट्र की फेवरेट डिश है ये, जो महाराष्ट्र में ही नहीं हम राजस्थान में भी बनाएंगे, तो गुजरात में भी बनाएंगे, तो पूरे भारत देश में बनाएंगे। ठीक है, तो पूरनपोली सीखेंगे। पूरनपोली वैसे तो कितनी बार हमने सिखाई भी है, लेकिन भाई जब कहते हैं ना प्रॉपर जो जहाँ की होती है फेमस, फिर वहाँ का तो स्वाद ही अलग ही होगा, थोड़ा तो अलग ही खाने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम सविता जी के द्वारा सुनेंगे। सविता जी बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, आपका ही अपने रेडियो मधुबन में, आपसे पहले भी मिल चुके, हर वर्ष आप आते हैं
1: जी। ओम शांति दी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर से दोबारा मुझे मधुबन में मौका मिला है, और आज तो एक नए विषय के साथ में आपने मुझे बुलाया है यहाँ पर
0: जी।
1: और सभी को ओम शांति, और आपको जो रेसिपी है हम तो बताएंगे। बहुत सुंदर से रेसिपी हमारे यहाँ बनती है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में मतलब ये पूरनपोली यदि ना हो कोई त्योहारों में तो उसका मजा भी नहीं आता।
0: बिल्कुल, जैसे राजस्थान में प्रोग्राम हो और एक प्रोग्राम में एक विधि में दाल बाटी ना हो, चूरमा दाल बाटी, तो वो रसोई जैसे फीकी नजर आएगी। ऐसे महाराष्ट्र में पूरनपोली तो बननी ही है।
1: जी हाँ बिल्कुल, अभी आने वाले दो दिन के बाद मैंने, कल तो हमारे यहाँ पे किसानों का बहुत बड़ा त्योहार होता है पूरे महाराष्ट्र में, और साथ में बैल पोला जो कहते हैं, तो जो जीवित बैल होते हैं जो खेत में जोए जाते हैं, तो उनका कल त्योहार है। कल उनकी पूजा अर्चना की जाती है, काफी उनकी साज सज्जा की जाती है, क्योंकि साल में एक बार आने वाला त्योहार जो है वो किसान भाई का है, और किसान भाई हमारे राजा होते हैं, तो इन राजाओं का त्योहार जो है तो कल बड़े पैमाने पर पूरे महाराष्ट्र में मनाते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो इन एडवांस में आपको मुबारकबाद इस त्योहार की
1: जी।
0: और अब आप पूरनपोली सिखा दीजिए, क्या सामग्री लेनी पड़ेगी इसमें?
1: जी आपको तो पहले बता दें कि पोले का जो त्योहार होता है ना दी, तो उसमें कैसे होता है ना कि पोला पोली तो जब आता है तो पूरनपोली के सिवा ये त्योहार नहीं मनाया जाता है, और इसमें काफ़ी प्रकार के वैसे तो मोदक भी पूरन से ही बनाते हैं, जैसे कि अभी गणेश जी आने वाले
0: जी।
1: तो आपको पूरन के बारे में बता दे कि पूरन का ऐसा होता है ना कि चना दाल जो होती है, तो चना दाल जो होती है ना तो उसको पकाया जाता है, तो उसको मतलब एक जैसे कि जैसा फैमिली है आपके पास में, तो एक गिलास चना दाल आप ले सकते हैं, और फैमिली के हिसाब से चार जन है पांच जन है तो एक से डेढ़ गिलास आप चना दाल को उबाले, साथ में उबालने के बाद में उसमें इलायची लौंग ये आप उसमें डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार, हल्का सा नमक आप उसमें डाल सकते हैं, और साथ में जो जायफल होता है उसे भी आप पकाते समय उसको ऐड कर सकते हैं कि जिससे उसका स्वाद बन सके,
0: उसकी खुशबू फैल जाए उसमें।
1: जी हाँ, उससे खुशबू भी फैलती है, साथ में जैसे कि आपको थोड़ा बहुत कुछ मेवा डालना है, मतलब कोई चारोली हो या खोबरा किस हो, तो इलायची तो उसको स्वादानुसार तो डालते ही, बहुत सारे लोग छोटी इलायची भी डालते हैं, और कोई जिसे ज्यादा पसंद हो मतलब ज्यादा स्वाद के लिए हो तो उसमें बड़ी इलायची भी डाली जाती है, तो इस प्रकार से उसको उबाल कर उसको पीसा जाता है, और पीसने के बाद में जो सांचा होता है कोई मतलब इसमें बनाते हैं क्या कहते हैं
0: चकले
1: पर बनाते हैं, और कोई सांचे पर भी बनाते हैं, तो इसका जो स्वाद होता है ना बहुत सुंदर होता है, और उसको जब बेल कर भी कोई पूरन बनाते हैं रोटी की तरह, और कोई सांचे में जब बनाते हैं तो उसको तला जाता है घी में
0: जी,
1: और घी में तल कर, कोई घी में तलता है तो कोई तेल में, तो दोनों भी चीज का आप इस्तेमाल, जैसे तेल हो या घी, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही स्वाद लगता है जब आप खाएंगे, तो इसे दूध के साथ खा सकते हैं, और जो दाल का जो पानी निकलता है जो सार निकलता है, तो इसे भी जैसा घी का तड़का दीजिएगा और थोड़ा शक्कर मिलाएगा, क्योंकि जो पूरन होता है उसमें भी शक्कर भी मिलाई जाती है, जितना दाल आप लेंगे उतना ही उसमें शक्कर भी आप मिला सकते हैं, तो इसका स्वाद मीठा जो होता है, तो इसको बिना शुगर फ्री तो नहीं होता है, ये शुगर के साथ में ही इसे बनाया जाता है, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी मधुबन के और गुजरात के भाई हैं जहाँ भी हमें सुन रहे हैं, तो वो हम चाहते हैं कि इस त्यौहार में सब लोग अपने अपने घर पर जरूर इस त्यौहार को आनंद ले और बनाए।
0: जी जी, देखिए पहले एक समय था जब लोग कुछ बनाने से पहले सोचते थे, त्योहार के दिन ही वो चीज बनती थी। आजकल तो क्या है कि बच्चे डिमांड करते तुरंत चीज बना देते हैं। माताएं भी मतलब रेसिपी बहुत बढ़ चुकी है और हर दिन त्योहार की तरह ही मनाते हैं, तो अच्छी बात है। पूरन पोली बहुत ही स्वादिष्ट आपने सीख ली है, बस ये सात्विक रेसिपी है, आप अपने इष्ट देव को भोग लगा करके खाइएगा। और सविता जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर आपने रेसिपी सिखाई इसके लिए, थैंक यू।
1: थैंक यू दी, ओम शांति।
0: हाँ जी, तो ये थे सविता जी कुलकर्णी महाराष्ट्र नागपुर से। और आइए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: मैं हूं वजाहत हबीबुल्ला और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, तो आप इन नुस्खों को आजमा सकते हैं। इमली कैसे कौन सी बीमारी ठीक करती है, फायदा करती है, वो आपने जाना है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई है और आपने रेसिपी में जो पूरन पोली सीखा है जरूर बना करके खाइएगा, ठीक है। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। आपके जीवन में ऐसी कौन सी छोटी सी खुशी है जो आपके मूड को तुरंत ही अच्छा कर देती है? तो अलका जी कप्पासन से आपने जवाब दिया है, भगवान की सेवा में कुछ चीज की जरूरत हो और अचानक में मिल जाए तो मन को बड़ी खुशी मिलती है। दीपा जी कपासन से आपने जवाब दिया है, मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी राहत और खुशी तब होती है जब अतीत में मेरे साथ गलत बर्ताव करने वाले किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है और वह दिल से पछतावा करता है, तब बड़ी खुशी मिलती है। फिर सुरेश भाई जोटाना से आपने जवाब दिया है कि रेडियो मधुबन सुनता हूँ तो तुरंत ही मूड अच्छा हो जाता है। फिर जगदीश भाई जुड़े हैं इडर से, आपने कहा कि इमली मिल जाए तो तुरंत ही मूड अच्छा हो जाता है। सुभाष भाई महाराष्ट्र से आपने भी कहा है कि रेडियो सुनता हूँ रेडियो मधुबन तो तुरंत ही मूड अच्छा हो जाता है। कंचन भाई मंडाली से आपने कहा है कि बस जब मूड खराब होता है भजन गाता हूँ तो तुरंत ही मूड अच्छा हो जाता है। सुरेश भाई धानेराव से आपने भी कहा कि रेडियो मधुबन सुनने से मूड तुरंत अच्छा हो जाता है। अभय सिंह जी यादव आपने जवाब दिया है कि आप जो लक्ष्य चाहते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो मूड अच्छा हो जाता है। भूरा राम जी और से जुड़े हैं आप।

भावनाएं स्वयं को पहले दुर्गति की ओर ले जाती है, फिर दूसरों को, अतः शुभ भावना से स्वयं वह दूसरों की सदगति में ले जाए। और अब इंदु जी आपको प्यारा सा गीत सुनाएंगे, आप लेंगे गीत का आनंद और हमें देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से पहेली के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही आत्म मंथन से शांति, सच्चाई और समाधान निकलते हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: कल राठौड़ परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर था, क्योंकि घर में दामाद पुराना बना है, घर जमाई नया। हमारे देश में दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है, जिसकी आदत सूरजमल को भी थी। लेकिन अब जो इन्हीं घर वालों के साथ रहने लगे हैं, तो क्या वैसी ही इज्जत मिलेगी? या चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आज राठौड़ परिवार में, जहां परिवार के बच्चे भी कैंप से लौट कर आ गए हैं और अब जमाई जी यानी सूरजमल जी लगे हुए हैं नई जॉब की तलाश में।
1: अरे सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में?
2: जाह्नवी क्या है ये? तुम लोग कल ही अपने कैंपस से वापस आए हो, इसका मतलब यह नहीं कि घर को ही कैंपस बना दो।
3: दादी लेकिन मैं ये गाना नहीं बजा रही हूँ, दिस सॉन्ग डज नॉट हैज रिज।
1: चीज? क्या चीज नहीं है? अब गाने में कौन सी चीज आ गई?
3: चीज नहीं दादी, रिज रिज।
4: अरे बेटा हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं, तुम लोग हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो या चलो अंग्रेजी ही बोलो, पर ये कौन सी एलियन भाषा बोलते रहते हो?
3: पापा प्लीज डोंट बी सो बेसिक।
1: अरे ये कैसी अंग्रेजी है, पटर पटर करती रहती है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता।
5: दादी जाह्नवी के कहने का मतलब है कि उसे ये गाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने ये गाना नहीं बजाया है।
1: तो कौन बजा रहा है ये गाना? जिसने मेरे सर में दर्द कर दिया है।
5: दादी चलिए चल के कमरे में देख लेते हैं।
6: चांदनी क्यों फंसा रही है वीरू को?
5: कुछ नहीं होगा, देखती जा।
4: ये लीजिए, ये तो वीर जी है। अरे सर गाना बंद करेंगे आप? वीर वीर।
7: अरे किसने मेरा गाना बंद किया?
4: मैंने किया, कोई आपत्ति है आपको?
7: अरे बड़े बड़े चाचू आप, अच्छा किया गाना बंद कर दिया। किसने चलाया था ये गाना?
3: तुमने।
7: हाँ वो बड़े चाचू वो रॉकिंग गाना है, तो मैं तो बस ग्रूव कर रहा था।
4: सुबह सुबह इतना जोर से गाना चलाया है, घर के बाकी लोगों के बारे में भी सोचा कर, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं।
1: हाँ तो इसमें क्या हो गया, गाना ही तो चलाया है। आजा मेरा पोता, मेरा लाडला बच्चा, सुन तू कर वो क्या कहते हैं, घूम घूम घूम तू कर।
3: घूम नहीं दादी, ग्रू।
1: अरे वो ही तो कह रही हूँ मैं। अरे हाँ वही वही। अरे करने दो बेचारे को, क्या सुबह सुबह उसको परेशान करने में लग रहे हो सारे।
4: माँ आपके ही सर में दर्द हो रहा था ना?
1: देख वीरेंद्र तू नहीं समझेगा, क्योंकि तेरी तो दो दो बेटियां हैं। अरे लड़कों को ऐसे नहीं रखा जाता मीन में एक निकाल के, आखिर एक लौता चिराग है हमारे घर का, समझा?
5: और हम क्या है दादी?
0: इस सवाल का जवाब है किसी के पास? पोते को टोको नहीं रोको नहीं, और पोती को? वैसे अंबिका देवी राठौर शुरू से बेटों पर प्राण न्योछावर करती आई हैं। हालांकि बेटियों को भी शिक्षित तो किया, लेकिन उनकी शिक्षा को अहम नहीं समझा। हम सोचते हैं कि एक लड़की को स्कूल भेज तो रहे हैं, इससे ज्यादा बराबरी क्या होगी, लेकिन रोज किसी न किसी तरीके से बेटी को दिखा ही देते हैं कि बेटा ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं राठौड़ परिवार की सुबह और कौन से रंग दिखाती है।
8: राजकुमारी, ओ राजकुमारी कहाँ मर गई?
9: जिंदा हूँ जेठानी जी, बस आई।
8: राजकुमारी आज ना मेरे पैर में बड़ा दर्द है, आज नाश्ता तू ही बना लेना।
9: जेठानी जी नाश्ता तो बन गया।
8: अच्छा आज नाश्ता इतनी जल्दी बन गया?
9: जल्दी कहाँ जेठानी जी, 8 बज रहे हैं।
8: अरे 8 बज गए, ये बाकी के 7 और 6 कहाँ गए?
10: बड़ी भाभी वो आए थे घर पे, राजकुमारी भाभी के हाथ का नाश्ता खाकर चले गए।
8: हे राम मजाक मत कर किशन, मुझे तो डर लगता है इस कम उम्र में ये मुझे क्या हो रहा है।
10: कम उम्र?
11: हाँ हाँ हाँ भाभी जी, आप तो बस हमसे थोड़ी सी बड़ी हैं, आपको क्या होगा।
8: हाँ वो तो है, वैसे इस घर के नए जमाईसा कहाँ हैं? अभी तक अपने कमरे में पड़े सो रहे हैं का?
10: बड़ी भाभी ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी और जीजू साथ में वॉक करने गए हैं, आते ही होंगे।
11: लो आ गए वो।
12: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो घर आ गया, चलो जमाई सा घर में। हाँ, चलो
13: हाँ, बढ़िया
12: चलो,
13: बढ़िया
12: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
13: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक।
12: वाह आज तो मजा आ गया, सूरजमल बेटा बड़ा समझदार, आज तो पेड़ पौधों के बारे में बड़ी जानकारी दी इसने।
14: हाँ बस इन्हीं खेती बाड़ी के चक्कर में लगे रहते हैं ये, इनको बताइए पापा कि पेड़ पौधे पर पैसे नहीं लगते।
12: शांति, थोड़ा शांति से बात किया कर बेटा।
14: कैसे शांत रहूं पापा, एक हफ्ता निकलने को आया है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, ना नौकरी ढूंढते हैं ना कोई।
13: पापा आप शांति को कुछ मत कहिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
12: शांति चुप हो जा, जमाई साहब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही बैठिए।
14: क्यों पापा, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आपको पता है मैं सुबह ही एक पोस्ट देख रही थी, मेरी क्लास में जो सुषमा थी ना वो अपने पति के साथ वेकेशन पे लंदन गई है और मैं यहाँ।
15: शांति तू ये क्या बोले जा रही है बहन, एक पोस्ट की वजह से तू जीजा जी को इतना सुना रही है?
14: रागिनी दीदी आपकी शादी नहीं हुई है ना, अभी आप नहीं समझेंगी।
15: मैं इतना तो समझती हूँ शांति कि पैसे कमाना सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी नहीं होती है, जब रिश्ता बराबरी का है तो जिम्मेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन अब मुझे कहनी ही पड़ेगी, ये जो तू रोज पार्टी करती है इधर उधर जाती है, इससे अच्छा है जाके कुछ काम कर पैसे कमा।
14: हाँ जैसे आप कमा रही हैं अपने एनजीओ से, कितना कमाती हैं दीदी आप बताइए जरा।
12: तुम दोनों बस करो, घर के मुद्दों पर बैठ के सम्मान के साथ बात की जाती है, फैसले लिए जाते हैं, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी, गुस्से में एक दूसरे को जो भी कह रहे हो वह शब्द जैसे बाण से छूटे तीर है, वापस नहीं आएंगे। इसलिए जाओ सब हाथ धोकर आओ, पहले सब नाश्ता करेंगे, दिमाग ठंडा होगा तब फिर बात होगी।
11: राजकुमारी जाओ सबके लिए नाश्ता लगा दो।
9: हाँ जाती हूँ।
11: कहाँ जा रही हो, किचन उधर है?
9: वो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है।
11: इतना क्या स्पेशल बना दिया जो किचन के बाहर है?
9: अरे आप बस देखते जाइए, शौक ही हो जाएंगे आप।
11: इसी बात का तो डर है।
9: हा? कुछ कहा आपने?
11: नहीं नहीं बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दी होगी तुमको।
9: तो फिर मैं आती हूँ, मैं कीड़े मकोड़े लेकर आऊँ आपके चूहों के लिए।
11: क्या?
9: अरे मजाक कर रही थी।
11: राजकुमारी घर में वैसे ही कितना टेंशन है और तुम।
10: भैया इस टेंशन में किसी को तो मजाक करने दीजिए, वरना हमारी बहनें तो नदी में आए तूफान की तरह सब तहस नहस कर देंगी।
11: चल ठीक है अब नाश्ता करने चले।
0: वैसे क्या लगता है आपको, राजकुमारी जी ने आज ऐसा क्या बनाया होगा जो किचन की दीवारों में नहीं समा पाया, और भगवत जी ने तो कह दिया कि जो बात होगी अब नाश्ते के बाद होगी, लेकिन नाश्ता करने के बाद

0: ये सब लोग बोलने लायक बचेंगे भी या नहीं। वैसे जिस गुस्से में सब लोग गए हैं उससे तो लगता है कि नाश्ते की टेबल पर भी हंगामा होने वाला है। लेकिन ये राठौड़ परिवार है जी, यहाँ की हवाओं का किसे पता कब किस दिशा में बहने लगे। वैसे भगवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, गुस्से में कही बात का बाद में कितना भी दुख हो, पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे इस घर के शेर शायर किशन कल रात अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिख रहे थे, जाते जाते आप भी सुनते जाइए।
1: रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं, नीचे से सहारा भी देती हैं, ऊपर से उजाला भी देती हैं, अकेली हो तो बस ये धूल बनती हैं। रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं।
2: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: घर ऑन एयर पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। सही में अपना गांव और अपना अंचल को कभी नहीं भूल पाते, जिस गांव और जिस अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुँचे हैं। आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल के मिलित सहयोग से बच्चों का हुनर को, प्रतिभा को, भाव और भावना को, दिल का भावना को, हृदय का तार, संगीत का माध्यम से, कविता का माध्यम से, भजन के माध्यम से आपका पास प्रस्तुत रखेंगे। आज हम पहुंचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल जो कि रेबुदर ब्लॉक में आता है। तो हमारे इस कार्यक्रम को सजाने के लिए पहला प्रस्तुति एक समूह गीत भजन के रूप में माँ सरस्वती को याद करते हुए हमारा इस कार्यक्रम को सजाएंगे पायल, रुचिता, काजल, नीता और विटल। चलिए विटल रेडी है, सभी बच्चे रेडी? ओके, सभी हमारा विद्यार्थी टैलेंट बच्चे कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे। पहला प्रस्तुति प्रार्थना के रूप में शुरू हो जाइए। शुरू।
1: सुप्रभातम, मेरा नाम पायल कुंवर देवड़ा, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ, राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल की अध्ययन करती हूँ और मैं मकावल की निवासी हूँ।
2: नमस्कार, मैं रुचिता चौधरी, क्लास 12 की छात्रा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल से।
3: सुप्रभात, मैं काजल कुंवर, कक्षा 12 की छात्रा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल में पढ़ती हूँ।
4: सुप्रभात, मैं नीता कुमार, कक्षा 12 से छात्रा।
5: नमस्कार, मैं बीतल सोलंकी, कक्षा 12 से, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल में पढ़ती हूँ।

बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपना अपना नाम और कौन सा क्लास में और कहां से आते वो चीज रखें और इस तरह कार्यक्रम को सजाए। आज उनको एक मंच मिला जिस मंच का माध्यम से अपना भाव और भावना को प्रकट किए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और बच्चों का साथ हम भी बच्चे बन के अपना भाव और भावना को जन जन तक पहुंचा रहे रेडियो मधुबन कार्यक्रम के माध्यम से। एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आज हमें खुशी है बच्चों को एक स्टेज जो आवश्यकता था आज दे रहे हैं और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ भावर जी उपस्थित है। तो सुनेंगे एक गीत के रूप में कबीर जी का वाणी को लेकर, तो अपना नाम और कहां से वो भी अपना बताएंगे, है ना? ओके शुरू करें।
1: नमस्कार, मैं भवनलाल क्लास 12 से गांव मारो राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय का छात्र हूं। भाग भला रे जनगर संत पदारे, कर कृपा भव सागर तारे। भाग भला रे जनगर

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: तो ब्रेक का बाद हम मिल रहे हैं और भावर जी को सुन रहे थे। इसका पहले बहुत सारे बच्चे अपना भावना को रेडियो कार्यक्रम में सजा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए मंजू भी उपस्थित है। मंजू अपना भावना को भी प्रकट करेंगे, उसका दिल का आभार, और खासकर परिवार में माँ और बाप का कितना महत्व है हम भलीभांति जानते हैं। नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं और प्रथम शिक्षिका माँ को कहते हैं, पहला गुरु माता पिता है। तो आज माँ का महिमा जितना भी कहे कम ही होगा, और इस गीत का माध्यम से मंजू अपना भाव को प्रकट कर रहे हैं और डेडिकेटेड मदर के लिए, अबाउट मदर, मदर क्या होता है और मदर जो चीज है उसको कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनको कोई कंपेयर नहीं कर सकते, इतना वो महत्व है रखता है। तो लीजिए मंजू से प्रस्तुति।
1: मेरा नाम मंजू कुमारी है और मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल में पढ़ती हूँ और भीमबोड़ा से आती हूँ। तो

क्या खूब, क्या खूब, कितना दिल का भाव को माँ का प्रति जो उद्गार है, जो प्यार है, जो स्नेह है, और मेरा माँ, मेरी माँ, सही में माँ में इतना स्नेह ममत्व रहता है, प्यार रहता है, कभी नहीं भूल पाते, हमेशा याद रहता है माँ का प्यार, स्नेह, दुलार। तो इस गीत के माध्यम से सुनाए, जो भी माँ सुन रहे हैं, इस तरह बच्चों का भाव को जरूर अंग लिभाई और उनको आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगाकर

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला कड़ी में भावर और सुमित उपस्थित हैं, तो दोनों इस कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाएंगे और क्या प्रस्तुत करेंगे सुनेंगे। और सद्गुरु, गुरु तो बहुत होते हैं लेकिन सद्गुरु एक होते हैं, तो सद्गुरु का महिमा, सद्गुरु का मार्गदर्शन आज इस गीत के माध्यम से सुनेंगे और दोनों सजाने के लिए उपस्थित हैं। तो रेडी भावर और सुमित, ओके शुरू करिए।
2: मेरा नाम भवर है, मैं क्लास 12 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल का छात्र हूँ।
3: हेलो, मेरा नाम है सुमित, मैं क्लास 12 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल से, और हम गा रहे भजन।
4: वारी जावा रे बलिहारी जावा रे ओ,
5: वाली जावा रे बलिहारी जावा रे ओ,
4: मारा सतगुरु आंगन आया रे, मैं वारी जावा रे,
5: मारा सतगुरु आंगन

0: रे
1: मारा सतगुरु आंगण आया रे में वारी जावा रे
0: मारा सतगुरु आंगण आया रे में मारी जावा रे
1: सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया रे
0: सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया रे
1: मारी निर्मल हो गई काया मैं वारी ही जावा रे
0: मारी निर्मल हो गई काया मैं मारी जावा रे
1: वारी जावा रे बलिहारी जावा रे ओ
0: वारी जावा रे बलिहारी जावा रे ओ
1: मारा सतगुरु आंगण आया रे में वारी जावा रे
0: मारा सतगुरु आंगण आया रे में मारी जावा रे
1: सतगुरु दर्शन दीदा मारा भागे उजे कर किनारे सतगुरु दर्शन दीदा मारा भागे उजे कर किना मारा कर्म भरब सब सीना में वारी जावा रे।

0: જાવા રે, મારા સતગુરુ આંગણાયા રે, મેં વારી જાવા રે, મારા દાતા ઓંગણાયા રે, મેં વારી જાવા રે.
1: क्या बात क्या बात, बहुत सुंदर प्रस्तुति. और सद्गुरु का महिमा और सद्गुरु का मार्गदर्शन, सद्गुरु को कभी हम बोल नहीं पाएंगे. और इस गीत का माध्यम से अपना भावना को दिल से, हृदय से, प्यार से प्रकट किए. तो आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खास कर मारोल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की आवाज, जो कि रेवदर तहसील में मारोल ग्राम पंचायत

ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाव और पूरा नाम जैसे काम उस तरह करते सबका साथ मिलजुल कर काम कर सुमित भी उनको साथ दिया और भवर बोला मैं और एक प्रस्तुति सुनाऊंगा तो सुनाइए और वो भी मारवाड़ी में है ना। तो आज कंटिन्यू कर रहा है एक का बाद एक गीत रेडी भवर ओके शुरू करिए।
1: शरणा में आया घना सुख पाया रे, शरणा में आया घना रे सुख पाया, मिट गया जमड़ो राजाया उगुरा सा मारा, सरने आप वाली आया। ओम न मारो काग स्वरूपी, ओम न मारो काग स्वरूपी, अवगुण बोध कराया उगुरा सा मारा,

0: ता खयार साधु भाई सरने आप वाली आया। सतगुरु बाण शबद रावाया, सतगुरु बाण शबद रारेवाया, नुरता निशान गुराया रे साधु भाई सरने आप वाली आया। शरणों में आया गणारे सुख पाया, शरणों में आया गणारे सुख पाया, मिट गया जमर डोरा दाया वो पूरा सा मारा शरणे आप वाली आया। अब मारी सूरता लागी राम से, तारो तार मिलाया रे साधु भाई सरने आप वाली आया। आटो पोर अमरी सबर से, आटो पोर अमरी सबर से, पीवत प्यास बुझाया रे साधु भाई सरने आप वाली आया। शरणों में आया गणारे सुख पाया, शरणों में आया गणारे सुख पाया, मिट गया जमर डोरा दाया वो बुरा सा मारा शरणे आप वाली आया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बावर को। और एक गीत प्रस्तुत करने के लिए हाथ उठा रहे तो लीजिए और एक प्रस्तुति।
0: सावरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखू कंकु पत्र, ये कंकु पतरी है थारी प्रेम पतरी, कंकु पतरी है थारी प्रेम पतरी, बनवारी थारा गिरधारी थारा नाम हजार, कैसे लिखू कंकु पतरी। कोई केवे राधा जीरो, कोई केवे रुक्मण जीरो, कोई केवे राधा जीरो, कोई केवे रुक्मण जीरो, कोई केवे नंद जीरो लाल, कैसे लिखू कंकु पतरी। बनवारी थारा गिरधारी थारा नाम हजार, कैसे लिखू कंकु पतरी, हे कंकु पतरी है थारी प्रेम पतरी, कंकु पतरी है थारी प्रेम पतरी, बनवारी थारा नाम हजार, कैसे लिखू कंकु पतरी। अरे कोई कहवे बंसी वालो, कोई कहवे मुरली वालो, कोई कहवे बंसी वालो, कोई कहवे मुरली वालो, कोई कहवे घाया रोगवाल, कैसे लिखू कंकु पतरी। सावरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखू कंकु पतरी, हे कंकु पतरी है थारी प्रेम पतरी, हे कंकु पतरी है थारी प्रेम पतरी, बनवारी थारा नाम हजार, कैसे लिखू कंकु पतरी। अरे कोई कहवे मथुरा वालो, कोई कहवे गोकुल वालो, कोई कहवे मथुरा वालो, कोई कहवे गोकुल वालो, कोई कहवे द्वार कोरोनाथ, कैसे लिखू कंकु पतरी। सावरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखू कंकु पतरी, हे कंकु पतरी है थारी प्रेम पतरी, बनवारी थारा सावरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखू कंकु पतरी।
1: बहुत खूब सुंदर प्रस्तुति के लिए। और एक का बाद एक प्रस्तुति दे रहे हैं, उनके पास जो खजाना है बारी बारी दे रहा है और रेडियो मधुबन कार्यक्रम को सजा रहे हैं और रेडियो मधुबन ऐसे कार्यक्रम को लेकर आपका पास पहुंचता है। तो आपका गांव और अंचल में भी कुछ इस तरह कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415, यानी 9414151415।

मंजिले एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वही मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, मेरे साथी मेरे कदमों के है निशान।

மகரின் खुद पे डाले तो नजर हालातों से हार कर।

चलिए, बच्चों का आवाज, विद्यार्थियों का आवाज, विद्यार्थी विकास में और खासकर इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे मनरेगा हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे प्रशासन गांव के संघ हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, सभी ने इस कार्यक्रम को सजाते हैं क्योंकि अपना रेडियो है, थेमर रेडियो, थेमर वास्ते। चलिए, इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ मंजू को पुनः स्वागत करते हैं। मंजू का पास खजाना है, एक का बाद एक खजाना लुटा रहे हैं और इस कार्यक्रम का माध्यम से उनको जब मौका मिला पहला बार तो क्यों छुपे, तो अपना जो चीज है वो छपा रहे हैं रेडियो कार्यक्रम का माध्यम से, गीत का माध्यम से, भाव का माध्यम से, और एक प्रस्तुति मंजू देगी और बारी बारी उनका पास एक नहीं दो नहीं तीन तीन गीत उसके पास है, तो आज उसको रेडियो कार्यक्रम में सुनाएंगे, सुनाएगी ना। ओके मंजू रेडी? ओके शुरू करिए।

0: कली चली।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। वंस मोर कहते हुए राणा प्रताप को कौन भूल पाएगा। तो राणा प्रताप जो कि मेवाड़ी का आन बान शान है और चेतक उनका दोस्त, चेतक जो हर्ष है घोड़ा, उनके लिए कितना वफादारी किया और अंतिम समय तक उनका साथ दिए, तो उसका ऊपर एक गीत सुनाएगी, है ना। तो रेडी शुरू।

0: मंजू जी।
1: कितना प्रशंसा करे मंजू को तो कम ही होगा। और मंजू नाम जैसे उनका माँ बाप को भी धन्यवाद देते हैं, और इसका सब प्रेरणा जिससे लिए उन सभी को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनका बिना ये कार्यक्रम अधूरा होता है। और उनका अंदर में जो विशेषता है, जो प्रतिभा है, आज रेडियो कार्यक्रम का माध्यम से सुना रहे हैं। और रेडियो मधुबन इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, सभी से मिलते हैं। हमारा विद्यार्थी विकास में विद्यार्थियों का अंदर में जो भावना है, जो दिल का उद्गार है, इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से संपर्क रखते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रहा है और सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। एक को देखकर एक भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे। सभी ने अपना बात को सुंदर रूप में प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और कोई प्रस्तुत नहीं थे, लेकिन अचानक में एवर रेडी रहते हैं बच्चे और जब मिलता है मौका वो मौका का फायदा लेते हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए पुनः पायल उपस्थित है। पायल, आज जैसे मंजू ने माँ का ऊपर में अपना भाव को गीत के माध्यम से प्रकट किए, तो पायल भी कम नहीं है। वो बाप का ऊपर में अबाउट फादर, पिताजी क्या होता है घर में, मुखिया तो है ही है, इसका साथ साथ बच्चों के लिए, माओ के लिए, भाई बहन के लिए पिताजी का जो दायित्व, जो मुखिया, जो मर्द होते हैं घर के, तो कितना संभालते वो चीज रखेगी, है ना पायल? ओके, तो पिताजी तो नाम सुनते हैं तो एक शक्ति मिलता है और सभी चीज अपना लगता है। तो सुनाइए पायल।
2: सुप्रभात, मैं पायल कुंवर, राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल से कक्षा 12 की छात्रा। आदरणीय पिताजी, आज मैं आपके बारे में कुछ कहने के लिए मंच पर हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किन शब्दों में अपनी भावना व्यक्त करूँ। पापा, आप मेरे लिए केवल मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे सबसे पहले हीरो, मेरे मार्गदर्शन और मेरी पूरी दुनिया है। मैंने बचपन से देखा है आपने अपनी खुशियों का त्याग कर हमारी हर जरूरत को पूरा किया है। धूप हो या छांव हो, आपने हमेशा हमारे सिर पर मजबूत डाल बनकर पहरा दिया है। दुनिया के लिए आप भले ही साधारण इंसान होंगे, लेकिन मेरे लिए आज वो शख्स है जिसने मुझे उड़ान सिखाया, और आपकी डांट में भी प्यार छिपा होता है। मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे पिताजी हैं। अंत में मैं आपके लिए दो पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की छुरी बिंदी सुहाग और है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद पायल को सुने, और सुनने का पश्चात मंजू भी अपना हाथ को इशारा से उठा रही है। तो मंजू भी एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेगी शायद। ओके, चलिए दोनों इस कार्यक्रम को सजा रहे और ये अंतिम प्रस्तुति होगी। तो लीजिए मंजू से और एक प्रस्तुति।
3: मेरा नाम मंजू कुमारी है और मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ और निम्बोड़ा की निवासी हूँ।

0: हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नाम का साथ, चाहे ग्रुप में पायल, रुचिता, काजल, नीता, विठल, भावर, मंजू और सभी को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया, और संस्था का संस्था प्रधान सभी स्टाफ को भी धन्यवाद देते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये तक खास कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारोल विद्यार्थियों का दिल का बात, मन की बात और अपना भावना को आज प्रकट किए, पुनः धन्यवाद का पात्र है, सबको धन्यवाद देते हैं। तो आप सबसे लेते हैं इजाजत, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: feel each other, because we're so much in the outer world, the stimulant world, coming through these sense organs. We just believe our senses. We have forgotten to believe that inner intuition.
1: We have forgotten to also give time and listen to what the other person is speaking.
0: Feeling is a little far away. Yes.
1: There are good listeners. We go to people.
0: Yes.
1: You find it's very difficult to find a good listener.
0: Mm.
1: By the time you want to say something, his mind will be somewhere else and he'll start speaking something else.
0: Absolutely.
1: To you. And I have just spoken one line and I wanted to tell him something, one line or two lines. And by the time I finish it, it was not even registered.
0: So the more we silence our mind through meditation and through removing these complexities, we will be able to feel the intention of people. And when we start feeling the intention of people, our hurt will start reducing, because we will be able to understand that the intention is not this. Maybe the word used at that time was something which caused pain here. Intention is beautiful, especially in close relationships. Intention are never negative. Parent can never have a negative intention for a child. And yet, a lot of the parent's words seem to be creating hurt for the child. So let's establish the relationships based on intention, feelings, and vibrations.
1: If my intention is good, then why will my child say that I'm hurt?
0: Because he's taking your words.
1: Seriously?
0: And using those... No, seriously, yes. But he's taking your words and using them to create hurt, because your words are not what he thought you would say.
1: Beyond expectations.
0: Beyond expectations.
1: Thank you very much, sister.
0: Om Shanti.
1: Om Shanti.
2: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 0999974455.
3: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता, संदीप त्रिवेदी का नमस्कार स्वीकार करें। दोस्तों, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। हमराही दरअसल एक कार्यक्रम तो है ही, साथ ही साथ एक अवसर होता है किसी अनूठी अनसुनी कहानी से रूबरू होने का भी। तो इस कहानी में अलग अलग किरदार होते हैं, अलग अलग घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं में समाज के लिए छुपा हुआ कोई ना कोई संदेश होता है, और उसी संदेश को आप सब तक पहुंचाने का उद्देश्य रेडियो मधुबन का है। और इसीलिए आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बार बार आप सब सुनते रहे हैं कि समाज बहुत भेदभावों से भरा हुआ होता है, समाज बहुत सारे अंतर विरोधों से भरा हुआ होता है। जहां समाज में अनेक अनेक अच्छाइयां भी हैं, तो कुछ समाज में बुराइयां भी होती हैं, और वो बुराइयां हम सब महसूस करते हैं, लेकिन उनको दूर करने के लिए प्रयास शायद बहुत कम लोग होते हैं जो करते हैं। और रेडियो मधुबन एक ऐसा ही प्रयास कर रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि समाज में किसी तरह का अंतर ना हो, किसी तरह समाज में भेदभाव ना हो, समाज किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक अक्षमता के आधार पर उसको परेशान ना करे, बल्कि समाज में सभी को बराबरी का दर्जा मिले। तो दोस्तों, आज भी हमराही की हम ऐसी ही एक अनूठी और अनोखी कहानी लेकर के आप सबके बीच में हाजिर हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे दो विशेष मेहमान भी हमारे साथ आ गए हैं। अब मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए आप सब का परिचय करवाता हूं। हमारे साथ आज अहमदाबाद गुजरात से जुड़ रहे हैं श्रीमान सुदीप त्रिपाठी जी और उनकी श्रीमती जी रमा त्रिपाठी मैम।
4: नमस्कार।
5: मेरा भी नमस्कार।
3: जी जी जी जी, आप दोनों का रेडियो मधुबन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो सुदीप सर, हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप अपनी दिव्यांगता के बारे में बताएं और अपने जीवन की जो भी घटनाएं गतिविधियां रही हैं थोड़ा सा उनके बारे में बताएं।
4: यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में हमारी जन्मभूमि रही है। वहां से मेरे पिताजी जब मेरा ये आंखों का प्रॉब्लम हुआ और करीब करीब हम एक काश्तकार थे, करीब 150-200 बीघा के काश्तकार थे हम लोग भी
5: जी।
4: लेकिन आंखों के इलाज में बहुत सारा पैसा ऐसे खर्च हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी अहमदाबाद आए और थोड़े दिन बाद हमें भी बुला लिया और उसके बाद हमारी कर्मभूमि वो अहमदाबाद ही बन गई। और मेरे जो ताऊ थे वो एक कवि थे और हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारी जो हमारे यहाँ यूपी में चकबंदी होती है
5: जी,
4: भूमि सुधार कार्यक्रम बोला जाता है।
5: हाँ जी।
4: उसमें सभी की भूमि यानी जमा कर ली जाती है, उसके बाद सभी को अलग अलग भूमि अलॉट की जाती है।
5: अच्छा।
4: तो हमारी भूमि अधिग्रहित तो हुई लेकिन बाद में लोगों ने पैसा खिला के अपनी अच्छी भूमि ले ली और हमें एकदम खराब भूमि दे दी गई। हमारे पास तो पैसे थे नहीं। तो वहाँ एक शर्मा जी एसीओ हुआ करते थे, उनके विरोध में उन्होंने एक अच्छी सी कविता लिखी कि जिसका बच्चा किया कैंसर नए आंखों से अंधा, इलाज में सब कुछ था खोया कौन लगाता कंधा, पैसे के बारे में मिट्टी छांटी वेद कुमार की, सीमा पार हो गई शर्मा जी के भ्रष्टाचार की। तो ये हाँ, ये कविता पूरे अखबारों में छपी और उनके वहां जो एसीओ थे उनका तबादला हुआ
5: जी।
4: के बाद डिप्टी डायरेक्टर ऑफ चकबंदी जो थे, डीडीसी बोले जाते थे, दीपक राय बृद्ध, कि यहाँ हमारा केस चलना था, हमारे पास तो पैसे थे नहीं, तो केस तो हमने दायर कर दिया। उसके बाद हमें रोज वहां जाना पड़ता, करीब 20-22 कोस हम लोग साइकिल पे जाते और वो मिल नहीं पाते, 8-1 दिन हो गए। तो फिर मेरे ताऊ ने एक कविता लिखी थी और वो मुझे गाने के लिए बोला था, न्याय के लिए
5: जी।
4: तो उन्होंने लिखा कि न्याय कर दो या कह दो कि बेटा

0: का साधन यानी लेने का, क्रय का साधन हमारा नहीं है। जैसे ही मैंने इतना बोला तो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आपके साथ न्याय होगा, आप परेशान होइए नहीं। और जब भी केस चला तो उन्होंने फिर न्याय किया, उन्होंने कहा हाँ वही वही वही ब्लाइंड बच्चा, तो उतना उनको याद आया जब केस चला तो, और हमें उस तरीके से न्याय मिला। तो एक यानी कविता में भी ये ताकत होती है कि वो एक सुधार की ओर समाज को मोड़ सके, ऐसा मैंने महसूस किया। और उसके बाद तो हमारी कर्मभूमि गुजरात रही है
1: जी।
0: यहाँ गुजरात में शिक्षा दीक्षा यानी एम ए बी एड के बाद मैंने स्कॉलरशिप वाला आंदोलन था 92-93 के बाद, यानी जो स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट को एडॉप्ट करनी थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, स्टेट गवर्नमेंट को एडॉप्ट करनी थी, तो गुजरात गवर्नमेंट ने 2 साल एडॉप्ट नहीं की। तो हमने 1994 में एक आंदोलन छेड़ा और हम सब साथ में लड़े, और 41 दिनों के बाद हमें गवर्नमेंट से ये एश्योरेंस मिला कि भाई आपकी जो स्कॉलरशिप है, जितने भी दिव्यांग जनों की स्कॉलरशिप है वो बहाल की जाती है। और उसके बाद मैंने अपने व्यवसाय में भी हाथ आजमाया, अपने पुस्तैनी व्यवसाय गेस्ट हाउस का बिजनेस था, करीब 1999 तक वो मैंने अपनाया। उसके पहले मैं STD PCO भी चलाता रहा, और लेकिन गेस्ट हाउस के व्यवसाय में मुझे एक दिन एक बात क्लिक हुई कि ये पैसा वगैरह तो ठीक है, लेकिन हमारा हमारे दिमाग का इसमें कोई ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है, हम जो कुछ पढ़े हैं उसका इसमें कुछ उपयोग नहीं हो रहा। और ऐसा आदमी कभी भी फिक जा सकता है, कभी भी उसकी उपादेयता खत्म हो जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी साल फिर मैंने एजुकेशन में टीचर्स ट्रेनिंग फॉर द ब्लाइंड का डिप्लोमा किया, और बाद में मैं अपने जहां पढ़ाता हूं वहां मुझे तुरंत उसी साल जॉब भी मिल गई। ये बातें हैं,
1: बड़ी दिलचस्प है आपकी कहानी त्रिपाठी जी। और कहीं ना कहीं जो कहा जाता है ना एक कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो आपके साथ तो पूरी तरह से मतलब घटित हुआ,
0: अनुभवी तक की बात हो गई वो।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके ताऊ जी का नाम क्या हुआ करता था?
0: वो उसके बारे में भी उन्होंने लिखा था कि भी जनपद इटावा के अंदर मंदना तिवारियों का छोटा सा ग्राम है, बाबा दीनानाथ पिता हरि नारायण वेदों में रही ललित ललाम है, और कृष्ण गोपाल नाम तरुण उपनाम है, ऐसा
1: क्या बात,
0: तरुण उपनाम से वो कायम लिखा करते थे।
1: तो उनकी कविताओं का प्रभाव समाज पर पड़ा, सरकार पर पड़ा, और आपकी समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन उनकी लेखनी का थोड़ा बहुत प्रभाव आप पर भी पड़ा, कुछ आपने भी बाद में सोचा हो?
0: हाँ, मैंने भी कुछ कुछ लिखना प्रारंभ किया है, कभी कभी इतना
1: आगे लेकिन सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि रमा जी को सुनना भी हमारे लिए बहुत जरूरी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत उत्सुक है कब से।
1: इंतजार करवा रहे हैं उनको। तो रमा मैम, हमारे सुनने वालों को आप भी अपने बारे में बताएं।
2: हमारे घर में हम 6 बहनें और एक भाई है, तो मैं, मुझसे छोटी सिर्फ एक ही बहन है, बाकी सब मुझसे बड़े हैं। तो मेरे फादर को स्टार्टिंग में सब लोग मतलब घर के जो उनसे 3-4 बड़े भाई हैं वो ऐसा कहते थे कि पहले मेरे फादर फौज आर्मी में गए, वहां बोला यहाँ तुम नहीं चल पाओगे, वहाँ के जो भी ऑफिसर्स थे, क्योंकि मेरे पापा ही पढ़े हैं और कोई लोग पढ़े नहीं है उनके फैमिली में, भाई ताऊ जी, एक ताऊ जी और पढ़े थे जिनकी डेथ हो गई, बाकी और कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो उनसे तो सब वहाँ खुश थे, लेकिन बाकी और जो लोग गए थे उन्होंने ये कहा कि फिर घर में कौन देखेगा, इसलिए वो उनको वहां से छुड़ा दिया गया। खेती देखो, फिर के खेती तुम नहीं कर पाओगे, तुमने तो पढ़ाई में ध्यान दिया है, अब तुम दुकान देखो, गांव में कोई दुकान खुलवा दी, फिर ऐसे करके फिर वो दुकान भी उन लोगों ने नहीं ज्यादा चलने दी जी। फिर उन्होंने खुद ही सोचा, वो 1978 में मेरे पापा दिल्ली आ गए
1: जी,
2: तो वहां पे उन्होंने लीफ प्रिंटिंग का काम सीखा, जो प्लास्टिक की जो पाउडर और आईने और लिपस्टिक या मतलब जितनी भी जो कंपनियां होती हैं उनके अंदर जो कलर्स किए जाते हैं
1: जी,
2: वो मेरे पापा का काम, फिर उन्होंने ये काम करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरा जन्म हुआ और मैं तो बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। जब मैं 6 महीने की थी तब से लेके निकले मुझे मेरे मदर फादर कि किसी तरीके से अगर इसकी आंखें ठीक हो जाएं, कहीं ले गए जाने कलकत्ता, कभी एम्स में, कभी तब इतने साधन भी नहीं थे कहाँ निकलना जाना, इतना ट्रेन जो भी इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन वो लोग जो बताते हैं यही कि 6 महीने की थी तब से मुझे लेके निकले थे। फिर वहीं दिल्ली में रहने लगे तो हमें वो राष्ट्रीय बिरजानंद स्कूल है दिल्ली में जो ब्लाइंड गर्ल्स का, वहां पे मैं मेरी पढ़ाई हुई। गर्ल्स ज्यादा थी तो उसके बाद हमारे स्कूल के 2 पार्ट हो गए, एक विकासपुरी और एक राष्ट्रीय बिरजानंद
1: जी।
2: तो लेकिन हालांकि दोनों राष्ट्रीय बिरजानंद के ही भाग है, एक सेकेंडरी स्कूल हो जाता है जो विकासपुरी है और एक खाली राष्ट्रीय बिरजानंद अन कन्या के नाम से जाना जाता है। तो वहां मेरी 12th तक पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं AICV से 4 साल वहां पे रह के मैंने 3 साल कॉलेज गोइंग हॉस्टल में रही। उसके बाद 1 साल का गैप रहा मेरा घर पे, फिर वापस वहीं से मैंने स्टेनो किया।
1: अच्छा, तो आपने आगे MA वगैरह नहीं किया?
2: नहीं, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करके और थोड़े दिन घर पे रही, उसके बाद फिर स्टेनो का कोर्स किया और 2005 में मेरी फरक्का NTPC में जॉब लगी जो बंगाल में 28 किलोमीटर पहले आता है सिर्फ बांग्लादेश से।
1: जी जी जी।
2: तो वहाँ कौन जाएगा इतना दूर, क्योंकि 1500 किलोमीटर दिल्ली से दूर।
1: ठीक बात है।
2: स्वीकृति पत्र में मेरी स्वीकृति दे दी थी तो मुझे तो जाना ही था। फिर बाद में जब घर में पता चला ये बंगाल में है, इतना दूर है, तो मेरे फादर ने बोला कोई बात नहीं कितना भी दूर हो, लेकिन तुम्हारी जॉब लगी है, हमारा मकसद यही था कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ।
1: क्या
2: तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मेरे फादर मेरे साथ रहे 6 महीने तक, उसके बाद फिर मदर आई, फिर फादर, ऐसे करके वहां 3 साल मैंने निकाले। फिर 2008 में मैं गुजरात में आई।
1: अच्छा, तो जॉब के पहले विवाह हो गया था आपका?
2: जी नहीं सर, 2008 में शादी हुई थी।
1: 2008 में शादी। अच्छा, शादी के समय आप गुजरात आए?
2: जी, शादी के 4 महीने बाद मैं गुजरात।
1: 4 महीने। आपके परिवार में किसी और को है दृष्टि बाधा की समस्या?
2: सर, मेरे परिवार में जैसे मैंने बताया हम तो बहने भाई जो भी है, हमारे पूरे 6 घर हैं। मेरे जो दादा थे या परदादा जो
1: जी,
2: भाई 6 भाई, उनका फिर पूरा उन सब में लेके बुआओं के कहीं के भी ले लीजिए, घर में किसी को भी अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: अच्छा सुधीर सर, ये आपकी आंखों की जो प्रॉब्लम है, जब आप कितने साल के थे तब हुई आपको?
0: ऐसा बताया जाता है कि जब मेरी आंखें को खराब हुई, यानी जन्म से मेरी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी।
1: अच्छा।
0: और करीब 2.5-3 साल के आसपास कुछ कभी ऐसा एक दिन देखा गया कि मुझे कुछ भी चीज लेने को बोला जाता, जिस दिशा में वो चीज होती उससे मैं विरुद्ध जाता, या कुछ ऐसा यानी जिससे तारतम्य न बन पाए कोई वस्तु का और मेरा, ऐसा कुछ बिहेवियर मेरा नजर आया
1: जी।
0: और फिर बाद में वहां के लोकल डॉक्टर के पास ले गए तो ऐसा कुछ आंख में सफेद सफेद जैसा दिख रहा था। उसके बाद हम कानपुर वगैरह गए तो वहां पता चला कि ये आंखों का कैंसर, इसको रेटिना ब्लास्टोमा बोलते हैं। तो 6-6 महीने हेलट में वहां सीतापुर बिताए हैं। यहाँ की सिविल हॉस्पिटल में मेरी दूसरी आंख निकाली गई, यानी मेरी आईबॉल भी नहीं है जो।
1: अच्छा।
0: हाँ जी, दोनों आंखों में आई बॉल नहीं है। दूसरी आंख जब निकाल दी तब उन्होंने बोला था अब ये भय मुक्त है, लेकिन अब नजर इनको जीवन भर नहीं मिल पाएगी
1: जी।
0: तो वो करीब 7-8 साल के आसपास की घटना है।
1: तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई सुदीप सर?
0: नहीं, मेरी शिक्षा दीक्षा वगैरह सब गुजरात में ही हुई। हम लोग गुजरात में, यानी मैं, मेरा भाई, मेरी एक छोटी बहन, वो सभी गुजरात में ही पले बड़े हुए।
1: तो और आपके परिवार में तो नहीं किसी और को ये समस्या आंखों की?
0: मम्मी की दृष्टि थोड़ी कमजोर है एक आंखों से, बाकी वैसे तो किसी को वैसी समस्या नहीं है। ये बताते हैं कि ये कहीं उस्तैनी ही हो सकता है, ये रेटिना ब्लास्टोमा पहले की 7 पीढ़ियों में कहीं भी हो सकता है।
1: अच्छा।
0: तो कहाँ रहा होगा पता नहीं है,
1: पता नहीं। राइट, हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं, मुद्दे की बात पर भी आ जाते हैं। जरा आप दोनों का मिलने का जो कार्यक्रम है वो किस तरह हुआ,
0: उसके बारे में रमा जी पहले बताएंगे फिर मैं थोड़ा बताऊंगा।
1: चलिए चलिए। जी जी जी।
2: तो बंगाल में जॉब कर रहे थे
1: जी,
2: तो उस टाइम में मेरे भाई ने मतलब घर में ये कहा था कि इस तरीके से कैसे रहना चलेगा, मतलब अपने खुद के पैरों पे खड़ी हो चुकी है, तो अब समय तो है कि अब हम इसका अच्छी जगह पे रिश्ता कर दिया जाए।
1: जी,
2: मैंने यही कहा था अपने घर में कि कहीं भी करें, लेकिन पहले तो सोचती थी कि मैं फुल्ली साइड से करूंगी या जो भी,
1: तो
2: लेकिन बाद में जब हम विंध्याचल ड्रेस देने गए थे तो वहां सबने बोला भूल के भी ये भूल मत कर, क्योंकि कोई तकलीफ पड़े तुझे बाद में पछताना पड़े कि तू जैसा सोचती है ऐसा नहीं होगा या तुम अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है तो फिर अब ब्लाइंड से करूंगी पार्शली। तो मुझे
1: आपके साथियों ने ये समझाया आपको?
2: जी सर।
1: आपको विवाह आपके जैसे व्यक्ति से ही करना चाहिए?
2: नहीं हाँ, मतलब उनका यही था पार्शली से क्यों नहीं सोचती। अच्छा। नहीं, मैंने कहा या तो फुल्ली साइटेड से करूंगी या फुल्ली ब्लाइंड से करूंगी।
1: गुड।
2: लेकिन मैं पार्शली से मैं नहीं करूंगी।
1: जी जी जी।
2: तो फिर यही बात रही, तो मैंने कहा ठीक है अगर नॉर्मल से ऐसा है, कहीं किसी का एक्सपीरियंस रहा होगा हमें नहीं पता अगर,
1: जी जी
2: तो ठीक है तो फिर मैं ब्लाइंड से ही करूंगी, मैं पार्शली से तो नहीं करूंगी।
1: जी,
2: क्योंकि होता है ना कि थोड़ा बहुत किसी ना किसी चीज में ऐसा, जब नॉर्मल से उन्होंने मना कर दिया तो फिर मन में ये आ जाता है। तो फिर उसके बाद मेरे जो दीदी है बड़ी दीदी, उनके घर के पास मेरी सास की भतीजी रहती है, तो उन्होंने पहले भी शायद कभी बात की होगी मुझे नहीं पता चली, उस टाइम में फिर यही बात चली थी कि हम मेरा एक भाई है अहमदाबाद में है, तो आप उनसे बात कर लीजिए अगर आपकी बहन को ब्लाइंड से शादी करनी है। तो फिर मेरे फादर आए और एक ही दिन देखा, उन्होंने स्कूल भी देखने गए थे इनका, और फिर उन्हें ठीक लगे तो फिर बस उन्होंने तय कर दिया। फिर मेरी उस टाइम तक मुझे कुछ पता नहीं था, फिर अगले 7-8 दिन के बाद हम लोगों ने, वो भी इन्होंने फोन नहीं किया था, मुझे ही फोन करना पड़ा। मैंने ऐसा है कौन जिससे
1: ये पहल आपको करनी पड़ी है।
2: जी सर, मतलब मेरे देवर की शादी पहले हो चुकी है जो अब नहीं है, और वो एक्सपायरी भी मेरे आने से पहले ही हो चुके हैं, लेकिन उनका परिवार है, बच्चे हैं, सब है, क्योंकि काफी जल्दी उनकी शादी हो गई थी।
1: तो
2: मेरे देवरानी ने मुझसे एक बार बात की थी कि नंबर वाला नंबर ले लो या दे दो कुछ, तब इन्होंने नंबर बताया था तो मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने कहा खाली नंबर ले लिया याद कर लिया बस। लेकिन फिर 7 दिन तक कोई फोन ही किसी का नहीं आया। अब मैंने कहा जब नंबर मुझे दिया ही है तो मैं एक बार फोन तो करके देखूं ये है कौन जिससे मेरी बात चल रही है। फिर मैंने
1: आपके मामले में तो ये हुआ कि भाई तय पहले हुआ और बातचीत आप लोगों की बाद में हुई, क्यों?
2: जी सर।
1: अच्छा, तो आपका तो ये विचार चल रहा था साइटेड का और फिर आपके दोस्तों ने आपको समझाया, लेकिन इस बीच में आपके घर वाले विवाह के लिए तो सोच रहे थे, लेकिन किससे करना है उस बारे में घर वालों की क्या राय थी, आपके मम्मी पापा या भाई वगैरह?
2: घर वालों की तो एक राय ये थी कि मेरी दीदी एक बहुत हमारे घर के पास ही रहती है और उनके एक देवर है थे उस टाइम में, तो अभी भी है, उन्होंने ये सोचा था कि उनसे इसका विवाह कर दिया जाए।
1: अच्छा, वो साइटेड थे?
2: जी हाँ, वो साइटेड है और मतलब देखने भी काफी अच्छे हैं।
1: जी जी जी।
2: तो फिर लेकिन मैंने कहा जब, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई तो है नहीं ना, 10th है जो भी है
1: बस,
2: तो मेरे को फिर इस चीज से क्या फायदा जब मुझे काम अपने करवाने दूसरों के पास जाना पड़े।
1: जी।
2: कुछ भी लिखाई की पढ़ाई की जो भी है।
1: जी।
2: तो फिर बात तो वही आई जाए, मैंने कहा अच्छा तो मुझे ब्लाइंड से पढ़े लिखे ब्लाइंड से करूंगी तो काम मेरे सही हर तरीके से होते रहेंगे और हम लोग एक दूसरे को समझ सकेंगे। तो फिर इसलिए मेरे मदर फादर ने मेरी बात सुन ली और फादर आए देख के गए।
1: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि फादर ने हमेशा आगे बढ़ कर के आपकी सभी,
0: इन्होंने भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं,
1: इच्छाओं का सम्मान किया और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके आप भी आगे बढ़े।
2: जी, जब स्कूल जाने लगी थी स्टार्टिंग में जब छोटी थी, बहुत 3 या 4 साल की थी उसी टाइम में, हॉस्टल मतलब तभी स्कूल ले गए थे, तो मेरी मम्मी तो रो रो के बीमार हो गई थी, नहीं जाने दूंगी।
1: अच्छा।
2: फिर मेरे फादर ने ये कहा कि अगर इसे हम नहीं जाने देंगे तो घर में कब तक ये रहेगी और सब बहन भाई पढ़ेंगे, ये फिर बाद में बोलेगी इनको पढ़ाया मुझे नहीं पढ़ाया,
1: बिल्कुल,
2: और फिर ये अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो पाएगी, किसके भरोसे रहेगी।
1: ठीक बात है।
2: फिर भी मेरी मम्मी बीमार पड़ गई तो मेरे भैया के साथ मम्मी को गाँव भेजा, उसके बाद मेरे फादर मुझे स्कूल में छोड़ के आए।
1: हाँ, क्योंकि देखेंगी नहीं तो फिर ज्यादा चिंता नहीं होगी।
2: जी
1: जी जी जी, वाह, बहुत फादर आपके बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं,
2: जी सर, उन्होंने सबको, मतलब हम बहने छह हैं, मैंने आपको बताया जी, मैं पहले ही बताया, दो बहनों को छोड़ के बाकी सबने ग्रेजुएशन कम्प्लीट की।
1: वाह बहुत खूब।
0: ये बोलते हैं ना, कोई हसीना पहले कदम बढ़ाती नहीं। ये उनकी क्या मजबूरी है वही जाने, वो मजबूरी दिल पे ना हो तो। लेकिन 7 दिन बाद हमारी बातचीत शुरू हुई, फिर तो हमें वो 900 रुपया 1100 रुपये के अनलिमिटेड वाले वाउचर करवाने पड़ते थे और काफी रात को,
1: वही था जी।
0: हाँ, दिन 2:30, 3 बजे तक बातचीत होती थी
1: जी।
0: और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन पहले यानी मेरा मेरी सोच थी,
1: लेकिन त्रिपाठी जी प्रश्न तो ये उठता है ना कि आपने क्यों नहीं पहल की ये
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न जरूर होना चाहिए, हर एक किसी को ये प्रश्न जरूर होना चाहिए। मैं पहले ऐसा सोचता था कि मुझे खुद को शादी नहीं करनी, और मैं यानी थोड़ी धार्मिक प्रकृति में उस तरफ मेरा ज्यादा ध्यान था, खूब काफी। अच्छा। मैं हाँ तो उसी में हाँ, लेकिन इतना तय था, मैं शादी करने की ज्यादा सोचता नहीं था। लेकिन यदि जब यदि करनी ही होगी तो मैं किसी साइटेड से या पार्शली ब्लाइंड से यानी आंशिक दृष्टि वालों से किसी से मैं शादी नहीं करूँ, यदि करनी है तो मैं ब्लाइंड से ही शादी करूँ, इतना जरूर तय था।
1: वाह, ये
0: तो जब इन्होंने प्रयास शुरू किया तो
1: बनने लगा कि आधा काम तो वही खत्म हो जाता है कि हम ये तय कर लें कि हमें निर्णय क्या लेना है।
0: हाँ नहीं बिल्कुल, वो मैं जब से मैंने अपनी यानी सोच संभाली है तब से मैं बिल्कुल स्पष्ट था कि मुझे किसी ब्लाइंड के तरीके से साथीदार मिले तो मुझे कुछ ज्यादा खुशी होगी। तो उस तरीके से मुझे मिला, तो बीच में थोड़ा नोकझोंक भी हो गई थी एक बार, यानी मैंने पूरा ये बताया कि भाई मेरा निर्णय ये है, मैं वैसे तो शादी तो करना ही नहीं चाहता
1: जी।
0: तो फिर इन्होंने कुछ यानी हमारी 4-5 दिन बीच में बात नहीं हुई
1: जी,
0: फिर फोन से बात शुरू हुई और हम लोग फिर यानी ये करीब अगस्त सितंबर की बात है, और फिर अंततोगत्वा फरवरी में हमारी शादी हुई। काफी खुशी हुई। करीब 2100 किलोमीटर का फासला था, मैं अहमदाबाद में था, वो फरक्का थी, तो शादी करते ही फिर वो फरक्का पहुंच गई।
1: लेकिन पड़ गया फिर फरक्का का
0: बिल्कुल लेकिन इन्होंने भगवान की भी पिटाई नहीं छोड़ी। एक दिन यानी हम लोग यानी प्रयास करने लगे कि इनका गुजरात में ट्रांसफर करवाया जाए, तो काफी राजनीतिक वगैरह सब प्रयास करने थे। एक दिन इन्होंने गणेश जी की मूर्ति को काफी पीटा कि अब तो मैं घर से बाहर रख दूंगी, मेरा कुछ काम
1: नहीं।
0: और यानी काकतालीय न्याय हुआ
1: जी जी,
0: और
1: जी, क्या बात है। वाह,
0: दिन हाँ दूसरे ही दिन
1: सुनवाई तुरंत हुई,
0: उनके ट्रांसफर की खबर उनको पहुंच गई।
1: विवाह से पूर्व, विवाह से पूर्व मैम ने जैसा कि बताया कि उनके एक रिलेटिव ने आपके बारे में बताया, ऐसे ही आपके जहन में और आपके परिवार के जहन में भी तो तैयारियां तो चली रही होंगी।
0: हाँ यानी पापा जी आए थे तो उन्होंने काफी दिल्ली से आए थे यहाँ, उन्होंने काफी जांच पड़ताल की थी, मेरे स्कूल तक आए थे, कहाँ से
1: आप लोगों ने, मेरा मतलब ये था कि आपने भी कह
0: नहीं, अच्छा उसके हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोग यानी एक तो क्या है कि ब्राह्मण है और रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज है हमारा, तो दूसरी जगह तो हम लोग कुछ क्योंकि ब्लाइंड में उस यानी समकक्ष मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है
1: जी।
0: तो सब लोग प्रयास में थे लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। फिर जब ये बात रिश्ता तय हुआ फिर हम लोग गए और ऐसे ही देखने गए थे इनको, रमा जी के घर वहां गए थे, और उनको ऐसा था कि आज ही मंगनी वगैरह सब हो जाएगी। हम लोग तो देखने गए थे ऐसे ही, कुछ ऐसी कुछ प्रिपरेशन के साथ नहीं गए थे। और उसके बाद इनको बुलाया पापा ने, वो हमारी पहली यानी मेरी तो मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन मेरे पापा के साथ इनकी मुलाकात हुई 2-1 मिनट की, और उसके बाद चलो ठीक है बहुत अच्छे हैं ऐसा करके वो ऊपर चली गई। तो ऊपर जाके इनको परिवार वालों ने पूछा कि भाई क्या कुछ हुआ, हाँ हाँ ऐसा ऐसी बातचीत हुई थी। तो फिर क्या, फिर मैं चली आई, असमंजस में पड़ गए, क्या हुआ ये, फिर हम लोगों को बताया गया कि आप लोग ऐसे, मेरे पिताजी के पास तो वैसे कुछ था नहीं, तो कुछ उनके पास कैश या वैसे जो भी कुछ था, तो तुरंत ही उनको फिर से नीचे बुलवाया और तुरंत गोद भरवाई गई। शाम को जैसे दिन हमारा रिश्ता तय हुआ और फिर तो सब आगे बढ़ने लगा, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। पहली बार मैंने उनको एक ड्रेस भेंट की थी
1: जी,
0: यहाँ से, यानी मुझे स्कूल के कार्य के लिए कलकत्ता जाना हुआ था और उस टाइम पर वहाँ हड़ताल वगैरह भी हुई थी, तो हम लोग 300 किलोमीटर दूर रह गए थे मिलने से, लेकिन हम शादी से पहले रूबरू में तो नहीं मिल पाए। उसका हमें यानी बहुत उस दिन में बहुत रोया था, ये भी बहुत यानी दुखी थी, हम लोग रात को काफी देर तक उस दिन भी जागे थे, लेकिन हम एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर ही रह गए। शादी के बाद ही वो जो फासला है वो हम दूर कर पाए।
1: जी। अच्छा त्रिपाठी सर, यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में कि आपकी नजर में दो लोगों को विवाह के बारे में सहमत होने के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है?
0: एक तो ये है कि हमारे जो सोच है एक दूसरे की सोच मिलनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: और एक जीने का जज्बा होना चाहिए। मैंने एक चीज देखी है रमा जी में, मैंने बहुत अच्छे थे, उनका जीने का जज्बा बहुत ही जोरदार है। कुछ दो चार ऐसी मैं चीज बताऊं उनको, यानी शॉपिंग का शौक है तो शॉपिंग करने जाती हैं और मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन जो उनके जज्बे हैं, जो उनकी ऐसी यानी जो महत्वाकांक्षाएं हैं बहुत ऊंची हैं, कि एक बार ऐसी है कि मैं खाट पे बिछा बिछा के नोटों को गिनना मैं चाहती हूँ, यानी जितने मेरे पास पैसे आएंगे मुझे एक बार खाट पे बिछा बिछा के वो गिनने।
1: क्या बात है।
0: और उन्होंने जो भी कुछ यानी जो भी कुछ सोचती हैं उसके पीछे पूरी तन्मयता से लग जाती हैं, और वो उनकी आरजू पूरी भी होती है। हम इसी तरीके से, हमारे बच्चा भी नहीं था
1: जी,
0: लेकिन हमने सोचा और अभी हमारा IVF चाइल्ड है, 5 साल का, 5 साल की लड़की।
1: ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई सर, मुझे लगता है बहुत सारे साथियों को भी प्रेरणा मिल सकती है इस बात से जो आपने कहा अभी
0: कि हाँ बिल्कुल,
1: ये के बारे में बहुत सारे लोगों को मतलब पूरी जानकारी तो नहीं ही है एक तो, और दूसरा कहीं ना कहीं डर भी है लोगों के मन में।
0: हाँ, ये क्योंकि इसमें काफी यानी मेडिकली भी बहुत जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल ये सब इलाज बहुत महंगे हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं होती और एक शंका भी रहती है हमारे साथ कुछ धोखा हो जाएगा कुछ के कुछ ऐसा, और यानी अच्छा डॉक्टर नहीं मिला या कोई अच्छी सी प्रोसेस इसमें हम कामयाब ना हो पाए, तो ऐसा भी हो जाता है। कई लोगों को ऐसा भी रहता है कि किसी दूसरे का गर्भ हमारे में रख दिया जाएगा या अदल बदल हो जाएगा,
1: तो ये सबसे बड़ा ये
0: ऊपर पिक्चर भी बहुत बनी है।
1: एक तो सर सबसे बड़ा ये है जो अभी आपने कहा, दूसरा ये भी रहता है कि शायद बच्चा कुछ विकृत हो सकता है जन्म के समय।
0: हाँ,
1: ये भी भावना होती है,
0: वो भावनाएं रहती हैं। और हमारे केस में तो ये भी है कि इनका करीब करीब अभी भी रोज का 160 किलोमीटर का अप डाउन है
1: जी।
0: तो आना जाना सब मिला के वहां का जो गिन लिया जाए तो 360 किलोमीटर का अप डाउन उनका डेली का है, और उसके बाद ये प्रेगनेंसी कंसीव करवाना, ये बहुत ही अपने आप में काबिले तारीफ यानी प्रयास माना जाएगा।
1: वाकई में सर बहुत मतलब जज्बे वाली जो बात आपने कही मैम के बारे में, वो शत प्रतिशत साबित होती है इस घटना से।
0: बिल्कुल, और वो जो ठान लेती हैं वो करती हैं। हाँ, हमारे पास यानी हम एक मंदिर में गए थे, यानी हम लोग क्या करते थे यानी जो
1: जी, मैं चाहूंगा कि एक एक दो दो सेंटेंस में अगर आप IVF के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं तो उनकी बहुत सारी जो गलत फहमियां हैं वो एक तो दूर होंगी और कई लोग मुझे लगता है आपकी इस कहानी को सुनकर के प्रेरित होंगे।
0: IVF ऐसी एक ट्रीटमेंट है कि जिससे कहीं भी यानी स्त्री के ओर से या पुरुष की ओर से कहीं भी जो भी छोटी मोटी कमियां हैं वो चीजें बाईपास हो जाती हैं और जो प्रोसेस है गर्भधारण की वो एक ट्यूब में करवाई जाती है और उसके बाद वो स्त्री के जो गर्भाशय में वो ट्रांसफर कर दिया जाता है।
1: जी जी।
0: तो ये करीब इस प्रकार की प्रोसेस होती है।
1: पूरा प्रोसेस कितने समय का रहता है सर?
0: 15वें दिन के आसपास वो स्त्री बीज निकाले जाते हैं, उनको पुष्ट करने वाले इंजेक्शन वगैरह यानी सब कुछ दिया जाता है,
1: वो सारी ट्रीटमेंट भी उन्हीं दौरान चलती रहती है। जी
0: हाँ, यानी हाँ वो बीज निकाल लिए जाते हैं, ट्यूब में रखे जाते हैं
1: जी।
0: और उसके बाद 5-1 दिन के बाद में जितने भी फर्टिलाइज होते हैं उनको अलग रख दिया जाता है। तो दूसरे महीने यानी पूरे फिर 15वें मासिक से 15 दिन के बाद फिर उनका एक छोटी सी प्रक्रिया करके वो जितने यानी जो गर्भ हैं रहे हैं वो फ्रोजन करवा दिए जाते हैं। सामान्य तौर पर 1 साल तक वो फ्रोजन रखे जाते हैं। उसके बाद यदि आपको ज्यादा फ्रोजन करके रखवाना है यानी 1 या 2 आपने ट्रांसफर करवा लिए और आपके पास शेष रह जाते हैं तो वो आगे जाके भी आप उनको फ्रोजन करे हुए यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये सभी चीज के लिए अलग अलग पैसा वगैरह होता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है कि एक बार हमारा अच्छे 4-5 गर्भ हो गए हैं तो वो 2 या 3 या ऐसे साल के बाद भी ट्रांसफर करवाए जा सकते हैं।
1: और ये पूरी प्रक्रिया सर इसमें खर्च कितना लग जाता है पूरी प्रक्रिया में A to Z में, मोटा मोटा अगर हम कहें अंदाजे से?
0: अधिकतर जगह पर पैकेज है।
1: अच्छा।
0: तो लोग पैकेज के अंदर जाते हैं तो लोगों को 9 से 10 लाख का पैकेज होता है। उसमें 2 ट्रायल 3 ट्रायल 4 ट्रायल ऐसे हम लोग देते हैं। वैसे देखा जाए एक जो सही अच्छे से ट्रायल हो जाए तो करीब 3-3.5 लाख में ये करीब हो जाता है आराम से। स्त्री की 40 साल की उम्र है तब तक ये करा लेना काफी अच्छा माना गया है। उसके बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा यानी रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है।
1: वाकई में सर आज का कार्यक्रम हमारे श्रोता इस IVF की जानकारी के लिए जरूर याद रखेंगे, ऐसी हम रेडियो मधुबन की तरफ से उम्मीद भी करते हैं।
0: एक चीज भी सर मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा
1: जी,
0: हम हमारे स्कूल में भी एक प्रोग्राम रखते हैं हर एक शनिवार को सुबह
1: जी,
0: और विद्यार्थियों से प्रस्तुतियां भी लेते हैं, हम गेस्ट को भी आमंत्रित करते हैं और उस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है शनि मंच। तो उसमें भी विद्यार्थियों को तवज्जो दी जाती है और उनके कार्यक्रम को यानी एक स्टेज आवंटित किया जाता है तो उनका स्टेज फियर भी कम हो सके।
1: बहुत बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। और ये बच्चों में क्रिएटिविटी जितनी डेवलप की जाए वो हमारे बहुत बढ़िया सर। मैं ये कह रहा था कि इस कार्यक्रम को इस जानकारी के लिए हमारे श्रोता तो याद रखेंगे ही। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने सभी बातों को दरकिनार करके ये कदम उठाया और उसमें आप लोग सक्सेसफुल हुए। और बिकॉज आपका जो जुनून है, जो जज्बा है, कहीं ना कहीं उसने भी किसी मेडिसिन से कम असर नहीं किया है, मैं सही कह रहा हूँ?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जज्बा वाली बात तो हो, क्योंकि हम 4 ट्रायल करवा चुके हैं। जो पहले दूसरे ट्रायल में हमें पहले ट्रायल में सफलता मिली थी लेकिन वो काम नहीं आई, बच्चे की धड़कन नहीं आई थी
1: जी।
0: दूसरे में हमें सफलता नहीं मिली, फिर तीसरे में हमारी बच्ची हुई, हमें प्राप्त, हमने हॉस्पिटल चेंज किया, पूरे सभी पूरी प्रोसेस चेंज कर दी और चौथी के लिए हम फिर गए। इस बार हमें आंशिक सफलता मिली, यानी फिर इस बार वही चीज हुई कि धड़कन बच्चे की नहीं आ पाई।
1: अच्छा।
0: लेकिन आज हमारे पास भी एक जरिया है, ईश्वर यानी आप सब की दुआ होगी और ईश्वर की इच्छा होगी तो हमें बच्ची का भाई या बच्ची की बहन प्राप्त हो सके।
1: निश्चित रूप से सर, ये हम सब दुआ करते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न जरूरी बन जाता है मैम के लिए भी, तो केवल एक प्रश्न मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा इस संदर्भ में। रमा मैम, तो एक महिला के नजरिए से, एक महिला की दृष्टि में ये सारी प्रक्रिया कितनी तकलीफ देह रहती है, अगर थोड़ा सा बताएंगे तो?
2: सर तकलीफें तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं जो रोज रोज 2, और किसी किसी की जो बहुत पुराने टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो लोग
1: जी,
2: वो 3-3 इंजेक्शन भी देते हैं जो हमें पहले 2 ट्रायल में नहीं पता थी। इसलिए थर्ड में तो हम खुद वेबसाइट से सर्च कर करके हॉस्पिटल चेंज करके गए थे तो ईश्वर ने हमारी सुनी। तो दो इंजेक्शन कुछ पेट पे देते हैं, एक बैक साइड में देते हैं, तो ये पेन उस टाइम में इतना नहीं पता चलता, लेकिन बाद में जब सर्दियां आती है जो अभी तक भी मुझे होता है, सर्दियों में जैसी हवा चलती है मेरे दोनों पैरों में बहुत दर्द होता है।
1: तो इसका कोई आगे जाकर के कोई समाधान है मैम कि जो बॉडी पेन्स हैं वो कम हो सके?
2: अभी तक तो सर ऐसा कुछ नहीं पता चला, क्योंकि हम जो एक फिजियो तेल है वो मैं लगा लेती हूँ, अच्छा। मुझे ठीक हो जाता है
0: और विटामिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। तो इनके बारे में एक चीज मैं बहुत ही अग्रेसिव होके बताना चाहूंगा सर, कि ये एक इंजेक्शन से भी डरती थी, एक इंजेक्शन लेना भी उनको यानी ना गवारा था, कोई गवारा नहीं होता था। और उस व्यक्ति ने यानी मैं गिन लूं तो एक ट्रायल के करीब करीब 45 से 50 इंजेक्शन लेने होते हैं, तो हमारे तो चार ट्रायल हुए, तो आप यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बहादुरी इन्होंने बाद में दिखाई है।
1: ये सारी बातें भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि प्रक्रिया सुरक्षित है और अच्छी है, टेक्नोलॉजी का भी पूरा उपयोग होता है और आधुनिक तकनीकें बहुत विकसित हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक कुछ तकलीफें भी हो सकती हैं।
2: देखिए सर, पेन अब हम कहते हैं कि इंजेक्शन से दर्द होता है, लेकिन कभी कभी अपने आप भी अगर दर्द होने लगेगा आगे जाके एज में, तो उससे तो ये ठीक है ना कि हम कुछ पाने के लिए कुछ सहन कर रहे हैं।
1: ये बात बिल्कुल सही कही, और अल्टीमेटली परिवार के बारे में सोचना भी हम सबका दायित्व है। तो आपकी एक गुड़िया है मैम, आपने बताया?
2: जी सर।
1: क्या नाम है गुड़िया का?
2: देवांशी।
1: देवांशी, वाह। तो वो एकदम स्वस्थ है बच्ची, बिल्कुल ठीक है।
3: नमस्ते सर।
1: नमस्ते, नमस्ते देवांशी, नमस्ते, कैसे हो?
3: मैं अच्छी हूँ, पर मेरा असली नाम तो वो है दीक्षा।
1: जी, तो बच्ची एकदम खुश है, बच्ची को तो कोई ट्रीटमेंट किसी तरह का नहीं लेना पड़ता इस?
2: जी सर, उसके भी वैसे तो वो ठीक है, कुछ स्टार्टिंग में हमने चेकअप वेकअप करवा लिया।
1: वो तो जरूरी, वो तो चलिए जरूरी है। जी जी जी, ठीक बात है, वो ठीक है।
2: पावर की उसको थोड़ा चश्मा है अभी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: नहीं, वो ठीक है, वो तो मैं तो मेडिकली वैसे पूछ रहा हूँ कि
2: जी।
1: ओके ओके, चलिए ये बहुत अच्छी बात है, और देवांशी का भविष्य बहुत उज्जवल हो ऐसी हम कामना करते हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से।
3: जी, थैंक यू सर।
1: त्रिपाठी सर, एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी शुरू से ही, जब मैंने, मुझे नहीं पता कि रेडियो कार्यक्रम में मुझे ये बात पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए, जब मैम ने कहा, रमा मैम ने, कि आपके छोटे भाई,
0: हाँ जी,
1: उनका कम उम्र में ही देहावसान हो गया।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: और उनका विवाह भी हो गया था।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो आप के परिवार के लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखदायी समय रहा होगा, लेकिन लेकिन पूछना मैं ये चाह रहा था सर कि जो उनकी वाइफ है,
0: हाँ जी,
1: उनके बारे में फिर आगे परिवार में किसी तरह का निर्णय लिया गया, या आपके यहाँ जैसा आपने कहा रूढ़िवादी हमारा ब्राह्मण परिवार है, तो जो है उसको हाँ, स्वीकार करके ही रहा गया
0: जरूर?
1: और कहीं तीसरी बात, किसी मोड़ पर क्या ये बात भी आई इनका विवाह कर दिया जाए?
0: मैं स्वीकार कर लूं ऐसा उनका, वही आप पूछना चाह रहे हैं ना? ऐसा था कि जो मेरी भाई की मिसिस है वो मेरे बारे में अच्छी तरीके से एक तो जानती थी, दूसरी बात ये है कि सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर का संकोचन होने के कारण मेरे भाई को जान गंवानी पड़ी, वो उसकी कुछ आदतें ठीक नहीं थी,
1: अच्छा जी।
0: तो उसके कारण गंवानी पड़ी, तो बच्चे एक शायद 9 साल का था और एक शायद 7 साल का ऐसा था, उसी उम्र में गंवानी पड़ी। लेकिन रूढ़िवादी समाज हमारा होते हुए भी ऑप्शन दिए थे उनको कि भाई, और हम मेरे भाई की जो मिसिस है उनके परिवार को भी बुला के हमने बिठा के पूरी डिस्कशन की थी कि भाई इनको यदि आप दूसरी जगह इनकी शादी करवाना चाहते हैं तो उसमें भी हम खुश हैं, बच्चे लेके जाएं तो भी खुश हैं, और बच्चे हमारे यहाँ छोड़ जाएं तो भी हम खुश हैं, और सभी परिस्थितियों में हमें खुशी होगी, हम यथाशक्ति हमारी भी मदद भी करेंगे उनकी शादी दूसरी जगह करवाने में। लेकिन वो कोई पक्ष उसमें राजी नहीं हुआ, और अंततोगत्वा हाँ, हमारे यहाँ वो है और काफी अच्छे तरीके से हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है जिनका इनको मलाल रहेगा कि यानी मेरे छोटे भाई की मिसेज से ये, मैं बड़ा हूँ, बड़े आने के बावजूद उनको वो सम्मान जो बड़े का सम्मान होना चाहिए वो रमा जी को नहीं मिल पाया, वो एक कसक जो है वो भी शायद आपके दिमाग में प्रश्न रहा हो ये पूछने के
1: जी,
0: वो कसक एक है कि मुझे वो अमुक जो सम्मान मिलना चाहिए
1: क्योंकि
0: वो सम्मान
1: दृष्टिबाधित होने की वजह से
0: दृष्टिबाधित होने की वजह से ही वो सम्मान नहीं मिल पाया, वो हमें कबूल करना होगा, मुझे कबूल करना होगा, मैंने प्रयास भी किए लेकिन वो सम्मान भी नहीं, उन्हें जो तरीके से चाहिए वो नहीं।
1: हाँ, हाँ, बराबरी का जो जो हम कार्यक्रम में भी जिसकी बात करते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं मिल पाया, वो उन्होंने यानी भाई की मिसेस ने उतने तक तो स्वीकार नहीं ही किया, तो ये बात भी है वो अपनी जगह है।
1: और मेरा प्रश्न वो भी था सर कि कहीं उनका देहावसान आपके विवाह से पहले हुआ था?
0: हाँ बिल्कुल, मेरे विवाह से 3 साल
1: आपके
0: पहले।
1: बारे में भी कहीं बातचीत हुई उनसे इस बारे में?
0: नहीं, वो ऐसी कभी नहीं,
1: ऐसी परिस्थिति नहीं आई कभी,
0: ऐसी परिस्थिति नहीं आई क्योंकि वो मैं बहुत ही फर्म था ना, मैंने बताया कि मैं वो शख्स हूँ सर कि मैंने मेरी ससुराल में मैं पहली बार गया था जब इनको देखने के लिए हम लोग गए थे
1: जी जी,
0: तो वहां जाके मैंने 2 घंटे सुंदरकांड किया था शायद यहाँ किसी को बहुत अजीब लगे,
1: मतलब आप वही मिलने गए हैं लड़की से और वहां जाके सुंदर कांड कर रहे हैं
0: जी तो उससे शायद आप अंदाजे लगा पाएंगे वो जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं
1: जी,
0: तो मैं मेरे
1: किसी की हिम्मत नहीं हुई ये बात पूछने की आपसे
0: बिल्कुल
1: वरना रमा जी का क्या होता फिर है
0: नहीं, हम बहुत खुश हैं, हम एक दूसरे से मिलके बहुत खुश हैं, 14 साल हमारे कहां खेलते कूदते बीत गए, हर एक चीज में मुझे साथ दिया है, सहकार दिया है, नोकझोंक होती रहती है, ऐसा नहीं है।
1: ये बात भी बहुत जरूरी है जो विवाह वाला प्रश्न था उसके लिए कि दोनों के विचार दोनों के ख्यालात सब एक साथ मिलने चाहिए।
0: नहीं, हमारा पुश्तैनी काफी कुछ है लेकिन करीब विवाह होने के 3-4 महीने के बाद से ही हम लोग और उसके यानी इतनी फैसिलिटी हमने कुटुंब की कुछ परिवार की यूज की ही नहीं, हम अपने पैरों पे खड़े हैं, जितना भी सब किया है हमने अपने पैरों पे किया है, तो वो भी हमारे लिए एक यानी मिसाल मैं तो कह सकता हूँ, किसी के लिए भी हो सकती है, हमने अपने पैरों पे घर से कुछ भी लिए बिना अपना पूरा आशियाना बसाया है और हम अपनी जिंदगी जी रहे।
1: बहुत बढ़िया, तो कार्यक्रम तो लगभग अब अंतिम पड़ाव पर है लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आप दोनों के साथ में, आप दोनों की जो आपसी समझ आपसी तालमेल वो लाजवाब किसी के लिए भी सीखने के लिए बहुत जरूरी है।
0: हमारे मैंने ऐसा देखा है सर के जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनकी यानी दोनों यानी पति पत्नी ब्लाइंड है तो उनकी समझ काफी अच्छी होती है और उनके बच्चों की परवरिश भी काफी अच्छी होती है, ऐसा मैंने यानी ये मेरा दर्शन है, उसका शायद मैंने कोई सर्वे तो नहीं किया लेकिन काफी कुछ ऐसा थोड़ा जो अनुभव किया है तो वो हमारे बारे में भी उतना ही सटीक बैठता है, तो हम दूसरे को इतना यानी मेरे किसी भी चीज के बारे में हम दोनों इतनी जानकारी मेरे बारे में वो उनके बारे में मैं, कि कोई भी फोन आ जाए या आप किसी कोई भी फोन कर दे और एक या दूसरा आदमी उठा ले तो वही उतनी ही शिद्दत से आंसर मिलेगा सामने वाले को जितनी शिद्दत से मैं उनके बारे में देना चाहूंगा या वो मेरे बारे में, तो उतनी ही शिद्दत से वो आंसर मिलेगा, इतनी समझ हमारी।
1: क्या बात, बहुत खूब। रमा मैम
2: जी,
1: आपसे भी प्रश्न रहेगा कि आप कितना खुश हैं
2: सर? खुश हैं
1: भाई, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही आप भी बेबाकी से उत्तर देती हैं अपनी बात का
2: ये तो मतलब सभी कहते हैं मैं फराका में थी तो मेरे यहाँ सर मतलब जो हमारे साथ एचआर में है वो सब ये कहते थे कि हम सवाल पूछे पूरा करें उससे पहले रमा जी के होठों में जवाब आ मैंने कहा सर ऐसे मत बोलिए, मुझे पता नहीं अगर आपको कुछ किसी को कुछ गलत लगे, नहीं गलत कुछ नहीं होता लेकिन आप एकदम स्पष्ट जवाब दे देती हैं।
1: जी जी जी जी जी जी, तो कुल मिलाकर के आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं?
2: हाँ सर मैं संतुष्ट हूँ।
1: वाह बहुत खूब, और चलते चलते हमारे सुनने वालों को रमा जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस मंच पर?
0: वो 90s के गीत बहुत पसंद करते हैं, तो शायद गीत के रूप में भी आप जवाब।
1: हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। दो लाइन गुनगुना दीजिए, आपको त्रिपाठी जी की भी इच्छा है, त्रिपाठी जी की भी इच्छा है।
2: तो फिर वो वही गाना, उनको तो वो एक पुराना गाना गाने तो छोड़ देते हैं
1: जी।
2: लेकिन मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं कि हम इसी को अपना आगे चल के इसी के साथ हमें अपना जीवन बिताना है या जो
1: जी,
2: तो उसके साथ मैं तो ये समझती हूँ कि फिर मिलने के जो जो तरीके तो नहीं कह सकती, लेकिन जितना ज्यादा हम मिलते हैं ना, उतना ज्यादा ना मिले तो अच्छा है, मैं तो ये समझ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, यानी ज्यादा मिलने जुलने में समय बिताने की बजाय सीधा मतलब जो होना है वो होने देने की ओर
2: जरूरी लगता है उतना ठीक है, लेकिन मैं तो जो हमारे में हमसे हुआ है या भगवान ने कर के उससे, क्योंकि देखिए कलकत्ता तक आए फिर भी हम नहीं मिले, वो भी आ सकते थे फरक्का, मैं भी जा सकती थी
1: बिल्कुल,
2: लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, तो मैं तो इसमें भी कुछ अच्छा ही समझती हूँ। तो बाद में मिले हैं, एक दूसरे से बातचीत भी बाद में, बातचीत तो ठीक है फोन में करते ही थे, लेकिन फिर भी साथ बैठ के नाश्ता करना, खाना पीना कुछ तो कभी तो बनता है, लेकिन जो आजकल होता है, लेकिन हमारा ऐसा कुछ रहा नहीं, तो फिर भी हम काफी खुश हैं। एक दूसरे के बारे में जान जाए इतना ही तो चाहिए, तो किसी भी तरीके से जाना जा सकता।
1: वाह बिल्कुल, तो त्रिपाठी जी चलते चलते आप भी हमारे श्रोताओं को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे बता दीजिए।
0: नहीं, मैं तो यही चीज कहना चाहूंगा कि आदमी को यानी इतनी खुशी से यानी जीवन व्यतीत करना है तो उनके जो संबंध है जहाँ भी, तो उसका उसकी सोच, उसके लिए समय निकालना, उसके लिए प्रयास होना, हर एक अपने जीवन संगिनी के लिए, उसका बच्चों के लिए, उसके लिए भी यानी आपके पास एक अलग बैलेंस होना जरूरी है, समय का बैलेंस होना जरूरी है, संस्कारों का बैलेंस होना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें एक मौका मिला है, तो एक आज ही मैं सुबह एक प्रोग्राम में था, तो एक बहुत ही अच्छी लिंकन साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पढ़ाया जाए किसी को तो वो रुजुता से पढ़ाया जाए, तो हम वो जीवन में वो चीज उतार लें कि रुजुता से हम अपने जो संबंध हैं किसी के भी साथ, जो हमारे संबंध पनपते हैं, तो उन्हें इतनी रुजुता से पनपाया जाए तो हमें संसार बहुत ही अच्छा लगेगा, जीने लायक लगेगा, और जो शिकायतें हैं वो थोड़ी कम हो पाएंगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि संबंधों की रुजुता होना, संबंधों में रुजुता बनी रहे, ये मेरे ख्याल से जरूरी है, और उस समय की शायद मांग भी है क्योंकि इतना आज वो नहीं।
1: जी जी, बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। और श्रोताओं, तो आपने सुना आज सुदीप सर और रमा मैम को, और अगर IVF के बारे में आप लोगों के मन में और कोई कंफ्यूजन है या आपका लगता है कि कोई सवाल छूट गया है, तो आप लोग आगे अगर हमारे दोनों मेहमानों से किसी तरह का गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग क्लब या रेडियो मधुबन में संपर्क करें, हम जरूर सुदीप सर तक आपकी क्वेरी को पहुंचाएंगे, और बल्कि सुदीप सर से आपका संपर्क भी करवाएंगे, ये बात मैं उनसे बिना पूछे ही बता रहा हूँ, क्यों सर?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हम हमेशा तैयार रहते हैं कि जो हमने अर्जित किया है वो बांटा जाए।
1: जी, जी, जी,
0: हमारे गुजराती में यहाँ एक कहावत है, गमतानो करिए गुलाल, यानी जो हमें चीज अच्छी लगती है वो बांटने में बहुत खुशी होती है।
1: वाह क्या बात है, बहुत खूब सर, जो अच्छी लगती है चीज वो हमेशा सबके साथ बांटी जाए। अगर ये कार्यक्रम भी आपको अच्छा लगता है तो औरों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो सुदीप सर और रमा मैम, आप दोनों का एक बार फिर से रेडियो मधुबन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये अवसर दिया सबसे मिलने का, और ये अवसर के लिए, और ये सभी चीजें यानी काफी बहुत ऐसा होता है कि इतने डीप में बात नहीं की जा सकती ऐसे प्रोग्रामों में, लेकिन ये जरूरी होती है, तो शायद किसी को भी
1: जी
0: मार्गदर्शन मिल सके, तो इस ख्याल से भी आपने जो प्रयास किया है वो भी वंदनीय है, सराहनीय है, आपको भी हमारी सबकी ओर से, हमारे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चलिए धन्यवाद सर। तो श्रोताओं सुनते रहें रेडियो मधुबन 90.4 FM और मुस्कुराते रहें हमेशा हर दिन हर पल। और क्या कर सकते हैं, रेडियो मधुबन का ऐप जरूर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रेडियो मधुबन को सातों दिन 2400 घंटे 365 दिन अगर सुनना चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और रेडियो मधुबन के नाम से आप ऐप ढूंढ करके इंस्टॉल कर लें। आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in पर करें और अगर कॉल करना चाहें तो 94-14-15-14-15 आपका इंतजार हमेशा करता रहता है। मिलते हैं श्रोताओं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।
4: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूँ, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: कैसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
0: थोड़ी जो मिली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया,

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह

ओम शांति। आज है 10 सितंबर 2026 और हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली से पहले गीत बजा है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो बाबा कहते हैं, एक तरफ है अंधियारा, दूसरी ओर सवेरा है। अर्थात अज्ञानता का अंधकार समाप्त हुआ और ज्ञान सूर्य प्रकटा है तो सवेरा ले आया है। बाबा कहते हैं, जब ये संसार के अंदर अज्ञानता का अंधकार छा जाता है, मनुष्य अनेक रूप से भगवान को ढूंढते हैं, पुकारते हैं कि अब इस दुख की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। तब ज्ञान सूर्य प्रकट करके सबको ज्ञान दे करके आत्मा को सवेरे की ओर ले जाते हैं। विशेष मनुष्य कर्म श्रेष्ठ करने लगते हैं, क्योंकि ज्ञान अर्थात समझ, तो समझ आने से हमारे कर्म स्वतः श्रेष्ठ होने लगते हैं। तो बाबा कहते, सवेरे में फिर ज्ञान की प्रलब्ध को प्राप्त करते हो। यह संगम का समय है जब तुम पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते, यहां आकर के बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर सरल बात धारण कराई है कि बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता की धारणा से ही सवेरे की ओर आगे बढ़ते हैं। अंधियारा अज्ञानता के साथ साथ अपवित्रता का भी है, दुख अशांति का भी है। तो बाबा कहते, अब तुम सवेरे की ओर आगे बढ़ते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो। उत्तर है, दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना ये तो बिल्कुल असंभव है, और तुम सहज धारण कर लेते क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो ये बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। एक जन्म तो क्या, आधा जन्म पवित्र बनना और उसमें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो बाबा कहते, बहुत सस्ता सौदा हुआ। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है, वह तो कॉमन है, दिन और रात की बात है। तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है, दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है। वास्तव में ये अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है, गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रकटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। वह सूर्य तो रोशनी देने वाला है, यह है ज्ञान सूर्य की बात। भक्ति को अंधियारा, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। कहते हैं ना, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान शक्ति है, तो इसीलिए उसके अगेंस्ट में अज्ञान है अंधियारा। तो ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है, भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता है। कलयुग में मनुष्य इसीलिए तो भक्ति करते हैं, चारों ओर
अंधियारा छाया हुआ है, उस अंधियारे से बाहर निकलने के लिए ही तो भगवान को पुकारते हैं। तो बाबा कहते हैं, भक्ति को अज्ञान कहा जाता है, क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम होता है, गुड़ियों की पूजा होती रहती है, आधा कल्प से ये गुड़ियों की पूजा होती है। पूजा जिसकी करते हैं उनका पूरा ज्ञान भी चाहिए। देवी देवताओं का है पूज्य घराना, वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। परमपिता परमात्मा आते ही है संगम पर, जबकि अंधियारा पूरा होता है, सवेरा बनाने आते हैं, परंतु उन्होंने कल्प के संगम युगे के बदले युगे युगे लिख दिया है। जब चार युग पूरे होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी हो फिर नई दुनिया शुरू होती है, तो इसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। इस समय सब नरकवासी है। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था। ये कोई समझते नहीं है कि हम नरक में है। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है, सबकी बुद्धि एकदम मारी गई है। बाप समझाते हैं, भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी। बाबा महिमा करते हैं कि भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी, फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तभी दुख पाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही है। बेसमझ बनाती है कौन? माया। पूज्य को समझदार, पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। कहते भी है कि हम नीच पापी है, परंतु समझदार कब थे ये पता नहीं पड़ता। रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। अभी तुमको समझ आई है कि हम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने, अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। बहुत दिनों से चिल्लाते आए हैं कि हमको शांति मिले अथवा जन्म मरण से छूट जाए, लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्त हो जाए ये ज्ञान भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि माया की जंजीरों से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। बाबा कहते ये ज्ञान भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आते हैं, सतयुग में तो फिर भी धीरे धीरे उतरते हैं, टाइम लगता है। सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है, दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरती है। सतयुग त्रेता में है 21 जन्म, द्वापर कलयुग में है 63 जन्म। तो 21 जन्म धीरे धीरे उतरते हैं सतयुग में सुख की सीढ़ी, लेकिन द्वापर कलयुग की सीढ़ी बहुत जल्दी उतरते हैं, आयु कम हो जाती है। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला चपटी में हो जाती है। गाते भी है जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं है। एक जनक को जीवन मुक्ति मिली, वह सारी दुनिया को मिली। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है कि एक एग्जाम्पल होता है, होता अनेकों को है। किसकी डल बुद्धि होती है तो कहते हैं ना, परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं। जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रहती है उनका भी हिसाब है। बाप जब परमधाम में थे उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती है पिछाड़ी में आती है, वह बहुत समय साथ रहती है। हम तो थोड़ा टाइम वहां रहते हैं परमधाम में, पहले पहले हम बाप से बिछड़ते हैं। सतयुग त्रेता की आत्माएं सबसे पहले पहले बाप से
बिछड़ती है। इसलिए गाया जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, उन्हों का ही अब मेला होता है, जो बहुत समय बाप से अलग रहे हैं, जो वहां बहुत समय साथ रहते हैं उनको नहीं मिलते हैं, उनको परमात्मा नहीं मिलते हैं। बाप कहते, खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूं, तुम बच्चों के साथ हूं तो सबका कल्याण होता है। तो जो पहले पहले बिछड़े, भगवान आकर उनसे मिलते हैं संगम युग पर। बाकी जो बहुत काल ऊपर रहे हैं तो वो तो भगवान के सानिध्य में ही बैठे हैं, उनको वहां वाइब्रेशन मिलता रहता है। तो आखिर तो दोनों ही बच्चे, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, चाहे बहुत काल से बिछड़े हैं चाहे ऊपर साथ रहे हैं, दोनों के लिए ही परमात्मा का प्यार एक जैसा है। तुम बच्चों के साथ हो तो सबका कल्याण होता है। अभी सबकी कयामत का समय है, अभी सब हिसाब किताब चुक तू कर चले जाएंगे, बाकी तुम राज भाग पाएंगे। ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है, गाते भी है गॉड फादर लिबरेटर गाइड, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं। लिबरेट करना अर्थात मुक्त करना, और गाइड बनकर के साथ ले चलते हैं, सुखधाम के लिए गाइड नहीं बनते। बाबा आते हैं शांति धाम के लिए गाइड बनते हैं, सुखधाम के लिए गाइड नहीं बनते। आत्माओं को शांति धाम ले जाते हैं, वह है निराकारी दुनिया जहां आत्माएं रहती है, परंतु वहां कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित है। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं। खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते हैं तब बेहद बाप को ही कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर में ले आते हैं। वंडर है ना, बाबा कहते जब एकदम भारतवासी उल्टे हो जाते तो परमात्मा को कहां कहां कह देते हैं। वंडर है ना, अपने से भी मुझे नीचे ले जाते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। किसका दोष नहीं है, फिर भी भगवान किसी को दोषी नहीं मानते हैं। सब ड्रामा के वश है, ईश्वर के वश नहीं है। ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। बाप कहते मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊंगा, मेरा आना एक ही बार होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, तुमको बाप मिला है, बाप से चपटी में वर्षा लेना है, चपटी में जीवन मुक्ति में जाना है। बाबा कहे चपटी में वर्षा लेना है, वर्षा मिल गया फिर धक्के खाने की दरकार नहीं। भगवान खुद कहते हैं मैं आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं, पहले सच खंड था फिर झूठ खंड कैसे बना ये किसको भी पता नहीं है, गीता किसने सुनाई यह भी भारतवासी नहीं जानते। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, देवता धर्म वाले ही सतो प्रधान, पूज्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं तब देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। फिर बाप आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते हैं, चित्र भी है शास्त्र भी है। भारतवासियों का एक ही शास्त्र शिरोमणि गीता है, हर एक अपने धर्म को ही भूल गए हैं, इसलिए नाम बदल हिंदू रख दिया है। ड्रामा में नोंद है, आत्मा ही पुनर्जन्म में आते तमो प्रधान बन जाती है, खाद पड़ जाती है। तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे, अब झूठे बन गए हैं। जेवर शरीर को कहा जाता है, शरीर द्वारा ही पाठ बजाते हैं। हमको कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपे ही पूज्य पुजारी तुम बनते हो। मैं अगर पूज्य फिर पुजारी बनूं तो तुमको पूज्य कौन बनाए। मैं तो एवर पावन ज्ञान का सागर पतित पावन हूं, तुम ही पूज्य पुजारी बन
दिन और रात में आते हो, परंतु वो लोग जानते नहीं। बाप समझाते हैं, दुनिया झूठी बनती जाती है, तो इतनी झूठी कहानियां बैठ बनाई है। व्यास ने भी कमाल की है। अब व्यास भगवान तो नहीं है, भगवान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझाया है। उन्होंने शास्त्र दे दिया है ब्रह्मा को, अब भगवान कहाँ है? ऐसे तो नहीं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो विष्णु ने बैठ शास्त्रों का सार बताया। बाबा कहते, अगर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला तो क्या विष्णु ने बैठ शास्त्रों का सार बताया? नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाया है। त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव बाबा, इसलिए शिव को कहते त्रिदेव। वह बैठ सार बताते हैं ब्रह्मा द्वारा। जिनके द्वारा समझाते हैं वही फिर पालना करेंगे, इसलिए विष्णु रूप में पालना दिखाई। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ब्राह्मण वर्ण है ऊंच ते ऊंच। तुम अभी हो ईश्वरीय संतान, ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। इनका नाम रखा है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व यानी स्वराज्य प्राप्त करने वाले, अश्वमेघ यानी ये शरीर रूपी अश्व अर्थात देह अभिमान को जो मिटाता है। स्थापन किसने किया है? अविनाशी रुद्र। रुद्र कहा जाता है शिव को, तो अविनाशी रुद्र परमात्मा ने स्थापन किया है ये ज्ञान यज्ञ। जिस ज्ञान यज्ञ के अंदर ये शरीर रूपी देह भान को, हम देह अभिमान को या देह अहंकार को समाप्त करते हैं और स्वराज्य प्राप्त करते हैं ज्ञान के माध्यम से। तो यहाँ कोई रीत रिवाज के हिसाब से नहीं करना है, हर बात जो करते हैं समझ से करनी है। तो इसीलिए नाम रखा है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। जिस यज्ञ के अंदर संपूर्ण समझ, दुनिया के आदि मध्य अंत की संपूर्ण समझ हमें प्राप्त होती है। राजाई प्राप्त कराने के लिए बाप ने यज्ञ रचा है। वह यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिव और शालिग्राम बनाते हैं, उत्पत्ति कर पालना कर फिर खलास कर देते हैं, क्योंकि थोड़े दिन का होता है, दो चार दिन का यज्ञ करते हैं। देवताओं की मूर्तियां भी ऐसे ही करते हैं, जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल करते हैं ऐसे यह भी करते हैं। अब बाप के लिए तो कहते हैं स्थापना पालना फिर विनाश करते हैं, पहले है स्थापना। अभी तुम मृत्यु लोक में अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो, यह तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाप आते हैं अमर लोक स्थापन करने। एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा? अमरनाथ शंकर को कहते हैं, उनको पार्वती देते हैं। अब शंकर पार्वती स्थूल में आ कैसे सकते, जबकि उन्होंने सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अभी तुमको समझाया है जगत अम्बा जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्मों के बाद जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं। वास्तव में जगत अम्बा है पुरुषार्थी, फिर लक्ष्मी है पावन प्रालब्ध। महिमा जास्ती किसकी है? जगत अम्बा पर देखो कितना मेला लगता है। काली कलकत्ते वाली मशहूर है, काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं बनाया है? काली माता है तो काला पिता भी हो। वास्तव में जगत अम्बा आदि देवी ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरी बनती है। पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है। यहां तुम आए हो ईश्वर से
ज्ञान लेकर राज राजेश्वरी बनने। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ईश्वर ने। अमर कथा सत्यनारायण की कथा बाप ही सुनाते हैं, सेकंड में जिससे नर से नारायण बनते हैं। बाबा कहते सेकंड में कथा सुनाकर नर से नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए हैं। हर एक बात यथार्थ समझ में जैसे जैसे आती जाती तो बाबा कहते कपाट खुल गए कि काम महाशत्रु है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना असंभव है। समझाया जाता बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वह अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा। यह तो सस्ता सौदा हुआ ना। व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं, धर्माओं भी निकालते हैं। बाप कहते ये सौदा कोई विरला करते हैं। कितना सस्ता व्यापार है, फिर भी कई है जो सौदा करके फिर फारकती भी दे देते हैं। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा न सके। ज्ञान सागर एक ही है, वही समझाते हैं। जो पावन पूज्य था फिर 84 जन्म के अंत में पुजारी बना है। इनके तन में मैंने प्रवेश किया। बाबा कहते जो पूज्य था सो पुजारी बना और उनके तन में मैंने प्रवेश किया। प्रजा पिता तो यहां होगा ना। अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन रहे हो। अब भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान अर्थात दिन होता है, सवेरा आ रहा है। तिथि तारीख तो है नहीं, शिव बाबा कब आया किसको भी पता नहीं है। कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं, शिव जयंती का पूरा किसको मालूम भी नहीं है। बाबा कहते ये दो की ही जयंती बहुत विशेष रूप से मनाते हैं, शिव जयंती और कृष्ण जयंती। दोनों का आपस में क्या संबंध है? दोनों की ही जयंती क्यों मनाई जाती है? बाबा कहते किसको भी मालूम भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्य नारायण की कथा अमर कथा सुननी है, बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, सतयुग

संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प, समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहां भी संकल्प और समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि एक सेकंड व एक पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है, नहीं। संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। आज का स्लोगन है, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य जिसका शीर्षक है राज ऋषि सतयुगी होते हैं। राज ऋषि सतयुगी होते हैं। लोग यह जो कहते हैं द्वापर में राज ऋषि थे जिन्होंने बैठ ये वेद शास्त्र रचे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। अब वास्तव में राज ऋषि हम सतयुग में ही कह सकते हैं, क्योंकि वहां विकारों को पूरा जीते हुए हैं, अर्थात कमल के फूल समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते राजाएं चलाते हैं। बाकी यह जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले ऋषि होते हैं जिन्होंने वेद शास्त्र रचे हैं, सतयुग में तो वेद शास्त्र की जरूरत भी नहीं रहती, न हम उनको त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते तो फिर यह द्वापर वाले रजोगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं? त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्मा शिव को कह सकते हैं जो स्वयं इस कल्प के अंत में आए सारी रचना का अंत दे देते हैं। वहां सतयुग में प्रारब्ध भोगनी है, वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि हम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण ही सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं, बाकी सारे कल्प के अंदर कोई को भी ज्ञान नहीं मिल सकता है, न देवताओं को न मनुष्य को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्ति इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, उसके अंतर्गत कभी भी अपने पुण्य के बदले प्रशंसा लेने की कामना भी नहीं रखना। यह हद की प्रशंसा को स्वीकार करना सदाकाल की प्राप्ति से वंचित होना है। इसलिए सदा देने में सागर के समान संपन्न बनो। आपका हर बोल औरों को खुशी में, बाप के स्नेह में, अतीन्द्रिय सुख में, रूहानी आनंदमय जीवन का अनुभव कराए और हर कर्म सर्व आत्माओं के प्रति सदा सहयोग की प्राप्ति कराने वाला हो। सहयोग की प्राप्ति कराने वाला हो। अच्छा,